मीडियम वेव 188.32 मीटर यानी 1593 किलोहर्ट्स डीटीएच के ऑडियो चैनल न्यूज़ ऑन एआईआर मोबाइल ऐप और वेव ओटीटी ऐप पर हम आकाशवाणी भोपाल से बोल रहे हैं। आज बुधवार है, शक संवत 1948 के ज्येष्ठ मास की छठवीं तिथि, तदनुसार 27 मई सन 2026 सुबह के 5:57 होने को हैं। हमारी आज की सभा का शुभारंभ।

0: हम आकाशवाणी भोपाल से बोल रहे हैं। सुबह के 6 बजने को हैं। कुछ ही पलों में हिंदी में समाचार दिल्ली से होंगे।
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं सर फिरोजी। विदेश मंत्री डॉक्टर सुब्रमण्यम जयशंकर ने कल शाम नई दिल्ली में ऑस्ट्रेलिया की विदेश मंत्री पेनी वॉन्ग के साथ 17वें विदेश मंत्रियों के द्विपक्षीय संवाद

0: बाद बैठक की सह अध्यक्षता की। डॉक्टर जयशंकर ने कहा कि इसमें हिंद प्रशांत क्षेत्र, पश्चिम एशिया की स्थिति, वैश्विक और बहुपक्षीय मुद्दों पर विचार विमर्श किया गया। उन्होंने दोनों देशों के बीच व्यापक रणनीतिक साझेदारी की प्रगति की समीक्षा की। क्वाड विदेश मंत्रियों की बैठक कल नई दिल्ली में संपन्न हुई। सदस्य देश वैश्विक ऊर्जा बाजारों में व्यवधान के समय एक दूसरे की ऊर्जा सुरक्षा आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए सहयोग बढ़ाने पर सहमत हुए। भारत और रोमानिया ने कल नई दिल्ली में रक्षा सहयोग पर संयुक्त समिति की दूसरी बैठक की। इसमें दोनों देशों के बीच जारी रक्षा सहयोग की समीक्षा की गई और प्रमुख क्षेत्रों में सहयोग बढ़ाने के बारे में बातचीत की गई। दोनों पक्षों ने साइबर सुरक्षा, सैन्य चिकित्सा सहयोग, संयुक्त प्रशिक्षण, क्षमता विकास और रक्षा औद्योगिक सहयोग पर आपसी रक्षा सहयोग योजना को अंतिम रूप दिया। भारत ने केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर के बारे में चीन और पाकिस्तान के अवांछित संदर्भों को सिरे से खारिज कर दिया है। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने कहा कि भारत का रुख सुसंगत है और संबंधित पक्षों को इसकी जानकारी है। उन्होंने कहा कि जम्मू कश्मीर और लद्दाख भारत के अविभाज्य अंग हैं और हमेशा रहेंगे। प्रवक्ता ने कहा कि किसी अन्य देश को इस पर टिप्पणी करने का अधिकार नहीं है। गृहमंत्री अमित शाह ने कहा है कि सरकार नशीले पदार्थों और हथियारों की तस्करी पर रोक के लिए अगले 6 महीने में ड्रोन रोधी प्रणाली स्थापित करेगी। राजस्थान में बीकानेर की सांचू सीमा चौकी पर सीमा सुरक्षा बल के जवानों को संबोधित करते हुए गृहमंत्री ने कल ये घोषणा की।
1: ड्रोन और अन्य उपकरणों के लिए भारत सरकार ड्रोन रोधी संयंत्र लगाने की शुरुआत अगले 6 माह में ही कर लेगी, परंतु ड्रोन उतरता तो भारत की भूमि में है, कौन इसके अंदर के मटेरियल को देश विरोधी कार्यों के लिए उपयोग करता है, इस पर हमारी पैनी नजर होनी चाहिए और इसके न्यूट्रलाइजेशन के लिए सिविल अथॉरिटी और डिस्ट्रिक्ट पुलिस से हमारा जीवंत संपर्क होना चाहिए और परिणाम लक्षी कार्यवाही भी हमने करनी पड़ेगी।
0: सरकार ने प्याज का न्यूनतम समर्थन मूल्य 1,270 रुपए से बढ़ाकर 1,580 रुपए प्रति क्विंटल कर दिया है। ये वृद्धि राज्य सरकारों के अनुरोध पर की गई है। नई दरें कल से लागू हो गई। अमेरिका के राष्ट्रीय वैमानिकी और अंतरिक्ष प्रशासन नासा ने चंद्रमा पर अपना केंद्र बनाने के लिए भेजे जाने वाले रोबोटिक लैंडर्स, हॉपिंग ड्रोन और अन्य वाहनों का विवरण जारी किया है। अमेरिका की वर्ष 2028 में राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का कार्यकाल समाप्त होने से पहले अमरीकियों को चंद्रमा पर उतारने की योजना है। चीन की भी वर्ष 2030 तक चंद्रमा पर मानव उतारने की योजना है। रेल मंत्रालय ने देश की पहली हाइड्रोजन ईंधन आधारित 10 कोच वाली DEMU रेलगाड़ी के संचालन को मंजूरी दे दी है। ये रेलगाड़ी जींद और सोनीपत के बीच अधिकतम 75 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चलेगी। रेल डीजल या बिजली की जगह हाइड्रोजन फ्यूल सेल के जरिए ऊर्जा उत्पन्न करेगी। इसकी कुल क्षमता 1200 किलोवाट होगी। केंद्र सरकार ने घुसपैठ और अन्य कारणों से होने वाले जनसांख्यिकीय बदलाव की चुनौतियों से निपटने के लिए एक उच्च स्तरीय समिति का गठन किया है। इस समिति की अध्यक्षता सर्वोच्च न्यायालय के पूर्व न्यायाधीश प्रकाश प्रभाकर नावलेकर करेंगे। गृह मंत्रालय में संयुक्त सचिव इस समिति में सदस्य सचिव होंगे। पश्चिम बंगाल में एक विशेष अदालत ने मालदा के मोथाबाड़ी में न्यायिक अधिकारियों पर हमले के सिलसिले में 15 और लोगों को 5 जून तक राष्ट्रीय अन्वेषण अभिकरण की हिरासत में भेज दिया है। आरोपियों को सोमवार देर रात मोथाबाड़ी और उसके आसपास के इलाकों में केंद्रीय एजेंसी द्वारा की गई छापेमारी के दौरान गिरफ्तार किया गया। केंद्रीय खेल मंत्री मनसुख मांडविया ने कहा है कि वर्ष 2036 के ओलंपिक खेलों की मेजबानी के भारत के दावे को ध्यान में रखते हुए योगासन को भविष्य के ओलंपिक खेलों की सूची में शामिल करने के लिए प्रयास किए जाएंगे। डॉक्टर मांडविया ने नई दिल्ली में कहा कि अहमदाबाद में 4 से 8 जून तक पहली विश्व योगासन चैंपियनशिप आयोजित की जाएगी। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: ये आकाशवाणी भोपाल है। मीडियम वेव DTH का ऑडियो चैनल, न्यूज़ ऑन AIR मोबाइल ऐप और वेव OTT पर। सुबह के 6:05 हुए हैं। प्रस्तुत है भक्ति संगीत का कार्यक्रम वंदना।
3: प्रातः बेला की आराधना वंदना।

श्रोताओं, आरंभ एक शुभ संकेत है। आरंभ अकेला नहीं आता, उसके साथ आस्था, विश्वास, स्वप्न और अनंत ऊर्जा बहती चली आती है। आरंभ एक संवेदनशील घटना है, इसीलिए आरंभ से जुड़ी शुभ की संवेदना स्वतः प्रार्थना तक पहुंच जाती है। तो आइए इस नए दिन के आरंभ के अवसर पर हम भी वंदना करें। वंदना का प्रथम पुष्प माँ भारती के चरणों में अर्पित करते हैं।

ईश्वर तक पहुंचने का रास्ता परम श्रद्धा से गुजरता है। पूर्ण समर्पण ही उसे पाने का उपाय है। सब उस पर ही छोड़ना होगा। उसने जन्म दिया हमें, वही सांस ले रहा है हम में। हम कुछ नहीं कर रहे, सब उसके करने से हो रहा है। ये समर्पण ही उसे पाने का उपाय है।

जीवन प्रतिपल एक जागरण है, और जब इस जागरण में वो क्षण आए कि कुछ भी दिखाई न पड़े, केवल हमारी चेतना रह जाए, कोई प्रतिबिंब न बने, केवल दर्पण रह जाए, तब हम समझें कि हम परमात्मा से एक हुए। इस जीवन यात्रा का यही अनंतिम लक्ष्य है।

श्रोताओं, ज्ञानी जन कहते हैं कि सुबह की सार्थकता धरती पर रोशनी बोने में है, रात की सार्थकता मन में विश्रांति रख देने में है, हवाओं की सार्थकता जीवन बन हर सांस समाने में है, और हमारे अस्तित्व की सार्थकता उस परम तत्व की अनुभूति में है।

सदियों से जीवन सत्य की खोज में लगा हुआ है, लेकिन ये सत्य शब्द से नहीं पाया जा सकता, भाषा से उसका कोई नाता नहीं। इसके लिए आवश्यक है ध्यान, सुमिरन, योग। इसीलिए गहरे अंतस में उतरकर ज्ञानी जनों ने जो कुछ कहा वो वाणी अमृत हो गई।

0: भक्ति संगीत के इस कार्यक्रम में आप सुन रहे थे समूह स्वर में देशभक्ति रचना के बाद पंडित राजन मिश्र, पंडित साजन मिश्र, अनूप जलोटा, लता मंगेशकर और जगजीत सिंह के गाए भजन। इसके साथ ही संपन्न होती है आज सुबह की भजन यात्रा वंदना।
1: अभी आप सुन रहे थे भक्ति संगीत का कार्यक्रम वंदना। हम आकाशवाणी भोपाल से बोल रहे हैं। प्रस्तुत है श्री रामचरित मानस गान। गायक स्वर भूपेंद्र सिंह, संगीत है सतीश भाटिया का।

ज्ञान और भक्ति मार्ग की मीमांसा करते हुए काकभुशुंडी ने जहां ज्ञान को दीपक की संज्ञा दी, वहां दूसरी ओर भक्ति को ऐसी मणि बताया जो स्वयं प्रकाशित है। इस मणि का जिस हृदय में निवास होता है वो अपने आप अनन्य रूप से परम प्रकाशित हो जाता है। ये ऐसा धन है जिससे मोह रूपी दरिद्रता मिट जाती है। लोभ रूपी हवा उसे दीपक की भांति बुझा नहीं सकती, क्योंकि मणि तो स्वयं प्रकाश रूप है जिसे दीपक की भांति किसी साधन से प्रज्वलित नहीं किया जाता। जिनके हृदय में भक्ति का निवास होता है उनके समीप काम, क्रोध, लोभ और मोह नहीं आ सकते। भक्त के लिए विष भी अमृत के समान होता है, शत्रु भी मित्र बन जाते हैं। अतः चतुर उन्हें जानना चाहिए जो इस अनुपम मणि को पाने का यत्न करते हैं, और इसे प्राप्त करना कष्टसाध्य नहीं होता। इसे प्राप्त करने की इच्छा करने वाले रामकथा, सत्संग, सुबुद्धि, विवेक और वैराग्य के द्वारा सहज ही इसे प्राप्त कर लेते हैं।

0: अभी आप सुन रहे थे श्री रामचरित मानस गान, गायक स्वर भूपेंद्र सिंह, संगीता सतीश भाटिया का। हम आकाशवाणी भोपाल से बोल रहे हैं, सुबह के 6:40 हुए हैं। प्रस्तुत है आज का चिंतन, आलेख है यतीन्द्र चतुर्वेदी का।
1: जीवन में श्रम का महत्व शाश्वत है, सच्चे श्रम से मिलने वाली सफलता ही सच्ची सफलता है तथा सच्चे श्रम से मिलने वाली उपलब्धि ही सच्ची उपलब्धि है। कहा गया है कि श्रम ही चंदन, श्रम ही वंदन, श्रम से है जीवन साकार। श्रम के महत्व को नकार कर अनुचित साधनों से पाई गई सफलता अथवा कोई उपलब्धि का कदाचित कोई महत्व नहीं होता और न ही कोई औचित्य। कठोर श्रम, ईमानदारी, निष्ठा और दृढ़ता ही हमें बड़े से बड़े अभीष्ट को प्राप्त करवाने में सफलता दिलवाते हैं। आज बड़े बड़े उद्योग, बड़ी बड़ी नामचीन इमारतें, खेतों में लहलहाती फसलें, द्रुतगामी रेलगाड़ियां, सड़कों पर तेजी से दौड़ते वाहन, अंतरिक्ष में मानव की उड़ान, कुछ ही समय में विश्व के एक कोने से दूसरे कोने का हवाई सफर, ये सभी मानव के सच्चे श्रम का ही तो सुपरिणाम हैं। चींटियों का श्रम, मधुमक्खी का श्रम, बया का घोंसला बनाने का श्रम, ये सभी मानव के लिए श्रम के महत्व को दर्शाने वाली प्रेरणा रहे हैं। आवश्यकता है श्रम को सम्मानित करने की, अर्थात श्रमजीवियों को सम्मानित करने की। तभी श्रम के महत्व को लोग और ज्यादा समझकर उसे अपने जीवन में आत्मसात कर सकेंगे। वास्तविकता यह है कि श्रम को यथेष्ट सम्मान नहीं मिल पाता है। मेहनत कोई और करता है और उसका श्रेय और लाभ कोई और ले जाता है। ताजमहल बनाने वाले कारीगरों को भला कौन जानता है। आदिकाल से दो ही संस्कृतियों का बोलबाला रहा है, एक भेड़ संस्कृति और दूसरी भेड़िया संस्कृति। हमें समाज से दोहरे मानदंडों को दूर करना होगा और श्रम के महत्व को स्थापित करना होगा। राष्ट्र निर्माण में कड़ी मेहनत के सूत्र को हमारे सभी कर्णधारों ने समझा है, जाना है तथा उसका पालन भी किया है। उनके सिखाए सूत्र आज भी सार्थक हैं, हमारे पथ प्रदर्शक हैं। श्रम को उचित सम्मान मिले, श्रम को उसका उचित प्रतिफल मिले, प्रबंध में उनकी सम्मानित भागीदारी हो, प्रबंध और श्रम समान रूप से उत्पादन में भाग लें,

0: तभी सार्थक प्रगति संभव है और तभी विषमताएं और असमानताएं दूर हो सकेंगी और तभी हम विकासशील से विकसित देश कहला सकेंगे। पाश्चात्य देशों के विचारकों और विद्वानों ने भी डिग्निटी ऑफ लेबर अर्थात श्रम के सम्मान की बात स्थापित की है। श्रमजीवी कुंठित न हो, श्रमजीवियों में विपन्नता न रहे बल्कि संपन्नता आए, एक अच्छे जीवन स्तर को जी सकें, हम सभी को ये प्रयास तो करने ही होंगे। कड़ी धूप से भरी गर्मी हो या ठिठुरन भरी ठंड, आंधी बरसात हो या कोई अन्य बाधा, श्रमजीवी हार नहीं मानते। निरंतर परिश्रम करके वे श्रम के महत्व को स्थापित करते ही रहते हैं व मानव जीवन को सुखद बनाने में अपना भरपूर योगदान देते हैं। अतः श्रम सदा वंदनीय है, श्रमिक सदा अभिनंदनीय है। आज का श्रमजीवी मात्र शारीरिक श्रम तक ही सीमित नहीं है, वो मात्र लेबर नहीं है वरन वो एक स्किल्ड लेबर है, अर्थात वो नई तकनीक से युक्त एक कुशल कारीगर भी है। वो किसी भी रूप में आज वैज्ञानिक प्रगति के युग में किसी से पीछे नहीं है। बड़ी जटिलता वाले कंप्यूटर्स हों या बड़ी बड़ी सूक्ष्म तकनीक वाली मशीनें, सभी को समझकर उन पर कार्य करने की क्षमता का मादा उसने अपने अंदर पैदा कर लिया है। जहाँ ऐसा नहीं है वहाँ भी इस तरह के प्रयास किए जा रहे हैं कि हमारा श्रम संसाधन अधिक से अधिक दक्ष हो, अधिक से अधिक कुशल हो। आज इस बात की नितांत आवश्यकता है, तभी हम श्रम के महत्व को समझते हुए समय के साथ चल सकेंगे।
1: ये था आज का चिंतन, आलेख था यतीन्द्र चतुर्वेदी का। आकाशवाणी भोपाल से प्रस्तुत है कृषि चर्चा। मृदा स्वास्थ्य पत्रक के बारे में निर्मा यादव आपको ये जानकारी दे रहे हैं।
2: कृषि चर्चा में हम किसान भाइयों से बात करेंगे। जो 2015 की हमारी भारत सरकार की योजना है मृदा स्वास्थ्य पत्रक के बारे में, तो मृदा स्वास्थ्य पत्रक क्या है और इसका हम उपयोग कैसे करें, वो किसान भाई इसका उपयोग कैसे कर सकते हैं। तो मृदा स्वास्थ्य पत्रक 2015 की भारत सरकार की एक योजना है। इसके द्वारा किसानों को हर 2 साल में एक मृदा स्वास्थ्य पत्रक दिया जाता है, जिसमें 15 पोषक तत्वों की जानकारी होती है, जिसमें कि मृदा का पीएच, उसका ईसी, ऑर्गेनिक कार्बन की उपलब्धता, नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटेशियम, अगर हम आ जाएं सल्फर, उसके बाद हम सूक्ष्म पोषक तत्वों में बात करें तो आयरन, कॉपर, जिंक, आयरन, मैग्नीज, इन सभी की जानकारी होती है। इसके बाद खेतों में किसी के दलहनी फसलों को कितना नाइट्रोजन दिया जाता है, अनाज वाली फसलों को हम कितना नाइट्रोजन देंगे, इन सभी की जानकारी उस मृदा स्वास्थ्य पत्रक में फसल के आंगन लिखी होती है कि आपको दलहनी फसलों में जैसे कि नाइट्रोजन 30 केजी पर हेक्टेयर के हिसाब से दिया जाता है। अगर आपकी फसल अनाज वाली फसल है, जैसे कि हम वीट को ले लें, गेहूं को ले लें, तो उसमें नाइट्रोजन कम से कम 120 केजी पर हेक्टेयर के हिसाब से हमें देना होता है। तो ये सारी जानकारी आपको मृदा स्वास्थ्य पत्रक के द्वारा किसान भाइयों को मिल जाती है, जिससे मृदा स्वास्थ्य पत्रक का उपयोग करके किसान भाई अपने मृदा स्वास्थ्य पत्रक को देख कर उसी हिसाब से या उसकी अनुशंसित मात्रा के द्वारा किसानों को अपने खेत में खाद या उर्वरक का उपयोग करके अपने खेत की मृदा को स्वस्थ बनाई जा सकती है या अपने खेत की मृदा के स्वास्थ्य को वो सुधार सकते हैं। इसके लिए किसान भाइयों को कुछ करना नहीं होता है, अपने क्षेत्र के जो कृषि विस्तार अधिकारी होते हैं, जो हर एक तहसील में या हर एक जिले में, जिस भी आप जिले में हों, उस जिले में एक सरकारी सोयल टेस्टिंग की लैब होती है या एक कृषि विभाग होता है, सरकारी कृषि विभाग होता है, उस सरकारी कृषि विभाग में सर एक आपका कृषि विस्तार अधिकारी होते हैं, उनसे जाके आप संपर्क कर सकते हैं, उन्हें अपने खेत का सोयल सैंपल दे सकते हैं, वो आपके खेत से अगर आप सोयल सैंपल लेने में असमर्थ हैं तो वो खुद आपके खेत में आएंगे, वो सोयल सैंपल खुद आपको विधि बताएंगे। अगर आपसे किसानों से वो नहीं लेते बनता है और खुद सोयल सैंपल उनको नहीं आ रहा है, तो जो कृषि विस्तार अधिकारी हैं उनका यह दायित्व होता है कि वो किसानों को बताएं। अगर तब भी कुछ परेशानी आती है तो कृषि विस्तार अधिकारी खुद वो सोयल सैंपल उनके खेतों से नमूना लेते हैं, इकट्ठा करते हैं और खुद ही वो जिले की मृदा प्रयोगशाला में उस सैंपल को दे देते

0: देखते हैं और उसकी जो भी रिपोर्ट आती है वो उसकी रिपोर्ट को भी किसान भाइयों को बताते हैं, और उसके बारे में फिर जो उनकी कमी है या अधिकता है पोषक तत्वों की वो भी किसानों को बताते हैं, जिससे उसकी जानकारी उन्हें मिल जाती है और उस हिसाब से अगर किसान भाई उसको उपयोग अगर सही तरीके से अनुशंसित मात्रा का सही तरीके से उपयोग करते हैं तो जो उनके खेतों की मृदा का स्वास्थ्य बिगड़ गया है सर, तो वो सुधर सकता है और उनकी खेतों में फिर से उत्पादकता अच्छी हो सकती है। इसके बाद सर जो मृदा स्वास्थ्य पत्रक हमारा जो है उसकी हर 2 साल में सर वो दिया जाता है, तो उसके लिए ज़रूरी है कि किसान भाई अपने खेतों की मृदा का नियमित परीक्षण कराएं तथा मृदा स्वास्थ्य कार्ड अवश्य बनवाएं। आज की किसी चर्चा में बस इतना ही, धन्यवाद।
1: अभी आप सुन रहे थे कृषि चर्चा, हम आकाशवाणी भोपाल से बोल रहे हैं।
2: एक जमाने से कहानी है सुना रही आकाशवाणी, फिर आया एंटरटेनमेंट का रेवोल्यूशन, जब कोने कोने पहुंचा दूरदर्शन। कहानी नहीं बदली, स्टाइल गया है बदल। जो कहानियां हम सुनते आए देखते आए, अब वही वैसी ही कहानी सुनाएगा डिजिटल।
3: डाउनलोड वेव्स ओटीटी ऐप नाउ एंड वॉच फॉर फ्री।
4: अदम्य शक्ति एवं शौर्य की पहचान है भारतीय सेना। जल थल गगन की रक्षा का वरदान है भारतीय सेना। हर संकट का समाधान है भारतीय सेना। भारत का गौरव है, स्वाभिमान है भारतीय सेना।

0: आज पूरी दुनिया हमारी सेना की वीरता और मारक क्षमता की बुरी बुरी प्रशंसा कर रही है।
1: हो चुनौती कोई भी कैसी भी मुश्किल हर जगह है।

0: घटना स्वयं ही घट पड़े।
1: भारतीय सेना।
2: सुनिए NCERT का प्रायोजित कार्यक्रम उमंग, सोमवार से शुक्रवार शाम 6 बजे आकाशवाणी भोपाल पर।
3: नमस्कार, मैं राजीव वर्मा स्वच्छता ही सेवा अभियान से जुड़ा हुआ हूं और आप सभी से गुजारिश करता हूं, प्रार्थना करता हूं कि आप भी इससे जुड़ें और अपने कार्यालय, घर, कॉलोनी, मोहल्लों को स्वच्छ रखें। धन्यवाद। जय हिंद।
2: सुनिए आकाशवाणी भोपाल पर स्वराज संस्थान संचालनालय का प्रायोजित कार्यक्रम वतन का राग, हर गुरुवार सुबह 8:30 पर।

ये आकाशवाणी भोपाल है, मीडियम वेव डीटीएच के ऑडियो चैनल, न्यूज ऑन एआईआर मोबाइल ऐप और वेव ओटीटी पर। सुबह के 6:55 होने को हैं। कुछ ही पलों में संस्कृत में समाचार और 7 बजे हिंदी में समाचार दिल्ली से होंगे। कृपया प्रतीक्षा करें।

0: आईपीएस अधिकारी बालाजी। इयम् आकाशवाणी सम्प्रति वार्ताः श्रूयन्ताम् प्रवाचकः पुनीत त्रिपाठी। अथ वार्ताः। केन्द्रेण अनुप्रवेशेण अन्यैः कारणैः च जनसांख्यिकीय परिवर्तनस्य समाह्वानान् निवारणाय उच्चस्तरीय समित्याः निर्माणं विहितम्। सामाजिकान्तर्जालीये पटले केन्द्रीयगृहमन्त्री अमितशाहः ह्यः अवदत् यत् सर्वोच्चन्यायालयस्य पूर्वन्यायाधीशः प्रकाशप्रभाकरनावलेकरः समित्याः अध्यक्षः भविष्यति। जनगणना आयुक्तेन सह पूर्व आईएएस अधिकारी दुर्गा शंकर मिश्रा, पूर्व आईपीएस अधिकारी बालाजी श्रीवास्तवः, अर्थशास्त्री डॉक्टर समीका रवि इत्येषा च समित्याः सदस्यरूपेण नियुक्तः अस्ति। गृहमन्त्रालयस्य संयुक्तसचिवः एकः वैदेशीयः समित्यां सदस्यसचिवरूपेण कार्यं करिष्यति। गृहमन्त्रिणा अमितशाहेन उक्तं यत् ड्रोन यन्त्रैः मादकद्रव्याणां शस्त्राणां च तस्करणं निवारयितुम् अग्रिमेषु षण्मासेषु एव सर्वकारः ड्रोन अवरोधप्रणाल्याः नियोजनं प्रचालयिष्यति। राजस्थानस्य बीकानेर जनपदस्य सांचू सीमा पोस्ट इत्यत्र बीएसएफ सैनिकान् सम्बोधयन् सः अवदत् यत् यद्यपि सीमापारात् उद्भूताः विभीषिकाः महत्वपूर्णानि एव सन्ति, तथापि देशस्य अन्तः एतादृशानां विभीषिकानां साहाय्यं कुर्वताम् आन्तरिकतत्त्वानां विषयेऽपि समानं ध्यानं दातव्यम्।
1: ड्रोन और अन्य उपकरणों के लिए भारत सरकार ड्रोन रोधी संयंत्र लगाने की शुरुआत अगले 6 माह में ही कर लेगी, परंतु ड्रोन उतरता तो भारत की भूमि में है, कौन इसके अंदर के मटेरियल को देश विरोधी कार्यों के लिए उपयोग करता है, इस पर हमारी पैनी नजर होनी चाहिए और इसके न्यूट्रलाइजेशन के लिए सिविल अथॉरिटी और डिस्ट्रिक्ट पुलिस से हमारा जीवंत संपर्क होना चाहिए और परिणाम लक्षी कार्यवाही भी हमने करनी पड़ेगी।
0: ऑस्ट्रेलिया देशस्य विदेश मंत्रिणा पेनी वोंगह इत्येषा ह्यः नवदिल्ल्यां प्रधानमंत्रिणा नरेंद्र मोदिना सह मिलितवती। श्रीमोदी रक्षा व्यापार प्रौद्योगिकी इत्यादिषु क्षेत्रेषु वर्धमानस्य

0: भारत ऑस्ट्रेलिया व्यापक सामरिक सहभागित्वस्य विषयेपि आपूर्ति श्रृंखलायाः स्थितिस्थापकतायाः विषये च चर्चितवान्। प्रधानमंत्री अवदत् यत् भारत ऑस्ट्रेलिया देशौ स्वतंत्रं मुक्तं सुरक्षितं समृद्धं च हिंद प्रशांत क्षेत्रस्य कृते निरन्तरं कार्यं करिष्यतः। विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर सुश्री वोंग इत्यनया सह सप्तदशतमस्य विदेश मंत्रिणां फ्रेमवर्क संवादेत्यस्य सह अध्यक्षतां कृतवान्। सामाजिकान्तर्जालीये पटले डॉक्टर जयशंकर अवदत् यत् ते हिंद प्रशांत प्रदेशे पश्चिम एशियायाः स्थितिम् अन्येषु क्षेत्रीय वैश्विक बहुपक्षीय विषयेषु च मतानां आदान प्रदानं कृतवन्तः। भाजपेति दलाध्यक्षः नितिन नवीनः ह्यः नवदिल्ल्याः दलस्य मुख्यालये नो बीजेपी इति उपक्रमस्य अन्तर्गतं द्वादश देशानाम् अभियान प्रमुखैः सह वार्तालापम् अकरोत्। श्रीनवीनः ब्राजील, जर्मनी, इंडोनेशिया, मलेशिया, मॉरिसस, न्यूजीलैंड, सेशेल्स, सिंगापुर, दक्षिण अफ्रीका, श्रीलंका, थाईलैंड, वियतनाम इत्यादीनां देशानां प्रतिनिधीनां स्वागतम् अकरोत्, तथा च भाजपेति दलस्य यात्रायाः विचारधारायाः संघटनात्मक शक्तेः लोकसेवायाः प्रतिबद्धतायाः च विषये अवधानं प्रदत्तवान्। केन्द्रीय वाणिज्योद्योग मंत्री पीयूष गोयलः दृढविश्वासं प्रकटितवान् यत् भारत कनाडा आर्थिक सहभागित्वस्य अग्रिमः अध्यायः विश्वासेन प्रेरितः भविष्यति, येन द्वयोः राष्ट्रयोः संयुक्त समृद्धिः भविष्यति। गतरात्रौ कनाडा देशस्य टोरेंटो नगरे राजनैतिक पुनरुत्थापनात् वाणिज्यिक वितरण पर्यन्तम् इति मंत्रिस्तरीय पूर्ण सम्मेलनस्य उद्घाटन सत्रं संबोधितवान् इति वार्ताः।
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं मुनीश शर्मा। केंद्र सरकार ने घुसपैठ और अन्य कारणों से होने वाले जनसांख्यिकी बदलाव की चुनौतियों से निपटने के लिए एक उच्च स्तरीय समिति का गठन किया है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि समिति की अध्यक्षता सर्वोच्च न्यायालय के पूर्व न्यायाधीश प्रकाश प्रभाकर नावलेकर करेंगे। जनगणना आयुक्त के साथ साथ पूर्व आईएएस अधिकारी दुर्गा शंकर मिश्र, पूर्व आईपीएस अधिकारी बालाजी श्रीवास्तव और अर्थशास्त्री डॉ शमिका रवि को इस समिति का सदस्य नियुक्त किया गया है। गृह मंत्रालय में संयुक्त सचिव इस समिति में सदस्य सचिव के रूप में काम करेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पिछले साल 15 अगस्त को लाल किले से जनसांख्यिकी परिवर्तन पर उच्च स्तरीय समिति के गठन की घोषणा की थी।
2: मैं आज देश के सामने एक चिंता, एक चुनौती के संबंध में आगाह करना चाहता हूँ। षड्यंत्र के तहत देश की डेमोग्राफी को बदला जा रहा है, एक नए संकट के बीज बोए जा रहे हैं और ये घुसपैठिए मेरे देश के नौजवानों की रोजी रोटी छीन रहे हैं। ये देश सहन नहीं करेगा और इसलिए एक हाई पावर डेमोग्राफी मिशन शुरू करने का निर्णय किया।
1: विदेश मंत्री डॉक्टर सुब्रमण्यम जयशंकर ने कल शाम नई दिल्ली में ऑस्ट्रेलिया के विदेश मंत्री पेनी वोंग के साथ विदेश मंत्रियों की 17वें द्विपक्षीय संवाद बैठक की सह अध्यक्षता की। डॉक्टर जयशंकर ने कहा कि इसमें हिंद प्रशांत क्षेत्र, पश्चिम एशिया की स्थिति, वैश्विक और बहुपक्षीय मुद्दों पर विचार विमर्श किया गया। उन्होंने दोनों देशों के बीच व्यापक रणनीतिक साझेदारी की प्रगति की समीक्षा भी की। भारत और रोमानिया ने कल नई दिल्ली में रक्षा सहयोग पर संयुक्त समिति की दूसरी बैठक की। इसमें दोनों देशों के बीच जारी रक्षा सहयोग की समीक्षा की गई और प्रमुख क्षेत्रों में सहयोग को बढ़ाने के बारे में बातचीत की गई। दोनों पक्षों ने साइबर सुरक्षा, सैन्य चिकित्सा सहयोग, संयुक्त प्रशिक्षण, क्षमता विकास और रक्षा औद्योगिक सहयोग पर आपसी रक्षा सहयोग योजना को अंतिम रूप दिया। भारत ने केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर के बारे में चीन और पाकिस्तान के अवांछित संदर्भों को सिरे से खारिज कर दिया है। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने कहा कि भारत का रुख सुसंगत है और संबंधित पक्षों को इसकी जानकारी है। उन्होंने कहा कि जम्मू कश्मीर और लद्दाख भारत के अविभाज्य अंग हैं और हमेशा

0: रहेंगे। प्रवक्ता ने कहा कि किसी अन्य देश को इस पर टिप्पणी करने का कोई अधिकार नहीं है। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड CBSE ने स्पष्ट किया है कि उत्तर पुस्तिकाओं के मूल्यांकन के लिए उपयोग की जाने वाली ऑन स्क्रीन मार्किंग प्रणाली में कोई सुरक्षा उल्लंघन नहीं हुआ है। CBSE ने कहा कि वास्तविक मूल्यांकन कार्य के लिए उपयोग किए जा रहे पोर्टल पर कोई सुरक्षा उल्लंघन सामने नहीं आया है। बोर्ड ने कहा कि ऑन स्क्रीन मार्किंग प्रणाली शिकायतों के निवारण के साथ साथ मूल्यांकन में पारदर्शिता को बढ़ाने के लिए लागू की गई है। बोर्ड ने संबंधित पक्षों को आश्वस्त किया कि मूल्यांकन प्लेटफॉर्म की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए कड़े और ठोस उपाय किए गए हैं। अमेरिका के राष्ट्रीय वैमानिकी और अंतरिक्ष प्रशासन नासा ने चंद्रमा पर अपना केंद्र बनाने के लिए भेजे जाने वाले रोबोटिक लैंडर्स, हॉपिंग ड्रोन और अन्य वाहनों का विवरण जारी किया है। अमेरिका की वर्ष 2028 में राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का कार्यकाल समाप्त होने से पहले अमरीकियों को चंद्रमा पर उतारने की योजना है। चीन की भी वर्ष 2030 तक चंद्रमा पर मानव उतारने की योजना है। रेल मंत्रालय ने देश की पहली हाइड्रोजन ईंधन आधारित 10 कोच वाली DEMU रेलगाड़ी के संचालन को अपनी मंजूरी दे दी है। ये रेलगाड़ी जींद और सोनीपत के बीच अधिकतम 75 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चलेगी। रेल डीजल या बिजली की जगह हाइड्रोजन फ्यूल सेल के जरिए ऊर्जा उत्पन्न करेगी और इसकी कुल क्षमता 1200 किलोवाट होगी। IPL क्रिकेट में रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु ने कल पहले क्वालिफायर मैच में गुजरात टाइटंस को 92 रन से हराकर फाइनल में जगह बना ली है। प्रतियोगिता में आज सनराइजर्स हैदराबाद और राजस्थान रॉयल्स के बीच एलिमिनेटर मैच खेला जाएगा। ये मैच शाम 7:30 बजे से मोहाली के न्यू चंडीगढ़ में शुरू होगा। और इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: हम आकाशवाणी भोपाल से बोल रहे हैं। मीडियम वेव DTH के ऑडियो चैनल न्यूज़ ऑन AIR मोबाइल ऐप और वेव OTT पर। सुबह के 7:05 हुए हैं। समय है कार्यक्रम विवरण का। लीजिए एक नज़र डाल लेते हैं आकाशवाणी भोपाल और आकाशवाणी मध्य प्रदेश से प्रसारित होने वाले आज के कार्यक्रमों पर। अब से थोड़ी ही देर 7:20 पर नमस्कार भोपाल के आकर्षण हैं। अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान भोपाल द्वारा संचालित मानसिक रोग नियंत्रण कार्यक्रम का विवरण सहायक प्राध्यापक मानसिक स्वास्थ्य विभाग डॉक्टर तन्मय जोशी से। वीर भारत न्यास द्वारा भारत भवन में आयोजित किए जाने वाले सदा नीरा कार्यक्रम की जानकारी सलाहकार राहुल रस्तोगी से। और प्रदेशव्यापी ग्रीष्मकालीन गिद्ध गणना के संबंध में वन विहार भोपाल के संचालक विजय कुमार से बातचीत की है हमारे प्रतिनिधि संजय श्रीवास्तव ने। फिल्म संगीत पर आधारित कार्यक्रम होगा सुरमई सवेरा। इसका समय रहेगा 8:30 पर। सुगम संगीत में रागेश्वरी सोनी के गीत और भजन आप सुन सकेंगे 9:15 पर। 9:30 प्रदेश की सुर्खियों में क्षेत्रीय समाचार एकांश का ये कार्यक्रम आप सुनेंगे 9:30। जिले की चिट्ठी रोज की तरह 10:00। 10:05 पर आज आप सुनेंगे महिला संसार। इसमें कुछ चर्चाएं होंगी, कुछ गीत और व्यंजन विधियां आपको सुनवाई जाएंगी। शास्त्रीय संगीत का कार्यक्रम रागमाला में 10:30 सुनिएगा पंडित विश्व मोहन भट्ट का गिटार पर बजाया राग देवगिरी बिलावल। आकाशवाणी मध्य प्रदेश से फोन इन कार्यक्रम फोन करें गीत सुने सुनिएगा 11:00। 12:00 आपकी फरमाइश। 12:30 संग्रहालय से कार्यक्रम में सुनिए सिसकियों का भाग एक। 1:00 महिला कार्यक्रम। 1:30 पर लोक संगीत। 1:45 पर सुगम संगीत और 5:02 पर युवा श्रोताओं का कार्यक्रम युववाणी। ये सभी कार्यक्रम आकाशवाणी ग्वालियर की प्रस्तुति होगी।

दोपहर 2 बजे सुगम संगीत सुनिएगा, दोपहर 2 बजे फिल्म संगीत का आनंद लीजिएगा और 2:30 बजे आपकी फरमाइश होगा।

शाम की सभा में फिल्म संगीत का आनंद लीजिएगा शाम 5:33 पर, 6:30 और 8:15 पर। एनसीईआरटी का प्रायोजित कार्यक्रम शाम 6 बजे आपको सुनवाया जाएगा।

शाम की सभा में फिल्म संगीत का आनंद लीजिएगा शाम 5:33 पर, 6:30 और 8:15 पर। NCERT का प्रायोजित कार्यक्रम शाम 6:00 आपको सुनवाया जाएगा। 7:21 पर ग्राम सभा के आज के आकर्षण हैं बुंदेली समाचार, लोक रंग और कुछ बातचीत। आकाशवाणी मध्य प्रदेश से रात 8:00 सुनिएगा सुर्खियों में। 9:30 चर्चा का विषय, ये कार्यक्रम आप सुन सकेंगे आकाशवाणी दिल्ली से। और रात 10:00 एक नाटक आपको सुनवाया जाएगा उपेक्षित। इसके लेखक हैं घनश्याम सिंह तोमर, प्रस्तुतकर्ता चित्रेंद्र स्वरूप राजन। रात 10:30 शास्त्रीय संगीत का कार्यक्रम राग रजनी में पंडित विश्व मोहन भट्ट का गिटार पर बजाया राग रागेश्वरी हम आपको सुनवाएंगे।

हम अपने सुनने वालों को याद दिला दें कि रोज की तरह आज आप सुनेंगे सुबह 8:30 बजे फिल्म संगीत पर आधारित कार्यक्रम सुरमई सवेरा। इसमें कुछ बेहतरीन गाने और कुछ बातचीत आपसे होगी। इसी के साथ कार्यक्रम विवरण संपन्न हुआ।

हम आकाशवाणी भोपाल से बोल रहे हैं। सुबह के 7:10 होने को हैं। कुछ ही पलों में आप सुनेंगे प्रादेशिक समाचार।

0: नमस्कार, समाचारों के साथ मैं दीपा सिंह। सबसे पहले मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मिले ऑस्ट्रेलिया और जापान के विदेश मंत्री। ओलंपिक खेलों की सूची में योगासन को शामिल करने के प्रयास होंगे, कहा केंद्रीय मंत्री मनसुख मांडविया ने। भोपाल में आज होगा जल संरक्षण पर केंद्रित सदा नीरा समागम का शुभारंभ। और आईपीएल क्रिकेट में आज सनराइजर्स हैदराबाद और राजस्थान रॉयल्स के बीच मुकाबला। अब समाचार विस्तार से। ऑस्ट्रेलिया की विदेश मंत्री पेनी पोंग ने कल नई दिल्ली में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात की। श्री मोदी ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा है कि इस दौरान रक्षा, व्यापार, प्रौद्योगिकी और आपूर्ति श्रृंखला की मजबूती सुनिश्चित करने जैसे क्षेत्रों में भारत ऑस्ट्रेलिया की व्यापक रणनीतिक साझेदारी के विस्तार पर चर्चा हुई। प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत और ऑस्ट्रेलिया एक स्वतंत्र, खुले, सुरक्षित और समृद्ध हिंद प्रशांत क्षेत्र के लिए मिलकर काम करना जारी रखेंगे। प्रधानमंत्री से जापान के विदेश मंत्री तोशिमित्सु मोतेगी ने भी मुलाकात की। उन्होंने हिंद प्रशांत क्षेत्र और उससे परे शांति, स्थिरता तथा समृद्धि को बढ़ावा देने में भारत जापान विशेष रणनीतिक और वैश्विक साझेदारी की महत्वपूर्ण भूमिका की पुष्टि की। केंद्रीय युवा मामले और खेल मंत्री मनसुख मांडविया ने कहा है कि वर्ष 2036 के ओलंपिक खेलों की मेजबानी के भारत के दावे को ध्यान में रखते हुए योगासन को भविष्य के ओलंपिक खेलों की सूची में शामिल करने के प्रयास किए जाएंगे। डॉ. मांडविया ने कल नई दिल्ली में कहा है कि अहमदाबाद में 4 से 8 जून तक पहली विश्व योगासन चैंपियनशिप आयोजित की जाएगी। ये देश की पारंपरिक स्वास्थ्य पद्धति को वैश्विक खेल के रूप में स्थापित करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। उन्होंने कहा कि योगासन देश की सॉफ्ट पावर को दर्शाता है और विश्व भर में शारीरिक फिटनेस, मानसिक स्वास्थ्य और स्वस्थ जीवन को बढ़ावा देने का एक माध्यम बनकर उभरा है।
1: योग ये हमारे देश की संस्कृति भी है, हमारी जीवन शैली भी है। आज से सदियों पहले योग भारत से निकल के सारे दुनिया में गया है। फिर से योगासना की फर्स्ट वर्ल्ड चैंपियनशिप करके उसको पुनः भारत में एक बड़ा कार्यक्रम के रूप में आयोजित करेंगे। वर्ल्ड चैंपियनशिप है, अभी प्रारंभ भारत से कर रहे हैं और सारी दुनिया के अलग अलग कंट्री में उसको भविष्य में करा जाएगा।

0: प्रदेश में जनगणना 2027 के तहत मकान सूचीकरण का काम तेजी से आगे बढ़ रहा है। 25 मई तक 2,39,00,000 से ज्यादा मकानों की गणना पूरी हो चुकी है। 1 मई से शुरू हुआ ये काम 30 मई तक पूरा कर लिया जाएगा। नोडल अधिकारी शिल्पा गुप्ता ने बताया कि इस बार पूरी प्रक्रिया डिजिटल है। प्रगणक घर घर जाकर HLO ऐप के जरिए जानकारी दर्ज कर रहे हैं। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने कहा है कि प्रदेश में जल गंगा संवर्धन अभियान जन आंदोलन बन गया है। जनता की सहभागिता से जल संरक्षण में मध्य प्रदेश देश में अग्रणी राज्य बन गया है। डॉ. यादव कल उज्जैन में शिप्रा तट पर शिप्रा तीर्थ परिक्रमा के समापन समारोह में मां शिप्रा को 351 फीट की चुनरी अर्पित करने के उपरांत जनसभा को संबोधित कर रहे थे। इस कार्यक्रम में भारतीय नौसेना के बैंड ने रामघाट पर मनमोहक प्रस्तुति दी। इस अवसर पर मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने अन्य अतिथियों के साथ अंतरजली यात्रा, श्री शिप्रा महिमा और ये है मोहन की सरकार पुस्तकों का विमोचन किया। इस अवसर पर मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने कहा कि आगामी सिंहस्थ के दौरान शिप्रा नदी की घाट पर श्रद्धालुओं को स्वच्छ जल की उपलब्धता आयोजन को पावन बनाएगी। श्रद्धालुओं की आकांक्षा को पूरा करने के लिए राज्य सरकार ने आवश्यक व्यवस्थाएं की हैं।
1: जल संरक्षण के काम कर रहे हैं और जल संरक्षण के काम हम नदी, तालाब, कुएं, बावड़ी, पोखर, नदियों के उद्गम हर एक जगह जल की महत्ता को स्थापित करते हुए जन सहयोग के माध्यम से शासन भी 10,000 करोड़ की राशि का अमृत सरोवर से लेके सही कई प्रकार के जल रचनाओं पे काम कर रहा है, तालाबों पे काम कर रहा है और हमारा प्रदेश तो अब और नदी जोड़ो अभियान की तरफ आगे बढ़ रहा है। नदी में हमारे लिए जीवन, जल में ही जीवन है। ऐसे में नदी जोड़ो अभियान विश्व का सबसे पहला अगर कहीं हो रहा है तो मध्य प्रदेश में हो रहा है।
0: पर्यावरण अनुकूल जीवन शैली, जलवायु अनुकूल शहरी विकास पर केंद्रित राष्ट्रीय सम्मेलन का आयोजन आगामी 30 और 31 मई को भोपाल के पर्यावरण नियोजन एवं समन्वय संस्थान एप्को परिसर में किया जाएगा। सम्मेलन में जैव विविधता संरक्षण, पर्यावरण संरक्षण और शहरी विकास के संबंध में विषय विशेषज्ञ अपने विचार प्रकट करेंगे। समाचारों में वक्त है ब्रेक का।
2: ये समाचार आप आकाशवाणी मध्य प्रदेश से सुन रहे हैं। ये समाचार बुलेटिन YouTube पर मध्य प्रदेश न्यूज ऑल इंडिया रेडियो चैनल पर और Facebook साथ ही X प्लेटफॉर्म पर AIR न्यूज भोपाल पर सुने जा सकते हैं। इसके अलावा आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर अथवा न्यूज ऑन AIR ऐप पर भी समाचार सुन सकते हैं।
0: ब्रेक के बाद समाचारों में आपका एक बार फिर स्वागत है। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव आज भारत भवन में जल गंगा संवर्धन अभियान के अंतर्गत राष्ट्रीय संगोष्ठी और सांस्कृतिक उत्सव सदा नीरा समागम का शुभारंभ करेंगे। वीर भारत न्यास द्वारा जल संरक्षण, भारतीय संस्कृति, पंच महाभूतों तथा सतत विकास के विषयों पर केंद्रित ये गरिमामय आयोजन 2 जून तक चलेगा, जिसमें देश विदेश के विद्वान, पर्यावरण विशेषज्ञ, वैज्ञानिक, नीति निर्माता और कलाकार सहभागिता करेंगे। इस 7 दिवसीय समागम में भारतीय दर्शन के पंच महाभूत जल, पृथ्वी, वायु, आकाश और अग्नि पर आधारित विभिन्न वैचारिक सत्र आयोजित किए जाएंगे। महिला और बाल विकास मंत्री निर्मला भूरिया की अध्यक्षता में कल मध्य प्रदेश महिला वित्त और विकास निगम की बैठक हुई। बैठक में महिला रोजगार, कौशल विकास और संस्थागत सुधारों को लेकर कई महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए। बैठक में मंत्री सुश्री भूरिया ने निर्देश दिए कि महिला वित्त एवं विकास निगम को प्रदेश की महिला वर्कफोर्स तैयार करने वाली प्रमुख संस्था के रूप में विकसित किया जाए। इसके लिए नियम एक व्यापक ऑनलाइन पोर्टल तैयार करेगा, जिसमें महिलाओं की कौशल दक्षता पर परीक्षण कर उन्हें कुशल, अर्धकुशल और अकुशल श्रेणियों में वर्गीकृत किया जाएगा। प्रधान मुख्य वन संरक्षक और वन बल प्रमुख शुभ रंजन सेन ने भोपाल स्थित वन भवन में अत्याधुनिक आईटी ट्रेनिंग हॉल का लोकार्पण किया। आईटी ट्रेनिंग हॉल के माध्यम से विभागीय अधिकारियों और कर्मचारियों को डिजिटल तकनीकों, ई गवर्नेंस प्रणाली, आधुनिक सॉफ्टवेयर आधारित कार्य प्रणालियों का प्रशिक्षण प्रदान किया जाएगा। इससे विभागीय कार्यों में दक्षता, पारदर्शिता और त्वरित निर्णय प्रक्रिया को मजबूती मिलेगी। धार जिले में विकसित किए जा रहे पीएम मित्र पार्क के अंतर्गत प्रभावित परिवारों के पुनर्वास का कार्य संवेदनशीलता और मानवीय दृष्टिकोण के साथ निरंतर प्रगति पर है। परियोजना से प्रभावित कुल 89 परिवारों में से अब तक 48 परिवारों को 2 चरणों में 24-24 परिवारों के समूह के रूप में सफलतापूर्वक नवीन आवासीय कॉलोनी में स्थानांतरित किया जा चुका है, जबकि शेष 41 परिवारों का पुनर्वास आगामी 3 माह में पूरा किए जाने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है।

आईपीएल प्रतियोगिता में दूसरा क्वालीफायर मुकाबला आज सनराइजर्स हैदराबाद और राजस्थान रॉयल्स के बीच शाम 7:30 बजे न्यू चंडीगढ़ में खेला जाएगा। इसके पूर्व कल रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु ने गुजरात टाइटन्स को पहले क्वालीफायर मुकाबले में 92 रन से हराकर फाइनल में प्रवेश कर लिया। अब कुछ समाचार संक्षेप में। खंडवा पुलिस अधीक्षक अगम जैन ने कल पुलिस लाइन का निरीक्षण कर व्यवस्थाओं का जायजा लिया। झाबुआ में संभागीय चलित खाद्य परीक्षण प्रयोगशाला ने ग्रामीण क्षेत्र में औचक निरीक्षण कर 29 नमूने जांच के लिए लिए हैं। आगरमालवा में कल आयोजित हुई जिला शांति समिति की बैठक में कलेक्टर प्रीति यादव ने ईद और मुहर्रम पर्व शांति सौहार्द से मनाने की अपील की है। भोपाल में संभावित हवाई हमले और बड़े आपदा हालात से निपटने के लिए अटल बिहारी वाजपेयी शासकीय आवास परिसर में मॉक ड्रिल की गई। शिवपुरी में आज शासकीय आईटीआई झांसी रोड में युवा संगम कार्यक्रम का आयोजन किया जाएगा। बालाघाट में वन अधिकार अधिनियम के अंतर्गत पात्र हितग्राहियों को वन अधिकार पट्टों का वितरण करने के लिए जिले में विशेष अभियान चलाया जा रहा है। डिंडौरी कलेक्टर अंजू पवन भदौरिया की अध्यक्षता में कल सर्व शिक्षा अभियान की समीक्षा बैठक आयोजित की गई। इस बुलेटिन में बस इतना ही। अगला बुलेटिन दोपहर 2:10 पर। नमस्कार।

0: हम आकाशवाणी भोपाल से बोल रहे हैं। मीडियम वेव डीटीएच के ऑडियो चैनल न्यूज ऑन एआईआर मोबाइल ऐप और वेव ओटीटी पर प्रस्तुत है सूचना, शिक्षा और मनोरंजन का कार्यक्रम नमस्कार भोपाल।
1: नमस्कार भोपाल के सभी सुनने वालों को संजय श्रीवास्तव का नमस्कार। आप सभी का स्वागत, अभिनंदन, इस्तकबाल, गुड मॉर्निंग टू ऑल। हम उम्मीद करते हैं कि हर रोज की तरह आज भी आप सुहानी सुबह का स्वागत और अभिनंदन करते हुए अपने उस मनपसंद कार्यक्रम को सुनने के लिए तैयार होंगे जिसका नाम है नमस्कार भोपाल। ये वो कार्यक्रम है जिसने हमेशा आपकी जिंदगी को सकारात्मक दृष्टिकोण दिया है, आपको संगीत की सुमधुर स्वर लहरियों से जोड़ा है, हमेशा आपको प्रेरित किया है जिंदगी में आगे बढ़ने के लिए। और जीवन में जब आगे बढ़ने की बात आती है तो हमें अपने महापुरुषों के कई विचार, उनके उपदेश और अनमोल वचन बहुत हिम्मत और हौसला देते हैं, हमारी उतार चढ़ाव भरी जिंदगी में संतुलन भी बैठाते हैं, साथ ही उस मंजिल पर पहुंचने को भी आसान कर देते हैं जहां कई बार कड़ी मेहनत के बावजूद वो हमारे करीब नहीं आ पाती। और ऐसे ही सकारात्मक विचारों की पल पल हमें ज़रूरत होती है ताकि निराशा, अवसाद से हमारा कोई वास्ता ना पड़े और हर विपरीत परिस्थिति का सामना करने में हम सक्षम हो सकें। इसलिए रोज़ाना एक प्रेरक प्रसंग अथवा अनमोल विचारों का अध्ययन ज़रूर कीजिए ताकि आपके मस्तिष्क को मिले शांति और मिले प्रसन्नता। और किसी महापुरुष का एक विचार इस समय मेरे जहन में आ रहा है, उन्होंने कहा है, हर सपने को अपनी सांसों में रखो, हर मंजिल को अपनी बाहों में रखो, हर जीत आपकी है, बस अपने लक्ष्य को अपनी निगाहों में रखो। तो ऐसी छोटी छोटी बातें हमारे जीवन में बहुत काम आती हैं, तो उन पर गौर कीजिए और चलते चलिए अपने सफर पर। आगाज हो चुका है आपके पसंदीदा कार्यक्रम नमस्कार भोपाल का। 7:20 से 8 तक बने रहिए हमारे साथ और लेते जाइए लाभ जानकारियों का और करते जाइए मीठे गीतों से अपना मनोरंजन भी। आज भी बहुत कुछ होगा हर रोज की तरह और हम उम्मीद करते हैं कि आप अपडेट भी होंगे और खुश भी रहेंगे, अपने मिजाज को भी आप एक नया मोड़ देते रहेंगे।

0: तो मयूर की तरह आपका मन मयूर भी नाच उठा होगा इस मीठे से तराने को सुनकर। और आज नमस्कार भोपाल में आगे हम बात करेंगे आज से शुरू होने वाले कार्यक्रम सदा नीरा की। गिद्ध गणना का काम पूरा हुआ है मध्य प्रदेश में, इसकी प्रासंगिकता पर भी होगी चर्चा और जानेंगे एम्स भोपाल के मानसिक रोग नियंत्रण कार्यक्रम के बारे में। बस बने रहिए हमारे साथ, सुनते रहिए हर रोज की तरह आपका पसंदीदा कार्यक्रम नमस्कार भोपाल।
1: आकाशवाणी के सुनने वाले सभी भाइयों को आनंद जी का नमस्कार और आप सुन रहे हैं नमस्कार भोपाल।

इस अंतराल के बाद एक बार फिर स्वागत है आप सभी का ज्ञान और मनोरंजन से परिपूर्ण विविधरंगी कार्यक्रम में, जिसका नाम है नमस्कार भोपाल। सुबह के 7:26:34 हुए हैं। देखते हैं समाचार पत्रों की ताजा तरीन खबरें। पहली खबर है, अब सीएनजी के दाम बढ़े, राजधानी में 94.75 रुपये प्रति किलो हो गई कीमत। अमेरिका ईरान जंग के बीच प्रदेश में कंप्रेस्ड नेचुरल गैस यानी सीएनजी के रेट मंगलवार को फिर बढ़ गए। 10 दिन में ये दूसरी बढ़ोतरी है। राजधानी में सीएनजी 1 रुपये प्रति किलो महंगी हो गई है। शहर में अब इसका दाम 94.75 रुपये प्रति किलो हो गया है। इससे पहले 16 मई को करीब 3 रुपये प्रति किलो रेट बढ़े थे। और अगली खबर का रुख करते हैं, ये है, 6 दशक बाद सिंहस्थ में क्षिप्रा के प्रवाहमान जल में स्नान करेंगे श्रद्धालु। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने कहा है कि सिंहस्थ 2028 में श्रद्धालुओं को लगभग 30 किलोमीटर लंबे क्षिप्रा घाटों पर पुण्य स्नान का अवसर मिलेगा। उन्होंने कहा कि मां क्षिप्रा के स्वच्छ और प्रवाहमान जल की उपलब्धता इस आयोजन को ऐतिहासिक और विशेष बनाएगी। लगभग 6 दशक बाद ऐसा अवसर आएगा जब श्रद्धालु केवल मां क्षिप्रा के प्राकृतिक प्रवाहमान जल में स्नान कर सकेंगे। और अगली खबर की तरफ बढ़ते हैं, ये है, स्कूलों में कचरा प्रबंधन पढ़कर बच्चे बनेंगे ग्रीन मेंटर, परिवारों को सिखाएंगे कचरा कम करना। देश में कचरे की समस्या का स्थायी समाधान केवल कानूनी बाध्यता से नहीं बल्कि जन जागरूकता और व्यवहारिक बदलाव से ही संभव है। सर्वोच्च न्यायालय ने स्कूली पाठ्यक्रमों में कचरा प्रबंधन से जुड़े विषयों को शामिल करने के साथ ही प्रशासनिक जवाबदेही तय करने के दिशा निर्देश दिए हैं। वहीं पुराने कचरे के ढेरों को लेकर 6 अगस्त तक रिपोर्ट पेश करने को कहा है। और मौसम का मिजाज बता रहा है कि नौतपा के दौरान मध्य प्रदेश में भी प्री मानसून की आहट। जैसे जैसे मई का महीना खत्म हो रहा है

है वैसे वैसे मानसून की गतिविधियां बढ़ती जा रही हैं। भारतीय मौसम विभाग ने नौतपा में प्री मानसून की चेतावनी दी है। मध्य प्रदेश में 28 को बारिश हो सकती है। बुधवार के लिए यानी आज देश के 17 राज्यों में आंधी बारिश का अलर्ट है। इसमें यूपी, दिल्ली, बिहार समेत 17 राज्यों का नाम शामिल है। मध्य प्रदेश में भी प्री मानसून की बारिश हो सकती है। और रुख करते हैं खेल जगत की खबरों का, तो आईपीएल में बेंगलुरु ने गुजरात को 92 रन से हराया, छठी बार कोई डिफेंडिंग चैंपियन फाइनल में। आईपीएल 19 के पहले क्वालिफायर में डिफेंडिंग चैंपियन बेंगलुरु ने गुजरात टाइटंस को 92 रन से हराकर लगातार दूसरे फाइनल में अपनी जगह बना ली। लीग इतिहास में छठी बार कोई डिफेंडिंग चैंपियन टीम खिताबी मुकाबले में पहुंची है। और आज आईपीएल 19 का एलिमिनेटर मुकाबला राजस्थान रॉयल्स और सनराइजर हैदराबाद के बीच खेला जाएगा। ये थी समाचार पत्रों की ताजा तरीन खबरें। यदि आप किसी भी साहित्यिक, सांस्कृतिक और सामाजिक संगठन से जुड़े हैं, जनहित में आपका कोई कार्यक्रम है, तो हमें जरूर बताइए, क्योंकि आपको पता ही है इस कार्यक्रम के माध्यम से हमारी पहुंच है दूर दूर तक। तो आपकी काम की बातें सुनेंगे अनेक श्रोता और उठाएंगे उससे लाभ। फिलहाल आपको हम ले जा रहे हैं गीत संगीत की ओर, सुनते हैं ये गीत।

0: तो गीत हो गया। अब कुछ ही पलों में हम बढ़ेंगे पहली जानकारी की तरफ। हमें उम्मीद है कि आप होंगे अपने रेडियो सेट के नज़दीक या फिर डीटीएच के ऑडियो चैनल या न्यूज़ ऑन एयर एप्लीकेशन अथवा वेव्स ओटीटी ऐप पर सुन रहे होंगे अपना पसंदीदा कार्यक्रम नमस्कार भोपाल।
1: सभी सुनने वालों को स्वानंद किरकिरे का प्यार भरा नमस्कार और इस वक्त आप सुन रहे हैं नमस्कार भोपाल।
0: तो सुबह के 7:32 और 55 सेकंड हुए हैं। हाल ही में मध्य प्रदेश में वल्चर यानी गिद्धों की ग्रीष्मकालीन गणना का कार्य पूरा किया गया। गिद्ध जिनका हमारे पारिस्थितिकी तंत्र में खास योगदान है और वे हमारी धरती को स्वच्छ बनाए रखने में भी मुख्य भूमिका निभाते हैं। इस गणना के उद्देश्य और प्रासंगिकता पर चर्चा करने के लिए हमारे

0: साथ हैं वन विहार भोपाल के संचालक भारतीय वन सेवा के अधिकारी श्री विजय कुमार।
1: गिद्ध जो है पूरी इकोलॉजी का, पूरे एनवायरनमेंट का एक अभिन्न अंग है, क्योंकि ये वो प्रजाति है जो एनिमल्स हैं वो जब मर जाते हैं तो उनके कर्कस पे फीड करते हैं, उनका मैकेनिज्म यही है। तो एक तरह से वो एक सफाई कर्मी का काम करते हैं, अगर वो नहीं होंगे तो फिर इनमें फिर बैक्टीरिया फैलेगा और वही बैक्टीरिया फिर बैक्टीरिया वायरसेस वो इंसानों में आएंगे तो हमें भी तरह तरह की बीमारियाँ हम पे हावी हो जाएंगी। इसलिए इनका संरक्षण बहुत ही आवश्यक है और उसी दिशा में हम ये जो गन्ना का कार्य है वो रेगुलर करते हैं ताकि हमें ये अनुमान लग सके कि गिद्धों की जो संख्या है वो बढ़ रही है या घट रही है, ताकि उसके अकॉर्डिंग हम प्रबंधन एक बेहतर तरीके से उनके संरक्षण में कर सकें।
0: ये पूरी प्रक्रिया को तकरीबन कितने दिनों में अंजाम दिया गया और किस तरह के अमले को आपने इसके लिए तैयार किया था, कौन कौन से स्थलों को आपने चयन किया था जहां पर गिद्ध विशेष रूप से पाए जाते हैं?
1: ये कार्य पूरे मध्य प्रदेश में किया गया। 22, 23 और 24 मई को 3 दिन ये गणना पूरे मध्य प्रदेश के सभी वनों एवं राजस्व क्षेत्रों में की गई, जहाँ जहाँ पे गिद्धों के पाए जाने की संभावनाएं थी। पूरा मध्य प्रदेश का वन विभाग इस गणना में लगा हुआ था। सभी ने अपने अपने क्षेत्रों में तत्परता के साथ काम किया और सब लोग जैसे ही सूर्योदय हुआ तभी से शुरुआत करके 8 से 9 बजे तक ये गणना का कार्य किया जाता था, क्योंकि ये जरूरी है कि हम नहीं चाहते कि गिद्धों की गणना है उसमें कोई डुप्लीकेसी हो, दो बार गणना हो सके। इसीलिए वो अर्ली मॉर्निंग का समय चुना जाता है जब गिद्ध बैठे होते हैं, क्योंकि जैसे धूप खिलती है 8-9 बजे के बाद गिद्ध उड़ने लगते हैं तो वो एक स्थान से दूसरे स्थान पर पहुंच सकते हैं और उनकी गणना में डुप्लीकेसी हो सकती है, तो उसको हटाने के लिए अर्ली मॉर्निंग ही ये गणना की जाती है और केवल बैठे हुए गिद्धों की ही गणना की जाती है।
0: विजय कुमार जी, तकरीबन कुल संख्या कितनी निकल कर सामने आई गिद्धों की मध्य प्रदेश में?
1: दो तरह के सर्वे हम करते हैं, शीतकालीन और ग्रीष्मकालीन। शीतकालीन में हमारे यहाँ पे 3 और प्रजातियां जो माइग्रेटरी होती हैं वो भी यहाँ पे रहती हैं, और ग्रीष्मकालीन में 4 प्रजातियां जो यहाँ की रेजिडेंट स्पीसीज हैं वही रहती हैं। ये हर्ष का विषय है कि पिछली बार की तुलना में 1200 गिद्ध अधिक पाए गए हैं। पिछली बार 9509 का आंकड़ा था और इस बार कम से कम 10700 से ऊपर ही हमारा आंकड़ा आया है।
0: गिद्धों की गणना जो की गई और जो संख्या निकल कर सामने आई, इसके माध्यम से ये क्लाइमेट को किस तरीके से एक बेहतर रूप देने का काम करेंगे? ये जो गणना की गई इसके माध्यम से गिद्धों की यदि हम बात
1: 2016 से ये गणना शुरू हुई थी, वन विभाग लगातार ये गणना करता आ रहा है और आज 2026 में अगर हम देखते हैं तो ये संख्या लगातार बढ़ रही है। निसंदेह कह सकते हैं कि उसके संरक्षण में बहुत ही अच्छा कार्य हुआ है। हम एक एक जगह को मॉनिटर करते हैं, एक एक लोकेशन पे देखते हैं, अगर गणना में साल या 2 साल में कमी आती है तो हम उसके कारणों का पता करते हैं। गिद्धों के लिए सबसे बड़ी प्रॉब्लम जो इनकी संख्या में कमी आई थी 90s और 2000 के आसपास, उसका सबसे बड़ा कारण था डाइक्लोफेनेक। ये एक तरह की मेडिसिन है जो पेन किलर के रूप में मवेशियों को दी जाती है। वो मवेशियां अगर मर जाती हैं और उनके जो कर्कस है उस पर अगर गिद्ध फीड करते हैं, अंश जो है उस दवाइयों का उनके शरीर में चला जाता है और उनकी किडनी को बहुत बुरी तरह से प्रभावित करता है और उनकी मृत्यु हो जाती है। भारत सरकार ने एक कदम उठाया कि डाइक्लोफेनेक को प्रतिबंधित किया, लेकिन फिर भी एक डाइक्लोफेनेक अंश जो है अभी मवेशियों के लिए नहीं मिलता है, लेकिन ये दवाई इंसानों के लिए अभी भी मिलती है। कई जगह पे अभी भी ये खतरा रहता है कि वो इंसानों की जो दवाई है वो मवेशियों को दी जा सके, अगर उनको दी जाएगी तो फिर गिद्धों पे भी संकट आ जाएगा। तो हमारी ये जो गणना है वो हमें दिखाती है कि कहीं पे अगर गिद्धों की संख्या जो है वो कहीं कम तो नहीं हो रही, तो उसके अकॉर्डिंग हम उस डायरेक्शन में कदम उठा सकते हैं। और वन विभाग का अमला जागरूकता भी ये फैलाता है कि इस दवाई का उपयोग ना किया जाए। दूसरी ऐसी दवाइयाँ हैं जो पेन किलर के रूप में भी और गिद्धों के लिए हानिकारक भी नहीं है, जो अल्टरनेटिव्स हैं उनका उपयोग करें।
0: तो ये जो गणना की गई इसे लेकर पूरे देश में क्या माहौल बना है, किस तरीके से आप मध्य प्रदेश को पूरे देश में कहां पाते हैं?
1: गर्व की बात है कि मध्य प्रदेश में गिद्धों की संख्या सबसे अधिक है भारत देश में। टाइगर स्टेट का दर्जा है, साथ में गिद्ध स्टेट का दर्जा भी प्राप्त है। सर्वे में ये जो संख्या बढ़ती जा रही है वो भी ये प्रतीक है कि मध्य प्रदेश में गिद्धों के संरक्षण में बहुत अच्छा काम हुआ है और आगे भी इस दिशा में काम चलता रहेगा और ये गणना भी उसी दिशा में एक उसी का अंग है, ताकि हम प्रबंधन को बहुत अच्छे से कर सकें और मध्य प्रदेश को जो गिद्ध स्टेट का दर्जा प्राप्त था वो हमेशा रहे।
0: आने वाले समय में आप किस प्रकार की और भी स्पीशीज जो हैं, जो प्रजातियां हैं, उनके संरक्षण के लिए आगे आने वाले समय में आप काम करना चाहते हैं?
1: मध्य प्रदेश वन विभाग पूरी इकोलॉजी के लिए काम करना चाहता है। गिद्ध ही नहीं, चाहे हम टाइगर की बात करें, लपड़ की बात करें, चीता की बात करें, सब में अभी मध्य प्रदेश नंबर वन है। बटरफ्लाइज नेशनल पार्क्स में, हमारी सेंचुरीज में होते रहते हैं और उनके भी मैनेजमेंट में जो भी प्रभावी कदम होते हैं वो उठाए जाते हैं।
0: तो वन विहार के संचालक होने के नाते आप हमारी इस बातचीत के जरिए क्या संदेश पहुंचाना चाहते हैं हमारे श्रोताओं तक?
1: सभी श्रोताओं से ये अपील करना चाहूंगा कि

0: गिद्ध जो कि हमारे सफाई कर्मी के रूप में हैं, वो एक अभिन्न अंग हैं और जब तक वो रहेंगे तब तक हम सुरक्षित रहेंगे। तो उनके संरक्षण में आप भी अपना पूरा योगदान दें। कहीं पे भी कम आपको लगता है कि वो कम हो रहे हैं तो तत्काल वन विभाग को सूचित करें। वो सुरक्षित रहेंगे तो हम भी सुरक्षित रहेंगे।
1: थैंक यू सो मच।
0: थैंक यू सो मच।
1: ये थे वन विहार भोपाल के संचालक श्री विजय कुमार, जिन्होंने जानकारी दी मध्य प्रदेश में हुई गिद्ध गणना के बारे में। सार यही निकल कर सामने आता है कि इस धरती पर मौजूद हर वन्य प्राणी अपने आप में महत्वपूर्ण है, इसलिए उनका संरक्षण भी आवश्यक है। इसलिए इस बात पर गौर कीजिए और निभाइए प्रकृति के प्रति अपना दायित्व और प्रकृति के नजारों का, हसीन वादियों का आनंद भी लेते जाइए। संतोष आनंद गीतकार, लक्ष्मीकांत प्यारेलाल संगीतकार, प्यासा सावन फिल्म में सुनिए सुरेश वाडकर और लता मंगेशकर की आवाज़ें।

0: आपकी सुबह को महकाने वाला और आपको अपडेट रखने वाला कार्यक्रम इस समय जारी है। नमस्कार भोपाल। 7:42 और 5 सेकंड हुए हैं। कुछ ही पलों में हम बात करेंगे सदा नीरा कार्यक्रम की, जो आज से शुरू होने जा रहा है।
1: आकाशवाणी भोपाल के सारे सुनने वालों को तहे दिल से नमस्कार, और आप सुन रहे हैं कार्यक्रम नमस्कार भोपाल।
0: तो आइए नमस्कार भोपाल में बढ़ते हैं आगे। 7:42 और 30 सेकंड। आज से 2 जून 2026 तक वीर भारत न्यास मध्य प्रदेश शासन संस्कृति विभाग द्वारा आयोजित किया जा रहा है एक विशेष कार्यक्रम, सदा नीरा जल गंगा संवर्धन। एक ऐसा कार्यक्रम जो जल की महिमा, जल की आवश्यकता, जल संरक्षण जैसे विविध पहलुओं को सांस्कृतिक साहित्यिक प्रस्तुतियों के माध्यम से आम जन तक पहुंचाएगा। इसी कार्यक्रम का अधिक विवरण हमें दे रहे हैं वीर भारत न्यास के सलाहकार राहुल रस्तोगी।
2: बहुत सीधी सी बात है, जैसा इसका नाम है सदा नीरा, हमेशा जल। और ये हम सारे लोग जानते हैं कि न सिर्फ पृथ्वी पर बल्कि हमारे शरीर में भी जल की उपस्थिति अनिवार्य है, उसका कोई दूसरा विकल्प हो ही नहीं।

0: सकता, हम पेट्रोल के बदले बिजली से गाड़ी चला लेंगे, लेकिन पानी तो हमको चाहिए। सवाल इसका है कि पानी हमें चाहिए, हम सब जानते हैं, हमको लगता है जितना दिख रहा है वो सब हमारा पानी है। हमारी अपनी जिम्मेदारियां, समाज की जिम्मेदारियां, वो क्या प्राकृतिक असंतुलन हम पैदा कर रहे हैं जिससे पानी गायब हो रहा है? ऐसा नहीं है कि भारतीय चिंतन में, भारतीय दर्शन में या भारतीय संस्कृति में इसको सोचा नहीं गया, हमेशा से वो उसके मूल में रहा है। क्षितिजल, पावक, गगन, समीरा, पांच तत्वों को लेकर हम हमेशा से जानते हैं, मानते हैं, बातें करते हैं। बहुत सारी चीज़ों को अनजाने में हम नहीं बोलते हैं लेकिन हम जानते हैं। इसी सारी बात को मानते हुए वीर भारत न्यास ने ये सदा नीरा प्रोग्राम रचा है। इस सारे कार्यक्रम में हम कहना ये चाहते हैं कि जल को लेकर जो संवेदनाएं आपको कलात्मक रूप से उद्वेलित कर सकती हों, आपको जागृत कर सकती हों, आपको बता सकती हों, आपको चिंतित कर सकती हों, वो हम यहाँ करने की कोशिश कर रहे हैं। ना सिर्फ प्रस्तुतियों में ये होगा, यहाँ पर विमर्श के सत्र भी होंगे, हम जल पुराण भी करने वाले हैं जिनमें हम ऐसे लोगों से बातचीत करेंगे जो जल के बारे में हमारे पुराने पुराणों से लेकर विज्ञान से होते हुए पूरा जल की उपस्थिति भी, ये सारी बातें करेंगे।
1: बहुत ही महत्वपूर्ण आयोजन है राहुल जी, और आपने बताया कि जल के संरक्षण के प्रति, जल के सम्मान के प्रति हम सबको सोचना है, और उसी क्रम में ये आपका आयोजन है। किस तरह की प्रस्तुतियों को इसमें आपने समाविष्ट किया है, पूरे कार्यक्रम को आपने डिजाइन किया है?
0: इसमें नृत्य, नाट्य, गायन, बैले सब कुछ कर रहे हैं। मैं आपको ये बताना चाहूँगा, बल्कि सादर आमंत्रित करूँगा कि आप 31 तारीख को ज़रूर आइए, क्योंकि यहाँ पे फर्नांडो अगेलोरा जो बड़े कोरियोग्राफर हैं दुनिया के, वे स्वान लेक जो बड़ा प्रसिद्ध बैले है उसका मूल रूप लेके आ रहे हैं, वो हमें देखना चाहिए। कोरियन ग्रुप आ रहा है, मूट डांस कंपनी है, जो पानी को लेकर एक विशेष प्रस्तुति यहाँ पर तैयार कर रही की है उसने, वो यहाँ पर होगी। इसके अलावा पहला दिन जो 27 तारीख का शाम का परफॉर्मेंस है, वो भरत प्रभात बेंगलोर से आ रहे हैं, प्रभात इंटरनेशनल ये कंपनी है, डांस की कंपनी है, और ये बहुत बढ़िया सुंदर काम कर रहे हैं। ये इंद्र और उपेंद्र की उस लड़ाई को, जिसके चलते फिर उपेंद्र ने गिरधर को अपनी तर्जनी पर उठाया, वो सारी चीज़ें कि जब कभी कोई एक भी अगर विनाश पे उतर आता है तो फिर कोई एक ऐसा भी निकल के आता है जो उस विनाश को रोक पाता है। तो जब इंद्र नहीं माने और उन्होंने एक भयावह वर्षा करी, तो उससे सारे जगत को बचाने के लिए उपेंद्र को अपने गिरधर को उठाना पड़ा। ये गोवर्धन लीला जो है ये देखने लायक है, तकनीकी हमारे संसाधनों से परिपूरित है, वो आपको एक बिल्कुल अनूठा अनुभव होगा। और उन सारी संवेदनाओं को, जिनको मैं बार बार कह रहा हूँ, ऐसा ही दिखाने के लिए हमने और भी बहुत सारे, आपके को एक व्यंगात्मक नाटक भी देखने को मिलेगा जिसका नाम है लघु शंका नगर, और ये रूपांतरण है, लेकिन आप इसमें पाएंगे एक बिल्कुल अलग तरह की कहानी, एक अलग तरह की प्रस्तुति। ऐसी ही बड़ी डांसर्स हैं, माधवी मुदगल जी हैं, मालती श्याम जी हैं, विचित्रानंद स्वैन जी हैं, ऐसे और भी बहुत सारे कलाकार हैं जो यहाँ अपनी प्रस्तुतियाँ दिखाएंगे, बातचीत करेंगे लोग, आप आएं, ज़रूर आएं।
1: आपने कुछ फिल्मों को भी इसमें प्रदर्शित किया है, उनके भी कुछ जिक्र करें।
0: फिल्म समारोह हमने रचा है, ये फिल्म समारोह डॉक्यू ड्रामा फिल्म फेस्टिवल होगा, ये ज़रूर है कि उसमें हम फिल्म फेस्टिवल भी, फिल्में भी दिखाएंगे, फीचर फिल्में, लेकिन ज़्यादातर फिल्में पानी को लेकर जैसा विषय है उसको लेकर डॉक्यू ड्रामा आपको दिखाया जाएगा, जो वर्तमान स्थिति को आपके सामने रखेगा। इसको भी आप सुबह 11 बजे से देख सकते हैं अभिरंग में, अंतरंग में परफॉर्मेंसेज शाम को हुआ करेंगे, पूर्वरंग उसके पहले रचा जाएगा और बहिरंग अंत में होगा, जो आप बाहर देख सकते हैं।
1: तो 27 तारीख को इसका शुभारंभ कितने बजे होगा, और आप यहाँ की आम जनता से क्या निवेदन करना चाहते हैं?
0: 27 तारीख से हम इस शुभारंभ को शाम को 7 बजे से करेंगे, गोवर्धन लीला, और उसके बाद अमृतवाणी जो मालती श्याम का, उस परफॉर्मेंस को देख सकेंगे, और आने वाले समय में ये सिलसिला अनवरत चलता रहेगा। आप ज़रूर आएँ, 6:30 बजे से भारत भवन में आपका स्वागत है। इसके अलावा जो चर्चा के सत्र हैं वो 27, 28 और 29 को हम करेंगे।
1: वीर भारत न्यास के एडवाइजर होने के नाते आप संदेश क्या देना चाहते हैं, ये कार्यक्रम कितना सार्थक होने की आशा है?
0: ये तो सच है कि पूरी दुनिया ही, मतलब इसमें एक महाद्वीप और उप महाद्वीप की जरूरत नहीं है, पानी सबकी चिंता का विषय है, पूरी दुनिया इसमें चिंता कर रही है, लेकिन हम फिर भी ये बताना चाहेंगे कि भारत, भारतीय दर्शन और भारतीय संस्कृति में इस पानी को कितने गहरे से सोचा गया है, जाना गया है, ये सब कुछ हम रचने की कोशिश कर रहे हैं। ये सब कुछ है सिर्फ आपके लिए, आप होंगे तो पानी होगा, पानी होगा तो सदा नहीं।

0: मेरा होगा।
1: राहुल जी बहुत ही अच्छी चर्चा रही आपके साथ, और निश्चित रूप से हमारे श्रोता आपके निवेदन को स्वीकार करेंगे, पहुंचेंगे भारत भवन में आयोजित सदन इरा को देखने के लिए।
0: बहुत बहुत धन्यवाद।
2: आज से बहुकला केंद्र भारत भवन में होने जा रहे कार्यक्रम सदन इरा जलगंगा संबोधन की जानकारी हमें दे रहे थे राहुल रस्तोगी। आपने चर्चा में जाना कि पूरा आयोजन अपने आप में बहुत खास है, और इसके माध्यम से आह्वान यही किया जा रहा है कि जल की प्रत्येक बूंद हमारे लिए अनमोल है, इसलिए यथासंभव इसे सहेजें, करें मिलकर हम सभी पानी का सम्मान। तो जाइएगा सदा नीरा में, शाम 7 बजे इसका शुभारंभ होगा।

0: आप घर में हों, सफ़र में हों, मॉर्निंग वॉक कर रहे हों, योग कर रहे हों, चाय पी रहे हों, हमेशा नमस्कार भोपाल को बहुत करीब से सुनना चाहते हैं तो एक माध्यम और आपके लिए है। मोबाइल पर भी उपलब्ध है नमस्कार भोपाल, न्यूज़ ऑन एयर एप्लीकेशन पर जाइए और आकाशवाणी भोपाल का लोकप्रिय कार्यक्रम सुनिए नमस्कार भोपाल।
1: तमाम सुनने वालों को टॉम वॉल्टर का नमस्कार। इस वक्त आप सुन रहे हैं बहुत ही सुंदर प्रोग्राम है जिसका नाम है नमस्कार भोपाल।
0: सात बजकर 51 मिनट और 28 सेकंड हुए हैं। जिंदगी बेहद खूबसूरत है और इसकी खूबसूरती को बरकरार रखने के लिए ज़रूरी है कि हम अपनी तमाम जिम्मेदारियां हंसते मुस्कुराते हुए पूरी करें, लेकिन हमेशा ऐसा मुमकिन नहीं हो पाता क्योंकि कई बार हमारी ज़िंदगी की राह में तनाव, दबाव, चिंता जैसी बाधाएं भी आकर खड़ी हो जाती हैं और हम कई मानसिक विकारों का भी शिकार हो जाते हैं। ऐसी ही मनस्थिति से उबरने के लिए अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान यानी एम्स भोपाल द्वारा मानसिक रोग नियंत्रण कार्यक्रम चलाया जा रहा है। इसकी और ज़्यादा जानकारी हमें दे रहे हैं सहायक प्राध्यापक मानसिक स्वास्थ्य विभाग एम्स भोपाल डॉक्टर तन्मय जोशी।
2: रोजमर्रा की जिंदगी कुछ इस प्रकार चल रही है कि लोग अधिकतर जब आते हैं नाना प्रकार के लक्षण बताते हैं, जैसे सर में बहुत खिंचावट होना, शरीर में अत्यधिक दर्द होना, पेट में कुछ गड़बड़ियां होना, जो कि सब स्ट्रेस से संबंधित विकार हैं। उसके अलावा हम अवसाद देखते हैं, हम एंग्जाइटी देखते हैं, व्यसन देखते हैं, मादक पदार्थों का व्यसन है और तकनीकी जितनी हमारे पास टेक्नोलॉजी है उसका व्यसन है। ये कुछ मानसिक विकार हैं जिनसे हम लगभग डेली जूझते हैं
0: और जाहिर है कि मानसिक विकारों से नाता हमारा बहुत पुराना रहा है और कोई इससे अछूता नहीं है। फिर भी यदि हम बात करते हैं मानसिक तनाव से नियंत्रण की, तो एम्स में आप कौन कौन से ऐसे कार्यक्रम चला रहे हैं जिनके माध्यम से लोग जिंदगी को एक सुखद वातावरण की तरफ ले जा रहे हैं, सकारात्मक दिशा में मोड़ रहे हैं?
2: एम्स इस वक्त नाना प्रकार की गतिविधियां कर रहा है जिससे हम पॉजिटिव मेंटल हेल्थ, जिससे हम किसी को विकार ना हो, इसके लिए बहुत सारा प्रयास कर रहे हैं। हम इस वक्त टेली काउंसलिंग के माध्यम से समस्त मध्य प्रदेश और समस्त देश की जनता के लिए अवेलेबल हैं। रोजमर्रा की जिंदगी में कभी

0: ऐसा लगता है कि आप शायद वेंटिलेट करना चाहते हैं, अपनी बात किसी के समक्ष रखना चाहते हैं कि कोई श्रोता हो, तो हमारे पास काउंसलर्स की व्यवस्था है, जहां पे आप इस वक्त अगर 144-16 पे कॉल करें तो कोई ना कोई टेलीमानस सेल से आपका कॉल उठाएगा। 2400 घंटे आपकी सारी जानकारी गोपनीय रखी जाएगी और आपसे एक काउंसलर तुरंत जुड़ जाएंगे। नेशनल हेल्थ मिशन के साथ मिलकर ऐप का भी निर्माण हुआ है। मनहित ऐप को डाउनलोड करके अपने खुद की समीक्षा देख सकते हैं, खुद को टेस्ट भी कर सकते हैं कि क्या मनोस्थिति ठीक चल रही है। मनोस्थिति एक टेबल की तरह होती है, भले ही आप उसे गंदा ना करें पर अगर 2-4 दिन तक कपड़ा ना फेरें तो कुछ ना कुछ धूल तो जमा हो ही जाती है। बाकी सामान्य विकारों के लिए हमारी ओपीडी दिन भर चल रही है, तो आप किसी भी वक्त आ सकते हैं, अपना परामर्श ले सकते हैं। कभी कभी मानसिक विकार सिर्फ व्यवहार में नहीं दिखते, शरीर में नाना प्रकार के लक्षणों के रूप में दिखते हैं, जहां पे पेट के लक्षण, यौन लक्षण, स्वास्थ्य में कुछ अनेक गड़बड़ियां, सर दर्द, बदन दर्द, इन सारे लक्षणों के रूप में दिखते हैं। हमारे पास साइकोसोमैटिक क्लिनिक भी है जो कि फ्राइडेज को सेकेंड हाफ में रन करते हैं।
1: धर्मा जी, मैं आपसे जानना चाहता हूं कि आपने बताया कि वर्तमान में व्यसन को लेकर आप बहुत गंभीरता से काम कर रहे हैं, विशेष रूप से टेक्नोलॉजी एडिक्ट होते जा रहे हैं लोग, उससे मुक्ति दिलाने के लिए भी आप काम कर रहे हैं। किस तरह की आप इस समय देख रहे हैं कि एक तो मोबाइल का तो कारण है ही कि मोबाइल की लत लोगों को लगी हुई है, इसके अलावा और कौन कौन से विकार सामने आ रहे हैं जिससे लोग कुछ नियंत्रित करना चाहते हैं?
0: देखिए, व्यवहारिक व्यसन जो है उसमें एक तो स्क्रीन टाइम यूज़ है जो कि आपने बखूबी बताया है, इंटरनेट डिसऑर्डर है, इंटरनेट यूज डिसऑर्डर है, इंटरनेट गेमिंग डिसऑर्डर है, इंटरनेट गैम्बलिंग डिसऑर्डर है जो हम देख रहे हैं, एक्सेसिव शॉपिंग, एक्सेसिव गैम्बलिंग, एक्सेसिव गेमिंग, ये बहुत कॉमन हो चुके हैं। व्यवहारिक दिक्कतों में कुछ लोगों को सेक्स, कंपल्सिव सेक्स एडिक्शन भी है, कंपल्सिव मास्टरबेशन की प्रॉब्लम भी है, वे भी हमारे पास आते हैं। कुछ इस प्रकार होते हैं जहां पे अगर आपके इंटरनेट की फ्रीक्वेंसी भी, स्पीड थोड़ी सी कम हो जाए, वो सीधा आपके चिड़चिड़ेपन को बढ़ाती है। आप अपना फोन यूज कर रहे हैं, बाजू में बैठे वाले व्यक्ति को इग्नोर कर रहे हैं, जिसे हम फबिंग भी बोलते हैं। इस प्रकार के बहुत नए नए फिनोमिनन हैं जो हम देख रहे हैं। बच्चे, बड़े, किशोरावस्था, युवावस्था, ये सब खुद ब खुद चल के भी आ रहे हैं कि वे पीड़ित हैं। अभी तक हमारे पास कोई भी मॉड्यूल नहीं है जो कि इसका उपचार के रूप में देखा जाए, तो अभी हम एक प्रोजेक्ट में काम कर रहे हैं जो ICMR से फंडेड है, एम्स दिल्ली के दिशा निर्देश में हम काम कर रहे हैं। 5-6 सेंटर्स हैं ऑल ओवर इंडिया, जिसमें बहुत सारे एम्स हैं, जिपमर भी है, निग्रिम शिलोंग भी हमारे साथ है, एम्स भोपाल, एम्स ऋषिकेश, जिपमर पांडिचेरी, एम्स पटना, शिलोंग के साथ मिलके हम सेंटर फॉर एडवांस रिसर्च नाम का एक ग्रांट पाए हुए हैं जो एम्स दिल्ली के दिशा निर्देश में चल रहा है। ये 5 साल की स्टडी है, बहुत सारा काम शुरू कर चुके हैं, स्कूलों और कॉलेजों में जाके वहां से डेटा कलेक्ट करने की कोशिश कर रहे हैं ताकि पहचाना जा सके कि एक्चुअली में तकनीक किस हद तक उपयोग की जा रही है। एक मॉड्यूल तैयार करेंगे जिससे हम इसको प्रिवेंट कर पाएं।
1: धर्मा जी, मौसम गर्म है, गर्मी की तपिश लगातार बरकरार है, तो एक तनाव तो लोगों के साथ ये भी है कि गर्मी बहुत है, उनके कामों में बाधा डाल रही है, तो ऐसे मौसम में अपना रूटीन किस तरीके से बनाएं ताकि हम सकारात्मक रूप से हर मौसम को लें?
0: देखिए, क्लाइमेट और मेंटल हेल्थ का बहुत गहरा जुड़ाव है, सारी किताबों में भी आ चुका है, हमारे जो ग्रंथ होते हैं उन सब में इन सब की चर्चा हो रही है। इस बार की गर्मी बहुत पीड़ा देने वाली है। एक बेसिक मंत्र होता है जो सभी को अपनाना चाहिए, यह है कि रूटीन रूटीन होता है, चाहे वो आपके काम करने का दिन हो या छुट्टी का दिन हो। सूरज के साथ उगें, सूरज के साथ अपने काम को कम करें, रात की नींद पर्याप्त लेना है, खाना गर्मी में कम से कम, पानी की मात्रा हमेशा नियंत्रित होनी चाहिए, खास करके इलेक्ट्रोलाइट्स लेना न भूलें, प्योर फल, मौसमी फल, इनको थोड़ी प्राथमिकता दें। मानसिक स्वास्थ्य टेबल की तरह है, रोज पोछा लगना चाहिए, इसके लिए अपने मित्रों से, अपने परिवार से, अपने अनुज, अपने अग्रज, सभी से बातचीत करें। जो भी व्यथा है सबसे पहले शेयर करें, अपने अंदर न रखें। शेयरिंग इज द फर्स्ट स्टेप। कभी भी गतिविधियां कम ना करें और लोगों से उनकी राय लें, और अगर नहीं बात बनती तो हम प्रोफेशनल्स बैठे हैं। टेलीमानस हेल्पलाइन का नंबर याद रखें, 144-16।
1: इतना समय आपने दिया उसके लिए हम आपके बहुत बहुत आभारी हैं।
0: बहुत बहुत धन्यवाद।
1: हमारे साथ थे एम्स भोपाल में मानसिक स्वास्थ्य विभाग के सहायक प्राध्यापक डॉक्टर तन्मय जोशी। ये तो लाजमी है कि सबकी जिंदगी में खुशियां भी हैं, गम भी हैं, जरूरत तालमेल बैठाने की है। यदि मानसिक स्थिति ठीक नहीं है, उसे उबरना चाहते हैं, कुछ समस्या है, तो एम्स के मानसिक रोग नियंत्रण कार्यक्रम से परामर्श जरूर उठाइए ताकि आपकी मेंटल हेल्थ रहे दुरुस्त और हमेशा हो आपके साथ खुशियों की दस्तक।

0: आपको बता दें कि सुबह 8:30 बजे सुनिएगा कार्यक्रम सुरमई सवेरा, पेश करेंगी साधना चैन। आज का कार्यक्रम कैसा लगा जरूर बताइएगा। नमस्कार भोपाल द्वारा निदेशक आकाशवाणी श्यामला हिल्स भोपाल पिन 462002 इस पते पर अपनी प्रतिक्रिया भेजकर आप दीजिए अगले कार्यक्रम तक के लिए अनुमति। संजय श्रीवास्तव को नमस्कार।
1: अभी आप सुन रहे थे नमस्कार भोपाल। अगला प्रसारण कुछ ही पलों में दिल्ली से।
2: बेटा मैं कल अपने भतीजे के घर होके आया, देखकर हैरान रह गया कि वो लोग दिन भर एसी चलाते हैं, रोज वॉशिंग मशीन चलाते हैं, घर में दो दो फ्रिज हैं, फिर भी उसका बिजली बिल पता है कितना आता है? 0। मैंने पूछा तो भतीजा बोला, चाचा जी सब ऊपर वाले की दया है। मतलब सोलर पैनल की। मैंने सोचा अब तो लगवाना ही पड़ेगा।
3: पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना, जुड़ने के लिए रजिस्टर करें pmsuryaghar.gov.in पर।
4: हर घर सूर्य घर।
5: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार प्रभात के साथ मैं मुनीश शर्मा। मुख्य समाचार। केंद्र सरकार ने घुसपैठ और अन्य कारणों से जनसंख्या आंकड़ों में परिवर्तन का अध्ययन करने के लिए उच्च स्तरीय समिति का गठन किया। सर्वोच्च न्यायालय SIR को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर आज फैसला सुनाएगा। CBSE ने सोशल मीडिया पर प्रसारित हो रही उन अफवाहों को खारिज किया जिनमें उसके ऑन स्क्रीन मार्किंग सिस्टम के उल्लंघन की बात कही गई थी। मौसम विभाग ने उत्तर भारत के अनेक राज्यों में तेज गर्मी का अनुमान व्यक्त किया और महाराष्ट्र के विदर्भ में भीषण गर्मी का रेड अलर्ट जारी किया। नासा ने चंद्रमा पर अपना केंद्र बनाने के लिए भेजे जाने वाले रोबोटिक लैंडर्स, हॉपिंग ड्रोन और अन्य वाहनों का विवरण जारी किया। और IPL क्रिकेट में रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु ने पहले क्वालिफायर मैच में गुजरात टाइटंस को 92 रन से हराकर फाइनल में जगह बना ली है। और अब समाचार विस्तार से। केंद्र सरकार ने घुसपैठ और अन्य कारणों से होने वाले जनसांख्यिकी बदलाव की चुनौतियों से निपटने के लिए एक उच्च स्तरीय समिति का गठन किया है। इस समिति की अध्यक्षता सर्वोच्च न्यायालय के पूर्व न्यायाधीश प्रकाश प्रभाकर नवलेकर करेंगे। जनगणना आयुक्त के साथ साथ पूर्व IAS अधिकारी दुर्गा शंकर मिश्र, पूर्व IPS अधिकारी बालाजी श्रीवास्तव और अर्थशास्त्री डॉ शमिका रवि को इस समिति का सदस्य नियुक्त किया गया है। गृह मंत्रालय में संयुक्त सचिव इस समिति में सदस्य सचिव के रूप में काम करेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पिछले साल 15 अगस्त को लाल किले से जनसांख्यिकी परिवर्तन पर उच्च स्तरीय समिति के गठन की घोषणा की थी।
6: मैं आज देश के सामने एक चिंता, एक चुनौती के संबंध में आगाह करना चाहता हूं। षड्यंत्र के तहत देश की डेमोग्राफी को बदला जा रहा है, एक नए संकट के बीज बोए जा रहे हैं और ये घुसपैठिए मेरे देश के नौजवानों की रोजी रोटी छीन रहे हैं। ये देश सहन नहीं करेगा और इसलिए एक हाई पावर डेमोग्राफी मिशन शुरू करने का निर्णय किया।
5: इस समिति के कार्यों के बारे में और जानकारी दे रहे हैं हमारे संवाददाता।

0: उच्च स्तरीय समिति अवैध अप्रवासन और अन्य अप्राकृतिक कारणों से पूरे देश में हो रहे जनसांख्यिकीय परिवर्तनों का व्यापक आकलन करेगी। ये धार्मिक और सामाजिक समुदायों के स्तर पर असामान्य जनसंख्या स्थानांतरण का भी विश्लेषण करेगी और इसके लिए एक योजनाबद्ध और समयबद्ध समाधान प्रस्तुत करेगी। समिति एक वर्ष के भीतर अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करेगी। वहीं आवश्यकता पड़ने पर समिति का कार्यकाल 6 महीने तक बढ़ाया जा सकता है। अनुपम मिश्र के साथ शिवांग मिश्रा, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
1: विदेश मंत्री डॉक्टर सुब्रमण्यम जयशंकर ने कल शाम नई दिल्ली में ऑस्ट्रेलिया के विदेश मंत्री पैनी वोंग के साथ 17वें विदेश मंत्रियों के द्विपक्षीय संवाद बैठक की सह अध्यक्षता की। डॉक्टर जयशंकर ने कहा कि इसमें हिंद प्रशांत क्षेत्र, पश्चिम एशिया की स्थिति, वैश्विक और बहुपक्षीय मुद्दों पर विचार विमर्श किया गया। उन्होंने दोनों देशों के बीच व्यापक रणनीतिक साझेदारी की प्रगति की समीक्षा भी की। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने कहा है कि भारत कनाडा आर्थिक साझेदारी का अगला अध्याय विश्वास पर आधारित होगा, जिससे दोनों देशों की साझा समृद्धि सुनिश्चित होगी। कनाडा में आयोजित मंत्री स्तरीय सत्र को संबोधित करते हुए श्री गोयल ने कहा कि दोनों देशों के बीच बढ़ते विश्वास से व्यापक आर्थिक साझेदारी के अंतर्गत नए व्यापार और निवेश के अवसरों पर कार्य हो रहा है। भारतीय अर्थव्यवस्था की गतिशीलता पर श्री गोयल ने कहा कि भारत अगले 3 दशकों तक विश्व की सबसे तेजी से बढ़ती हुई अर्थव्यवस्था बना रहेगा। सर्वोच्च न्यायालय निर्वाचन आयोग के मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण SIR की वैधता को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर आज निर्णय सुनाएगा। ये याचिकाएं बिहार में पिछले साल जून में SIR प्रक्रिया शुरू करने के निर्वाचन आयोग के फैसले के बाद दायर की गई थीं। भारत के मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत और न्यायमूर्ति जॉय माल्या बागची की पीठ ने मामले की सुनवाई के बाद अपना फैसला सुरक्षित रखा था। एक रिपोर्ट।
2: याचिकाओं में SIR प्रक्रिया की वैधता को चुनौती दी गई थी। इसमें कहा गया था कि SIR प्रक्रिया संविधान के अनुच्छेद 326, जन प्रतिनिधित्व कानून 1950 और इनके अंतर्गत बनाए गए नियमों में निर्वाचन आयोग को दी गई शक्तियों के दायरे से बाहर थी। याचिकाकर्ताओं की ये भी दलील थी कि SIR प्रक्रिया ने बड़ी संख्या में गरीब और विस्थापित लोगों को वोट देने के अधिकार से वंचित कर दिया। सुनवाई के दौरान सर्वोच्च न्यायालय ने विभिन्न राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में SIR प्रक्रिया से प्रभावित मतदाताओं के बीच पारदर्शिता को बढ़ावा देने और कठिनाई को कम करने के लिए अंतरिम निर्देश जारी किए थे। समाचार कक्ष से मैं मुकेश कुमार।
1: सर्वोच्च न्यायालय ने 1983 में बिहार में 5 लोगों की हत्या के मामले में कई दोषियों की सजा बरकरार रखते हुए कहा है कि इस घटना की क्रूरता न्यायिक अंतरात्मा को झकझोर देती है। न्यायमूर्ति संजय करोल और एन कोटेश्वर सिंह की पीठ ने कल कहा कि निचली अदालत और पटना उच्च न्यायालय दोनों ने सही कहा है कि इस मामले में किसी भी तरह की सहानुभूति या नरमी की गुंजाइश नहीं है। न्यायालय ने कहा कि घटना मार्च 1983 में मुजफ्फरपुर जिले के एक गांव में हुई थी, जहां कम से कम 58 लोगों की भीड़ ने चंद्रशेखर चौधरी के घर में आग लगा दी, जिसके बाद 5 लोगों की बेरहमी से हत्या की गई और कई लोग घायल हो गए थे। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल @AIRNewsHindi को फॉलो कर सकते हैं। समाचार प्रभात में आपका फिर स्वागत है। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड CBSE ने सोशल मीडिया पर किए गए इस दावे को पूरी तरह से खारिज कर दिया है। CBSE ने स्पष्ट किया है कि उत्तर पुस्तिकाओं के मूल्यांकन के लिए उपयोग की जाने वाली ऑन स्क्रीन मार्किंग प्रणाली में कोई सुरक्षा उल्लंघन नहीं हुआ है। बोर्ड ने कहा कि उत्तर पुस्तिकाओं के वास्तविक मूल्यांकन के लिए इस्तेमाल किया जाने वाला पोर्टल पूरी तरह से एक अलग URL पर काम करता है। एक रिपोर्ट।
3: CBSE बोर्ड ने कहा है कि cbse.onmarks.co.in केवल एक टेस्टिंग साइट है जिसमें सैंपल डाटा होता है, जिसका इस्तेमाल पूरी तरह से आंतरिक टेस्टिंग और समीक्षा के उद्देश्यों के लिए किया जाता है और इसमें परीक्षा से संबंधित कोई भी वास्तविक जानकारी नहीं होती है। बोर्ड ने कहा है कि ऑन स्क्रीन मार्किंग प्रणाली शिकायतों के निवारण के साथ साथ मूल्यांकन में पारदर्शिता बढ़ाने के लिए लागू की गई है। बोर्ड ने संबंधित पक्षों को आश्वस्त किया कि मूल्यांकन प्लेटफॉर्म की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए कड़े और ठोस उपाय किए गए हैं। समाचार कक्ष से फरहत नाज।
1: अमेरिका के राष्ट्रीय वैमानिकी और अंतरिक्ष प्रशासन नासा ने चंद्रमा पर अपना केंद्र बनाने के

0: लिए भेजे जाने वाले रोबोटिक लैंडर्स, हॉपिंग ड्रोन और अन्य वाहनों का विवरण जारी किया है। एक रिपोर्ट।
1: अमेरिका की वर्ष 2028 में राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का कार्यकाल समाप्त होने से पहले अमरीकियों को चंद्रमा पर उतारने की योजना है। चीन की भी वर्ष 2030 तक चंद्रमा पर मानव उतारने की योजना है। मार्च में नासा ने वर्ष 2032 तक चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर परमाणु और सौर ऊर्जा से संचालित एक स्थायी अड्डा बनाने के लिए $20 अरब के कार्यक्रम की घोषणा की थी। जेफ बेजोस की अंतरिक्ष कंपनी ब्लू ओरिजिन को इन मशीनों का निर्माण करने के लिए चुना गया है। समाचार कक्ष से प्राची वाजपेयी।
0: कोलकाता की एक विशेष अदालत ने मालदा के मोथाबाड़ी में न्यायिक अधिकारियों पर हुए हमले के मामले में 15 और लोगों को 5 जून तक राष्ट्रीय अन्वेषण अभिकरण NIA की हिरासत में भेज दिया है। इन आरोपियों को केंद्रीय एजेंसी द्वारा सोमवार देर रात मोथाबाड़ी और उसके आसपास के इलाकों में की गई छापेमारी के दौरान गिरफ्तार किया गया था। भारतीय वायुसेना ने अधिकारी काडर के तकनीकी शाखा में भर्ती के लिए अभियांत्रिकी स्नातक अभिक्षमता परीक्षा GATE के

0: राष्ट्रीय अन्वेषण अभिकरण NIA की हिरासत में भेज दिया है। इन आरोपियों को केंद्रीय एजेंसी द्वारा सोमवार देर रात मोथाबाड़ी और उसके आसपास के इलाकों में की गई छापेमारी के दौरान गिरफ्तार किया गया था। भारतीय वायुसेना ने अधिकारी काडर के तकनीकी शाखा में भर्ती के लिए अभियांत्रिकी स्नातक अभिक्षमता परीक्षा GATE के अंकों के आधार पर चयन करने की योजना बनाई है। रक्षा मंत्रालय ने कहा कि GATE के अंकों के आधार पर उम्मीदवारों को वायुसेना चयन बोर्ड में परीक्षा के लिए सीधे चयनित किया जाएगा। रेल मंत्रालय ने देश की पहली हाइड्रोजन से चलने वाली 10 डब्बों वाली DEMU रेलगाड़ी को चलाने की स्वीकृति दे दी है। ये निर्णय रेलवे क्षेत्र में हरित और टिकाऊ परिवहन को प्रोत्साहन देने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। हाइड्रोजन रेलगाड़ी के बारे में और जानकारी दे रहे हैं हमारे सहयोगी कृष्णकांत शर्मा।
1: यह रेलगाड़ी जींद और सोनीपत के बीच अधिकतम 75 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से चलेगी। इसमें 2 ड्राइवर पावर कार और 8 पैसेंजर कोच शामिल हैं, जिनकी कुल क्षमता 2500 यात्रियों की है। इसकी कुल विद्युत क्षमता 1200 किलोवाट है। यह ट्रेन शून्य कार्बन उत्सर्जन करती है। इसकी परिचालन गति 110 से 140 किलोमीटर प्रति घंटा होगी। इसमें यात्रियों के लिए आधुनिक डिजिटल डिस्प्ले, ऑटोमेटिक दरवाजे और एयर कंडीशनिंग जैसी सुविधाएं उपलब्ध हैं। समाचार कक्ष से कृष्णकांत।
0: राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू सिक्किम की यात्रा के दूसरे दिन आज नाथुला दर्रे का दौरा करेंगी। राष्ट्रपति नाथुला में तैनात सैनिकों से बातचीत करेंगी। वरिष्ठ सैन्य अधिकारी उन्हें क्षेत्र में जारी विभिन्न गतिविधियों की जानकारी देंगे। राष्ट्रपति बाबा हरभजन मंदिर में पूजा अर्चना भी करेंगी। अमरीकी सीनेटर लिंडसे ग्राहम ने अमरीका और ईरान के बीच मध्यस्थता के लिए पाकिस्तान की भूमिका की आलोचना की है। उन्होंने कहा है कि इसराइल के प्रति पाकिस्तान के लंबे समय से चले आ रहे विरोध के कारण उसे तटस्थ नहीं माना जा सकता। श्री ग्राहम ने दावा किया कि ईरानी सैन्य विमान पाकिस्तानी हवाई अड्डे का इस्तेमाल कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि इसराइल के बारे में पाकिस्तानी नेताओं की टिप्पणियां चिंताजनक हैं। ये टिप्पणियां पाकिस्तान के रक्षा मंत्री ख्वाजा मोहम्मद आसिफ के एक टीवी चैनल को दिए साक्षात्कार में अब्राहम समझौते में पाकिस्तान के शामिल होने से इनकार के बाद आई है। मौसम विभाग ने उत्तर भारत के अनेक राज्यों में तेज गर्मी का अनुमान व्यक्त किया है और महाराष्ट्र के विदर्भ में भीषण गर्मी का रेड अलर्ट जारी किया है। मौसम विभाग ने मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश और विदर्भ में भीषण गर्मी का रेड अलर्ट जारी किया है और अगले 2 से 3 दिनों तक दिल्ली, हरियाणा, चंडीगढ़, पंजाब, राजस्थान, छत्तीसगढ़, तटीय आंध्र प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, जम्मू और कश्मीर, लद्दाख, झारखंड, ओडिशा, तेलंगाना और उत्तराखंड में भी भीषण गर्मी की आशंका व्यक्त की है। वहीं केरलम में मानसून 1 या 2 दिन की देरी से आ सकता है। IPL क्रिकेट में रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु ने कल पहले क्वालिफायर मैच में गुजरात टाइटंस को 92 रन से हराकर फाइनल में जगह बना ली है। 255 रन के लक्ष्य का पीछा करते हुए गुजरात टाइटंस 162 रन पर सिमट गई। प्रतियोगिता में आज सनराइजर्स हैदराबाद और रॉयल राजस्थान के बीच एलिमिनेटर मैच खेला जाएगा। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे ऐप न्यूज ऑन AIR पर भी उपलब्ध हैं। और लीजिए अब आज के समाचार पत्रों की सुर्खियों के साथ हैं सरफिरोजी।
2: धन्यवाद मुनीश। देश की राजधानी से प्रकाशित सभी हिंदी समाचार पत्रों ने क्वाड समूह की एकजुटता और सीमावर्ती क्षेत्रों में घुसपैठ रोकने के लिए सख्ती को सुर्खियों में जगह दी है। साथ ही कई स्थानीय मुद्दे भी मुख्य पृष्ठ पर प्रमुखता से प्रकाशित किए गए हैं। वीर अर्जुन की सुर्खी है, क्वाड हिंद प्रशांत क्षेत्र में बढ़ाएगा निगरानी। पत्र ने भारत, अमेरिका, जापान और ऑस्ट्रेलिया की विदेश मंत्रियों की तस्वीरों को भी समाचार के साथ प्रमुखता से प्रकाशित किया है। दैनिक भास्कर ने घुसपैठ से निपटने के लिए एक उच्च स्तरीय समिति के गठन संबंधी अमित शाह के ऐलान को सुर्खी बनाया है। पंजाब केसरी ने अपने संपादकीय को शीर्षक दिया है, धर्मशाला नहीं है भारत। पत्र लिखता है, जनसांख्यिकी संरचना बदल जाने से स्थानीय समुदायों में ये भावना बढ़ रही है कि घुसपैठिए सरकारी योजनाओं और राजनीतिक संरक्षण का लाभ उठा रहे हैं, जिससे भाषा और भूमि को लेकर तनाव बढ़ रहा है। जनसत्ता ने दिल्ली में CNG के दाम 2 रुपये प्रति किलोग्राम और बढ़ाए जाने को पहली खबर बनाया है। अमर उजाला ने भी इस खबर को पहले पन्ने पर सबसे ऊपर जगह दी है, जबकि दैनिक ट्रिब्यून ने दिल्ली रेस क्लब को राहत न मिलने और जिमखाना

0: हरियाणा पर सरकार के कुछ नर्म रुख को पहली खबर बनाया है।
1: और अंत में लीजिए सुनिए इस बुलेटिन के मुख्य समाचार एक बार फिर। केंद्र सरकार ने घुसपैठ और अन्य कारणों से जनसंख्या आंकड़ों में परिवर्तन का अध्ययन करने के लिए उच्च स्तरीय समिति का गठन किया। सर्वोच्च न्यायालय SIR को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर आज फैसला सुनाएगा। CBSE ने सोशल मीडिया पर प्रसारित उन अफवाहों को खारिज किया है जिनमें उसके ऑन स्क्रीन मार्किंग सिस्टम के उल्लंघन की बात कही गई है। मौसम विभाग ने उत्तर भारत के अनेक राज्यों में तेज गर्मी का अनुमान व्यक्त किया। महाराष्ट्र के विदर्भ में भीषण गर्मी का रेड अलर्ट जारी। और IPL क्रिकेट में रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु ने पहले क्वालिफायर मैच में गुजरात टाइटंस को 92 रन से हराकर फाइनल में जगह बनाई। और इसके साथ ही समाचार प्रभात का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
2: आकाशवाणी प्रेजेंट्स मॉर्निंग न्यूज। Good morning, I am VC Pramod, the headlines. Center forms high-level committee to study demographic change caused by infiltration and other reasons. Supreme Court to deliver its verdict today on petitions challenging special intensive revision of electoral rules. CBSE rejects claims circulating on social media about breach of its on-screen marking system, saying it was only testing site and not actual platform. IMD issues red alert for severe heat wave conditions in Madhya Pradesh, Uttar Pradesh and Vidarbha today. NASA releases details of robotic landers, hopping drones and vehicles it aims to send to Moon as part of its plan to build lunar base. And in IPL cricket, Royal Challengers Bengaluru storm into final beating Gujarat Titans by 92 runs in qualifier 1 at Dharamshala. The centre has constituted a high-level committee to address the challenges of demographic changes caused by infiltration and other reasons. In a social media post, Union Home Minister Amit Shah said that the committee will be chaired by former Supreme Court Judge Justice Prakash Prabhakar Navlekar. Census Commissioner along with former IAS Officer Durga Shankar Mishra, former IPS officer Balaji Srivastava and economist Dr. Shamika Ravi have been appointed as members of the committee. The Joint Secretary, Foreigners 1 in Home Ministry, will serve as the member secretary in the committee. Mr. Shah said infiltration and other reasons are causing unnatural demographic change, which poses a very significant challenge to the present and future of any nation. He said demographic change is a serious issue linked not only to the sovereignty but also to national security, law and order, profound changes in social structure and the preservation of tribal society. A report.
3: The high-level committee will conduct a comprehensive assessment of demographic changes occurring across India due to illegal immigration and other unnatural causes. It will also analyze patterns of abnormal population shift at the levels of religious and social communities and will present a planned and time-bound solution for the same. Prime Minister Narendra Modi, in his Independence Day speech from Redford last year, had announced about the high-level committee on demographic change.
4: I want to talk about the country in front of a worry and a challenge. Under the Sasadyantra, देश की डेमोग्राफी को बदला जा रहा है, एक नए संकट के बीज बोए जा रहे हैं और ये घुसपैठिए मेरे देश के नौजवानों की रोजी रोटी छीन रहे हैं, एक घुसपैठिए मेरे देश की बहन बेटियों को निशाना बना रहे हैं, ये बर्दाश्त नहीं होगा। ये घुसपैठिए भोले भाले आदिवासियों को भ्रमित करके उनकी जमीनों पर कब्जा कर रहे हैं, ये देश सहन नहीं करेगा। और इसलिए एक हाई पावर डेमोग्राफी मिशन शुरू करने का निर्णय किया है।
3: द कमिटी विल सबमिट इट्स रिपोर्ट विद इन 1 year. इफ नेसेसरी द टेन्योर ऑफ द कमिटी मे बी एक्सटेंडेड बाय अप टू 6 months. विद अनुपम मिश्रा, दिस इज विष्णु PS, आकाशवाणी न्यूज, दिल्ली।
2: The Supreme Court will today pronounce its judgment on a batch of petitions challenging the legality of the Special Intensive Revision SIR of the electoral rules done by the Election Commission of India. A bench of Chief Justice of India, CJI Suryakant and Justice Joymala Bagchi is scheduled to pronounce its verdict today after reserving judgment in the matter earlier this year following extensive hearings. The petitions challenging the legality of the SIR exercise undertaken by the poll body, contending that the revision process exceeds the powers conferred upon the ECI under Article 326 of the Constitution.

0: is guided by an India-first approach. Convergence of interests may sustain cooperation, but India's standing in a fractured world will ultimately rest on the strength it builds at home, the paper concludes. And with that, it's back to you, Pramod.
1: Thank you, Tanvi. And now before we end the bulletin, the headlines once again. Center forms high-level committee to study demographic change caused by infiltration and other reasons. Supreme Court to deliver its verdict today on petitions challenging special intensive revision of electoral rolls. CBSC rejects claims circulating on social media about breach of its on-screen marking system, saying it was only testing site and not actual platform. IMD issues red alert for severe heatwave conditions in Madhya Pradesh, Uttar Pradesh and Vidarbha today. And in IPL cricket, Royal Challengers Bengaluru storm into final, beating Gujarat Titans by 92 runs in qualifier 1 at Dharamshala. And with that, we end the morning news. Have a nice day.
2: हम आकाशवाणी भोपाल से बोल रहे हैं. मीडियम वेव डीटीएच का ऑडियो चैनल न्यूज़ ऑन एआईआर मोबाइल ऐप और वेव ओटीटी पर. सुबह के 8:30 हुए हैं. समय है फिल्म संगीत पर आधारित कार्यक्रम सुरमई सवेरा का. सभी सुनने वालों को साधना जैन का नमस्कार. कैसे हैं दोस्तों? दोस्तों, सुबह सवेरे हम क्यों ना भगवान को याद करें, और ये बहुत ज़रूरी भी है. इसलिए नहीं कि कोई बंधन है हमारे ऊपर, बल्कि हमें भगवान से प्रार्थना करने की ज़रूरत है. हमें उनसे अनुरोध करने की ज़रूरत है कि वे हमारे जीवन में उनकी उपस्थिति का अनुभव करने में हमारी मदद करें. चाहे एक घंटा हो, एक मिनट सच्चे मन से याद किया जाए, तो ईश्वर ज़रूर अपनी उपस्थिति हमारे सामने दिखाते हैं. भगवान को प्रत्यक्ष रूप से नहीं देख सकते, लेकिन हम बहुत सूक्ष्म कंपन के माध्यम से उनकी उपस्थिति का अनुभव कर सकते हैं. हमें उनके सुनने के लिए मौन के अभ्यास की आवश्यकता होती है, क्योंकि ईश्वर की भाषा मौन है. अक्सर हम बहाना बनाते कि हमारे पास भगवान को याद करने के लिए समय नहीं है, बल्कि हमें प्रत्येक कार्य में भगवान को साक्षी बनाना होगा. तो ईश्वर प्रेम और भक्ति से, हृदय से की गई प्रार्थना कभी अनसुनी नहीं जाती. एक बार अपने मन से विश्वास करके देखिए.

दोस्तों, इच्छाएं और सोच उम्र के साथ परिवर्तनशील होती हैं। एक उम्र होती है जब रूप, रंग और बहुत सारे आकर्षण महत्वपूर्ण होते हैं। एक उम्र में विचारों के तालमेल का ज़्यादा मायने होते हैं और एक उम्र के बाद सिर्फ और सिर्फ अपनत्व भरा साथ ही सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण लगने लगता है।

0: वीडियो लाइक करने के पैसे मिलेंगे। सो इजी।
1: अनजान लिंक्स पर क्लिक मत कीजिए। RBI कहता है,
2: जानकार बनिए, सतर्क रहिए।
3: आप सुन रहे हैं आकाशवाणी भोपाल से सुरमई सवेरा और मैं हूं आपके साथ साधना। दोस्तों, हम सभी का मकसद है खुश रहना, और जैसा कि हम जानते हैं कि खुशी उड़ती हुई तितली की तरह है, जितना हम इसके पीछे भागते हैं उतनी ही यह दूर जाती रहेगी, और जैसे ही हम अपना ध्यान कहीं और केंद्रित कर देते हैं या किसी चीज़ में लगा देते हैं या जो हमारे पसंद की चीज़ें होती हैं हम वो करने लग जाते हैं, तो आपको पता है खुशी बहुत हौले से तितली की तरह हमारे कंधे पर आकर बैठ जाती है।

दोस्तों आप सुन रहे हैं कार्यक्रम सुरमई सवेरा। तो दोस्तों हमारा सवेरा सुरमई और शाम सुहानी, रात शीतल तभी होती है जब हमारा शरीर हमारे साथ होता है। तो आइए कुछ बातें कर लें, शरीर के संकेत को समझ लें। दोस्तों यदि हमारे हाथ ठंडे हैं, बाल झड़ रहे हैं या हमें कमज़ोरी सी महसूस होती है, तो यदि ऐसा कुछ हो रहा है तो अपने शरीर का हीमोग्लोबिन, आयरन का कंटेंट हमें चेक कराना चाहिए और ऐसा डाइट लेना चाहिए जिसमें बहुत सारी चीज़ें हों, जैसे कि मूंगफली है, गुड़ है और भी, जो डॉक्टर से पूछकर अपनी इस डाइट को बढ़ाना चाहिए। यदि हमें भूख नहीं लगती है तो जिंक की कमी है, सूखी आँखें हैं तो विटामिन ए की कमी है, सांस लेने में भी तकलीफ है तो आयरन को एक बार चेक कराइए, अपना हीमोग्लोबिन। मुंह सूखना, बार बार सूखता है तो विटामिन ए कमज़ोर नाखून है तो बायोटिन यानी B7 हमारे शरीर में कम होने का संकेत देते हैं। पूरे दिन थकान होता है तो विटामिन डी। दोस्तों इतना हमारे पास सूर्य की रोशनी है और सूर्य का प्रकाश है और सुबह सुबह जो उसकी लाली होती है जिसमें कहते हैं कि विटामिन डी सबसे ज़्यादा होता है, लेकिन एक सर्वे के द्वारा विटामिन डी और B12 बहुत लोगों में कम हो रहा है, तो उस तरफ भी हमें ध्यान देना है। कमज़ोरी महसूस होती है तो B6 विटामिन कम होता है। भूलने की भी यदि बीमारी है तो ओमेगा 3, जो कि जो अलसी के बीज में होते हैं, दोस्तों कहते हैं कि उसको थोड़ा सा रोस्ट कर लीजिएगा, नींबू डाल लीजिएगा, यदि ज़रा सा टेस्ट के लिए काला नमक डाल के उसको थोड़ा सा खाइएगा डेली। यदि आप सैलेड खाते हैं तो उसके ऊपर डाल लीजिएगा, मतलब इस तरह से आपको ये सीड है जैसे कि तिल है या खसखस है, ये चीज़ें अपने अपनी डाइट में हमें शामिल करना चाहिए। पैरों में ऐंठन है तो मैग्नीशियम की कमी है, दिमाग में धुंधलापन है तो B12 की कमी है, मांसपेशियों में कमज़ोरी है तो पोटेशियम की कमी है, बार बार किसी चीज़ का इन्फेक्शन होता है तो विटामिन सी की कमी है, झुनझुनी सुन्नपन आता है तो विटामिन B6 के, नींद खराब क्वालिटी है तो मैग्नीशियम की कमी है। तो हम तो यही प्रार्थना करेंगे सभी सुखी रहें और निरोगी रहें। तो अपने खान पान का ध्यान रखिएगा, अभी तो बहुत गर्मी है तो आप सत्तू लीजिएगा, तरबूज खरबूज लीजिएगा, खीरा लीजिएगा। हाँ दोस्तों, खीरा की बात चली है तो लोग नारियल पानी की तरफ बहुत जाते हैं, लेकिन आप समझ लीजिएगा कि नारियल पानी से 50 गुना ज़्यादा उसमें मिनरल्स, विटामिन्स और बहुत सारी चीज़ें हैं। तो अभी जो गर्मियों का खीरा हमें मिल रहा है, वो लंबा हो या मोटा हो, जैसा भी हो, लीजिएगा, आनंद लीजिएगा और स्वस्थ रहिएगा।

0: अभी आप सुन रहे थे फिल्म संगीत पर आधारित कार्यक्रम सुरमई सवेरा। इसका शेष भाग आप सुनेंगे इस घंटे की खास खबरों के बाद। प्रस्तुत है इस घंटे की खास खबरें।
1: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से कल ऑस्ट्रेलिया और जापान के विदेश मंत्रियों ने मुलाकात की। प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत और ऑस्ट्रेलिया एक स्वतंत्र, खुले, सुरक्षित और समृद्ध हिंद प्रशांत क्षेत्र के लिए मिलकर काम करना जारी रखेंगे। श्री मोदी ने शांति, स्थिरता और समृद्धि को बढ़ावा देने में जापान भारत विशेष रणनीतिक और वैश्विक साझेदारी की महत्वपूर्ण भूमिका की पुष्टि की। केंद्रीय युवा मामले और खेल मंत्री मनसुख मांडविया ने कल नई दिल्ली में कहा कि अहमदाबाद में 4 से 8 जून तक पहले विश्व योगासन चैंपियनशिप आयोजित की जाएगी। ये देश की पारंपरिक स्वास्थ्य पद्धति को वैश्विक खेल के रूप में स्थापित करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है।

0: मंत्री डॉक्टर मोहन यादव आज भारत भवन में जलगंगा संवर्धन अभियान के अंतर्गत राष्ट्रीय संगोष्ठी और सांस्कृतिक उत्सव सदानीरा समागम का शुभारंभ करेंगे। ये आयोजन 2 जून तक चलेगा, जिसमें देश विदेश के विद्वान, पर्यावरण विशेषज्ञ, वैज्ञानिक, नीति निर्माता और कलाकार सहभागिता करेंगे। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने कल उज्जैन में शिप्रा तट पर शिप्रा तीर्थ परिक्रमा के समापन समारोह में अंतर्जली यात्रा, श्री शिप्रा महिमा और ये है मोहन की सरकार पुस्तकों का विमोचन भी किया। मध्य प्रदेश महिला और वित्त विकास निगम की बैठक में कल हुई महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए। महिला बाल विकास मंत्री निर्मला भूरिया के निर्देश दिए हैं कि निगम को प्रदेश की महिला वर्कफोर्स तैयार करने वाली प्रमुख संस्था के रूप में विकसित किया जाए। और आईपीएल क्रिकेट में कल रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु ने गुजरात टाइटन्स को पहले क्वालिफायर मुकाबले में 92 रन से हराकर फाइनल में प्रवेश कर लिया। आप सुन रहे थे इस घंटे की खास खबरें।
1: हम आकाशवाणी भोपाल से बोल रहे हैं। सुबह के 9 बजे हैं। प्रस्तुत है फिल्म संगीत पर आधारित सुरमई सवेरा का शेष भाग। दोस्तों, तूफानों से लड़कर ही तो कश्तियां किनारे तक पहुंचती हैं। उलझने चाहे कितनी भी हों, समझदारी से ही सुलझती हैं। उम्मीद मन में कायम रहे तो बंद राहें भी खुलती हैं। वक्त चाहे जितना इम्तहान ले, सब्र से ही मंजिलें मिलती हैं।

दोस्तों, जो कण का मूल्य जानता है वह धनवान है, जो क्षण का मूल्य जानता है वह बुद्धिमान है, और जो दोनों का मूल्य जानता है वही ऐश्वर्यवान है। जिंदगी को खुलकर जीने के लिए एक छोटा सा उसूल बनाएं, रोज कुछ अच्छा याद रखें और कुछ बुरा भूल जाएं।

दोस्तों, हमने अपने जीवन में बहुत सारी डिलीवरी देखी है। आजकल तो घर घर डिलीवरी बॉय आते हैं यदि हमने कोई सामान ऑर्डर किया है तो। कभी कभी हमने मौजूदगी की डिलीवरी की है क्या दोस्तों? जी हाँ दोस्तों, आप सोच रहे होंगे किस तरह की बात कर रहे हैं। तो आपने देखा होगा कि जब एक दरवाजे के पीछे एक डिलीवरी बॉय जाता है और वो देखता है कि कभी एक माँ होती है, कभी एक इंतज़ार होता है, कभी एक आखिरी बातचीत होती है, और हम सब अपनी अपनी भूख लेकर जी रहे होते हैं। किसी को रोटी चाहिए, किसी को दवा चाहिए, और किसी को दो मिनट साथ। इंसान को हमेशा पैसे की नहीं, कभी कभी बस मौजूदगी की डिलीवरी चाहिए होती है। तो हमें कोशिश करना चाहिए कि हमारे आसपास या हमारे रिश्तेदारों में कोई बुज़ुर्ग दंपत्ति अकेले हैं तो बस उनके साथ चले जाइए, थोड़ा कुछ भोजन खाने पीने की चीज़ें ले जाइए, उनके साथ बैठिए, उनके झुर्रिए हुए हाथ को पकड़ लीजिए, बस उनको वही चाहिए।

और दोस्तों, सुरमई सवेरा के अंतिम सोपान पर हम आ चुके हैं। अगर हम यह सीधी सी बात समझ लें कि लोग गलत नहीं, तो हम कई रिश्ते बचा सकते हैं। बस वे हमारी उम्मीदों से अलग हैं। हंसी की यादें, सुकून की हवा, यही तो है सुबह की दवा। खुश रहें, अपना सर्वश्रेष्ठ करें। स्नेहिल सुप्रभात, मंगलमय दिन हो आपका। इस शुभकामना के साथ आज का अंतिम गीत आज्ञा दीजिए साधना जैन को। नमस्कार।

अभी आप सुन रहे थे फिल्म संगीत पर आधारित कार्यक्रम सुरमई सवेरा साधना के साथ। इस समय हमारे स्टूडियो की घड़ी में सुबह के 9:15 हुए हैं। प्रस्तुत है कार्यक्रम सुगम संगीत। आज इस कार्यक्रम में हम आपको सुनवा रहे हैं रागेश्वरी सोनी के गाए भजन।

0: सुगम संगीत में अभी आप सुन रहे थे रागेश्वरी सोनी के गाए भजन। आकाशवाणी भोपाल से प्रस्तुत है क्षेत्रीय समाचार एकांश का कार्यक्रम प्रदेश की सुर्खियों में।
1: सुर्खियों में
2: नमस्कार, कार्यक्रम प्रदेश की सुर्खियों में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ दीपा सिंह। गर्मी का मौसम अपने चरम पर है और मध्य प्रदेश के कई जिलों में तापमान लगातार बढ़ रहा है। लू के थपेड़ों से लोग परेशान हैं। प्रदेश के कई शहरों में तापमान 45 डिग्री से अधिक बना हुआ है। खजुराहो 47.4 डिग्री, नौगांव 46 डिग्री और मंडला 45.6 डिग्री तापमान के साथ प्रदेश के सबसे गर्म शहर बने हुए हैं। वहीं भोपाल में भी तापमान 45 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया जा रहा है। बढ़ती गर्मी से सिर्फ इंसान ही नहीं, वन्य जीव भी परेशान हैं। राजधानी के वन विहार नेशनल पार्क में शेर, बाघ और तेंदुए के लिए कूलर, पर्दे और ग्रीन नेट लगाए गए हैं। ऐसे में हीटवेव यानी लू लोगों के स्वास्थ्य के लिए गंभीर खतरा बन सकती है। खासकर बच्चे, नवजात शिशु, बुजुर्ग और बाहर का काम करने वाले लोग ज्यादा प्रभावित होते हैं। आज इसी महत्वपूर्ण विषय पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन मध्य प्रदेश में वरिष्ठ संयुक्त संचालक तथा बाल रोग और नवजात शिशु चिकित्सा विशेषज्ञ डॉक्टर प्रभाकर तिवारी। डॉक्टर साहब, बहुत बहुत स्वागत है आपका कार्यक्रम में।
3: धन्यवाद और सभी श्रोताओं को मेरा नमस्कार।
2: तो आइए कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं। सर, सबसे पहले हमारे श्रोताओं को सरल भाषा में बताइए कि हीट वेव आखिर क्या होती है और सामान्य गर्मी से ये किस तरह अलग है।
3: अगर हीट वेव दिख की बात हम करें या सरल भाषा में जिसे हम कहते हैं लू लगना, तो वो जो है अंतिम चरम प्रक्रिया है गर्मी की। आप देखें, जैसे गर्मी शुरू होती है जो छोटी छोटी दूसरी चीज़ें हैं जैसे कि डिहाइड्रेशन या जैसे पसीना ज़्यादा आने के कारण इलेक्ट्रोलाइट डिसबैलेंस, इसका खतरा तो लगातार बढ़ता ही जाता है। और आप जानते हैं कि इसका खतरा पहले भी रहा करता था और हमारे बड़े बुजुर्ग उसके लिए बहुत सारे घरेलू नुस्खे भी बताया करते थे कि जब भी घर से निकलें सर ढक के निकलें, इसके साथ ही साथ चश्मा लगा के निकलें, जो गॉगल्स लगा के निकलें जिससे सीधी धूप आंखों में ना पड़े, शरीर के अधिकतम हिस्सों को ढक कर रखें जिससे सीधी धूप ना पड़े, उसके साथ ही साथ ढीले ढाले कपड़े पहने, कॉटन के कपड़े पहने, सिंथेटिक कपड़े ना पहने, घर से निकलने के पहले हाइड्रेट होकर यानी कि पानी पीकर निकलें। और पानी के साथ साथ अब हम जब वैज्ञानिक तौर पर ये समझ चुके हैं कि पानी का जितना ज़रूरी है उतना ही ज़रूरी है इलेक्ट्रोलाइट्स, तो जो घरेलू पेय पदार्थ हैं, चाहे वो मही हो, चाहे वो फल खाना हो या फल का रस पीना हो, चाहे वो दही हो, जो हमारे घरों में आम तौर आसानी से मिल जाते हैं, उनको लेकर निकलें। और इसके साथ ही साथ घर से निकलने के पहले, तेज़ धूप में निकलने के पहले एक बार अपने आप से ज़रूर पूछ लें कि क्या हमें इसी समय पर निकलना आवश्यक है, क्या हम इस काम को शाम के लिए जब धूप कम हो जाएगी या सुबह जल्दी के लिए टाल नहीं सकते।

0: तो ये तो हुई कुछ बातें। इसके साथ ही साथ अगर हम देखें तो अगर इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस और इसमें उसके बावजूद भी हम गर्म वातावरण में काम करते रहते हैं, लगातार तेज़ हवाओं के थपेड़े झेलते रहते हैं, तो हम लोग हाइपरपायरेक्सिया या जिसमें हम कहते हैं कि हमारे शरीर का तापमान 40 डिग्री सेल्सियस या 104 डिग्री सेल्सियस से ऊपर पहुंच जाता है या वहां तक पहुंच जाता है, तब इसके सीवियर लक्षण हमें देखने को मिलते हैं, जिसमें जो शुरुआती लक्षण रहते हैं वो उल्टी होना, उल्टी जैसे ऐसा लगना से लेकर हाथ पांव में खिंचाव पैदा होना, बेहोशी आना, झटके आना, ये सब चीज़ें। और अगर बहुत ज़्यादा डिहाइड्रेशन है तो इवन एम्बोलिज्म भी हो सकता है। तो अगर हम देखें तो शुरुआती लक्षण जो रहते हैं, शरीर हमें खुद को वार्निंग देना शुरू करता है कि अब आप तेज़ धूप से बचिए, अधिक टेम्परेचर से बचिए, और हम उसके बावजूद भी उन वार्निंग साइंस को अगर हम उपेक्षा कर देते हैं तो
1: जी
0: फिर लू लगने की स्थिति आती है, जिसका ट्रीटमेंट हॉस्पिटल्स में ही संभव है।
1: हाँ बिल्कुल सर। अगर मान लीजिए जो स्थिति आपने बताई है तो उसमें क्या घरेलू उपचार संभव है या हॉस्पिटल ही इंसान को तुरंत जाना
0: देखिए,
1: चाहिए?
0: जैसे मैंने पहले बताया, प्रिवेंशन, जितने प्रिवेंटिव मेजर्स हैं वो सब के सब वहीं पर हैं। पर अगर आपको सिर्फ ऐसा लगता है कि तेज धूप में आप थोड़ी देर के लिए निकल गए, एक्सपोजर बहुत ज्यादा नहीं है, सिर्फ कुछ चक्कर आया है, या सिर्फ ऐसा लग रहा है कि उल्टी जैसा हो रहा है या मितली आ रही है, उस समय तो हम हाइड्रेशन पर, अपने शरीर को ठंडा करने पर, जैसे हम कूलर या पंखे या एसी में बैठ जाएं, पानी और जो भी हमारे पास ओआरएस अवेलेबल है तो ओआरएस, और नहीं तो जो भी घरेलू पेय पदार्थ हैं, फ्रूट जूस हो गया, मही हो गया, दही हो गया, इनको लेने का प्रयास करें। पर अगर हाइपर पायरेक्सिया की स्थिति आ गई है, अगर शरीर का तापमान इतना ज़्यादा हो गया है, तो फिर उसका इलाज अस्पतालों में ही संभव है, क्योंकि घरेलू उपचार लेने में देर हो सकती है, जिससे कि हालत और ज़्यादा बिगड़ सकती है।
1: हाँ बिल्कुल सर। गर्मी के मौसम में खान पान को लेकर क्या सावधानियां बरतनी चाहिए?
0: सबसे ज़रूरी चीज़ तो, जैसा आप जानते हैं कि गर्मी के मौसम में चीज़ें बहुत जल्दी ख़राब हो जाती हैं,
1: जी
0: उनमें सड़न जल्दी पैदा होने लगती है, उनमें बैक्टीरिया, वायरस और फंगस बहुत जल्दी डेवलप होने पड़ लगते हैं। तो सबसे पहली चीज़ तो यही है कि ताज़ा बना हुआ खाना खाएं। अगर
1: जी
0: खाने को स्टोर करने की बहुत ही ज़्यादा आवश्यकता है तो सही टेम्परेचर पे, रेफ्रिजरेटर इत्यादि में स्टोर करें, पर जितना हो सके उतना खाना खाएं। इसके साथ ही साथ आप देखते हैं कि गर्मी के मौसम में गर्मी से लड़ने वाले बहुत सारे फल उपलब्ध रहते हैं, जैसे आम है, तरबूज है, खरबूज है, शकरबट्टी है, जिनमें पर्याप्त मात्रा में ग्लूकोज, इलेक्ट्रोलाइट्स और पानी तीनों
1: जी
0: होता है। तो ये न केवल हमारी भूख मिटाते हैं बल्कि हमारी प्यास भी बुझाते हैं और साथ में हमारे इलेक्ट्रोलाइट्स की ज़रूरत भी पूर्ण करते हैं। तो फल जो हैं, और इसके अलावा जैसे पहले भी हमने बात की कि घर में बने दूसरे पेय पदार्थ जैसे कि मही, दही, ये सब चीज़ें भी हम लोगों को पर्याप्त मात्रा में पानी और इलेक्ट्रोलाइट्स देती हैं। तो सबसे पहली चीज़ तो यही है कि हम ताज़ा खाना खाएं,
1: जी
0: जब तक ज़रूरत ना हो, व्यवस्था उपलब्ध ना हो, तब तक बासी खाने से या रेफ्रिजरेटर खाने से भी बचें। बाहर का खाना, बना हुआ खाना, उनके बारे में हमें उनकी क्वालिटी के बारे में पूर्णतः मालूम नहीं होता, जितना हम बच सकेंगे उतना ही खाएंगे, उतना ही अच्छा हमारे लिए होगा। और उसके साथ ही साथ ऐसे पदार्थ जिसमें कि वाटर, इलेक्ट्रोलाइट्स अधिक से अधिक हों, उनका हम ज़्यादा से ज़्यादा उपयोग करें।
1: हाँ बिल्कुल सर। तो गर्मी के मौसम में अगर छोटी छोटी बातें ध्यान रखी जाएं तो
0: बिल्कुल
1: काफ़ी सावधानियां रख लेते हैं तो आप बच सकते हैं, कह सकते हैं।
0: बिल्कुल, अगर हम अपनी छोटी छोटी बात, जैसे मैंने शुरुआत में ही कहा कि हम अपने आप से पूछ लें कि क्या धूप में हमारा निकलना ज़रूरी है, क्या तेज़ लू में निकलना हमारा ज़रूरी है, क्योंकि आप देखिए कि सिर्फ हीट या सिर्फ टेम्परेचर ही नहीं, ह्यूमिडिटी अपने मिनिमम पर है, तो
1: जी
0: ह्यूमिडिटी का कम होना, टेम्परेचर का ज़्यादा होना, और हमने जो प्रकृति पर अत्याचार किए हैं, हमने जो पेड़
1: जी
0: काटे हैं, हमने जो लगातार प्रकृति का दोहन किया है, ट्यूबवेल खेत खोद के और पूरा पानी निकाल लिया है, शायद मुझे लगता है कि ये हम अपनी ही गलती की सजा भुगत रहे हैं।
1: अब बिल्कुल सही कह रहे हैं सर। वक्त रहते हमें सारी चीज़ें प्रकृति को लौटाने की भारी आवश्यकता है।
0: बिल्कुल, आप जो कह रहे हैं, अब हम गर्मी जो झेल रहे हैं इसके ठीक बाद बारिश आने वाली है, हम जितना बारिश का पानी इकट्ठा करके
1: बिल्कुल
0: भू स्रोतों को रिचार्ज कर पाएंगे, जितने हम ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ पौधे लगा पाएंगे, शायद हम इस तीव्र से

0: तीव्र हो जा रही गर्मी को रोकने में कुछ हद तक सक्षम हो सकेंगे।
1: बिल्कुल सर। सर, जो लोग धूप में काम करते हैं, जैसे कि डिलीवरी बॉय हैं, ट्रैफिक पुलिस हैं, मजदूर हैं, किसान खेतों पर इतनी भरी दोपहरी में काम करते हैं, तो उनके लिए आपकी क्या सलाह है?
0: देखिए, आपने देखा होगा कि पिछले कुछ समय में सरकार ने भी आदेश निकाला है दोनों लोगों के लिए, एक तो जो स्कूल जाने वाले बच्चे हैं उनके लिए भी, कि एक पर्टिकुलर टाइम के बाद कोई भी स्कूल या कॉलेज नहीं लगेंगे। कई जगह पर ऑनलाइन क्लासेस शुरू की हैं। इसी तरह से जो सीधे धूप में कार्य करने वाले हमारे मजदूर भाई बहन हैं, उनके लिए भी शासन ने आदेश दिया है कि उनको जल्दी काम शुरू करके और जल्दी काम खत्म करने का प्रयास किया जाए। आमतौर पर दोपहर तक उनका काम खत्म हो जाए, भले ही चाहे वो सूर्योदय के तुरंत पश्चात उनको काम करने का मौका मिले। तो मैं यही सलाह देना चाहूँगा कि जो तेज धूप रहती है दोपहर को, हम मोटे तौर पर देखें तो 12 बजे से 3-4 बजे तक, उस बीच में हम काम बंद करके उसकी बजाय सुबह जल्दी या शाम को देर तक काम कर सकते हैं। सुबह जल्दी काम करना ज़्यादा फायदेमंद होता है, क्योंकि उसके बाद हम थोड़ा सा रेस्ट ले सकते हैं, और उसके साथ ही साथ उस समय जो टेम्परेचर रहता है वो मिनिमम रहता है। शाम को भी टेम्परेचर कम होता है, पर फिर भी जैसे हम लोगों ने बात की कि ह्यूमिडिटी की कमी और जो टेम्परेचर है वो मिल के एक ऐसा वातावरण बना देते हैं जो कि शायद काम करने के लिए, स्पेशली मेहनतकश लोगों के काम करने के लिए उतना उचित नहीं होता।
1: बिल्कुल सही कह रहे हैं सर। सर, चूंकि आप बाल रोग विशेषज्ञ भी हैं, तो बच्चों पर हीट वेव का क्या असर पड़ता है? अक्सर देखते हैं कि भरी दोपहरी में लोग छोटे छोटे बच्चों को लेकर भी अक्सर मजदूर महिलाएं काम करती रहती हैं।
0: आपकी बात बिल्कुल सही है। अगर हम देखें कि कौन से ज़्यादा हीट सेंसिटिव ग्रुप्स हैं, तो हमारे जो नवजात शिशु हैं, छोटे बच्चे हैं, और उसके साथ ही साथ हमारे जो सीनियर सिटीजन से या क्रॉनिक डिजीजेस से पीड़ित लोग हैं, वो सबसे ज़्यादा न केवल हीट वेव बल्कि कोई भी अगर बीमारी है या कोई भी ऐसा प्रकृति का रौद्र रूप है उसके लिए सबसे ज़्यादा सेंसिटिव होते हैं। तो छोटे बच्चों के लिए भी सबसे ज़रूरी है, जैसे कि हम जानते हैं कि 6 महीने से कम उम्र के बच्चों के लिए माँ का दूध सर्वोपरि है, और 6 महीने तक हम एक्सक्लूसिव ब्रेस्ट फीडिंग की बात करते हैं। तो वहाँ पर अगर हम देखें तो माँ का हाइड्रेटेड होना, माँ का न्यूट्रिशन उतना ही ज़रूरी है, क्योंकि अगर माँ का न्यूट्रिशन अच्छा नहीं होगा, माँ का हाइड्रेशन अच्छा नहीं होगा, तो अपने बच्चे को दूध नहीं पिला पाएगी। तो आमतौर पर जो लोगों में भ्रांति है कि गर्मी तो हमें तो हम थोड़ा बहुत पानी दे सकते हैं, उसकी भी ज़रूरत नहीं पड़ती। अगर माँ को अच्छी तरह से पोषण मिल रहा है, माँ हाइड्रेटेड है, तो 6 महीने तक तो माँ का दूध उसके लिए सर्वोत्तम है और सिर्फ वही दिया जाना चाहिए। जब बच्चा 6 माह से बड़ा हो जाता है तो हम लगभग घर में बनी हुई सभी चीज़ें उसको दे सकते हैं। ये ज़रूर है कि उस समय तक बच्चे के पूरे दांत नहीं निकले रहते, तो हम ऐसी चीज़ें जो आसानी से वो निगल सके, आसानी से पचा सके, और घर में बना हुआ। एक जो लोगों में भ्रांति रहती है कि जो रेडीमेड फूड्स आते हैं आजकल बहुत सारे, वो बहुत अच्छे होते हैं, उनमें तरह तरह के लुभावने विज्ञापन दिखाए जाते हैं कि इसमें विटामिन ई है तो इसमें विटामिन डी है। मैं तो यही अनुरोध करूँगा कि हमारे घर में हमारी माँ बहनें जो खाना तैयार करती हैं उससे अच्छा कोई भी बाहर की कंपनी नहीं बना सकती। तो घर में बना हुआ और बैलेंस्ड फूड उनको बच्चों को दें, अगर हम इतना कर पाए। और जैसा कि हमने बाकी लोगों के लिए कहा कि निश्चित तौर पर जब हम बड़ों को बाहर निकलने से मना कर रहे हैं, तो छोटे बच्चों के लिए ये और भी ज़रूरी है कि हम उनको लेकर ना निकलें। अगर हमें निकलना बहुत ज़्यादा आवश्यक है तो जैसे हमने बड़े लोगों के लिए कहा कि शरीर का अधिकतम हिस्सा ढककर रखें, और साथ में बीच बीच में उनको पेय पदार्थ देते रहें जिससे कि उनको भी डिहाइड्रेशन ना हो।
1: बिल्कुल सही कहा। तो स्तनपान कराने वाली माताओं को विशेष ध्यान रखना है ताकि वो खुद भी स्वस्थ रहें और बच्चा भी स्वस्थ रह सके। सर, जो तापमान लगातार बढ़ रहा है उसका हमारे शरीर पर क्या असर पड़ता है?
0: देखिए, अगर हम देखें तो तापमान हमें 2-3 तरीके से असर करता है। सबसे पहली चीज़ तो बढ़ता हुआ तापमान हमारे शरीर के जो तापमान को बढ़ा देता है, जिसको हम लोगों ने हाइपरपायरेक्सिया किया, उसके कारण हमारा ब्रेन जो है वो काम करना उसका डिफेक्टिव हो जाता है, जिससे कि हमने देखा कि हमें कन्फ्यूजन जैसी चीज़ें देखने को मिलती है। अगर बहुत ज़्यादा तापमान बढ़ जाता है तो बेहोशी आ जाती है, झटके आने लगते हैं, और इसी के साथ साथ जो हमारे शरीर के दूसरे वो हैं, अंग हैं, उन पर भी विपरीत प्रभाव पड़ता है, चाहे वो हार्ट हो चाहे किडनी हो। इसके साथ ही साथ जो इसका

0: दूसरा पार्ट है कि टेम्परेचर बढ़ा और हमारे डिसइलेक्ट्रोलाइटीमिया हो गया, यानी कि जो इलेक्ट्रोलाइट डिसबैलेंस हो गया उसके कारण जो हमारे शारीरिक अंग हैं उन पर भी विपरीत प्रभाव पड़ता है। जैसे हमारी जो मसल्स हैं उनमें ट्विचिंग शुरू हो जाती है, झटके आने लगते हैं। इसके साथ ही साथ जो सिग्नल्स होते हैं हमारे शरीर में, हमारे शरीरों में भी इलेक्ट्रिक सिग्नल्स चलते हैं, वो डिफेक्टिव हो जाते हैं और उसके कारण दूसरा प्रभाव पड़ने पर लगता है। डिसइलेक्ट्रोलाइटीमिया का जो दुष्प्रभाव है वो हमारी इंटेस्टाइन्स पर, हमारी किडनी पर, हमारे हार्ट पर, यानी अगर हम मोटे तौर पर देखें तो इंक्रीज टेम्परेचर और इलेक्ट्रोलाइट डिसबैलेंस, ये दोनों का घातक कॉम्बिनेशन हमारे लिए कभी कभी प्राणघातक भी हो सकता है। तो अभी अगर हम देखें जो वातावरण का तापमान है वो हमारे शरीर के तापमान को बढ़ाता है एक्सेसिव बाहर रहने के कारण, और उसके कारण दूसरी बीमारियां या दूसरे रोग पैदा हो जाते हैं।
1: बिल्कुल, तो कह सकते हैं कि हीट स्ट्रोक का अगर सही समय पर उपचार ना किया गया तो जानलेवा भी हो सकता है।
0: बिल्कुल, अगर जानलेवा उसका सही समय पर, सही जगह पर भी मैं कहूँगा, जैसे कि हम लोगों ने पहले बात की कि इनिशियल स्ट्रोक स्टेजेस में हम भले ही बात कर लें घरेलू नुस्खों की, पर एक बार अगर हीट स्ट्रोक हो गया है, अगर टेम्परेचर बढ़ गया है, हाइपरपायरेक्सिया हो गया है, तो सबसे अच्छी सलाह है तुरंत अस्पताल जाएं और डॉक्टर की सलाह के अनुसार ही ट्रीटमेंट लें।
1: बिल्कुल सर। सर, जैसा कि आप राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन की ओर से हैं तो आपके विभाग से किस तरह की तैयारियां की गई हैं लोगों को अवेयर करने के लिए?
0: देखिए, जैसा कि आप जानते हैं कि चाहे वो गर्मी का मौसम हो, चाहे वो बरसात आने वाली हो, चाहे शीत वेव हो, कोल्ड वेव हो, सरकार हमेशा अपनी तरफ से पूरी तैयारी रखती है। अपनी तैयारी दोनों तरह से रखती है, एक तो लोगों को जागरूक करने के लिए, और उसके लिए तो मैं विशेष तौर पर आकाशवाणी का आभारी हूँ कि एक कार्यक्रम इस तरह के प्रस्तुत करके वो लोगों तक ये बात पहुँचाती रहती है। दूसरे जो स्रोत हैं IEC के, उनके माध्यम से भी सरकार लोगों को जागरूक करती है कि हीट वेव या जो भी मौसम के एक्सट्रीम्स हैं उनके प्रति सावधान रहें। और इसके साथ साथ जो दूसरा पार्ट है ट्रीटमेंट का, तो हमारे जितने भी मेडिकल कॉलेज अस्पताल हैं, जिला अस्पताल हैं, सिविल अस्पताल हैं, उन सभी जगहों पर हाइपरपायरेक्सिया के ट्रीटमेंट यूनिट्स बने हुए हैं ऑलरेडी। इसके अतिरिक्त अगर जैसे लोगों को ORS की ज़रूरत है या हल्का हीट स्ट्रोक नहीं हुआ है परंतु गर्मी से रिलेटेड दूसरी बीमारियां, जैसा कि आप जानते हैं कि गर्मी के मौसम में उल्टी दस्त या कभी कभी पानी की दूषित होने के कारण पीलिया जैसी बीमारियां भी होती हैं, तो वो हमारे जो संजीवनी क्लिनिक्स हैं, प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र हैं, आयुष्मान आरोग्य मंदिर हैं, वहाँ पर जाकर औषधि भी ले सकते हैं और अपनी जाँच भी करवा सकते हैं। तो अगर हम देखें मोटे तौर पर तो हमारे आयुष्मान आरोग्य मंदिर उप स्वास्थ्य केंद्र, जो हमारी सबसे छोटी यूनिट है एक ग्राम पंचायत स्तर पर, वहाँ से लेकर मेडिकल कॉलेज स्तर पर जो हमारी टर्शरी लेवल के इंस्टीट्यूशंस हैं, उन सभी जगहों को हम लोगों ने तैयार करके रखा हुआ है कि भगवान न करे अगर किसी को भी ज़रूरत पड़े तो हम तुरंत उसकी मदद कर सकें।
1: तो जो भी श्रोता ये कार्यक्रम सुन रहे हैं, आपसे निवेदन है कि अगर आप अपने आसपास किसी भी व्यक्ति में हीट स्ट्रोक के लक्षण देखते हैं तो तुरंत उसे अपने आसपास के सरकारी अस्पताल में ले जाइए, वहाँ इसका ट्रीटमेंट संभव है। डॉक्टर साहब, जैसे कि हीट वेव अपने चरम पर है, ऐसे में एक्सरसाइज करना चाहिए या नहीं करना चाहिए?
0: देखिए, एक्सरसाइज में भी मैं वही कहूँगा कि अगर हम सुबह या शाम का वक्त लें तो एक्सरसाइज के लिए अभी भी टेम्परेचर इतना ज़्यादा नहीं है कि हम एक्सरसाइज पूरी तरह से बंद कर दें, पर एक्सरसाइज में भी वही हम ध्यान रखें कि एक्सरसाइज इतनी स्ट्रेनुअस ना हो कि हमारे बॉडी टेम्परेचर बढ़े, और साथ ही उसमें स्वेटिंग इतनी ज़्यादा ना हो कि हमारा इलेक्ट्रोलाइट डिसबैलेंस हो। तो दो चीज़ों का उसमें खास ध्यान रखना है कि बहुत ज़्यादा तापमान में ना करें और इतनी स्ट्रेनुअस न करें कि हमारा वाटर या इलेक्ट्रोलाइट लॉस जो है वो इतना ज़्यादा हो जाए। और अगर ऐसा होता है कि लगता है आपको कि ज़्यादा लॉस होता है, तो हम पहले से उसके लिए रिहाइड्रेट होकर उसके बाद ही करें। और इसके साथ ही साथ आप जानते हैं कि कई ऐसी एक्सरसाइजेज हैं जैसे स्विमिंग, वो तो और भी गर्मी से लड़ने में हमारे लिए फ़ायदेमंद है। तो मुझे लगता है कि कुछ लोग शिफ्ट भी कर सकते हैं कि अपनी रूटीन जो एक्सरसाइज है उसको हम स्विमिंग में चेंज कर दें और इस तरह से जो है मौसम के प्रकोप से हम बच सकते हैं।
1: डॉक्टर साहब, कार्यक्रम के अंत में श्रोताओं के लिए आपका क्या संदेश है?
0: मैं सिर्फ हमेशा से जो मेडिकल पर्सनल्स कहते हैं प्रिवेंशन इज ऑलवेज बेटर देन क्योर, तो मैं सिर्फ यही आपको फिर से श्रोताओं से अनुरोध करना चाहूंगा, सलाह भी नहीं दूंगा, अनुरोध करूंगा, जब भी तेज धूप में बाहर निकलना हो एक बार अपने आप से पूछ लें क्या मेरा जाना जरूरी है, और अगर

0: जाना जरूरी है, तो क्या मैं बाहर निकलने के लिए तैयार हूँ, क्या मैंने अपना सिर ढक लिया है, आंखें ढक ली हैं, मेरे कपड़े इस तरह के हैं कि वो हवादार हैं, और उसके साथ ही साथ मेरे साथ में एक पानी या जो भी घरेलू पेय पदार्थ है उनकी बॉटल है इमरजेंसी के लिए कि अगर कभी मुझे ज़रूरत पड़े तो मैं तुरंत पेय पदार्थ ले सकूँ।
1: तो श्रोताओं, हीट स्ट्रोक एक गंभीर समस्या है, लेकिन थोड़ी सी सावधानी और सही जानकारी से हम इससे आसानी से बच सकते हैं। गर्मी के मौसम में ज्यादा से ज्यादा पानी पिएं, धूप में निकलते समय सिर को ढक कर रखें, अपने आसपास के लोगों खासकर बच्चों और बुजुर्गों का ध्यान रखें। अगर किसी व्यक्ति को चक्कर आए, तेज बुखार लगे या बेहोशी महसूस हो तो तुरंत प्राथमिक उपचार दें, अपने नजदीकी सरकारी अस्पताल में तुरंत डॉक्टर से संपर्क करें। साथ ही डॉक्टर प्रभाकर ने एक बहुत ही महत्वपूर्ण बात कही है, उस बात को हमेशा ध्यान रखें कि जब भी भरी दोपहर में आपका निकलने का मन हो तो आप अपने आप से जरूर पूछें कि आपका निकलना कितना आवश्यक है, क्या आप शाम तक रुक सकते हैं, तो काम जल्दी सुबह या शाम को कर सकते हैं दोपहर के बजाय, क्योंकि प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर। सर, कार्यक्रम में शामिल होने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका।
0: बहुत बहुत धन्यवाद, और आकाशवाणी के सभी श्रोताओं को मेरी तरफ से हार्दिक शुभकामनाएं।
1: और इसी के साथ कार्यक्रम प्रदेश की सुर्खियों में फिलहाल इतना ही, अगले सप्ताह फिर होगी आपसे मुलाकात, इसी दिन इसी समय पर। दीजिए इजाजत, नमस्कार।
2: सुर्खियों में
3: अभी आप सुन रहे थे प्रादेशिक समाचार एकांश की प्रस्तुति प्रदेश की सुर्खियों में। इसमें आपने सुना, हीट वेव लोगों के स्वास्थ्य के लिए गंभीर खतरा। विशेषज्ञ थे डॉक्टर प्रभाकर तिवारी, बाल रोग और नवजात शिशु विशेषज्ञ। आपसे बात कर रही थी दीपा सिंह। हम आकाशवाणी भोपाल से बोल रहे हैं।

0: हम आकाशवाणी भोपाल से बोल रहे हैं। कृपया हमारे अगले प्रसारण की प्रतीक्षा करें। सुबह के 10 बजे हैं। प्रस्तुत है जिले की चिट्ठी।
1: आकाशवाणी भोपाल से प्रस्तुत है डिंडौरी जिले की चिट्ठी। आलेख लक्ष्मी नारायण अवधिया, वाचन स्वर दीपा सिंह। डिंडौरी जिले में इस समय अन्य शहरों की तरह ही अत्यधिक गर्मी पड़ रही है। अधिकतम तापमान 41 डिग्री तक पहुंच गया है, जो अभी तक का सर्वाधिक तापमान है। भीषण गर्मी का असर आम जनजीवन पर पड़ रहा है। दिन में बाजार में सन्नाटा पसरा है। लू के प्रभाव से बचने के लिए जरूरी सलाह भी चिकित्सक दे रहे हैं। गर्मी के चलते कई गाँव में पेयजल की भी समस्या बन गई है। जनगणना 2027 के प्रथम चरण के अंतर्गत मकान सूचीकरण और मकानों की गणना के व्यापक प्रचार प्रसार और जन जागरूकता के उद्देश्य से जनगणना कार्य निदेशालय मध्य प्रदेश द्वारा एलईडी प्रचार रथ रवाना किया गया है। ये प्रचार रथ मंडला बालाघाट होते हुए डिंडौरी जिले पहुंचा, जहां सांसद फग्गन सिंह कुलस्ते ने हरी झंडी दिखाकर इसे रवाना किया। एलईडी प्रचार रथ जिले के 7 विकास खंडों में भ्रमण कर गांव-गांव पहुंचकर आमजन को जनगणना 2027 के अंतर्गत किए जाने वाले कार्यों की जानकारी देगा और जनमानस में जनगणना के प्रति जागरूकता लाने का प्रयास करेगा। प्रचार रथ के माध्यम से प्रथम चरण के तहत मकान सूचीकरण और मकानों की गणना से संबंधित महत्वपूर्ण जानकारी प्रदर्शित की जाएगी, जिससे नागरिकों को जनगणना प्रक्रिया को समझने और उसमें सहभागिता सुनिश्चित करने में सहायता मिलेगी। जिला प्रशासन डिंडौरी के सहयोग से जिले के 23 ग्रामीण नल जल योजनाओं का जीर्णोद्धार किया जाएगा। ग्रामीण क्षेत्रों में पेयजल संकट को देखते हुए जिला प्रशासन ने लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग को 90,39,000 रूपए की राशि हस्तांतरित कर महत्वपूर्ण पहल की है। मध्य प्रदेश शासन किसान कल्याण और कृषि विकास विभाग द्वारा कृषक कल्याण वर्ष 2026 के अंतर्गत किसानों तक नवीन और वैज्ञानिक कृषि तकनीकों की जानकारी पहुंचाने के उद्देश्य से जिले के विभिन्न विकास खंडों में किसान रथ का 10 दिवसीय संचालन प्रारंभ किया गया है। इस अभियान के माध्यम से किसानों को कृषि विभाग की योजनाओं, उन्नत खेती तकनीकों, फसल विविधीकरण, प्राकृतिक खेती, कृषि यंत्रीकरण संबंधी जानकारी प्रदान की जाएगी। किसान रथ के माध्यम से किसानों को ई विकास से उर्वरक वितरण व्यवस्था, खरीफ फसल हेतु बीज उपचार, मृदा परीक्षण, फसल विविधीकरण, प्राकृतिक खेती, फसल सुरक्षा पराली प्रबंधन, कृषि अभियांत्रिकी द्वारा खरीफ पूर्व खेतों के समतलीकरण आदि विषयों पर जानकारी दी जाएगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की पेट्रोल डीजल बचाने, सोना नहीं खरीदने सहित अन्य अपील को आमजन ने सकारात्मक तौर पर लिया है। अब लोग वाहनों का उपयोग कम कर रहे हैं, साथ ही इलेक्ट्रिक वाहनों का उपयोग पर अधिक ध्यान दिया जा रहा है। प्रशासनिक अधिकारी भी साइकिल, स्कूटी सहित अन्य दो पहिया वाहनों का उपयोग कर रहे हैं। कार्यालयों में वाहनों की कतार नहीं लगती है, साथ ही अधिकांश बैठकें भी वर्चुअल माध्यम से की जा रही हैं। इसी तरह बाजार में भी ज्वेलर्स की दुकानों में भीड़ कम हो गई है। व्यापारी भी प्रधानमंत्री की अपील में सहयोग कर रहे हैं। कलेक्टर और जिला दंडाधिकारी अंजू पवन भदुरिया द्वारा पेट्रोल और डीजल की बचत, ऊर्जा संरक्षण को बढ़ावा देने के उद्देश्य से जिले के सभी विभागीय अधिकारियों, कर्मचारियों और शासकीय वाहन चालकों के लिए आवश्यक दिशा निर्देश जारी किए गए हैं। जारी आदेश में कहा गया है कि ऊर्जा संरक्षण और वैश्विक परिदृश्य के दृष्टिगत शासकीय वाहनों का उपयोग केवल शासकीय कार्यों के लिए किया जाए। अनावश्यक वाहन संचालन और बिना अनुमति वाहन उपयोग पर पूर्ण प्रतिबंध रहेगा। खेल और युवा कल्याण विभाग द्वारा जिले में 5 मई से 5 जून तक ग्रीष्मकालीन खेल प्रशिक्षण आरोह 2026 के अंतर्गत मां नर्मदा नदी तट पर विशेष संडे एक्टिविटी में डांस एरोबिक्स का आयोजन किया गया। इस मौके पर एरोबिक्स, योग, सामूहिक फिटनेस गतिविधियों का आयोजन किया गया, जिसमें बच्चों के साथ साथ उनके परिजनों, स्थानीय नागरिकों ने बढ़ चढ़कर भाग लिया। सभी विकासखंड मुख्यालयों में भी ग्रीष्मकालीन खेल प्रतियोगिताएं संचालित की जा रही है। डिंडौरी में पिछले दिनों मुख्यमंत्री सामूहिक कन्या विवाह योजना के तहत विभिन्न विकासखंडों में समारोह पूर्वक विवाह का आयोजन किया गया, जिसमें 750 से अधिक जोड़ों का विवाह रीति रिवाज से संपन्न कराया गया। जनप्रतिनिधि और प्रशासनिक अधिकारियों ने विवाह समारोह में शामिल होकर वर वधुओं को शुभकामनाएं दी। जल संचय जनभागीदारी अभियान के अंतर्गत जिले में कुल 5,52,638 जल संरचनाओं का निर्माण किया गया है। कृषि विभाग, वन विभाग, उद्यानिकी, स्वास्थ्य विभाग, एनजीओ प्रदान, महिला और बाल विकास, पीएचई, जल संसाधन विभाग, इन सभी विभागों के समन्वय से वर्षा के पानी को सहज

अभी आपने सुनी डिंडोरी जिले की चिट्ठी, आलेख लक्ष्मी नारायण अवधिया, वाचिका दीपा सिंह। ये प्रसारण आकाशवाणी भोपाल से किया जा रहा था। कृपया हमारे अगले प्रसारण की प्रतीक्षा करें। हम आकाशवाणी भोपाल से बोल रहे हैं। इस समय हमारे स्टूडियो की घड़ी में 10:05 हुए हैं। प्रस्तुत है कार्यक्रम महिला संसार।

नमस्कार सखियो, आज महिला संसार का यह खास अंक लेकर मैं स्टूडियोज में उपस्थित हूँ आपकी मित्र होस्ट अनुपमा श्रीवास्तव। कैसी हैं आप सभी? इस गर्मी में अपना ख्याल रख रही हैं ना? सखियो, हमारी सेहत कैसी है इसका कुछ पता हमारे नाखूनों से भी लगाया जा सकता है। अगर हमारे नेल्स खूबसूरत गुलाबी रंगत लिए हुए चमकदार हैं तो इसका मतलब है कि हमारा शरीर स्वस्थ है और हमने अपने आहार में मिनरल्स, विटामिन्स, पौष्टिक तत्वों को शामिल किया है। और सखियों, अगर हमारे नेल्स पीले या सफ़ेद काली लाइनों वाले हैं तो कहीं ना कहीं हमारे खान पान में न्यूट्रिएंट्स की कमी है और यह इशारा करते हैं कि हमें अपनी सेहत पर ध्यान देने की ज़रूरत है। और अब बातें करते हैं नेल्स के सौंदर्य की। तो सखियों, शेप में कटे हुए, तरीके से कटे हुए, साफ सुथरे, मजबूत और आकर्षक नेल्स अगर आप चाहती हैं तो कुछ सावधानियां तो रखनी होंगी। जैसे अगर आपको बड़े नेल्स का शौक है और छोटे बच्चों को संभालना है तो ध्यान रखें कहीं उसे चोट ना पहुंचे। और नाखूनों का इस्तेमाल डिब्बे आदि खोलने में औजार की तरह करने से कहीं आपको खुद को चोट ना पहुंचे। हाथों पैरों के नाखूनों में नमी या गंदगी ना रहे, नहीं तो संक्रमण का खतरा हो सकता है। सखियों, इन्हें नियमित रूप से काटते रहें और हाइजीन मेंटेन करें। और हाँ सखियों, नेल पेंट अच्छी कंपनी का ही इस्तेमाल करें। नाखूनों की अच्छी सेहत के लिए कभी कभी नेल पेंट से ब्रेक भी लीजिए ताकि नेल्स रिजुविनेट हो सके और केमिकल फ्री भी। और ये सभी टिप्स नेल्स की खूबसूरती बढ़ाने के लिए एकदम सही हैं सखियों। और आज तो शीर्षक गीत का दिन है और आज का विषय है सागर। तो आइए सैर पर चलते हैं सागर की इस गीत के साथ।

सखियो दरिया समुद्र जलधि सिंधु रत्नाकर वारिधि पयोनिधि नामों से जाने जाने वाला पृथ्वी का यह प्राकृतिक जलाशय जो 71 हिस्से को कवर करता है, यानी 71% हिस्से को कवर करता है, जिसका हमारी अर्थव्यवस्था, परिवहन, पर्यटन, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार, आजीविका, ऊर्जा संसाधन, खनिज, मत्स्य पालन, वाटर स्पोर्ट्स, एडवेंचर के साथ देश की जीडीपी बढ़ाने में महत्वपूर्ण हिस्सा है। सागर हमारी ब्लू इकोनॉमी को रिप्रेजेंट करता है सखियो, और सागर इतना कुछ देता है तो हमारा कर्तव्य बनता है कि हम इसे साफ सुथरा, प्लास्टिक फ्री रखें, क्योंकि ये हमें सिखा रहा है देना, और अभी हम भी आपको दे रहे हैं इस सुरीले नगमे की भेंट। तो आइए सुनते हैं ये मधुर गीत।

सकते हो सागर जिसका नाम लेते ही ऊंची ऊंची लहरों के उठने गिरने का सुंदर बीचेस का परिदृश्य हमारी आंखों के सामने आ जाता है। सखियो सागर प्रतीक है असीमित अनंत विशाल अथाह जल राशि का, और साहिल पर खड़े होकर हम ठगे से सोचते रह जाते हैं कि हमारा अस्तित्व इस संसार सागर में बूंद के जैसा है, फिर अहंकार कैसा। सखियो जो अपने कार्य में सागर की गंभीरता और गहराई लिए होगा मोती तो उसी को मिलेगा, क्योंकि सखियो सागर भी व्यर्थ अवांछित पदार्थ कूड़ा करकट रबर प्लास्टिक थर्माकोल बोतलें यानी मानव निर्मित सारी गंदगी स्वयं ही अपनी साफ सफाई के प्रति पसंदगी जताकर साहिलों पर छोड़ाता है, यानी स्वयं में नहीं रखता। सी वेव्स ये कार्य निरंतर करती रहती हैं, क्योंकि जल में रहने वाले तमाम जीव जंतुओं की प्रजातियों को खतरनाक केमिकल्स से बहुत नुकसान होता है। तो हम सभी को सागर के सौंदर्य को बरकरार रखना होगा सखियो, और अब सुनते हैं ये गीत।

सखियों, सागर किनारे बीचेस का सौंदर्य, लहरों के बीच आनंद से उछलते कूदते बच्चे, रेत के घरों दे बनाते हुए या सनबाथ लेते हुए पर्यटक, तैराकी का आनंद सुंदर परिदृश्य सुकून और शांति से भर देता है हमें। और सागर की व्यापकता, विराटता, निरंतरता और हौसला जीवन के कई आयामों में प्रतीक और बिंब की तरह उपयोग होती है। कवि, शायर, दार्शनिक अपनी अपनी तरह से सागर की गहराई की तुलना कभी प्रेम के सागर, ज्ञान का सागर, रूप का सागर, भक्ति का सागर, कृपा का सागर, बल्कि आँखें भी सागर जैसी, जैसे अभी गाने में हमने सुना, या यादों का सागर। तो सखियों, कभी कभी जब आप वाटर बॉडी के आसपास, सागर नदी के आसपास एडवेंचर करें तो आनंद तो लीजिए, लेकिन सेफ्टी मेजर्स के साथ, सावधानी के साथ। और अभी हम आपके हृदय को संगीत के सागर में डुबोकर सुनवाते हैं ये मधुर संगीत और गीत।

सखियों जो समुद्र में डाइविंग करते हैं, गहराई में जाते हैं, देख पाते हैं कि समुद्र के भीतर भी बसा है रंग बिरंगा सुखद संसार जीव जंतुओं का, कोरल्स रत्नों मोतियों से भरपूर। यहाँ तक कि भगवान विष्णु भी विश्राम मुद्रा में क्षीर सागर में विराजते हैं। तो सागर समुद्र मंथन से भी जुड़ा हुआ है सखियों। और कैसे यह खारा पानी वाष्प बनाकर जलचक्र द्वारा धरा पर मीठी मीठी पानी की बूंदों की बारिश करता है। इस अद्भुत सौगात यानी बारिश का तो हम सभी को इंतजार रहता है, जिससे प्यासी धरा, जीवन, प्रकृति, जड़ चेतन सभी आनंदित और चैतन्य हो जाते हैं। तो है ना सखियों सागर की यह बहुत बड़ी महिमा। और आइए सुनते हैं ये नगमा।

सखियों, वक्त है रेसिपी का और आप सभी जानते हैं कि गर्मियों में पेय पदार्थ सबसे अधिक ज़रूरी है। आइए बनाते हैं पुदीने का शरबत। इसके लिए हरी पुदीने की पत्तियां लीजिए, कुछ धनिया पत्तियां लीजिए और थोड़ा अदरक और दालचीनी, साथ में स्वादानुसार आप ले सकते हैं मिश्री या शुगर। नींबू का रस लीजिए, साथ ही थोड़ी इलायची लीजिए और इन सबको मिक्सी में पीस लीजिए और इसमें फिर आवश्यकता अनुसार पानी मिला लीजिए। सर्विंग ग्लासेस में आइस क्यूब्स और थोड़ा काला नमक, भुना जीरा डालकर और पहले से भिगोया हुआ सब्जा डालकर सर्व कीजिए और इस तरह तैयार हो गया है आपका डिलीशियस ड्रिंक, जो इस गर्मी में देगा आपको ताजगी भरा कूल इफेक्ट आपके तन को और मन को। तो सखियो, रहस्य रोमांच और अद्भुत संसार को स्वयं में समेटे सागर से हमने आपको मिलवाया आज के इस अंक में और मैंने अपनी भावनाओं के सागर से भी आपको मिलवाने की कोशिश की। तो ये था सीमित समय की गागर में सागर को भरने का एक प्रयास, और अगर सागर की गहराई ना पाएं तो पूरा एवरेस्ट समा जाए, यानी मेरियाना ट्रेंच। तो सखियो, मन के सागर की गहराई से सभी के लिए सकारात्मक और सच्ची भावनाओं को हम बाहर लेकर आएं, समाज में अपने आचरण से लाभ देते रहें और सागर अपने भीतर छुपे हुए मोती और रत्नों से भी यही संदेश देता है। तो दीजिए इजाज़त अपनी मित्र होस्ट अनुपमा श्रीवास्तव को आज का अंक समेटने की। आशा है पसंद आया होगा और जुड़ी रहें आकाशवाणी से, फीडबैक देती रहें, स्वस्थ रहें, आनंदित रहें। पुनः भेंट होगी, तब तक के लिए नमस्कार।

बहनें अभी सुन रही थी अपना कार्यक्रम महिला संसार। हम आकाशवाणी भोपाल से बोल रहे हैं, सुबह के 10:30 बजे हैं। प्रस्तुत है कार्यक्रम शास्त्रीय संगीत। शास्त्रीय संगीत का कार्यक्रम रागमाला में आज हम आपको सुनवा रहे हैं पंडित विश्वमोहन भट्ट का गिटार पर बजाया राग देवगिरी विलावल। आपके साथ तबले पर हैं किरण देशपांडे। आलाप जोड़ और विलंबित गत और द्रुत गत 3 ताल में निबद्ध है।

0: शास्त्रीय संगीत का कार्यक्रम रागमाला में अभी आप सुन रहे थे पंडित विश्वमोहन भट्ट का गिटार पर बजाया राग देवगिरी बिलावल। तबले पर आपके साथ हैं किरण देश पांडे। हम आकाशवाणी भोपाल से बोल रहे हैं, प्रस्तुत है इस घंटे की खास खबरें।
1: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज अपने सोशल मीडिया पोस्ट पर संस्कृत सुभाषितम को साझा करते हुए कहा कि सबसे बड़े लक्ष्यों को भी सतत प्रयास, धैर्य, दृढ़ इच्छा शक्ति से प्राप्त किया जा सकता है। देश के लोग इसी भावना से प्रेरित होकर भारत को नई ऊंचाइयों पर ले जा रहे हैं। जल गंगा संवर्धन अभियान के अंतर्गत राष्ट्रीय संगोष्ठी और सांस्कृतिक उत्सव सनीरा समागम आयोजन भोपाल स्थित भारत भवन परिसर में किया जा रहा है। ये आयोजन आज से 2 जून तक चलेगा, जिसमें देश विदेश के विद्वान, पर्यावरण विशेषज्ञ, वैज्ञानिक, नीति निर्माता और कलाकार सहभागिता करेंगे। खजुराहो में मोरारजी देसाई राष्ट्रीय योग संस्थान और आयुष मंत्रालय के सहयोग से 25वें काउंटडाउन का आयोजन किया जा रहा है। आयोजन में केंद्रीय आयुष राज्य मंत्री प्रताप राव जाधव ने आज योग कार्यक्रम का शुभारंभ किया। केंद्रीय मंत्री ने कहा कि 21 जून को योग का प्रमुख कार्यक्रम कोलकाता में कराया जाएगा। केंद्रीय मंत्री मनसुख मांडविया ने कहा कि पहली विश्व योगासन चैंपियनशिप 4 से 8 जून तक अहमदाबाद में आयोजित की जाएगी। उन्होंने कहा कि यह देश की पारंपरिक स्वास्थ्य पद्धति को वैश्विक खेल के रूप में स्थापित करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। और पीवी सिंधु सिंगापुर ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट के महिला सिंगल्स के प्री क्वार्टर फाइनल में पहुंच गए हैं। कल सिंधु का मुकाबला जापान की रिको कुंजी से होगा। वहीं सात्विक साईराज रंकी रेड्डी और चिराग शेट्टी की जोड़ी भी पुरुष डबल्स के प्री क्वार्टर फाइनल में पहुंच गए हैं। कल रंकी रेड्डी और शेट्टी की जोड़ी का मुकाबला ताइवान के ली झे हुई और यांग पोहान से होगा। आप सुन रहे थे इस घंटे की खास खबरें।

0: हम आकाशवाणी भोपाल से बोल रहे हैं, कृपया हमारे अगले प्रसारण की प्रतीक्षा करें। ये आकाशवाणी मध्य प्रदेश है, प्रस्तुत है फोन इन कार्यक्रम फोन करें गीत सुने। आज का कार्यक्रम प्रस्तुत किया है छाया पाठक ने।
1: आकाशवाणी मध्य प्रदेश से कार्यक्रम फोन करें गीत सुने में सभी श्रोताओं का स्वागत करती हूं मैं छाया पाठक। सभी को मेरा नमस्कार। श्रोताओं, कार्यक्रम आरंभ करने से पूर्व हम आपको बता दें, इस कार्यक्रम की रिकॉर्डिंग हम करते हैं प्रतिदिन सुबह 10:30 बजे से। हमारा फोन नंबर है 2660902, भोपाल का एसटीडी कोड है 0755। हमें प्रतिदिन आपके फोन कॉल्स का इंतजार रहता है। तो चलिए बात करते हैं हमारे पहले श्रोता से। हेलो,
2: गाना सुना दीजिए।
1: जी, गाना तो सुनाएंगे आपको, अपना नाम तो बताइए।
2: हरदयाल जाटव, जिला सीपी, मध्य प्रदेश।
1: पूरा नाम फिर से बताएं।
2: हरदयाल जाटव।
1: हरदयाल जाटव।
2: हाँ, हरदयाल जाटव।
1: कहाँ से हैं?
2: सीपरी से, जिला सीपरी।
1: जिला सीपरी से। जी, अब बताएं कि कौन सा गाना सुनना चाहते हैं?
2: हमको सुना दीजिए अजनबी।
1: अजनबी फिल्म का?
2: हाँ, अजनबी का इंतजार, अजनबी से प्यार है।
1: सीपरी में आप क्या करते हैं?
2: इस टाइम तो गर्मी है, गर्मी के मारे अभी फ्री हैं। अभी
1: गर्मी के मारे सब फ्री हैं।
2: हाँ,
1: तो खेती किसानी करते हैं
2: आप? हाँ जी।
1: जी, चलिए तो सुनवाते हैं आपकी पसंद का गीत।
2: नमस्ते।
1: नमस्ते।
2: आपसे पहली बार बात हो रही है।
1: जी जी।

0: हेलो,
1: हेलो, फरमाइश। आकाशवाणी भोपाल।
0: आकाशवाणी मध्य प्रदेश से फोन करें, गीत सुने कार्यक्रम में आपका स्वागत है
1: जी, हृदय से धन्यवाद।
0: जी। नाम बताएं अपना।
1: जी, मैं आपका शारदा प्रसाद प्रजापति श्री राधा सिटी मथुरा उत्तर प्रदेश से आदरणीय दीदी से वार्तालाप कर रहा हूँ। दीदी, आप कैसी हैं? मौसम कैसा है आपके यहाँ?
0: बहुत अच्छा मौसम है, आप बताइए। बस मौसम तो इस समय बस सबके मुंह से एक ही शब्द निकल रहा है, उफ, इतनी गर्मी है ना।
1: जी निसंदेह, यहाँ
0: हाँ,
1: मथुरा में भी यही हाल है।
0: सब
1: जबरदस्त गर्मी
0: जी
1: हो रही है,
0: सभी जगह
1: चमचमाती हुई
0: यही
1: धूप
0: हाल हो रहे
1: रहती है,
0: हैं,
1: गर्म गर्म हवाएं चलती
0: सब
1: हैं।
0: बेहाल है उससे।
1: जी, लू के प्रकोप में है इस वक्त मथुरा वृंदावन, पूरा ब्रज क्षेत्र।
0: जी, बताएं आज क्या फरमाइश आपकी है।
1: आदरणीय दीदी, आज आपसे अनुरोध करना चाहता हूँ। फिल्म का नाम है बाबरची, भोर
0: बावर्ची फिल्म।
1: आई गया अंधियारा। बहुत ही सुंदर प्यारा सा गीत है।
0: तो इस समय तो दोपहर
1: जी, जब ये
0: है।
1: प्रसारित

0: 14 तो भोर ही रहता है, 11 बजे तो हम
1: तो
0: भोर ही
1: आप
0: मानते हैं,
1: नहीं, तो
0: गुड
1: हमारा
0: मॉर्निंग
1: हमारा
0: बोलते
1: रेडियो
0: हैं,
1: का
0: सब जगह
1: प्रसारण
0: बोलते
1: तो
0: हैं।
1: सुबह 6 बजे से आरंभ हो जाता है, आप देर से आरंभ करते होंगे,
0: जी,
1: है ना?
0: ठीक
1: हाँ, सुबह से सुना करिए, सुबह से ही कार्यक्रम हमारे, सुबह 6 बजे से हमारा रेडियो आरंभ होता है जो रात के 11 बजे तक लगातार चलता है।
0: जी। निसंदेह आप
1: सुनिए।
0: मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश या समस्त भारत के आकाशवाणी केंद्र सुबह 6 बजे से प्रारंभ हो जाते हैं।
1: चलिए, फोन करने के लिए धन्यवाद, नमस्कार।

हा हा दैया दाय उठाय लियो गिर नक पर बंसी बजावत धेनु चनैया जगके मोहन मन में भाए नित्य करत राधा राधा राधा राधा राधा राधा राधा राधा।

0: कार्यक्रम फोन करें गीत सुने में आपका स्वागत है।
1: नमस्कार मैडम जी।
0: नमस्ते।
1: मध्य प्रदेश से देवीदास वड़ेले बोल रहा हूँ मैडम जी।
0: देवीदास जी स्वागत है कार्यक्रम में आपका।
1: हाँ जी मैडम जी, आज मुझे गाना सुनना है। इस फिल्म का नाम है जैसी करनी वैसी भरनी।
0: जैसी करनी वैसी भरनी, इसका कौन सा
1: गायककार है? नितिन मुकेश
0: जी।
1: और गीत के बोले जैसी करनी वैसी भरनी, जो जो बोएगा वही पाएगा।
0: ये बात तो बिल्कुल सच है कि जो हम बोते हैं वही पाते हैं, कर्मों का फल हमको यही मिल जाता है ना।
1: हाँ मैडम, जो करने की हो तो जो जैसी करने वैसी भरनी होती है मैडम जी।
0: हाँ ये बात सही है, आप अपने जीवन में लागू करते हैं।
1: बिल्कुल मैडम।

0: मैं तो बिल्कुल अमल करता हूँ।
1: करते हैं।
0: हाँ बिल्कुल मैडम जी, और वही वो श्रोता सुन रहे उनको भी मैं बस यही कहना चाहता हूँ, वो भी अपनी बात को अमल करे, कोई भी काम अपने से गलत ना हो।
1: गलत ना हो, किसी के लिए बुरा ना करे,
0: किसी का
1: और
0: बुरा ना करे, ना बुरा होए।
1: ना बुरा होए के लिए तो ईश्वर देखिए अच्छा बुरा दोनों करता है, लेकिन हमारा प्रयास होना
0: जी
1: चाहिए कि हमारी तरफ से किसी को कोई नुकसान ना पहुंचाए हम।
0: कहते ना मैडम जी, बुरा जो देखण में गया बुरा ना मुझसे होए,
1: जी
0: जो दिल खोजा अपना बुरा ना मुझसे होए।
1: बिल्कुल, मुझसे बुरा ना कोई।
0: जी
1: चलें, फ़ोन करने के लिए
0: कहते
1: धन्यवाद, नमस्कार।

0: कार्यक्रम फोन करें, गीत सुने। हेलो,
1: हाँ हेलो, मैं बोल रहा हूँ कटनी से। जी
0: थोड़ी आवाज़ ऊंची रखिए, आवाज़ नहीं आ रही आपकी बिल्कुल।
1: मैं सुनील गर्ग बोल रहा हूँ
0: सुन,
1: कटनी से।
0: कटनी से,
1: जी हाँ,
0: कटनी के हालचाल सुनाए कुछ।
1: बस यहाँ गर्मी बहुत तेज पड़ रही है। हाँ,
0: आपके यहाँ ही नहीं, सभी जगह गर्मी बहुत तेज़ पड़ रही है। क्या
1: बहुत
0: उपाय
1: तेज
0: करते हैं आप
1: गर्मी।
0: गर्मी के लिए फिर?
1: क्या है, अपन तो घर ही में रहते हैं तो निकलते ही नहीं है ऐसे,
0: बाहर
1: बस
0: नहीं
1: चार
0: निकलते
1: पांच
0: घर
1: बजे
0: से।
1: के बाद निकलते हैं शाम को, तो जाके अपनी दुकान खोल लेते हैं, राशन
0: काय की दुकान है आपकी?
1: की दुकान है। हाँ,
0: राशन की दुकान है, तो दिन में बंद रखते हैं।
1: गर्मी की वजह से भी, और हमारे ग्राहक जो है वो केवल रात्रि में है, 5 से 8 बजे तक खोलते हैं।
0: तो सुबह भी आप नहीं खोलते दुकान?
1: नहीं, हम ऑफिसर को भी मालूम है हमारे कि ये दोपहर में नहीं खोलते।
0: चलिए, अच्छी बात है। बताएं क्या गीत सुनेंगे आज?
1: आप अब्दुल्ला पिक्चर का सुना दीजिए।
0: कौन सा
1: मैंने पूछा चांद से देखा है कहीं।
0: सुनिए आपकी पसंद का गीत। नमस्कार।
1: जी।

0: हाँ जी नमस्कार मैडम।
1: नमस्कार, किससे बात हो रही है हमारी?
0: मैडम जी लोकेंद्र वर्मा बोल रहा हूँ, नानाखेड़ा बस स्टैंड उज्जैन मध्य प्रदेश से। मैडम
1: महाकाल के लोक से बोल रहे हैं हम?
0: जी, महाकालेश्वर जी की नगरी है उज्जैन, और महाकाल लोक कॉरिडोर भी बना हुआ है उज्जैन
1: तो
0: नगरी के।
1: अभी
0: उज्जैन
1: गर्मी में कुछ व्यवस्था वहां पर हुई है ना, ऐसा सुना
0: हाँ
1: है।
0: बिल्कुल मैडम जी, ये मंदिर के आसपास जो भी दर्शनार्थी आते हैं सभी उनके बैठने की व्यवस्था भी रहती है, और साथ में जो सामाजिक कार्यकर्ता जो रहते हैं उनमें जितने भी तीर्थ यात्री आते हैं उनके पानी पीने की व्यवस्था, बैठने की
1: ठंडे पानी
0: व्यवस्था
1: की
0: करते
1: व्यवस्था
0: हैं।
1: है?
0: जी बिल्कुल, और एक सामाजिक संस्था है जो जितने भी एक गाड़ी घूमती है उसमें सभी जगह जो यात्री रहते हैं उनके लिए पानी पिलाने की और बाटल भरने की व्यवस्था भी, चलित वाहन है वो।
1: अच्छा, और
0: जी मैडम,
1: मतलब गर्मी से बचाव के लिए जो लाइन लगती है,
0: जमीन पर भी कॉलिन बिछा रहता
1: कालीन
0: है
1: बिछा
0: और
1: है।
0: टेंट लगा रहता है, और ऐसे तो सारा परिसर बिल्कुल जो आसपास का है वो जो बना हुआ है, मतलब उसमें गर्मी नहीं लगती है, और पानी पीने की व्यवस्था, साथ में कूलर भी लगे रहते
1: जी
0: हैं,
1: जी
0: और जितने भी जो कॉरिडोर के अंदर जो घूमते हैं ना, बीच में रास्ता है जो जाने में थोड़ा समय लगता है क्योंकि घुमावदार रास्ता बना हुआ है, तो उसमें सब जगह पानी पीने की व्यवस्था भी रहती है।
1: चलिए बताएं आज क्या गीत आपको सुनवाएं।
0: गाना सुनना है मैडम मुझे, ये जब जब फूल खिले ये समा समा है ये प्यार का।
1: जी, बहुत बढ़िया गीत आपने पसंद किया,
0: जी मैडम जी, और
1: सुनिएगा
0: आज
1: आपकी
0: करीब एक
1: पसंद का
0: महीने के
1: गीत।
0: बाद में फोन लगाया है मैंने।
1: बहुत अच्छी बात है, आप जैसे जागरूक श्रोता ही तो इस कार्यक्रम को सफल बनाने में अपना सहयोग देते हैं।
0: जी मैडम, हम तो सालों से जुड़े हुए हैं, बचपन से ही मतलब आकाशवाणी भोपाल को सुनते आ रहे हैं, पहले रेडियो के माध्यम से सुनते थे, अब डिजिटल ऐप के माध्यम से सुनते हैं, और आपका प्रोग्राम तो डीटीएच पर भी जो फ्री टू एयर है ना उस पे साफ स्पष्ट क्वालिटी में सुनाई देता है मैडम।
1: इससे
0: जी जी
1: संबंधित अपनी प्रतिक्रिया भी व्यक्त करते रहिए, हम यही चाहते हैं। फोन
0: जी
1: करने
0: मैडम,
1: के लिए
0: बिल्कुल कहते
1: धन्यवाद।
0: हैं।
1: नमस्कार।

0: हेलो,
1: हाँ नमस्कार। हाँ
0: नमस्ते।
1: मैं राजेश अग्रवाल बोलता हूँ दीदी, देवास मध्य प्रदेश, राजाराम नगर देवास मध्य प्रदेश। आप
0: आज कौन सा गीत सुनना चाहेंगे?
1: कौन बोल रहे हैं?
0: छाया पाठक।
1: अच्छा छाया जी। हाँ तो मैं मनोरंजन फिल्मों का गीत है, आया हूँ मैं तेरे लिए तुझको ले जाऊंगा, ऐसा गीत है। मैं अपने किशोर दा और आशा भोसले की आवाज में, संजीव कुमार साहब की पिक्चर है ये जी, और आरडी बर्मन शायद म्यूजिकार है, इसके मतलब संगीतकार है
0: चलिए, बहुत अच्छा लगा ये जानकर कि आपको इतनी जानकारी है कि
1: जी।
0: गीतकार कौन है,
1: और
0: संगीतकार कौन है, गायक
1: जी
0: और किस
1: बिल्कुल,
0: पर
1: ये तो हम
0: फिल्माया
1: तो
0: गया है।
1: 40-45 वर्षों से सुनते आ रहे हैं ना।
0: जी चलिए, नमस्ते।
1: नमस्ते।

0: हेलो,
1: हेलो,
0: नमस्कार मैडम। फोन
1: नमस्कार
0: करेगी इसने? हाँ
1: जी। हाँ, फोन करें, गीत सुने।
0: मैडम, मैं जसराम जाटव बोल रहा हूँ, जोराई से। हाँ
1: जसराम जाटव, जौराई से।
0: जिला
1: जौराई कहाँ पड़ता है?
0: सीपी में। हाँ
1: जिला सीपरी में।
0: मैडम,
1: अच्छा, वहाँ पर आपका क्या कारोबार है?
0: कुछ नहीं मैडम, खेती किसानी करते हैं।
1: खेती किसानी। खेती किसानी से अभी फुर्सत है या कुछ वहाँ पर अभी बोया हुआ है या कुछ काम लगा है आपका?
0: नहीं मैडम, क्या है, अब तो गर्मी का टाइम है तो अब तो कुछ काम नहीं है। अपना काम जो जून से चालू हो जाएगा।
1: जून से चालू हो जाएगा। पानी की कैसी व्यवस्था है आपके यहाँ?
0: पानी की व्यवस्था मैडम, हमारे यहाँ कुआ की व्यवस्था है, कुआ है।
1: कुआ है तो कुएं में अभी पानी पूरी गर्मी में रहता है?
0: नहीं मैडम, गर्मी में नहीं रहता है। तो
1: अच्छा,
0: क्या मैडम, गेहूं गेहूं की खेती करा देता है, गर्मी में नहीं रहता पानी उसमें।
1: तो आप लोगों ने सबका मिल करके कुआ है या आपका अकेला कुआ है? वो
0: तीन तीन भाई हैं।
1: 3 भाई हैं।
0: हाँ
1: अच्छा, तो आप उसके कुएं में पानी पर्याप्त रहे उसके लिए आपने कुछ प्रयास करते हैं आप लोग?
0: प्रयास तो मैडम अभी नहीं किया, प्रयास करेंगे।
1: करेंगे उसको, और या तो गहरा खुदवाइए, उसके
0: हाँ मैडम, वो
1: आसपास
0: क्या है,
1: पेड़
0: गहरा
1: पौधे,
0: खुदवा
1: आसपास
0: लेंगे तो
1: पेड़
0: उसमें
1: पौधे
0: पानी रहेगा।
1: लगाइए
0: अरे
1: जी।
0: इसमें गहरा हो जाएगा तो पानी रहेगा ना इसमें।
1: हाँ, रहेगा, साथ में आसपास पेड़ पौधे लगाइए, है ना? ये
0: हाँ वो
1: व्यवस्था
0: तो
1: भी
0: खैर सही है मैडम।
1: जी, थोड़ा व्यवस्था करेंगे तो आप ही के लिए सुविधा रहेगी, आपके साथ साथ गांव वालों का भी भला होगा, कभी उनको ज़रूरत है तो उनके लिए भी आप पानी दे सकेंगे
0: हाँ वो तो खैर सही है मैडम।
1: जी। बताएं क्या गीत सुनना चाहेंगे?
0: हमको मैडम सुनना है खयामत फिल्म का गाना सुनना है मैडम। खयामत
1: कौन सा?
0: फिल्म का सुनना है, लड़की बहुत याद आती है।

0: हेलो, कार्यक्रम फोन करे गीत सुने।
1: जी सर नमस्कार।
0: नमस्कार, आपका क्या रेडियो चल रहा है?
1: जी हाँ।
0: रेडियो का वॉल्यूम कम कर दीजिए या आप उससे दूर हो जाइए। नाम बताएं, कौन बोल रहे हैं, कहाँ से बोल रहे हैं?
1: कोदूलाल जायसवाल, पोस्ट मुकाम भैंसवाही, तहसील बिजराहगढ़, जिला कटनी।
0: जी आप बताएं क्या सुनना चाहेंगे।
1: जी मैं,
0: हाँ
1: आप कौन मैडम बोल रही हैं सर?
0: मैं छाया पाठक बोल रही हूँ। आप कौन सा गीत सुनना चाहेंगे?
1: मैं अभी इसी वक्त कल
0: इसी वक्त नहीं, कल।
1: धड़कन का दिल में ये कहा है, दिल से मोहब्बत हो गई है तुमसे।
0: चलिए सुनिए अब आप गीत। नमस्कार।

0: आज के कार्यक्रम में बस इतना ही। कल आपसे फिर मुलाकात होगी नए गीतों, नए श्रोताओं और नए साथी के साथ। आज्ञा दीजिए छाया पाठक को कार्यक्रम से नमस्कार।
1: अभी आप सुन रहे थे फोन इन कार्यक्रम फोन करें गीत सुने। हम आकाशवाणी मध्य प्रदेश से बोल रहे हैं। प्रस्तुत है इस घंटे की खास खबरें।
2: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज अपने सोशल मीडिया पोस्ट पर संस्कृत सुभाषितम को साझा करते हुए कहा कि सबसे बड़े लक्ष्य को भी सतत प्रयास, धैर्य, दृढ़ इच्छा शक्ति से प्राप्त किया जा सकता है। देश के लोग इसी भावना से प्रेरित होकर भारत को नई ऊंचाइयों पर ले जा रहे हैं। जल गंगा संवर्धन अभियान के अंतर्गत राष्ट्रीय संगोष्ठी एवं सांस्कृतिक उत्सव सदानीरा समागम भोपाल स्थित भारत भवन में आयोजित किया जा रहा है। आज से 2 जून तक चलने वाले इस कार्यक्रम में देश विदेश के विद्वान, पर्यावरण विशेषज्ञ, वैज्ञानिक, नीति निर्माता और कलाकार सहभागिता करेंगे। खजुराहो में मोरारजी देसाई राष्ट्रीय योग संस्थान और आयुष मंत्रालय के सहयोग से 25वें काउंटडाउन कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है। यहां आज केंद्रीय आयुष राज्य मंत्री प्रताप राव जाधव ने योग कार्यक्रम का शुभारंभ किया। केंद्रीय मंत्री ने कहा कि 21 जून को योग का प्रमुख कार्यक्रम कोलकाता में कराया जाएगा। पहली विश्व योगासन चैंपियनशिप अहमदाबाद में 4 से 8 जून तक आयोजित की जाएगी। ये देश की पारंपरिक स्वास्थ्य पद्धति को वैश्विक खेल के रूप में स्थापित करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस की तैयारियां जोरों पर चल रही हैं। इस दिन के बारे में आयुष मंत्रालय द्वारा जारी बहुभाषी पुस्तिका अंग्रेजी, हिंदी और 21 क्षेत्रीय भाषाओं में उपलब्ध है। ये पुस्तिका एक व्यवहारिक डिजिटल टूल किट के रूप में भी कार्य करती है। और राष्ट्रमंडल शतरंज चैंपियनशिप में भारतीय ग्रैंड मास्टर इनियान पन्नीर सेल्वम ने श्रीलंका में रैपिड और ब्लिट्स दोनों खिताब जीतकर 2 स्वर्ण पदक अपने नाम किए। आप सुन रहे थे इस घंटे की खास खबरें।

हम आकाशवाणी मध्य प्रदेश से बोल रहे हैं। दोपहर के 12 बजे हैं। प्रस्तुत है कार्यक्रम आपकी फरमाइश। सभी सुनने वालों को साधना जैन का नमस्कार। कैसे हैं दोस्तों? आपने हमें चिट्ठियां भेजी हैं और आपके गाने हमने तैयार कर लिए हैं। पहला गीत हम ले रहे हैं दो बदल।

तन फिल्म से आशा भोसले की आवाज़ है, शकील बदायनू ने गीत को लिखा है और रवि ने संगीत दिया है। महादेव घाट अमलेश्वर से डोमन ठाकुर, सुमन ठाकुर, मिथिलेश ठाकुर, तारिणी ठाकुर, सूरज ठाकुर, ज्योति ठाकुर, रेयांश ठाकुर, गुड़िया ठाकुर। छत्तीसगढ़ भाटापारा से दतरंगी से द्वारिका प्रसाद वर्मा, किशोर कुमार वर्मा, दीपक कुमार वर्मा, छाविंद्र कुमार वर्मा, आप सभी की पसंद पर भेज रहे हैं हम ये गीत है।

आप सुन रहे हैं आकाशवाणी मध्य प्रदेश से आपकी फरमाइश। अगला गीत हमने लिया है आप सभी की पसंद पर और जिसे हम सुनवा रहे हैं। आपने चिट्ठियां भेजी हैं गौतम नगर भोपाल से केएल पंजाबी, कमलेश पंजाबी, आशा राय जादा ने, अनिल श्वेता पंजाबी ने, उज्जैन से सुनील पंजाबी और शिल्पा पंजाबी ने, राजेश पंजाबी भोपाल से, डॉक्टर किरण ग्रोवर, डॉक्टर नरेश ग्रोवर ने। तो आप सभी की पसंद पर हम आपको सुनवा रहे हैं लव स्टोरी फिल्म का ये गीत, जिसे गाया है लता मंगेशकर के साथ अमित कुमार ने। आनंद बख्शी साहब ने ये गीत लिखा है और राहुल देव बर्मन ने इसका संगीत तैयार किया है।

आप सुन रहे हैं आकाशवाणी मध्य प्रदेश से आपकी फरमाइश। इस समय हमारे स्टूडियो की घड़ी में दोपहर के 12:11 हुए हैं। लीजिए अगला गीत हम आपको सुनवा रहे हैं दो कलियां फिल्म से। लता मंगेशकर के साथ मोहम्मद रफ़ी की आवाज़ है। साहिर लुधियानवी जी ने इस गीत को लिखा है और रवि ने संगीत दिया है। आप सभी ने ये पत्र लिखे हैं मुझे और ये गीत सुनने की फरमाइश की है। भोपाल से विनोद आर्य, शांता आर्य, सीमा विनय अग्रवाल, मृदुल मीनू आर्य, अतुल विनीता अग्रवाल, नेहल, ऋत्विक सात्विक, अवि अनु अग्रवाल ने। तो आप सभी की पसंद पर ये गाना हम आपको भेज रहे हैं।

पसंद किया है आपकी पसंद पर। दो बूंद पानी से ये फिल्म का गीत है, परवीन सुल्ताना और मीनू पुरुषोत्तम ने इस गीत को गाया है और साथी भी हैं। कैफी आजमी ने इस गीत को लिखा है और जयदेव ने इसका संगीत तैयार किया है। इस गीत को पसंद किया है ममतेश शर्मा, दीपू शर्मा, विनायक शर्मा, अक्षरा, अनुष्का शर्मा ने भोपाल से। इसी गीत को पसंद किया है घंटाघर चौक खंडवा से संजय पांचोलिया, प्रियंका पांचोलिया, गुनगुन, संप्रीत हेमेंद्र और सन्मति पांचोलिया ने।

आप सुन रहे हैं आकाशवाणी मध्य प्रदेश से आपकी फरमाइश। मैं हूं आपके साथ साधना और कार्यक्रम के अंत में आपको सुनवा रहे हैं दिल अपना और प्रीत पराई। इस फिल्म में लता मंगेशकर को गीत लिखा है शैलेंद्र ने, संगीत है शंकर जयकिशन का। आप सभी श्रोताओं ने हमें चिट्ठियां भेजी हैं। भोपाल सुभाष नगर से सुनील जैन, सुधीर, सारिका जैन, साहिल, अंकिता जैन, समीर, कृतिका जैन, सौम्या, शुभ्रा सम्यक और वेबी शार्बिल ने। तो लीजिए, आप सभी की पसंद पर ये गीत हम आपको सुनवा रहे हैं।

अभी आप सुन रहे थे आपकी फरमाइश, मैं थी आपके साथ साधना जैन। हम आकाशवाणी मध्य प्रदेश से बोल रहे हैं, अगला प्रसारण अंतराल के बाद।

0: नमस्कार, मैं हूं कैलाश खेर और आकाशवाणी के सभी श्रोताओं को मेरा बारंबार प्रणाम। और भारत की सेना को समर्पित ये मेरा गीत भारतीय सेना, जो तीनों सेनाओं को समर्पित है, हर देशवासी को समर्पित है तथा भारत के हर सैनिक को समर्पित है, पैरामिलिट्री के अर्धसैनिक बलों के हर सैनिक को समर्पित है, रक्षा मंत्रालय से लेकर देश के एक एक नागरिक को ये गीत समर्पित है। हमारे देश की भावनाओं के अनुरूप हमारी भारत की सेनाओं के गौरव का गान और स्तुति ही यह गीत है। रग रग में जोश भर देने वाला यह गीत हमारे हर भारतीय को समर्पित करता हूं। मैं हूं आपका कैलाश खेर।
1: अदम्य शक्ति एवं शौर्य की पहचान है भारतीय सेना। जल

स्थल गगन की रक्षा का वरदान है भारतीय सेना, हर संकट का समाधान है भारतीय सेना, भारत का गौरव है, स्वाभिमान है भारतीय सेना।

0: आज पूरी दुनिया हमारी सेना की वीरता और मारक क्षमता की बुरी बुरी प्रशंसा कर रही है।
1: हो चुनौती कोई भी, कैसी भी मुश्किल, हर जगह

0: घटना स्वयं ही घट पड़े।
1: भारतीय सेना।
2: हम आकाशवाणी मध्य प्रदेश से बोल रहे हैं। दोपहर के 12:30 बजे हैं। प्रस्तुत है कार्यक्रम संग्रहालय से। इसमें सुनिएगा सिसकियों का भाग एक।
3: वैभवी पिक्चर्स प्रस्तुत करते हैं रेडियो धारावाहिक सिसकियां। ये धारावाहिक खेमलता वकलू के उपन्यास खिला फूल मुरझाया पर आधारित है।

0: अजी सुनते हो,
1: अरे क्या है?
0: ये ट्रंक तो जरा खिसकवा दो। रात को सोने के लिए एक तरफ कर दिया था।
1: अरे अरे ये क्या सुबह सुबह ट्रंक लेकर बैठ गई? अरे अभी अभी तो बहू घर में आई है, सुबह सुबह का वक्त है, सब सो रहे हैं। अभी इसे ट्रंक को कुछ मत कहो।
0: अजी, बहू आई है घर में तो कोई गैर नहीं है, तुम्हारी सगी भांजी है। और वैसे भी तो वो यहाँ एक महीना रह कर गई है। इस घर के मिजाज के बारे में बाखूबी जानती है।
1: अरे अरे मुश्ताक की अम्मा, मैं कह रहा हूँ अभी अभी वो लोग सो रहे हैं, सुबह ही सुबह उनकी आँख खुल जाएगी।
0: अजी कहाँ की बात कर रहे हो,
1: अब
0: हमारी बहू तो सुबह ही उठ गई।
1: हाँ?
0: वो देखो गाय को चारा डाल रही है।
1: फजी भाई, ये तो गलत बात है, अरे उसे मना करो। अरे अभी भी रात ही तो ब्याह कर लाए हैं, लोग देखेंगे तो क्या कहेंगे कि बहू के आने में देर नहीं हुई और आते ही बैल की तरह खेत में जोत दिया।
0: अजी मैंने कुछ नहीं कहा उससे, वो खुद उठी है। और शादी से पहले भी जब वो आया करती थी तो घर में सबसे पहले वो ही तो उठती थी। अरे अपने घर में भी तो ऐसे ही उठती थी सारे। उसकी माँ फाता कौन सा काम करती थी, बस सारा बोझ इसी बेचारी पर था।
1: हाँ बात तो तुम ठीक कहती हो, सारे की बचपन से ही ऐसे ही काम करने की आदत है। अपने छोटे भाइयों को भी तो यही संभालती थी।
0: सही कहते हो, तुम्हारी बहन को तो फुर्सत ही नहीं थी घर की तरफ देखने की। वो तो पता नहीं किन किन कामों में अपनी अकल लड़ाती रहती थी।
1: अरे उस पाता के बारे में तो बस बस क्या कहूँ। अरे गांव का शायद ही कोई ऐसा घर होगा जिससे उसका झगड़ा ना हुआ हो।
0: हाँ।
1: बाप रे, फाता की क्या लंबी जबान है। अरे अरे वो तो मेरी बहन है, इसलिए डर से ज्यादा नहीं बोलती, वरना वरना नाकों चने चबवा दे। अरे तुम तो उसके आगे बहुत सीधी हो, ये फाता बचपन से ही ऐसी थी, घर में सबसे ज्यादा बोलने वाली और लड़ने वाली ये फाता ही थी।
0: लाहौल बिलाकुवत, क्या कर रहे हो जी, आहिस्ता बोलो। अब उसकी बेटी हमारी बहू है, ये बातें अब हमें जेबा नहीं देती।
1: हाँ जी चुप रहो, अपनी बहन के बारे में ही तो कह रहा हूँ, सारे तो बच्ची है। अरे अपने मामा की बात का क्या, बुरा थोड़ी मानेगी वो।
0: खैर छोड़ो भी ये सब बातें, वो अब हमारी समधन है, उनके बारे में हमें

0: ऐसा नहीं सोचना चाहिए। वैसे कुछ कहो, दोनों की जोड़ी माशाल्लाह अच्छी रही, हमारे मुश्ताक के साथ खूब जचेगी सारे।
1: अरे जचेगी क्यों नहीं, जैसे हमारा मुश्ताक खूबसूरत है वैसे ही सारे में भी देखो कितनी कोशिश है। अरे कोई देखे तो देखता ही रह जाए।
0: हाँ जी।
1: अरे खुदा ने बड़े सोच समझ के जोड़ी बनाई है।
0: हाँ, चलो निकाह तो हो गया, अल्लाह ताला अब कर्जा चुकवा दे। निकाह के लिए हम लोगों ने बहुत कर्जा ले लिया, अभी हमारे दो बेटे और हैं, उनके बारे में भी तो सोचना है।
1: अरे तुम फिक्र क्यों करती हो बेगम, तुम देखना देखना, तुम अल्लाह ताला सब कर्जा चुकवा देगा। अरे मुझे मुश्ताक पर पूरा भरोसा है, उसका मालिक कह रहा था मुश्ताक जैसा दर्जी पूरे कश्मीर में ढूंढने से नहीं मिलेगा। और कहता है जितनी मेहनत से काम यहाँ मुश्ताक करता है उतना और कोई भी नहीं करता। अरे देखना देखना, एक दिन तुम बहुत नाम पैदा करेगा हमारा मुश्ताक। और पैसे का क्या है, अरे जब अच्छा कारीगर है तो पैसा कमाना कौन बड़ी बात है। हाँ चुक जाएगा सब पैसा धीरे धीरे।
0: हाँ हाँ, अब तो सब कुछ पहले से ही सोच कर बैठे हो। अरे ये तो मेरी ही तजवीज थी कि मुश्ताक को दर्जी बनाना है, वरना वो भी आज रसूल की तरह ड्राइवर ही बना होता।
1: उसका तुम ना मतलब उसका मेरे सामने।
0: अरे क्या हो गया, अब तो उसने रिश्तेदार की बेटी से निकाह भी कर लिया है।
1: अरे नूरी से शादी करके कोई कोई बहुत बड़ा काम अंजाम नहीं दिया उसने। अरे नूरी की शादी उससे नहीं होती तो किसी और से हो जाती, लेकिन ऐसी नौबत तो ना आती कि वो अब वो।
0: क्यों, अब क्या हो गया, मैं तो उसके घर भी नहीं गई, तुम तो गए थे ना परसों वहाँ।
1: हाँ।
0: क्या हुआ, खैरियत तो है ना, तुमने आकर कुछ बताया ही नहीं था।
1: अरे क्या खैरियत है, उस कमबख्त रसूल ने नूरी की नाक में दम कर रखा है, न जीने देता है न मरने देता है, उसको मारता है इतना कि बस पूछो मत। यहाँ आई थी अपने मैके में, मैंने उसे देखा, अरे जिस्म पर जगह जगह नील पड़े हुए थे।
0: अरे देखो जी, वैसे ये नूरी भी कम नहीं है, बहुत बड़ी जबान है इसकी, औरत की तो जबान ही जूते खिलवाती है और जबान ही सिर पर बिठवाती है। यहाँ जब नूरी आती थी तो कितना बोलती थी और कितने नखरे करती थी।
1: देखो ये, अरे रसूल की तुम तरफदारी मत करो। अरे तुम्हें पता नहीं, अरे कितना याश आदमी है, तुम्हें पता है? हाँ पता नहीं तुम्हें, अरे गांव के बाहर कितनी औरतों से, और तो और दो नंबर की कमाई खूब करता है, अरे तभी तो उसके पास इतना पैसा है।
0: अरे रे रे, ये तो बड़ा ही खराब आदमी है, मैं तो इसे इतना बुरा नहीं समझती थी, लेकिन आज तुमने ये सब बताकर।
1: अरे तुम तो औरतें घर में रहती हो, तुम्हें किसी बात की खबर भी रहती है।
0: हाँ हाँ ठीक है, चलो अब ये ट्रंक खिंचवा दो, बहुत हो गई बातें।
1: ठीक है आओ लो।
0: लाइए अम्मी, मैं आपकी मदद करवा देती हूँ। नहीं सारे, तुम अभी किसी भी काम को हाथ ना लगाओ, तुम्हारे मामू नाराज हो रहे थे।
1: अरे
0: अब तुम्हें जिंदगी भर यहाँ काम ही तो करना है, अगर थोड़ा वक्त मिला है तो उसे आराम से काट लो। अभी तुम जाओ जाओ, मैं ये काम कर लूंगी।
1: बेटी।
0: कैसी बातें करती हैं अम्मी, मैं आपकी कोई बहू थोड़े ही हूँ, आपकी बेटी हूँ, और जो काम कल करना है वो आज से ही क्यों ना शुरू कर दूँ।
1: अरे नहीं सारे बेटी, ये सब ठीक नहीं है, देखो आखिर जिम्मेदार

0: जिम्मेदारी तुम्हें ही निभानी है। अभी अब तुम्हारी अम्मी काम कर रही है तो तुम्हें काम करने की क्या जरूरत है।
1: हाँ सारे, अभी तुम जाओ, देखो तो शायद मुश्ताक तुम्हें बुला रहा है।
0: देखो बेटी, देख लो।
1: ठीक है, जैसी आपकी मर्जी, अब मैं आप लोगों के लिए चाय बना कर लाती हूँ। मैं अभी आती हूँ, सबके लिए चाय बनाने जा रही हूँ। अरे भाई, ये नहीं मानेगी, देखना अब तुम, ये मुझे किसी काम से हाथ नहीं लगाने देगी।
0: वाह वाह, खुदा ऐसी बहू सबको दे।

0: साराय?
1: हाँ?
0: ओ प्यारी साराय, अरे अपने हाथों से एक प्याली चाय तो पिला दो भाई, अब हमारे काम पर जाने का वक्त हो गया है।
1: अजी, हमारी आंखों के सामने बैठोगे तभी तो चाय पिलाएंगे ना।
0: अरे लो लो लो, ये पानी पियो। इतनी बार कहा है कि चूल्हे में ये गीली लकड़ियां मत डाला करो।
1: लो चाय पियो।
0: वाह सारे, तुम्हारे हाथ की चाय पीना भी नसीब वालों को नसीब होता है। क्या चाय बनाई है।
1: अजी, पहले एक घूंट पी तो लो। चाय अभी तुमने पी भी नहीं और तारीफ करनी पहले ही शुरू कर दी।
0: अरे साराय, तुमने जो कुछ बना दिया वो मेरे लिए अमृत है, चाहे वो जैसा भी बना हो।
1: बस बस, अब जल्दी से चाय पियो, आपके जाने का वक्त हो गया है। और वैसे देख रही हूँ आप आजकल यहीं पर देर कर देते हैं।
0: सोच रहा हूँ कि आज जाऊं ही नहीं।
1: क्या?
0: हाँ, कुछ मन नहीं कर रहा है। सारे चलो, आज हम दोनों बैठकर पूरे दिन बात करेंगे।
1: शादी को अब तो काफी दिन गुजर चुके हैं, ये सब बातें अब तो ना किया करो।
0: अरे भाई, हम तो ऐसे ही जिंदगी तुम्हारे आगे बैठकर गुजार दें। सोचता हूँ आज की छुट्टी कर ही लूँ।
1: बस बस, आप छुट्टी का नाम ना लिया करें, पहले ही बहुत छुट्टी कर चुके हैं, ज्यादा छुट्टियां की तो नौकरी से हाथ धोना पड़ेगा।
0: अरे बाप रे,
1: क्या हुआ?
0: आज तो बहुत देर हो गई सारा। अच्छा मैं चलता हूँ, हो सकता है मैं दोपहर में चक्कर लगाऊं, जब सब सोते हुए होंगे मैं तभी आऊंगा।
1: हाय अल्लाह, नहीं नहीं, उस वक्त अम्मी जाग रही होती हैं।
0: अच्छा, ये सब बातें दोपहर को करेंगे। खुदा

0: अरे क्या बात है फाता, आज बड़े गुस्से में घर साफ कर रही हो।
1: अरे घर तो साफ कर रही हूं ना, चाहे गुस्से में ही सही। और यहाँ है भी कौन मेरे साथ काम करने वाला? सारे की शादी ऐसी हुई कि उसने आने की खबर तक नहीं ली। 8 महीने हो गए हैं उसे अपनी ससुराल गए हुए, और एक दिन के लिए भी नहीं आई अपनी माँ से मिलने।
0: अरे अगर वो नहीं आई है तो तुम जाकर क्यों नहीं मिल लेती? आखिर वो भी तो तुम्हारे भाई का घर है।
1: हाय अल्लाह, तुमसे मैंने कोई मशवरा नहीं मांगा। जब देखो उल्टी सीधी पट्टी पढ़ाते रहते हो। अरे अब वो समधी है हमारे, समझे?
0: अरे बेगम, पता नहीं क्या क्या सोचती रहती है तू। अरे तुझे तो खुशी होनी चाहिए कि मैके की उसे याद नहीं आती। उसको ससुराल में इतना

0: प्यार मिला है।
1: क्या क्या कहा? मैं क्या उसे यहाँ मारा पीटा करती थी जो मुझे याद नहीं करती?
0: अरे मुझे पता नहीं क्या, फालतू में अपना दिमाग खराब करती हो और मेरा भी। अरे अब तो उसकी खुशी में ही खुश रहा करो।
1: क्यों, क्या हुआ? मुझे कौन सी जलन हो रही है उसके खुश रहने से?
0: वैसे कुछ भी कहो, सारे की किस्मत खुल गई है वहां जाकर। अब तो उसके पास दो दो गायें हो गई हैं, मुश्ताक की सब जगह धूम है। बहुत अच्छे कपड़े सीता है और पैसा भी बहुत अच्छा कमा रहा है। अरे उसने फजी और सारे को बहुत सारी किरण ला कर दी है। तुम्हारी बेटी वहां खूब ऐश कर रही है।
1: ऐश कर रही है? अरे ये तो मेरी बेटी का नसीब था जो उसे मिल रहा है। कहीं और भी जाती तो ऐसी ही महारानी की तरह रहती। बल्कि किस्मत वाली तो फजी है जिसे सारे जैसी बहू मिली। अरे उसके भाग्य से ही तो ऐश कर रही है, इसलिए तो सारे को यहाँ नहीं आने देती। खुद तो वहां महारानी बनकर बैठ जाती होगी और मेरी बेटी पर हुकुम चलाती होगी।
0: अरे अरे बेगम कैसी बातें करती है। अरे अपनी भाभी के बारे में भी तुझे शर्म नहीं आती?
1: शर्म कैसी जी, जो बात सही है वो सही है, इसमें बुरा मानने वाली क्या बात है? देखा नहीं है गांव की और लड़कियां कैसे अपने शौहरों और सास ससुर को अपने कब्जे में किए रहती हैं? हमारी सारे तो इतनी सीधी है कि फंस गई होगी उनके चंगुल में।
0: अरे तू पगला गई है क्या? तेरे भेजे में इतनी सी बात क्यों नहीं आती कि वो वहां खुश है?
1: या खुदा, अजी अब वो अपने मुंह से थोड़े ही कहेगी कि मैं परेशान हूँ। वो जो उसकी सास है ना फजी, बहुत ही चुप भुन्नी औरत है, बड़े प्यार प्यार से सारे काम करवा लेती है। और वो जो है हमारी सीधी लड़की सारे, उसको तो बिल्कुल अक्ल ही नहीं है। अरे अपने आप को उस घर में जाकर झोंक दिया। अरे अगर ऐसे ही चलता रहा तो जिंदगी भर उन लोगों की गुलाम बनकर रहेगी, महारानी बनकर नहीं।
0: ओहो, वहां पर करीम और फजी अपने बच्चे की तरह उससे प्यार करते हैं, उसे किसी बात की कमी नहीं होने देते।
1: अरे मेरे भोलू राम, कितने भोलू हो तुम। अरे तुम लड़की के बाप हो, जब तुम वहां पर जाओगे तो तुम्हारे सामने तो काम नहीं कराएंगी ना, बल्कि झूठा प्यार ही करेंगे, समझे?
0: फाता फाता, वो तेरे भाई का घर है, उसके लिए ऐसी गंदी सोच रखती हो?
1: अजी चुप रहो जी, मैंने अच्छे अच्छे घर देखे हैं। करीम अगर मेरा भाई है तो मेरा खून है, पर फजी तो मेरा खून नहीं है। पता नहीं मेरी बच्ची सारे के ऊपर उस फजी ने क्या जादू कर दिया है कि वो हमें याद ही नहीं करती। एक दिन के लिए कभी मिलने भी नहीं आई। अब मुझे कुछ ना कुछ करना ही पड़ेगा।
0: ओहो, देखो बेगम, तुम कुछ भी ऐसा मत कर देना कि हंसते खेलते परिवार में आग लग जाए।
1: वक्त आने पर बताऊंगी।

0: अम्मा।
1: हाँ बहू।
0: अम्मा, मैं आपसे कह रही हूँ कि आप भी दरगाह शरीफ चलती तो अच्छा होता।
1: नहीं बहू, तुम लोग जाओ दरगाह पर और दीप जला कर आओ, जाओ।
0: लेकिन अम्मा, आप घर का सारा काम करेंगी, अब ये तो अच्छा नहीं लगेगा ना।
1: तुम इसकी फिक्र मत करो बहू, मैं घर का सारा काम कर लूंगी। जाओ, आज तुम मुश्ताक के साथ घूम कर आओ, जाओ।
2: अब चलो भी साराय, बहुत देर हो चुकी है, निकलो यहाँ से।
0: हाँ हाँ चलते हैं जी, इतनी जल्दी किस बात की है।
2: अगर मैंने तुम्हें आगे की बात बता दी तो तुम सिर के बल भागती हुई चलोगी?
0: अच्छा बताओ तो जरा क्या बात है।
2: अभी नहीं, वक्त आने पर बताऊंगा।
0: ओफो मुश्ताक, आप बहुत खराब हैं।
2: अच्छा बाबा, अब चलो यहाँ से, चलो।
0: चलिए। मुश्ताक, देखो कितना अच्छा लगता है ना, इस डल झील के किनारे बैठकर वादियों को देखना। कितनी खूबसूरत दरगाह है, कैसा अच्छा लग रहा है यहाँ।
2: साराय।
0: हाँ,
2: तुम तो शायद यहाँ पहली बार आई हो।
0: हाँ मुश्ताक, मैं पहली बार आई हूँ यहाँ पर। मुझे अगर इसकी खूबसूरती का ज़रा भी अंदाज़ा होता ना, तो मैं यहाँ तुम्हारे साथ रोज़ आती।
2: अच्छा चलो, अब दरगाह में अंदर आओ, रत्नदीप और रोट वहीं चढ़ाया जाएगा।
0: हाँ, हाँ चलिए।
2: लो साराय, मैंने तुम्हारा दीप जला दिया, इसे वहां ले जाओ। अरे जाहिल औरत, इसने तो दीप बुझा दिया।
0: मुश्ताक, ये तो अपशगुन है, ये ठीक नहीं हुआ।
2: अरे नहीं, तुम फिक्र मत करो, ऐसा कुछ नहीं हुआ, हवा से तो दीप बुझ ही जाते हैं, फिर जल जाएगा।
0: नहीं मुश्ताक, ये अच्छा नहीं होता। मेरी एक सहेली का दीप भी इसी तरह बुझ गया था। उस बेचारी का 1 महीने के अंदर ही तलाक हो गया था मुश्ताक।
2: अरे मेरी प्यारी गुड़िया, जब मियां बीवी राजी तो क्या करेगा काजी। अरे जब तक हम नहीं चाहेंगे तो हमें कौन अलग कर सकता है। बस तुम नमाज पढ़कर खुदा से दुआ करती रहो। चलो तुम्हें एक चीज दिखाता हूँ, आओ इधर आओ। वो देखो, तेज हवा में कैसे पानी में बहते हुए दिए बुझते जा रहे हैं और पीर साहब उन्हें बार बार जलाते जा रहे हैं।
0: हाँ सही कहा आपने, वो देखो पीर साहब फिर से जला रहे हैं दीप।
2: अरे जब पीर साहब दोबारा जला सकते हैं तो हम क्यों नहीं जला सकते। ये देखो, ये मैंने माचिस निकाली और ये लगाई।
0: लाओ मुझे दो, मैं इसे पानी में बहाऊंगी और अब की बार ये नहीं बुझेगा। मुश्ताक, अब तो बता दो ना कि मुझे कहाँ लिए जा रहे हो, मैं चल तो रही हूँ आपके साथ।
2: चलो अब तुम पूछ ही रही हो तो मैं तुम्हें बता देता हूँ, हम लोग अब निशात बाग जा रहे हैं।
0: क्या, निशात बाग जा रहे हैं?
2: हाँ।
0: ये तो हमें पता ही नहीं था। ओ मुश्ताक, आप कितने अच्छे हैं, कितने प्यारे हैं आप।
2: बस बस बस, इतना मक्खन मत लगाओ। मुझे मालूम है कि तुम आज तक निशात बाग नहीं गई हो और तुम्हारा वहां जाने का बहुत मन था। और इसीलिए मैं तुम्हें वहां लेकर जा रहा हूँ।
0: मुझे पता है, हम कब तक पहुंच जाएंगे वहां पर?
2: बस समझो कि पहुंच ही गए।
0: हाँ?
2: वो देखो सामने बाग की रौनक नजर आई।
0: हाँ? क्या क्या यही निशात बाग है?
2: हाँ।
0: ये दूर से तो बहुत अच्छा लग रहा है, लेकिन यहाँ पर इतनी भीड़ क्यों है?
2: अरे सारे सवाल यहीं बैठे बैठे पूछ लोगी क्या, किनारा आ जाए तो खुद ही सब देख लेना।

0: अब देखो सारा नजारा कैसा लगा।
1: नजारा तो बहुत अच्छा है, लेकिन मुश्ताक यहाँ लड़कियाँ देखो ना कैसे लड़कों के गले में हाथ डालकर घूम रही हैं। इन्हें शर्म नहीं आती, कैसी गंदी लग रही हैं।
0: अरे सारे ये तो आजकल का फैशन है।
1: और देखो तो कैसे बेहुदा कपड़े पहने हैं इन्होंने, सारा जिस्म नजर आ रहा है।
0: अरे मैं ऐसे ही तो कपड़े सिलता हूँ।
1: क्या?
0: हाँ मेरे पास ऐसे ही लोग आते हैं, देखो कितने अच्छे लगते हैं। और ये सब कपड़े मैं तुम्हें भी ला कर दूंगा।
1: मुझे नहीं पहनने। क्या तुम इतने बेहुदा कपड़े सिलते हो, तुम्हें शर्म नहीं आती?
0: अरे शर्म किस बात की, ये काम है मेरा। अगर ये कपड़े ऐसे नहीं सी कर दूंगा तो मुझे कौन पूछेगा। अब तुम जरा यहाँ पेड़ के नीचे बैठो, मैं तुम्हारे लिए कुछ लेकर आता हूँ।
1: ठीक है, मैं तुम्हारा यहीं इंतजार कर रही हूँ, पर जल्दी आना।
0: अरे बस यूं गया और यूं आया। देख गुरु देख, क्या लड़की बैठी है। अरे इसका आशिक इसके लिए कुछ लेने गया होगा।
2: अरे गुलाब लेने गया होगा। वैसे यार
3: कार्यक्रम संग्रहालय से के अंतर्गत अभी आप सुन रहे थे धारावाहिक सिसकियां का पहला भाग। लीजिए अब पेश है इस घंटे की खास खबरें।
4: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज अपने सोशल मीडिया पोस्ट पर संस्कृत सुभाषितम को साझा करते हुए कहा कि सबसे बड़े लक्ष्य को भी सतत प्रयास, धैर्य और दृढ़ इच्छा शक्ति से प्राप्त किया जा सकता है। देश के लोग इसी भावना से प्रेरित होकर भारत को नई ऊंचाइयों पर ले जा रहे हैं। जलगंगा संवर्धन अभियान के अंतर्गत राष्ट्रीय संगोष्ठी एवं सांस्कृतिक उत्सव सदा नीरा समागम भोपाल स्थित भारत भवन परिसर में आयोजित किया जा रहा है। आज से 2 जून तक चलने वाले इस कार्यक्रम में देश विदेश के विद्वान, पर्यावरण विशेषज्ञ, वैज्ञानिक, नीति निर्माता और कलाकार सहभागिता करेंगे। खजुराहो में मोरारजी देसाई राष्ट्रीय योग संस्थान एवं आयुष मंत्रालय के सहयोग से 25वें काउंटडाउन कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है। यहां आज केंद्रीय आयुष राज्य मंत्री प्रताप राज जाधव ने योग कार्यक्रम का शुभारंभ किया। केंद्रीय मंत्री ने कहा कि 21 जून को योग का प्रमुख कार्यक्रम कोलकाता में आयोजित किया जाएगा। पहली विश्व योगासन चैंपियनशिप अहमदाबाद में 4 से 8 जून तक आयोजित की जाएगी। यह देश की पारंपरिक स्वास्थ्य पद्धति को वैश्विक खेल के रूप में स्थापित करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस की तैयारियां जोरों से चल रही हैं। इस दिवस के बारे में आयुष मंत्रालय द्वारा जारी बहुभाषी पत्रिका अंग्रेजी, हिंदी और 21 क्षेत्रीय भाषाओं में उपलब्ध है। और आईपीएल क्रिकेट में आज चंडीगढ़ में शाम 7:30 बजे से सनराइजर्स हैदराबाद और राजस्थान रॉयल्स के बीच एलिमिनेटर मैच होगा। विजेता टीम शुक्रवार को दूसरे क्वालिफायर में गुजरात टाइटन से भिड़ेगी। फाइनल मैच 31 मई को अहमदाबाद में खेला जाएगा। आप सुन रहे थे इस घंटे की खास खबरें।
3: ये आकाशवाणी मध्य प्रदेश है। लीजिए प्रस्तुत है महिला कार्यक्रम प्रस्तुति आकाशवाणी ग्वालियर केंद्र की। महिला सभा कार्यक्रम सुन रही सभी बहनों को सुनीता पाठक का प्यार भरा नमस्कार। सखियों, हम जानते हैं कि आप समय और पैसे की बचत में माहिर हैं और ऐसी ही सीख आप अपने नौनिहालों को भी दे रही हैं। जाहिर सी बात है, हमारे बुजुर्गों की यह सीख हमेशा उपयोगी है। जितनी चादर हो उतने ही पैर फैलाएं। खर्चे जब आय से अधिक हों और गैर जरूरी हों तो वो फिजूल खर्ची ही तो मानी जाती है ना। हमारी जरूरतों की और ख्वाहिशों की कहीं कोई सीमा नहीं होती, हमें उनकी सीमा तय करनी पड़ती है। अपनी आय के मुताबिक व्यय और बचत की आदत तो डालनी ही चाहिए। जरा विचार तो करें कि पैसा तो आया पर गया कहां। वेतन मिलते ही एक बजट बनाना जरूरी है सखियों। आपातकालीन बजट हमारा भविष्य सुरक्षित करता है। सुविधाजनक खर्चों पर नियंत्रण जरूरी है, ये बचत बढ़ाने में मदद कर सकता है। हर 15 दिन में खर्चों का हिसाब जरूर देखें। और हाँ, सिर्फ पैसा बचाना ही काफी नहीं है, उसे सही दिशा दे

लेना भी जरूरी है। इसलिए धीरे धीरे निवेश की आदत को भी अपनाएं। वित्तीय अनुशासन हमें आत्मविश्वासी बनाता है। अपने भविष्य, अपने सुखद सपनों के जिम्मेदार हम खुद हैं। हमारी बचत ही हमारे आड़े वक्त की सबसे बड़ी साथी है। जरूरत पर हमें किसी के आगे हाथ तो नहीं फैलाना पड़ेगा ना। अब यही सोच रही है ना आप कि अब तो सुविधाओं के ऑनलाइन शॉपिंग, ऑनलाइन पेमेंट के आदि हो गए हैं हम, क्या करें, ये आदत तो अब दूर ही नहीं होती। तो हमारा ये कहना है, अच्छी आदत की शुरुआत कभी भी शुरू की जा सकती है, आज से ही और अभी से ही। बजट बनाते समय 50-30-20 का फार्मूला अपनाएं। 50% जरूरी कामों में, 30% घूमने, शौक वगैरह में और 20% बचत के लिए सबसे पहले निकाल कर अलग रख दें। अब कुछ खर्चे तो हमारे हाथ में हैं, जिन्हें सीमित रख सकते हैं। जैसे बिजली के खर्च को सीमित रखना तो हमारे हाथ में ही है। 5-स्टार रेटिंग के उपकरण ही इस्तेमाल करें, एसी का कम इस्तेमाल करें। ईएमआई की सुलभता तनाव को लाती है सखियों। विचार विमर्श के बाद ही ईएमआई पर कोई सामान लेने का निर्णय लें। अपने परिवार के साथ बैठकर बात करें कि पिछले महीने कौन सा खर्च फिजूल ही हुआ, जिसके खर्चे से बचा जा सकता था। ऐसी बातों पर संकोच नहीं करें। अपनी नासमझी पर हंस भी सकते हैं आप और अगले महीने की बैठकर परिवार के साथ प्लानिंग बनाएं। सच तो ये है सखियों कि हम अपनी मुस्कुराहट को जी भर कर खर्च करने में कतई संकोच न करें। इसे जी भर कर लुटाइए, क्योंकि हमारी मुस्कुराहट जो है ना, वो खुशबू की तरह बिखर कर औरों के चेहरे पर भी मुस्कुराहट ले आती है।

0: और सखियों, हम जानते हैं कि गीत सुनने की तरह ही आपको कहानी सुनना भी बहुत पसंद है। अच्छा कथानक हो, एक सुखद अंत हो और दृश्य इस तरह से रचे गए हों कि ऐसा लगे हम तो इस कहानी के साथ ही चल रहे हैं। ऐसी ही एक प्यारी सी कहानी लेकर आज हम आपके लिए आए हैं, वो सांवली लड़की। ये शीर्षक है इस कहानी का। कहानीकार हैं सुप्रतिष्ठित कहानीकार सुश्री नीरजा वर्मा।
1: रोज शाम को अपने कमरे की बालकनी में बैठे हुए आते जाते लोगों को देखना मेरा प्रिय शगल था। बुजुर्ग, सजी धजी महिलाएं, हंसते खेलते हुए बच्चे, सभी तो गुजरते थे घर के सामने से। इन्हीं सब के बीच एक सांवली लड़की भी थी जिसे मैं रोज देखती थी। उम्र होगी यही कोई 20-22 साल। उसकी सादगी में ऐसा आकर्षण था कि जब तक वो आंखों से ओझल नहीं हो जाती तब तक नजरें उसका पीछा करती थीं। एक दिन उसने नजरें ऊपर उठाई और मुझे अपनी ओर देखते हुए पाया। मुझे ऐसा लगा जैसे मेरी चोरी पकड़ी गई हो। उस दिन के बाद से कई बार हम लोगों की नज़रें आपस में टकराती और इस प्रकार हम लोगों के बीच एक मौन रिश्ता बन गया था। किसी दिन उसे रास्ते से जाते हुए नहीं देखती तो दिन खाली खाली लगता। वो कहाँ जाती है, क्या करती है, मैं कुछ नहीं जानती थी, पर रोज़ उसका इंतज़ार ज़रूर रहता था। कई दिनों से अब उसके साथ उसी की उम्र का एक नौजवान भी कभी कभी उसके साथ दिखने लगा था, शायद उसका दोस्त था। उन दोनों का जोड़ा बहुत अच्छा लगता था। दोनों हंसते मुस्कुराते हुए बातें करते हुए जाते दिखते थे। उन दोनों को देखकर मुझे अतीत की यादें सताने लगती थीं। मुझे भी अपने वे दिन याद आ जाते थे जब मैं अजय के साथ होती थी। आज याद आ रहा था वो दिन जब मैं अजय के साथ एक प्रदर्शनी देखकर वापस आ रही थी और रास्ते में एक बारात देखकर अजय बोल पड़ा था, भाई हम तो शादी करेंगे तो बड़ी सादगी से, कोई शोर शराबा नहीं, सिर्फ अपने कुछ लोग और तुम्हारे जैसी कोई लड़की जो अपनी सादगी से सबका मन मोह ले। उस समय अजय की आंखों में अपने लिए चाहत देखकर मैं भी उसकी ओर आकर्षित हो गई थी। धीरे धीरे हम एक दूसरे के इतने करीब आ गए थे कि जिंदगी का सफ़र साथ तय करना चाहते थे, पर हम दोनों ही इतनी हिम्मत नहीं कर पाए कि अपने घर वालों को समझा पाते या उनके विरोध की परवाह ना करते हुए कोई कदम उठा पाते। और फिर वही हुआ जैसा कि आमतौर पर मध्यम वर्गीय परिवारों में होता है। मेरी शादी तय कर दी गई और फिर मैं अपनी घर गृहस्थी में ऐसी फंसी कि पीछे मुड़कर देखने का कभी मौका ही नहीं मिला। लेकिन आज भी एक कसक है मन में अपना मनचाहा जीवन साथी ना पाने की। कुछ दिनों से लड़की फिर अकेली दिखाई दे रही थी। जिज्ञासा हो रही थी कि क्या हुआ, उसका साथी दोस्त वो लड़का कहाँ गया, अब वो इसके साथ क्यों नहीं दिखता। कई सारे सवाल दिमाग में घूमने लगे थे, पर पूछूं तो कैसे, आज तक तो उससे कभी बात की नहीं थी। फिर सोचती मुझे क्या करना, क्यों मैं उसके विषय में इतना सोचती हूँ, क्यों उसके बारे में जानना चाहती हूँ, लेकिन मन था कि मानता ही नहीं था, शायद उसमें मैं अपना अतीत देखती थी। एक दिन मुझसे रहा नहीं गया। जब वो शाम को दिखाई दी तो मैंने उसे इशारे से अपने पास बुलाया। पहले तो वो लड़की कुछ हिचकिचाई, फिर मेरी बालकनी के नीचे आकर खड़ी हो गई। मैंने बालकनी से ही उससे जीने की ओर इशारा करते हुए ऊपर आने को कहा। जैसे ही वो ऊपर आई मैंने उसका स्वागत करते हुए कहा, आओ बेटी, अगर ऐतराज ना हो तो कुछ देर मेरे पास बैठोगी, तुम तो मेरी बेटी जैसी हो। मेरा स्नेह देखकर वो सकुचाते हुए बैठ गई। शायद उसे लग रहा था आ तो गई हूँ पर अनजान घर में अनजान महिला से क्या बात करूँ। मैंने उसकी स्थिति को समझते हुए उससे प्रश्न किया, बेटी कहाँ रहती हो, रोज़ तुम्हें जाते हुए देखती हूँ, कई बार सोचा कि तुम्हें बुलाकर बात करूँ, फिर लगा पता नहीं तुम क्या सोचो, पर आज रहा नहीं गया इसीलिए तुम्हें बुला ही लिया। आंटी मेरा नाम

पड़ती है। मैं यहाँ से थोड़ी दूर पर ही रहती हूँ। मेरे ऑफिस से वापस लौटने का समय होता है ये। मैं भी रोज़ आपको देखती हूँ। कई बार जब आप बालकनी में नहीं होती तो सोचती थी कि काम में व्यस्त होंगी। अच्छा लगा आपसे मिलकर। आरती ये कहते हुए थोड़ी सहज हो गई थी और थोड़ी देर बाद तो हम लोग ऐसे बातें कर रहे थे जैसे बरसों से एक दूसरे को जानते हों। बातों में ही पता लगा था कि वो नौजवान उसके ऑफिस में ही काम करता है और चूंकि उसके घर के ही पास रहता है इसलिए वे लोग कभी कभी साथ ही ऑफिस से घर लौटते हैं। धीरे धीरे आरती मेरे साथ काफ़ी घुल मिल गई थी। अब वो कई बार मेरे पास आ जाती थी। अगर किसी कारण से नहीं आ पाती तो रास्ते से ही हाथ हिलाकर हमारे बीच मुस्कुराहटों का आदान प्रदान ज़रूर हो जाया करता था। हम लोगों के बीच का रिश्ता कब इतना गहरा हो गया पता ही नहीं चला। आरती अब तक मुझे बता चुकी थी कि वो नौजवान यानी आकाश और उसकी दोस्ती बहुत गहरी हो गई थी और फिर वही लोगों की कानाफूसी, माता पिता की हिदायतें और अब उनके साथ साथ आने पर पाबंदी लग चुकी थी। उस दिन तो ये सब बताते बताते आरती रोने लगी थी।

कि वो नौजवान उसके ऑफिस में ही काम करता है और चूंकि उसके घर के ही पास रहता है इसलिए वे लोग कभी कभी साथ ही ऑफिस से घर लौटते हैं। धीरे धीरे आरती मेरे साथ काफ़ी घुल मिल गई थी। अब वो कई बार मेरे पास आ जाती थी, अगर किसी कारण से नहीं आ पाती तो रास्ते से ही हाथ हिलाकर हमारे बीच मुस्कुराहटों का आदान प्रदान ज़रूर हो जाया करता था। हम लोगों के बीच का रिश्ता कब इतना गहरा हो गया पता ही नहीं चला। आरती अब तक मुझे बता चुकी थी कि वो नौजवान यानी आकाश और उसकी दोस्ती बहुत गहरी हो गई थी और फिर वही लोगों की कानाफूसी, माता पिता की हिदायतें और अब उनके साथ साथ आने पर पाबंदी लग चुकी थी। उस दिन तो ये सब बताते बताते आरती रोने लगी थी। मैंने उसे समझाया, देखो तुम एक कामकाजी लड़की हो, तुम्हें थोड़ी हिम्मत से काम लेना होगा। अमूमन हर मध्यम वर्गीय घर में यही होता है, पर अगर इस समय तुमने सही फैसला नहीं लिया तो ज़िंदगी भर इस बात पर पछताओगी। मैंने भी सोच लिया था कि जो गलती मैंने और अजय ने की थी इन दोनों को नहीं करने दूंगी, पूरी कोशिश करूंगी इन्हें एक करने की। कुछ दिनों से आरती दिखाई नहीं दी थी, मुझे चिंता हो रही थी और अपनी बेवकूफ़ी पर खीझ भी आ रही थी। मैंने उससे उसका फ़ोन नंबर तो लिया ही नहीं था और ना ही अपना नंबर उसको दिया था, कैसे पता चलेगा क्या हुआ है? कहीं बीमार तो नहीं है या कहीं बाहर चली गई है? इसी सब में आज करीब एक महीना हो चला था। अचानक एक दिन मैंने आकाश को अकेले जाते हुए देखा। इच्छा हुई कि उसे बुलाकर आरती के बारे में पूछूं, पर यह सोचकर रह गई कि पता नहीं क्या सोचेगा। इसके बाद भी कई दिन तक आरती दिखाई नहीं दी। अब मेरे सब्र का बांध टूट चुका था। एक दिन फिर मैंने आकाश को देखा। उसको देखते ही मैंने अपने किराएदार के छोटे से बेटे को, जो मेरे पास ही खेल रहा था, आकाश को दिखाकर कहा, जा बेटा उस लड़के को बुलाकर ला, कहना मेरी आंटी बुला रही है। थोड़ी देर में आकाश मेरे सामने खड़ा था। मैंने उससे कहा, बैठो बेटा। उसकी प्रश्नवाचक निगाहें मुझसे कई सवाल पूछ रही थीं। मैंने उसे ज़्यादा इंतज़ार ना कराते हुए कहना शुरू किया, बेटा आकाश तुम हैरान होगे कि मैंने तुम्हें क्यों बुलाया। दरअसल तुम मुझे नहीं जानते, पर मैं आरती के ज़रिए तुम्हें बहुत अच्छी तरह जानती हूँ। बहुत दिनों से आरती दिखाई नहीं दे रही है, मैं बहुत परेशान हूँ उसके लिए। क्या वो बीमार है? पहले तुम दोनों को साथ साथ आते देखती थी, क्या बात है? क्या तुम दोनों का कोई झगड़ा हुआ है? इतने सारे सवाल सुनकर और अपने नाम से किए गए संबोधन से आकाश हैरान था। आंटी आप मेरे बारे में सब कुछ जानती हैं और आरती, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है। मैंने कहा, बेटा आरती और मेरा जो रिश्ता है वो शायद तुम नहीं समझोगे, पर बहुत दिनों से आरती को ना देखकर मैं चिंतित हूँ। ऐसा लग रहा है जैसे वो किसी बड़ी परेशानी में है और तुम तो उसके दोस्त हो, तुम्हें तो सब कुछ पता ही होगा, इसीलिए मुझसे रहा नहीं गया और मैंने तुमसे बात करना उचित समझा। आरती यहीं से आती जाती है, करीब करीब रोज़ ही मेरी उससे मुलाकात हो जाती थी, इसलिए हम लोगों ने कभी अपने फ़ोन नंबर आदान प्रदान करने की ज़रूरत नहीं समझी, इसीलिए मैं उससे संपर्क नहीं कर पा रही हूँ। आज तुम देखे तो लगा तुम तो सब कुछ जानते ही होगे। मेरी बातें सुनकर आकाश के चेहरे के भावों से लग रहा था कि उसे सब कुछ समझ में आ रहा है और मेरी बातों से उसे मेरे और आरती के संबंध का अंदाज़ा भी हो रहा था। धीरे से बोला, आंटी आरती से तो मैं भी बहुत दिनों से नहीं मिला हूँ। अब मैंने संजीदगी से आकाश से कहा, बेटा ज़िंदगी में कई बार फैसला लेने में इतनी देर हो जाती है कि उसका परिणाम हमें ज़िंदगी भर भुगतना पड़ता है और समय पर सही फैसला ना लेने की गलती का एहसास हमें सारी ज़िंदगी सालता रहता है। मैं नहीं जानती तुम दोनों के बीच क्या परेशानी है, पर अपने तजुर्बे से बस इतना ज़रूर कहूँगी कि अगर वाकई तुम दोनों एक दूसरे को चाहते हो और रिश्ते में गंभीर हो तो थोड़ी हिम्मत तो करनी ही होगी, वरना सारी ज़िंदगी इस दर्द, इस कसक को सहने को तैयार रहो। आकाश आश्चर्यचकित नज़रों से मेरी ओर देख रहा था। अब उसे महसूस हुआ कि मुझे सब कुछ मालूम है। बोला, आंटी बहुत बहुत शुक्रिया। मैं बहुत असमंजस में था कि क्या करूं। सच बात तो यह है कि आरती के घर वाले उसका संबंध कहीं और करना चाहते हैं, पर आरती उसका विरोध कर रही है, मेरा इंतज़ार कर रही है वो, और मैं बस इतना कहकर आकाश चला गया। उसके जाने के अंदाज से लग रहा था कि वो निर्णय ले चुका है। कुछ दिनों बाद मैंने आरती और आकाश को साथ देखा। वे दोनों मेरी ओर ही आ रहे थे। पास आकर दोनों ने मेरे पैर छुए। दोनों के चेहरे खुशी से दमक रहे थे। देखकर लग रहा था दोनों एक हो चुके हैं।
उनकी कृतज्ञता भरी नज़रें बहुत कुछ

0: कह रही थीं। शब्दों की ज़रूरत ही कहाँ थी, मेरी आँखें भी छलछला आई थीं। दोनों को इस तरह एक साथ देखकर बेहद सुकून मिल रहा था।
1: सखियों, अभी आप सुन रही थीं ये कहानी, वो सांवली लड़की। कहानीकार थीं नीरजा वर्मा। सखियों, बकरीद का त्यौहार हमारे भारत में ही नहीं बल्कि संपूर्ण विश्व में हर्षोल्लास के साथ मनाया जाता है। बकरीद, जिसे ईद उल अजहा या कुर्बानी ईद भी कहते हैं, इस्लाम धर्म का ये एक प्रमुख त्यौहार है। ये रमजान के पवित्र महीने के लगभग 70 दिन बाद इस्लामी कैलेंडर के जिला हिज्जा महीने की 10 तारीख को मनाया जाता है। सखियों, बकरीद पर्व का सामाजिक संदेश भी बहुत व्यापक है, अच्छा है। यह पर्व हमें सिखाता है कि अपनी इच्छाओं और प्रिय वस्तुओं का त्याग करके ही हम इंसानियत की सच्ची सेवा कर सकते हैं। अमीर गरीब सब एक साथ नमाज पढ़ते हैं। कुर्बानी का एक बड़ा हिस्सा गरीबों में बांटा जाता है ताकि वे भी ईद की खुशियाँ मना सकें। बाजारों में रौनक बढ़ जाती है। कई गैर मुस्लिम दोस्त भी अपने मुस्लिम साथियों के घर सेवैयां और बिरयानी खाने जाते हैं। बकरीद सिर्फ जंतु की कुर्बानी का नाम नहीं है सखियों, असल कुर्बानी है अपने लालच, घमंड, झूठ और बुराई की कुर्बानी देना। त्याग, मोहब्बत और भाईचारे का यही पैगाम बकरीद को खास बनाता है।

0: सखियों, गर्मियों के तपते मौसम में हमें अपनी हरी भरी बगिया सबसे अधिक सुकून देती है। अब ये प्यारी सी बगिया आपकी बालकनी, गैलरी, छत, बरामदा कहीं भी सजी हो सकती है। आप क्रोटन्स पसंद करते हैं या रंग बिरंगे फूलों वाले पौधे, सब कुछ आपकी पसंद पर निर्भर करता है। बगिया के पौधे बस आपका दुलार चाहते हैं और बदले में अपनी ताजगी, खुशबू और प्यार बिखेरते हैं। गर्मी आते ही धूप की तेजी से पौधे मुरझाने लगते हैं, लेकिन थोड़े से प्रयास से लू के मौसम में भी ठंडी और हरी दिख सकती है ये बगिया। सखियों, गर्मियों में पौधों को पानी देने का समय सुबह 6 बजे से 8 बजे और शाम 6 बजे से 7 बजे तक का सही माना जाता है। और हाँ, पानी जड़ में ही दें, सुबह के समय पत्तों पर नहीं, क्योंकि पत्तों पर पानी धूप में लेंस का काम करता है, जिससे कि किरणें पत्तियों को झुलसा भी सकती हैं। पौधों की जड़ों के आसपास सूखी पत्तियां, नारियल के छिलके, लकड़ी का बुरादा या घास बिछा दें। पेड़ों के ऊपर ग्रीन नेट लगाएं। छोटे पौधों को बड़े पौधों की छांव में रखें। गर्मी में सदाबहार, गेंदा, बोगेनविलिया, कनेर, स्नेक प्लांट, एरिका पाम, एलोवेरा, मनी प्लांट जैसे पौधों को लगाना चाहिए। ये लू की गर्मी में भी हरे भरे रहते हैं। सखियों, पौधे भी इंसानों जैसे होते हैं, उन्हें भी गर्मी और सर्दी का एहसास होता है, इन्हें भी लू लगती है, प्यास लगती है। अगर पत्ते मुरझाते हुए, कुम्हलाते हुए दिखें तो समझ जाएं कि इन्हें पानी का अमृत और छांव की दरकार है। पंछियों के लिए सकोरे में दाना और पानी रखना भी जरूरी है। इनका घर तो हमारी ये बगिया ही है ना। हमारी बगिया हमसे बहुत अधिक कुछ भी नहीं चाहती, थोड़ी सी देखभाल, प्यार और तेज धूप से बचाओ। घर की सबसे प्यारी जीवंत जगह आपको बार बार अपने पहलू में बुलाएगी। अब महिला सभा कार्यक्रम का समय समाप्त हो रहा है, तो अपनी सखी सुनीता पाठक को कार्यक्रम समाप्त करने की अनुमति दीजिए। नमस्कार।
1: अभी आप सुन रहे थे महिला कार्यक्रम, प्रस्तुति आकाशवाणी ग्वालियर केंद्र की थी।

ये आकाशवाणी मध्य प्रदेश है, प्रस्तुत है लोक संगीत का कार्यक्रम। कलाकार है विजय लता पराशर, प्रस्तुति आकाशवाणी ग्वालियर केंद्र की है। इनके गाए कुछ लोकगीत आज आप सुनेंगे। आरंभ में ये दादरा

0: इस देवी गीत के साथ ही लोक संगीत का ये कार्यक्रम समाप्त होता है। आज आप सुन रहे थे विजयलता पाराशर के गाए कुछ लोकगीत, प्रस्तुति आकाशवाणी ग्वालियर केंद्र की थी। ये आकाशवाणी मध्य प्रदेश का प्रसारण है।
1: एक जमाने से कहानी है सुना रही आकाशवाणी, फिर आया एंटरटेनमेंट का रेवोल्यूशन, जब कोने कोने पहुंचा दूरदर्शन। कहानी नहीं बदली, स्टाइल गया है बदल। जो कहानियां हम सुनते आए, देखते आए, अब वही वैसी ही कहानी सुनाएगा डिजिटल।
2: डाउनलोड वेव्स ओटीटी ऐप नाउ एंड वॉच फॉर फ्री।
3: सुनिए आकाशवाणी भोपाल पर स्वराज संस्थान संचालनालय का प्रायोजित कार्यक्रम वतन का राग, हर गुरुवार सुबह 8:30 पर।
0: ये आकाशवाणी मध्य प्रदेश है, प्रस्तुत है सुगम संगीत के कार्यक्रम में वैशाली मोघे के गाए कुछ भजन, प्रस्तुति आकाशवाणी ग्वालियर केंद्र की है।

0: रहे थे वैशाली मोघे के गाए कुछ भजन। प्रस्तुति आकाशवाणी ग्वालियर केंद्र की थी। ये आकाशवाणी मध्य प्रदेश है। अब समय है एक अंतराल का।
1: भोर की चौखट पर भक्ति की धारा
2: ऑफिस जाने की जल्दी मगर देश दुनिया की खबर भी जरूरी।
3: ये आकाशवाणी है। अब आप समाचार सुनिए।
1: ऑफिस या घर से निकलते ही उफ ये ट्रैफिक।
2: आकाशवाणी है ना,
4: बातों ही बातों में हर सुबह 10 से 11 बना लो पूरी दुनिया को अपना दोस्त।
2: ऑफिस में थोड़ा रिलैक्सिंग म्यूजिकल ब्रेक,
1: शाम सुहानी हो,
2: आकाशवाणी के साथ जुड़िए ना। घर पहुंचते ही थकान, कैसे हो मनोरंजन,
1: आकाशवाणी है ना। चैन की नींद से पहले कुछ भूले बिसरे पल, हर पल
2: सफर में
1: आपके साथ
2: आकाशवाणी।
5: मैं विनय उपाध्याय। आकाशवाणी की यात्रा के 9 दशक पूरे हो रहे हैं। ये सूचना निश्चित रूप से हम जैसे लोगों के लिए बहुत ही खुशी की सूचना है। हम भी आकाशवाणी की इस यात्रा में एक आवाज के रूप में हम सफर रहे हैं। कहते हैं कि नदियों का गोमुख बहुत छोटा होता है। एक छोटी सी झील के रूप में कोई नदी निकलती है अपने अमृत कुंड से और अपनी यात्रा में अनेक कूल किनारों को तय करते हुए एक समंदर में जाकर मिल जाती है। आकाशवाणी के साथ भी ऐसा ही है। दरअसल आवाजों का एक भरा पूरा घर ही आकाशवाणी है। और कितनी सारी आवाजें, वो आवाजें जो भरोसा बनकर आकाशवाणी के स्टूडियो से श्रोताओं तक पहुंचती रही है। श्रोता और आकाशवाणी के बीच में दरअसल एक विश्वास तैर कर इन 90 वर्षों में जाता रहा है। आकाशवाणी के इस अवधि को पूरा करने के अवसर पर मैं अपनी आंतरिक शुभकामनाएं व्यक्त करता हूं और उम्मीद करता हूं कि जिस निहित उद्देश्य को लेकर सूचना, शिक्षा और मनोरंजन, इन तीन पदों को साथ में लेकर आकाशवाणी ने जो अपनी यात्रा शुरू की थी वो नए उत्कर्ष पर पहुंचे। सभी आकाशवाणी से जुड़े साथियों और श्रोताओं को एक बार फिर हार्दिक बधाई, हार्दिक शुभकामनाएं।
4: सुनिए NCERT का प्रायोजित कार्यक्रम उमंग, सोमवार से शुक्रवार शाम 6 बजे आकाशवाणी भोपाल पर।
0: ये आकाशवाणी मध्य प्रदेश है। लीजिए सुनिए फिल्म संगीत दिल धड़कने दो। इस फिल्म का ये गीत है। यशिता शर्मा, मनीष कुमार टीपू और साथियों ने इसे गाया है। जावेद अख्तर ने इसे लिखा है। शंकर हसन लॉय ने धुन बनाई है।

0: कुमार सानू के गाए फिल्म दिल का क्या कसूर के इस गीत के साथ ही फिल्म संगीत समाप्त हुआ। ये आकाशवाणी मध्य प्रदेश से प्रादेशिक समाचार होंगे।
1: आकाशवाणी मध्य प्रदेश से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार।

0: नमस्कार, समाचारों के साथ मैं अभिषेक कटियार। देश भर में बढ़ती गर्मी के बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लोगों से सावधानी बरतने की अपील की है। उन्होंने सोशल मीडिया पर खुद को हाइड्रेटेड रखने, दोपहर की तेज धूप में बाहर निकलने से बचने और घर से निकलते वक्त पानी साथ रखने की अपील की है। प्रधानमंत्री ने यह भी कहा कि जो प्यासा हो उसे पानी पिलाएं और जानवरों व पक्षियों के लिए भी बाहर पानी रखें। उन्होंने सभी से आग्रह किया कि परिवार और प्रियजनों का हालचाल पूछते रहें और इन मुश्किल दिनों में संवेदनशीलता के साथ एक दूसरे का ख्याल रखें। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज शाम गंगटोक में सिक्किम विश्वविद्यालय के 7वें दीक्षांत समारोह में शामिल होंगी। इस समारोह में 33 विभागों के करीब 14,000 छात्रों को उपाधि दी जाएगी। 285 मेधावी छात्रों को स्वर्ण और रजत पदक से नवाजा जाएगा, जिनमें 199 छात्राएं शामिल हैं। राज्यपाल ओम प्रकाश माथुर और मुख्यमंत्री प्रेम सिंह तमांग भी इस अवसर पर मौजूद रहेंगे। इससे पहले खराब मौसम के चलते राष्ट्रपति का नाथुला दौरा रद्द करना पड़ा था। खजुराहो के पश्चिमी मंदिर परिसर में आज अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस की तैयारियों के तहत योग कार्यक्रम का आयोजन किया गया। केंद्रीय आयुष राज्य मंत्री प्रताप राव जाधव ने 100 दिवसीय काउंटडाउन सीरीज के 25वें कार्यक्रम का शुभारंभ किया। इसमें करीब 2,000 लोगों ने हिस्सा लिया। इस अवसर पर मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने वर्चुअली संबोधित करते हुए कहा कि योग और खजुराहो दोनों ही हमारी महान भारतीय संस्कृति के अभिन्न अंग हैं।
1: योग

0: आज केवल व्यायाम नहीं बल्कि वन अर्थ वन हेल्थ की भावना को साकार करने वाला समग्र जीवन दर्शन बन चुका है। मध्यप्रदेश सरकार घर घर योग हर व्यक्ति निरोग इस संकल्प के साथ योग और आयुष को जन जन तक पहुंचाने के लिए निरंतर कार्य कर रहे हैं। यह अत्यंत प्रसन्नता का विषय है। काउंटडाउन इवेंट के माध्यम से देश भर में लाखों लोग योग से जुड़ रहे हैं और युवा पीढ़ी भी उत्साह से इसको अपना रही है।
1: इस बार 21 जून का मुख्य योग कार्यक्रम कोलकाता में होगा, जिसकी थीम स्वस्थ वृद्धावस्था के लिए योग रखी गई है। भोपाल के भारत भवन में आज सदा नीरा समागम का शुभारंभ हुआ। जल संरक्षण, पर्यावरण और भारतीय संस्कृति पर केंद्रित यह 7 दिवसीय कार्यक्रम 2 जून तक चलेगा। इसमें इसरो और काशी हिंदू विश्वविद्यालय जैसी संस्थाओं के विशेषज्ञ विमर्श करेंगे। शाम को नृत्य नाटिका, लोक गायन और नौसेना बैंड की सिम्फनी जैसे सांस्कृतिक कार्यक्रम भी आयोजित किए जाएंगे। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने आज माता रमाबाई अंबेडकर की पुण्यतिथि पर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की। उन्होंने कहा कि माता रमाबाई ने बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के संघर्ष में कंधे से कंधा मिलाकर वंचितों के उत्थान और शिक्षा के प्रसार में अहम भूमिका निभाई। नीट यूजी 2026 पेपर

नृत्य नाटिका, लोक गायन और नौसेना बैंड की सिम्फनी जैसे सांस्कृतिक कार्यक्रम भी आयोजित किए जाएंगे। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने आज माता रमाबाई अंबेडकर की पुण्यतिथि पर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की। उन्होंने कहा कि माता रमाबाई ने बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के संघर्ष में कंधे से कंधा मिलाकर वंचितों के उत्थान और शिक्षा के प्रसार में अहम भूमिका निभाई। नीट यूजी 2026 पेपर लीक मामले में सीबीआई ने दो और आरोपियों को गिरफ्तार किया है। लातूर के डॉक्टर मनोज शिरूरे पर आरोप है कि उन्होंने तीन छात्रों को रसायन विज्ञान के लीक प्रश्न दिलाने में अहम भूमिका निभाई थी। वहीं दूसरे आरोपी पुणे के कोचिंग फैकल्टी तेजस शाह को भौतिक विज्ञान के लीक प्रश्न मिले थे। इस मामले में अब तक 13 लोगों की गिरफ्तारी हो चुकी है और 49 जगहों पर छापेमारी की जा चुकी है। अब बात करते हैं मौसम की। प्रदेश में इन दिनों गर्मी का कहर जारी है। कल 16 शहरों में पारा 44 डिग्री के पार चला गया। खजुराहो में तो पारा 46.4 डिग्री तक पहुंच गया, जो प्रदेश में सबसे ज्यादा रहा। आज भी निवाड़ी, टीकमगढ़, छतरपुर समेत कई जिलों में मौसम विभाग ने रेड अलर्ट जारी किया है। राहत की बात यह है कि 29 मई से आंधी और बारिश का दौर शुरू हो सकता है और जून के दूसरे हफ्ते तक मानसून भी दस्तक दे सकता है। अब कुछ समाचार संक्षेप में। छिंदवाड़ा जिले में ग्रीष्मकालीन सर्वे में पूर्व और पश्चिम वनमंडल में कुल 148 गिद्ध दर्ज किए गए हैं। प्रदेश की पुलिस में कंप्यूटर संवर्ग के 89 पदों पर भर्ती के लिए सफल उम्मीदवारों की शारीरिक दक्षता परीक्षा 7 से 9 जून तक भोपाल के लाल परेड ग्राउंड और जबलपुर के रांझी स्थित परेड ग्राउंड पर होगी। पन्ना में मुख्यमंत्री तीर्थ दर्शन योजना के तहत 27 मई से 2 जून तक जिले के 191 तीर्थयात्री श्री द्वारका सोमनाथ जी की यात्रा करेंगे। और आगरमालवा जिला चिकित्सालय में आयोजित बैठक में आगामी सिंहस्थ के दौरान जिला चिकित्सालय में 300 अतिरिक्त बेड की मांग शासन को भेजे जाने पर चर्चा की गई। इस बुलेटिन पे इतना ही। अगला बुलेटिन सुनिए शाम 7:10 पर। नमस्कार।

0: ये आकाशवाणी मध्य प्रदेश है। दोपहर के 2:15 होने वाले हैं। अब दोपहर समाचार दिल्ली केंद्र से होंगे।
1: नमस्कार, आकाशवाणी से दोपहर समाचार के साथ मैं कनकलता। सर्वोच्च न्यायालय ने मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण प्रक्रिया के चुनाव आयोग के फैसले को बरकरार रखा। न्यायालय ने कहा, यह जनप्रतिनिधित्व अधिनियम 1950 के अनुरूप है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का बढ़ते तापमान के मद्देनजर नागरिकों से सावधानी बरतने का आग्रह। मौसम विभाग ने हरियाणा, मध्य प्रदेश, पंजाब, राजस्थान, उत्तर प्रदेश और महाराष्ट्र के विदर्भ में भीषण लू की संभावना व्यक्त की। भारत और कनाडा ने द्विपक्षीय व्यापार को 2030 तक 50 अरब अमरीकी डॉलर तक बढ़ाने के साझा लक्ष्य की पुष्टि की। सीबीआई ने नीट यूजी 2026 परीक्षा के प्रश्न पत्र लीक मामले में 2 और आरोपियों को गिरफ्तार किया। अमरीकी सेनेटर लिंडसे ग्राहम ने अमरीका ईरान वार्ता में संभावित मध्यस्थ के रूप में पाकिस्तान की भूमिका की विश्वसनीयता पर सवाल उठाया। उन्होंने इसराइल के प्रति पाकिस्तान के लंबे समय से चले आ रहे विरोध का हवाला दिया। और आईपीएल क्रिकेट में आज शाम एलिमिनेटर मैच में सनराइजर्स हैदराबाद और राजस्थान रॉयल्स का मुकाबला होगा। अब समाचार विस्तार से। सर्वोच्च न्यायालय ने निर्वाचन आयोग द्वारा कराई गई मतदाता सूचियों के विशेष गहन पुनरीक्षण एसआईआर प्रक्रिया की वैधता को बरकरार रखा है। सर्वोच्च न्यायालय ने कहा कि एसआईआर प्रक्रिया स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनावों की संवैधानिक अनिवार्यताओं को आगे बढ़ाती है। न्यायालय ने फैसला सुनाया कि निर्वाचन आयोग लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1950 के अनुच्छेद 324 और उसके अधीन निर्मित नियम के तहत एसआईआर करवाने की शक्ति रखता है। एक रिपोर्ट।
2: मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत और न्यायमूर्ति जॉय माल्या बागची की एक पीठ ने उन रिट याचिकाओं पर फैसला सुनाया जिनमें पिछले साल जून महीने में चुनाव आयोग द्वारा बिहार में एसआईआर आयोजित करने के लिए जारी अधिसूचना को चुनौती दी गई थी। सर्वोच्च न्यायालय ने कहा कि एसआईआर प्रक्रिया का उद्देश्य स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव के लक्ष्य को हासिल करना है। मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत द्वारा सुनाए गए फैसले में कहा गया कि विवादित प्रक्रिया को केवल अमान्य नहीं कहा जा सकता है क्योंकि ये नियमित पुनरीक्षण के लिए निर्धारित सामान्य तौर तरीकों के अनुरूप नहीं है। इसलिए नहीं कहा जा सकता है कि निर्वाचन आयोग ने अपनी वैधानिक शक्तियों से अधिक कार्रवाई की है। न्यायालय ने इस तर्क को खारिज कर दिया।

0: कि चुनाव आयोग द्वारा अपनाई गई प्रक्रिया लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1950 और मतदाता पंजीकरण नियम 1960 के विपरीत थी। न्यायालय ने इस तर्क को भी खारिज कर दिया कि इस प्रक्रिया से मतदाता सूचियों में पहले से मौजूद व्यक्तियों की नागरिकता की अनुमानित मान्यता समाप्त हो जाती है। समाचार कक्ष से वैष्णवी।
1: भारतीय जनता पार्टी ने SIR को पूर्णतः संवैधानिक करार देने के सर्वोच्च न्यायालय के फैसले का स्वागत किया है। नई दिल्ली में संवाददाताओं को संबोधित करते हुए पार्टी प्रवक्ता सुधांशु त्रिवेदी ने इस फैसले को कांग्रेस समेत विपक्ष की संवैधानिक पराजय बताया। दिल्ली में मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण SIR की प्रक्रिया 20 जून से शुरू होगी। आज नई दिल्ली में संवाददाता सम्मेलन को संबोधित करते हुए दिल्ली के मुख्य चुनाव अधिकारी अशोक कुमार ने बताया कि मतदाता सूची का मसौदा 5 अगस्त को और अंतिम मतदाता सूची इस वर्ष 7 अक्टूबर को प्रकाशित की जाएगी। श्री कुमार ने बताया कि बूथ स्तर के अधिकारी BLO 30 जून से दिल्ली की मतदाता सूचियों के सत्यापन के लिए घर घर जाकर सर्वेक्षण करेंगे।
2: कमीशन की तरफ से दिल्ली में SIR टाइम शेड्यूल लॉन्च हो चुका है जो कि 20 जून से शुरू होगा और 7 अक्टूबर को हमारा फाइनल इलेक्टोरल रोल पब्लिश होगा। तो इसमें जो हाउस टू हाउस विजिट है BLOs की वो हमारी 30 जून से शुरू होगी और 29 जुलाई तक चलेगी। इस हाउस टू हाउस शेड्यूल में BLO हर इलेक्टर के यहाँ जाएंगे जो भी उनका एड्रेस इलेक्टोरल रोल में है और 2 फॉर्म लेके जाएंगे इनुमरेशन फॉर्म। एक फॉर्म में इलेक्टर ने अपनी डिटेल भरनी है और अपने पास रखना है, दूसरा फॉर्म भर के BLO को दे देना है और दोनों फॉर्म पे BLO काउंटर साइन करेंगे एक्नॉलेजमेंट के लिए।
1: दिल्ली के मुख्य चुनाव आयुक्त ने बताया कि मतदाताओं को भरे हुए जनगणना प्रपत्र ऑनलाइन जमा करने की सुविधा भी मिलेगी। श्री कुमार ने कहा कि सत्यापन प्रक्रिया के हर चरण में जांच पड़ताल की व्यवस्था है। अधिक ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
3: SIR का मुख्य उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि कोई भी पात्र नागरिक मतदाता सूची से न छूटे और कोई भी अपात्र व्यक्ति मतदाता सूची में शामिल न हो। मतदाताओं की भागीदारी को सुगम बनाने के लिए जागरूकता अभियान और विशेष शिविर आयोजित किए जाएंगे ताकि मतदाताओं को जनगणना प्रपत्र जमा करने में सहायता मिल सके। आम जनता की सुविधा के लिए दिल्ली में वर्ष 2002 में हुए अंतिम विशेष गहन पुनरीक्षण की मतदाता सूची आयोग की वेबसाइट पर अपलोड कर दी गई है। इस प्रक्रिया में 1 अक्टूबर तक 18 वर्ष या उससे अधिक आयु के सभी मतदाताओं को शामिल किया जाएगा। सत्यापन प्रक्रिया के हर चरण में जांच की व्यवस्था रहेगी और राजनीतिक दलों को बूथ स्तर के एजेंटों के माध्यम से इसमें शामिल किया जाएगा। दीपेंद्र कुमार, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
1: केंद्र सरकार ने आज सर्वोच्च न्यायालय को सूचित किया कि ट्रांसजेंडर के अधिकारों के संरक्षण संशोधन अधिनियम 2026 के खिलाफ उच्च न्यायालयों में उसकी कई याचिकाएं लंबित हैं। सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति सूर्यकांत की अध्यक्षता वाली पीठ के समक्ष इस मामले का उल्लेख करते हुए अनुरोध किया कि स्थानांतरित की जाने वाली याचिकाओं को शुक्रवार को सूचीबद्ध किया जाए। राजस्थान उच्च न्यायालय ने आसाराम बापू को आज आंशिक राहत देते हुए पॉक्सो अधिनियम के अंतर्गत सामूहिक दुष्कर्म, सामूहिक यौन उत्पीड़न और आपराधिक साजिश से संबंधित आरोपों से बरी कर दिया। हालांकि न्यायालय ने भारतीय दंड संहिता के अंतर्गत नाबालिग से दुष्कर्म मामले में उसकी सजा को बरकरार रखा है। इस मामले में आसाराम की आजीवन कारावास की सजा जारी रहेगी। उच्च न्यायालय ने आसाराम को आत्मसमर्पण करने का निर्देश दिया है। वो फिलहाल अस्थायी जमानत पर है जिसे सप्ताह की शुरुआत में 7 दिन के लिए बढ़ा दिया गया था। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन AIR ऐप पर भी उपलब्ध हैं। दोपहर समाचार में आपका फिर स्वागत है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश के अलग अलग हिस्सों में बढ़ते तापमान को देखते हुए लोगों को सावधानी बरतने की सलाह दी है। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री मोदी ने लोगों से कहा कि वे भरपूर पानी पिएं और घर से बाहर निकलते समय अपने साथ पानी जरूर रखें। उन्होंने सुझाव दिया कि जो भी प्यासा हो उसे एक गिलास पानी जरूर पिलाएं। प्रधानमंत्री ने सभी से ये भी कहा कि वे अपने परिवार और प्रियजनों के संपर्क में रहें और उनका हालचाल पूछते रहें। दोपहर की तेज धूप में बाहर निकलने से बचें और जितना हो सके आराम करें। उन्होंने सभी से आग्रह किया कि जानवरों और पक्षियों के लिए घरों, बालकनी, छतों, दुकानों या दफ्तरों के बाहर पानी से भरा एक छोटा बर्तन जरूर रखें। प्रधानमंत्री ने लोगों से इन मुश्किल दिनों में पूरी संवेदनशीलता और करुणा के साथ एक दूसरे का ख्याल रखने का अनुरोध किया।

0: मौसम विभाग ने हरियाणा, चंडीगढ़, मध्य प्रदेश, पंजाब, राजस्थान, उत्तर प्रदेश और महाराष्ट्र के विदर्भ में कुछ स्थानों और दिल्ली में भीषण लू की संभावना व्यक्त की है। पश्चिम बंगाल के तराई वाले क्षेत्र, कोंकण और गोवा, ओडिशा, सौराष्ट्र, कच्छ, तमिलनाडु, पुदुच्चेरी और कारिकाल में गर्म और उमस भरा मौसम रहने की संभावना है। राजस्थान में भीषण गर्मी के बीच आज राज्य के 5 जिलों में लू की चेतावनी जारी की गई है। एक रिपोर्ट।
1: झुलसाने वाली गर्मी से प्रदेश का ज्यादातर हिस्सा प्रभावित है। जयपुर, कोटा, जोधपुर, नागौर, बीकानेर और दौसा सहित कई शहरों में न्यूनतम तापमान 30 डिग्री सेल्सियस के ऊपर मापा गया। करीब 33 डिग्री सेल्सियस न्यूनतम तापमान के साथ कोटा की रात सबसे गर्म रही। भीषण गर्मी और लू को देखते हुए प्रशासन की ओर से सड़कों पर पानी का छिड़काव करने, आश्रय स्थल बनाने और पीने के पानी की व्यवस्था लगातार की जा रही है। चिकित्सा संस्थानों में भी लू और तापघात के मरीजों के लिए बेड आरक्षित करने के साथ आवश्यक दवाइयों की उपलब्धता सुनिश्चित की गई है। जितेंद्र द्विवेदी, आकाशवाणी समाचार, जयपुर।
0: राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज शाम गंगतोक में होने वाले सिक्किम विश्वविद्यालय के 7वें दीक्षांत समारोह में मुख्य अतिथि होंगे। सिक्किम के राज्यपाल ओम प्रकाश माथुर और मुख्यमंत्री प्रेम सिंह तमांग भी इस समारोह में शामिल होंगे। केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो सीबीआई ने नीट यूजी 2026 परीक्षा पेपर लीक मामले में 2 और आरोपियों को गिरफ्तार किया है। सीबीआई ने इस मामले में अब तक दिल्ली, जयपुर, गुरुग्राम, नासिक, पुणे, लातूर और अहिल्यानगर से कुल 13 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। नीट प्रश्न लीक मामले में लातूर के रहने वाले डॉक्टर मनोज शिरोडे को भी गिरफ्तार किया गया है। सीबीआई के अनुसार उन्होंने एक कोचिंग केंद्र के मालिक के बेटे सहित 3 छात्रों को आरोपी पीवी कुलकर्णी से रसायन विज्ञान के प्रश्न दिलाने में अहम भूमिका निभाई थी। गिरफ्तार किया गया दूसरा आरोपी तेजस हर्षद कुमार शाह है, जो पुणे स्थित एक कोचिंग सेंटर डॉक्टर अभंग प्रभु मेडिकल एकेडमी में फिजिक्स का फैकल्टी है। उसे नीट परीक्षा के लीक हुए भौतिक विज्ञान के प्रश्न के आरोपी मनीषा हवलदार से मिले थे। प्रवर्तन निदेशालय ईडी ने केरला में पूर्व मुख्यमंत्री पिनराई विजयन के आवास सहित कई स्थानों पर जांच शुरू कर दी है। ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
2: प्रवर्तन निदेशालय ईडी ने आज सुबह से तिरुवनंतपुरम में पूर्व मुख्यमंत्री पिनराई विजयन के आवास सहित कई स्थानों पर निरीक्षण शुरू कर दिया है। केरलम में 10 से अधिक जगहों पर तलाशी और निरीक्षण की कार्रवाई चल रही है। हालांकि ईडी की ओर से अब तक इन कार्रवाइयों के बारे में कोई आधिकारिक जानकारी साझा नहीं की गई है। इस बीच केरलम हाईकोर्ट ने कल प्रवर्तन मामला सूचना रिपोर्ट के खिलाफ दायर याचिका खारिज कर दी। यह याचिका केरलम के कोच्चि स्थित एक निजी कंपनी के अधिकारियों द्वारा दायर की गई थी। ईडी की जांच उस निजी कंपनी के परिसरों में भी जारी है। तिरुवनंतपुरम से स्मृति एम पुलरुथी की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से मीनाक्षी।
0: ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताज़ा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल @AIRNews हिंदी को फॉलो कर सकते हैं। ये आकाशवाणी है। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने कनाडा की अपनी यात्रा के दूसरे दिन टोरंटो में कनाडा के वरिष्ठ नेताओं और संस्थागत निवेशकों के साथ कई उच्च स्तरीय बैठकें की। वाणिज्य और उद्योग मंत्री ने कहा कि इस बैठक का उद्देश्य द्विपक्षीय सहयोग को प्रगाढ़ बनाना और कार्यान्वित क्षेत्रों में निवेश तथा तकनीकी साझेदारी को बढ़ावा देना है। इस यात्रा के दौरान श्री गोयल कनाडा के अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मंत्री मनिंदर सिद्धू से मुलाकात की। मंत्रालय ने बताया कि दोनों देशों ने द्विपक्षीय व्यापार को 2030 तक 50 अरब डॉलर तक बढ़ाने के लक्ष्य की पुष्टि की। प्रवासी भारतीय समुदाय को संबोधित करते हुए श्री गोयल ने भारत कनाडा व्यापार को मजबूत करने में कनाडा में रह रहे भारतीय प्रवासियों की महत्वपूर्ण भूमिका को रेखांकित किया।
3: भारत और कनाडा के बीच साझेदारी की सबसे बड़ी ताकत उनकी मजबूत लोकतांत्रिक नींव है। दोनों देश इस बात पर विश्वास करते हैं कि जब सशक्त संस्थाएं कानून के शासन को मजबूती से कायम रखती है, तब दुनिया के सामने यह एक उदाहरण बनता है कि अच्छे मित्र और भरोसेमंद साझेदार किस तरह साथ मिलकर काम करते हैं। दोनों देशों की सरकारों, संस्थाओं, व्यवसायों और आम लोगों के बीच जो आपसी विश्वास और सहयोग है, वही इस रिश्ते को और अधिक मजबूत बनाता है।
0: संयुक्त राष्ट्र में भारत के स्थायी प्रतिनिधि पर्वतनेनी हरीश ने संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद

0: में पाकिस्तान की कड़ी आलोचना की है। श्री हरीश ने कहा कि पाकिस्तान को यह स्वीकार करना होगा कि सीमा पार आतंकवाद को प्रायोजित करने के परिणाम उसे भुगतने होंगे।
1: पाकिस्तान ने भारत के खिलाफ युद्ध, बिना उकसावे की आक्रामक कार्रवाइयों और लगातार सीमा पार आतंकवाद को समर्थन देकर संप्रभुता, क्षेत्रीय अखंडता और शांतिपूर्ण सह अस्तित्व के सिद्धांतों का उल्लंघन किया है। हजार घाव देकर भारत को कमजोर करने की उसकी नीति आतंकवाद, धार्मिक कट्टरता और भारत विरोधी गतिविधियों को लगातार बढ़ावा देने की उसकी सोच को दर्शाती है।
2: Anti-India rhetoric has continued unabated since its creation.
0: पाकिस्तान का अब्राहम समझौते में शामिल होने से इनकार करने की रिपब्लिकन सेनेटर लिंडसे ग्राहम ने कड़ी आलोचना की है। रिपब्लिकन सेनेटर ग्राहम ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि ईरान से संबंधित किसी भी कूटनीति में पाकिस्तान की भूमिका अनुचित है। आईपीएल क्रिकेट में आज मोहाली के न्यू चंडीगढ़ में सनराइजर्स हैदराबाद और राजस्थान रॉयल्स के बीच एलिमिनेटर मैच खेला जाएगा। ये मैच शाम 7:30 बजे से होगा। विजेता टीम शुक्रवार को दूसरे क्वालिफायर में गुजरात टाइटंस से खेलेगी। फाइनल मैच 31 मई को अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में खेला जाएगा। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। सर्वोच्च न्यायालय ने मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण प्रक्रिया के निर्वाचन आयोग के फैसले को बरकरार रखा। न्यायालय ने कहा ये जनप्रतिनिधित्व अधिनियम 1950 के अनुरूप है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का बढ़ते तापमान के मद्देनजर नागरिकों से सावधानी बरतने का आग्रह। मौसम विभाग ने हरियाणा, मध्य प्रदेश, पंजाब, राजस्थान, उत्तर प्रदेश और महाराष्ट्र के विदर्भ में भीषण लू की संभावना व्यक्त की। भारत और कनाडा ने द्विपक्षीय व्यापार को 2030 तक 50 अरब अमेरिकी डॉलर तक बढ़ाने के साझा लक्ष्य की पुष्टि की। सीबीआई ने नीट यूजी 2026 परीक्षा के प्रश्न पत्र लीक मामले में दो और आरोपियों को गिरफ्तार किया। अमेरिकी सेनेटर लिंडसे ग्राहम ने अमेरिका ईरान वार्ता में संभावित मध्यस्थ के रूप में पाकिस्तान की भूमिका की विश्वसनीयता पर सवाल उठाया। इसके साथ ही दोपहर समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
3: ये आकाशवाणी मध्य प्रदेश है। प्रस्तुत है कार्यक्रम आपकी फरमाइश। श्रोताओं, आपके पत्रों द्वारा भेजी पसंद हम शामिल कर रहे हैं। पहला पत्र शामिल किया है कोटवा नारायणपुर बाबा पट्टी बलिया से ओम प्रकाश राय, श्रीमती उषा राय, अमित कुमार राय और हैप्पी राय की। दुबिया नेवदा गाजीपुर से प्रतीक राय, श्रीमती रोशनी राय, प्रांजल राय की। यादव मोहल्ला सनावद मध्य प्रदेश से दिलीप मालाकार, योगेश मालाकार, सुनीता मालाकार और मुस्कान की। सुंदरखेड़ राजमाता नगर बुलढाणा महाराष्ट्र से नरेंद्र नरवाड़े, ज्योति नरवाड़े, आकांक्षा नरवाड़े और आकाश कुमार की। सुनना चाहा है दिल है तुम्हारा फिल्म का टाइटल ट्रैक, अलका याग्निक और कुमार सानू और साथ उदित नारायण की आवाज़ है। समीर ने लिखा है, नदीम श्रवण ने स्वरबद्ध किया।

सलामी फिल्म के लिए कुमार सानू और अलका याग्निक ने इसे गाया है, समीर का लिखा, नदीम श्रवण ने स्वरबद्ध किया है। सुनना पसंद किया है देवरी भाटापारा से गन्नू लाल रजक, के आर साहू, अश्विनी वर्मा और गणेश मिस्त्री ने। नेपाल पैलेस सागर से तिलक राणा, मीना राणा, मोनिका नुपुर, ऋषिका और रॉबिन राणा ने। कनेरा मोहल्ला पटियाला से बत्ता परिवार के मुकेश बत्ता, नीलम बत्ता, नितिन, पलक, करण, गीतू, निहारिका और वंश बत्ता।

अगली पसंद शामिल कर रहे हैं छबड़ा राजस्थान से आसिफ अली सिद्दीकी, वाहिद अली सिद्दीकी और शमीम बानो की, घंटा घर चौक खंडवा से संजय पंचोलिया, प्रियंका पंचोलिया और संप्रीत पंचोलिया की, सरोज चौक अमरावती महाराष्ट्र से कमरुल्ला ठेकेदार, नसीम बेगम, आयशा खान, हदिया खान, अस्मा सालिया, शुएब खान, पोतरा मुजतबा खान, रऊफ भाई, शाहिद भाई, गाधीबाग अकोला से महेश कटनकर और वैशाली कटनकर, शिवाजी चौक राजिम छत्तीसगढ़ से अनिल कुमार, अंजुलता, आदित्य कुमार और कृष श्रीवास्तव, अमरपुर पेंड्रा छत्तीसगढ़ से दीपक कुमार, रोशन कुमार, बंसीलाल, रेखा देवी, श्वेता देवी, सुरुचि देवी, दिशा और लबी श्रीवास्तव, पटेल नगर मलोट पंजाब से डॉक्टर रमेश कुमार जाजोरिया, गीता रानी जाजोरिया, गगनदीप जाजोरिया और बेबी आरजू जाजोरिया। डर फिल्म का गीत लता मंगेशकर और ए हरिहरन ने इसे गाया है। गीतकार आनंद बशे, संगीतकार शिवहरी।

कार्यक्रम में अगला गीत सुनने की पसंद अपने भेजी है मनमोहन राजावत, राज मधु राजावत, राशि रक्षित, चितरंजन, कमलेश, उमेश, सरोज, आरती, रेखा, रितिका, रिचा, स्वीटी, सागर, रिया, रीत, ऋषभ राजावत और उनके परिवार के सदस्य महसवाड़ी मलकापुर महाराष्ट्र से शत्रुघ्न धाड़े, वाल्मीकि धाड़े, नीनाजी धाड़े, स्वप्निल धाड़े और अजय खिरोड़कर, गौरीनगर इंदौर से आनंद कुमार कामले, रेखा कामले, राखी, पारस तपस्या, करिश्मा कामले। सुनना पसंद किया है सलाम नमस्ते का टाइटल ट्रैक, कुणाल गांजावाला और वसुंधरा दास ने इसे गाया है। जयदीप साहनी का लिखा है, विशाल शेखर की धुन है।

सलाम नमस्ते फिल्म का यह गीत था, कुणाल गांजावाला और वसुंधरा दास ने इसे गाया था। हमारे नए श्रोताओं के लिए हम बता दें हमारा पता, कार्यक्रम आपकी फरमाइश द्वारा केंद्र निदेशक श्यामला हिल्स आकाशवाणी भोपाल, पिन कोड है 462002। पता एक बार फिर, कार्यक्रम आपकी फरमाइश द्वारा केंद्र निदेशक श्यामला हिल्स आकाशवाणी भोपाल, पिन कोड है 462002। ये आकाशवाणी मध्य प्रदेश है।

0: मीडियम वेव डीटीएच के ऑडियो चैनल न्यूज़ ऑन AIR ऐप और साथ ही वेव्स OTT ऐप पर ये आकाशवाणी मध्य प्रदेश का प्रसारण है। लीजिए पेश है इस घंटे की खास खबरें।
1: देश भर में बढ़ती गर्मी के बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लोगों से सावधानी बरतने की अपील की है। उन्होंने सोशल मीडिया पर खुद को हाइड्रेटेड रखने, दोपहर की तेज धूप में बाहर निकलने से बचने और घर से निकलते वक्त पानी साथ रखने की अपील की है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज शाम गंगटोक में सिक्किम विश्वविद्यालय के 7वें दीक्षांत समारोह में शामिल होंगी। इस समारोह में 33 विभागों के करीब 14,000 छात्रों को उपाधि दी जाएगी। 285 मेधावी छात्रों को स्वर्ण और रजत पदक से नवाजा जाएगा, जिसमें 199 छात्राएं शामिल हैं। खजुराहो के पश्चिमी मंदिर परिसर में आज अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस की तैयारियों के तहत योग कार्यक्रम का आयोजन किया गया। केंद्रीय आयुष राज्य मंत्री प्रताप राव जाधव ने 100 दिवसीय काउंटडाउन सीरीज के 25वें कार्यक्रम का शुभारंभ किया। भोपाल के भारत भवन में आज सदा नीरा समागम का शुभारंभ हुआ। जल संरक्षण, पर्यावरण और भारतीय संस्कृति पर केंद्रित यह 7 दिवसीय कार्यक्रम 2 जून तक चलेगा। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने आज माता रमाबाई अंबेडकर की पुण्यतिथि पर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की। उन्होंने कहा कि माता रमाबाई ने बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के संघर्ष में कंधे से कंधा मिलाकर वंचितों के उत्थान और शिक्षा के प्रसार में अहम भूमिका निभाई। नीट UG 2026 पेपर लीक मामले में CBI ने 2 और आरोपियों को गिरफ्तार किया है। लातूर के डॉक्टर मनोज शिरूरे पर आरोप है कि उन्होंने 3 छात्रों को रसायन विज्ञान के लीक प्रश्न दिलाने में अहम भूमिका निभाई थी। एक अन्य आरोपी को पुणे से गिरफ्तार किया गया है। और प्रदेश में इन दिनों गर्मी का कहर जारी है। कल 16 शहरों में पारा 44 डिग्री के पार चला गया। खजुराहो में 46.4 डिग्री तक सेल्सियस तक पारा दर्ज किया गया, जो प्रदेश में सबसे ज्यादा रहा। आप सुन रहे थे इस घंटे की खास खबरें।
0: ये आकाशवाणी मध्य प्रदेश है। ये आकाशवाणी का भोपाल केंद्र है। मीडियम वेव पर सभा समापन के पूर्व बता दें आपको सांध्यकालीन सभा के मुख्य आकर्षण। शाम 5 बजे युवाओं का कार्यक्रम युववाणी होगा। प्रस्तुति आकाशवाणी ग्वालियर केंद्र की होगी। NCERT का प्रायोजित कार्यक्रम सुनिएगा शाम 6 बजे। सुर्खियों में ये कार्यक्रम रात्रि 8 बजे प्रसारित करेंगे। चर्चा का विषय है रात 9:30 पर दिल्ली केंद्र से रिले करेंगे। रात 10 बजे नाटक सुनिएगा उपेक्षित, लेखक घनश्याम सिंह तोमर, प्रस्तुतकर्ता होंगे चित्रेंद्र स्वरूप राजन। शास्त्रीय संगीत के कार्यक्रम राग रजनी में पंडित विश्व मोहन भट्ट का गिटार पर बजाया रागेश्वरी राग आप सुनेंगे। ये थे आकाशवाणी मध्य प्रदेश से प्रसारित होने वाले कार्यक्रम। और आकाशवाणी भोपाल से शाम 7:21 पर आप सुनेंगे कार्यक्रम ग्राम सभा। आज का आकर्षण होगा फरमाइशी लोक संगीत का कार्यक्रम लोक रंग। ये थी जानकारी आकाशवाणी भोपाल और आकाशवाणी मध्य प्रदेश से संध्याकालीन सभा में प्रसारित होने वाले कार्यक्रमों की। मीडियम वेव 188.32 मीटर यानी 1593 किलोहर्ट्ज़, DTH के ऑडियो चैनल, न्यूज़ ऑन AIR ऐप और साथ ही वेव्स OTT ऐप पर ये आकाशवाणी का भोपाल केंद्र है। इस समय दोपहर के 3:02 होने वाले हैं। हमारी ये सभा यहीं संपन्न होती है। शाम 5 बजे अपने कार्यक्रमों के साथ मीडियम वेव पर हम पुनः उपस्थित होंगे। अब अनुमति दीजिए, इस बीच हमारा प्रसारण DTH पर जारी है। DTH के ऑडियो चैनल पर ये आकाशवाणी का भोपाल केंद्र है। प्रस्तुत है लोक संगीत का कार्यक्रम। आज आप सुनेंगे विजय लता पाराशर के गाए कुछ लोकगीत। आरंभ कर रहे हैं इस दादरा के साथ।

इस देवी गीत के साथ ही लोक संगीत का ये कार्यक्रम समाप्त होता है। आज आप सुन रहे थे विजय लता पाराशर के गाए कुछ लोकगीत। डीटीएच के ऑडियो चैनल पर ये आकाशवाणी का भोपाल केंद्र है। लीजिए प्रस्तुत है सुगम संगीत के कार्यक्रम में वैशाली मोघे के गाए कुछ भजन।

इस भजन के साथ ही सुगम संगीत का ये कार्यक्रम समाप्त होता है। आज आप सुन रहे थे वैशाली मोघे के गाए कुछ भजन। डीटीएच के ऑडियो चैनल पर ये आकाशवाणी का भोपाल केंद्र है। लीजिए सुनिए चित्रपट संगीत।

दिल से फिल्म का ये गीत सुनिए, गुलजार का लिखा है, AR रहमान ने धुन बनाई है, सपना अवस्थी और सुखविंदर सिंह ने गाया है।

सलाम है इश्क फिल्म की ये कव्वाली सुनिए। सोनू निगम, श्रेया घोषाल, कुणाल गांजावाला और साधना सरगम ने गाए हैं। शंकर महादेवन ने इसकी धुन बनाई है और समीर का लिखा गीत है। शंकर एहसान लॉय की धुन है।

जतिन ललित के संगीत निर्देशन में आनंद बख्शी का लिखा यह गीत था, उदित नारायण और अलका याग्निक ने गाया था। फिल्म थी दिल क्या करे। इसके साथ ही चितपट संगीत समाप्त हुआ। डीटीएच के ऑडियो चैनल पर यह आकाशवाणी का भोपाल केंद्र है।

0: लीजिए पेश है इस घंटे की खास खबरें।
1: मंत्रिमंडल ने आज सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अंतर्गत राशन परिवहन और प्रबंधन सहायता योजना सार्थक पीडीएस को जारी रखने की मंजूरी दे दी है। इसके लिए केंद्र सरकार की ओर से 25,530 करोड़ रुपए का आवंटन किया गया है। देश भर में बढ़ती गर्मी के बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लोगों से सावधानी बरतने की अपील की है। उन्होंने सोशल मीडिया पर कहा कि खुद को हाइड्रेटेड रखने, दोपहर की तेज धूप में बाहर निकलने से बचने और घर से निकलते वक्त पानी साथ रखना जरूरी है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज शाम गंगटोक में सिक्किम विश्वविद्यालय के 7वें दीक्षांत समारोह में शामिल होंगी। इस समारोह में 33 विभागों के करीब 14,000 छात्रों को उपाधियां दी जाएंगी। 285 मेधावी छात्रों को स्वर्ण पदक और रजत पदक से नवाजा जाएगा, जिसमें 199 छात्राएं शामिल हैं। खजुराहो के पश्चिमी मंदिर परिसर में आज अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस की तैयारियों के तहत योग कार्यक्रम का आयोजन किया गया। केंद्रीय आयुष राज्य मंत्री प्रताप राव जाधव ने 100 दिवसीय काउंटडाउन सीरीज के 25वें कार्यक्रम का शुभारंभ किया। भोपाल के भारत भवन में आज सदा नीरा समागम का शुभारंभ हुआ। जल संरक्षण, पर्यावरण और भारतीय संस्कृति पर केंद्रित यह 7 दिवसीय कार्यक्रम 2 जून तक चलेगा। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने आज माता रमाबाई अंबेडकर की पुण्यतिथि पर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की। उन्होंने कहा कि माता रमाबाई ने बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के संघर्ष में कंधे से कंधा मिलाकर वंचितों के उत्थान और शिक्षा के प्रसार में अहम भूमिका निभाई। और सिंगापुर ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट के पहले दौर में भारत के शीर्ष खिलाड़ी एचएस प्रणय ने इंडोनेशिया के जोनाथन क्रिस्टी को हराकर अगले दौर में प्रवेश किया है। आप सुन रहे थे इस घंटे की खास खबरें।
0: डीटीएच के ऑडियो चैनल पर ये आकाशवाणी का भोपाल केंद्र है। पेश है उर्दू प्रोग्राम कहकशां।

आदाब, उर्दू प्रोग्राम कहकशां में मैं शीरीन खान आप सबको दिल की गहराइयों से खुश आमदीद कहती हूँ। दोस्तों, कहकशां सिर्फ सितारों के मजमुए का नाम नहीं, ये तो उन जज्बों की ताबिंदगी है जो एक इंसान को जमीन की पस्तियों से उठाकर रूहानियत की बुलंदियों तक ले जाते हैं। दोस्तों, जिंदगी बजाते खुद एक सफर है, लेकिन कुछ सफर ऐसे होते हैं जिनकी मंजिल मिट्टी का कोई शहर नहीं बल्कि अल्लाह का कुर्ब होती है। आज का हमारा ये प्रोग्राम महज आवाज़ों का संगम नहीं बल्कि एक ऐसी रूहानी बज्म है जहां हम उस मुबारक सफ़र की कैफियत का जिक्र करेंगे जो सब्र की भट्टी से गुजरकर यकीन कामिल की रोशनी तक पहुंचता है। ये तस्किरा है उस तड़प का जो एक मोमिन को हरम की गलियों तक ले जाती है, जहां हर कदम पर सब्र का इम्तिहान है और हर सांस में यकीन की खुशबू जो रूह की गहराइयों से शुरू होकर अल्लाह की रजा के उफुक तक जाता है। ये सफर हज हो या इश्क इलाही की कोई और पगडंडी, इसके लिए हमें दो ही चिराग दरकार होते हैं, एक सब्र की ढाल और दूसरा यकीन का चिराग। सब्र जो हमें पुरखार रास्तों में टूटने नहीं देता और यकीन जो अंधेरी राहों में नवीद मंजिल बनकर चमकता है। अल्लामा इकबाल ने इसी रूहानी बेदारी और बुलंद परवाजी को क्या खूब पेराए इजहार दिया है, नहीं है तेरा नशेमन कसर सुल्तानी की गुम्बद पर, तू शाही है बसेरा कर पहाड़ों की चट्टानों में। सामीन, इस प्रोग्राम की पहली पेशकश गुलुकारा रजिया बानो की आवाज़ में, कलाम है ताबिश कानपुरी का, समाप्त कीजिए।

0: मुझे तो हंसेगी दुनिया, तुम हो दीवाने तो दीवाना कहेगी दुनिया।
1: दोस्तों अभी आप रजिया बानो की आवाज में कव्वाली समाअत फरमा रहे थे और कलाम था ताबिश कानपुरी का। हम बात कर रहे थे रूहानी सफर और सब्र के बारे में। रूहानी मसाफात का अवलीन जीना खुलूस नियत है और इस अज़्म को पाए तकमील तक पहुंचाने वाली कुव्वत सब्र है। रूहानियत का मफहूम तरके दुनिया नहीं बल्कि हुजूम दुनिया में रहते हुए खालिक हकीकी से लो लगाए रखना है। इस ताल्लुक की बुनियाद सब्र पर खड़ी है। जिंदगी में जब हालात हमारी मर्जी के खिलाफ होते हैं तो वही लम्हा हमारे सब्र का इम्तिहान होता है। सब्र दरअसल वो खामोश तवानाई है जो इंसान की शख्सियत को बिखेरने से बचाती है। ये हमें सिखाता है कि हर तारीख रात के बाद एक रोशन सुबह मुकद्दर है। जब हम दामने सब्र थामते हैं तो गोया हम खालिक कायनात की हिकमत पर इस यकीन का इजहार करते हैं कि तेरी रजा मेरी तमन्ना से फायक है। जब तक कल्ब में सब्र की कंदील रोशन न हो रास्ते की धूल मंजिल का गुबार बन जाती है। इस शेर में कैफियत सब्र को किस महारत से बयान किया है कि आशिकी सब्र तलब और तमन्ना बेताब दिल का क्या रंग करूं खूने जिगर होने तक। समय हमारे इस प्रोग्राम की अगली पेशकश के जानेब रुख करते हैं जहां हम सुनेंगे महमूद निजामी और साथी की आवाज़ में ये कव्वाली समाप्त कीजिए।

0: मुख्तलिफ रंग में
1: सारी दुनिया से है सिलसिला आपका
0: और मेरे ख्वाब।

दोस्तों, अभी आप महमूद निज़ामी और साथी की आवाज़ में कव्वाली समाअत फरमा रहे थे। हम बात कर रहे थे सब्र की। सब्र के कठिन रास्ते पर जब इंसान थकने लगता है तो उसे जिस सहारे

दोस्तों अभी आप मुनव्वर मासूम कव्वाल की आवाज़ में कव्वाली समाअत फरमा रहे थे और कलाम था हनीफ भोपाली का। दोस्तों किस कदर दिलकश है वो लम्हा जब सब्र और यकीन हम आगोश होकर इंसानी तकदीर बदल देते हैं। ये रूहानी सफर दरअसल अपनी ज़ात की बाजियाबी का नाम है। जब हम कायनात के रंगों में सनाए के रंग तलाश करने लगते हैं तो हमारी सोच बदल जाती है। हमें एहसास होता है कि दुनिया की हर शय फानी है, सिर्फ अल्लाह का इश्क और उसका कुर्ब ही दायमी है। जिंदगी के शोर में अपने अंदर की आवाज सुनना और इस पर यकीन रखना ही वो असल कामयाबी है जिसे पाने के लिए सूफिया इकराम ने अपनी उम्रें गुजार दी। जब दिल नूरे इलाही से मुनव्वर हो तो बेसाख्ता जबान पर ये शेर आ जाते हैं। निगाहे शौक को वो कैफो सुरूर मिल गया, मेरे सब्र को आज तेरा नूर मिल गया। समीन इस प्रोग्राम की आखिरी पेशकश गुलकार जानी बाबू की आवाज में और कलाम है पयाम सईदी का, समाप्त कीजिए।

0: अभी आप सुन रहे थे उर्दू प्रोग्राम कहकशा, DTH के ऑडियो चैनल पर। ये आकाशवाणी का भोपाल केंद्र है।
1: मन्नू भाई मोटर चली पाम पाम पाम, मन्नू भाई मोटर चली पाम पाम पाम।
2: जब भी हम सड़क पर निकालें वाहन तो रखें इन बातों का ध्यान।
3: स्कूटर मोटरसाइकिल जैसे दो पहिया वाहन चलाते समय हेलमेट अवश्य पहनें
2: और चार पहिया वाले वाहन चलाते समय सीट बेल्ट जरूर बांधें।

0: चौराहे पर हमेशा वाहन को जेब्रा क्रॉसिंग से पहले रोकें और ट्रैफिक सिग्नल का पालन अवश्य करें।
1: वाहन चलाते समय मोबाइल पर बात न करें।
0: वाहन हमेशा निर्धारित गति सीमा के अंदर ही चलाएं।
1: नशे की हालत में कभी वाहन न चलाएं।
0: 18 वर्ष से कम उम्र के बच्चों और किशोरों को वाहन चलाने के लिए प्रोत्साहित न करें।
1: दो पहिया वाहन में 2 से अधिक व्यक्ति न बैठें।
0: 4 पहिया वाहन में भी सीट की संख्या के अनुरूप ही लोग बैठें।
1: वाहन के इंडिकेटर, हेडलाइट, ब्रेक, पहिए इत्यादि को हमेशा दुरुस्त हालत में रखें।
0: वाहन के सभी कागजात अपने साथ जरूर रखें।
1: थोड़ी सी सावधानी
0: दूर करे सभी परेशानी।
2: बाजू बाबू समझो इशारे, हॉर्न पुकारे, पम पम पम, यहाँ चलती को गाड़ी कहते हैं प्यारे, पम पम पम।
3: डीटीएच के ऑडियो चैनल पर ये आकाशवाणी का भोपाल केंद्र है। लीजिए प्रस्तुत है कार्यक्रम संग्रहालय से के अंतर्गत धारावाहिक सिसकियां का पहला भाग।
4: वैभवी पिक्चर्स प्रस्तुत करते हैं रेडियो धारावाहिक सिसकियां। ये धारावाहिक खेमलता वकलू के उपन्यास खिला फूल मुरझाया पर आधारित है।

0: अजी सुनते हो,
1: अरे क्या है?
0: ये ट्रंक तो जरा खिसकवा दो। रात को सोने के लिए एक तरफ कर दिया था।
1: अरे अरे ये क्या सुबह सुबह ट्रंक लेकर बैठ गई? अरे अभी अभी तो बहू घर में आई है, सुबह सुबह का वक्त है, सब सो रहे हैं। अभी इसे ट्रंक को कुछ मत कहो।
0: अजी बहू आई है घर में तो कोई गैर नहीं है, तुम्हारी सगी भांजी है। और वैसे भी तो वो यहाँ एक महीना रह कर गई है। इस घर के मिजाज के बारे में बाखूबी जानती है।
1: अरे अरे मुश्ताक की अम्मा, मैं कह रहा हूँ अभी अभी वो लोग सो रहे हैं, सुबह ही सुबह उनकी आँख खुल जाएगी।
0: जी कहाँ की बात कर रहे हो,
1: अब
0: हमारी बहू तो सुबह ही उठ गई।
1: हा?
0: वो देखो गाय को चारा डाल रही है।
1: अरे अरे फजी भाई, ये तो गलत बात है, अरे उसे मना करो। अरे अभी अभी रात ही तो ब्याह कर लाए हैं,

0: देखेंगे तो क्या कहेंगे कि बहू के आने में देर नहीं हुई और आते ही बैल की तरह खेत में जोत दिया।
1: अजी, मैंने कुछ नहीं कहा उसे, वो खुद उठी है। और शादी से पहले भी जब वो आया करती थी तो घर में सबसे पहले वो ही तो उठती थी। अरे, अपने घर में भी तो ऐसे ही उठती थी सारे। उसकी माँ फाता कौन सा काम करती थी, बस सारा बोझ इसी बेचारी पर था।
0: हाँ, बात तो तुम ठीक कहती हो। सारे की बचपन से ही ऐसे ही काम करने की आदत है। अपने छोटे भाइयों को भी तो यही संभालती थी।
1: सही कहते हो, तुम्हारी बहन को तो फुर्सत ही नहीं थी घर की तरफ देखने की। वो तो पता नहीं किन किन कामों में अपनी अकल लड़ाती रहती थी।
0: अरे, उस पाता के बारे में तो बस बस क्या कहूँ। अरे, गांव का शायद ही कोई ऐसा घर होगा जिससे उसका झगड़ा ना हुआ हो।
1: हाँ।
0: बाप रे, फाता की क्या लंबी जबान है। अरे अरे, वो तो मेरी बहन है, इसलिए डर से ज्यादा नहीं बोलती, वरना वरना नाकों चने चबवा दे। अरे, तुम तो उसके आगे बहुत सीधी हो। ये फाता बचपन से ही ऐसी थी, घर में सबसे ज्यादा बोलने वाली और लड़ने वाली ये फाता ही थी।
1: लाहौल बिलाकुहत, क्या कर रहे हो जी, आहिस्ता बोलो। अब उसकी बेटी हमारी बहू है, ये बातें अब हमें जेबा नहीं देती।
0: हाँ जी, चुप रहो, अपनी बहन के बारे में ही तो कह रहा हूँ। सारे तो बच्ची है, अरे अपने मामा की बात का क्या, बुरा थोड़ी मानेगी वो।
1: खैर, छोड़ो भी ये सब बातें, वो अब हमारी समधन है, उनके बारे में हमें ऐसा नहीं सोचना चाहिए। वैसे कुछ कहो, दोनों की जोड़ी माशाल्लाह अच्छी रही, हमारे मुश्ताक के साथ खूब जचेगी सारे।
0: अरे, जचेगी क्यों नहीं, जैसे हमारा मुश्ताक खूबसूरत है वैसे ही सारे में भी देखो कितनी कोशिश है। अरे, कोई देखे तो देखता ही रह जाए।
1: हाँ जी।
0: अरे, खुदा ने बड़े सोच समझ के जोड़ी बनाई है।
1: हाँ, चलो निकाह तो हो गया, अल्लाह ताला अब कर्जा चुकवा दे। निकाह के लिए हम लोगों ने बहुत कर्जा ले लिया, अभी हमारे दो बेटे और हैं, उनके बारे में भी तो सोचना है।
0: अरे, तुम फिक्र क्यों करती हो बेगम, तुम देखना देखना, तुम अल्लाह ताला सब कर्जा चुकवा देगा। अरे, मुझे मुश्ताक पर पूरा भरोसा है। उसका मालिक कह रहा था मुश्ताक जैसा दर्जी पूरे कश्मीर में ढूंढने से नहीं मिलेगा। और कहता है जितनी मेहनत से काम यहाँ मुश्ताक करता है उतना और कोई भी नहीं करता। अरे, देखना देखना, एक दिन तुम बहुत नाम पैदा करेगा हमारा मुश्ताक। और पैसे का क्या है, अरे जब अच्छा कारीगर है तो पैसा कमाना कौन बड़ी बात है। हाँ, चुक जाएगा सब पैसा धीरे धीरे।
1: हाँ हाँ, अब तो सब कुछ पहले से ही सोच कर बैठे हो। अरे, ये तो मेरी ही तजवीज थी कि मुश्ताक को दर्जी बनाना है, वरना वो भी आज रसूल की तरह ड्राइवर ही बना होता।
0: उसका तुम ना मतलब उसका मेरे सामने।
1: अरे, क्या हो गया, अब तो उसने रिश्तेदार की बेटी से निकाह भी कर लिया है।
0: अरे, नूरी से शादी करके कोई कोई बहुत बड़ा काम अंजाम नहीं दिया उसने। अरे, नूरी की शादी उससे नहीं होती तो किसी और से हो जाती, लेकिन ऐसी नौबत तो ना आती कि वो अब वो।
1: क्यों, अब क्या हो गया, मैं तो उसके घर भी नहीं गई, तुम तो गए थे ना परसों वहाँ।
0: हाँ।
1: क्या हुआ, खैरियत तो है ना, तुमने आकर कुछ बताया ही नहीं था।
0: अरे, क्या खैरियत है, उस कमबख्त रसूल ने नूरी की नाक में दम कर रखा है, न जीने देता है न मरने देता है, उसको मारता है इतना कि बस पूछो मत। यहाँ आई थी अपने महके में,

0: उसे देखा, अरे जिस्म पर जगह जगह नील पड़े हुए थे।
1: अरे देखो जी, वैसे ये नूरी भी कम नहीं है, बहुत बड़ी जबान है इसकी। औरत की तो जबान ही जूते खिलवाती है और जबान ही सिर पर बिठवाती है। यहाँ जब नूरी आती थी तो कितना बोलती थी और कितने नखरे करती थी।
0: देखो देखो देखो, ये अरे रसूल की तुम तरफदारी मत करो। अरे तुम्हें पता नहीं, अरे कितना याश आदमी है, तुम्हें पता है? हाँ पता नहीं तुम्हें? अरे गांव के बाहर कितनी औरतों से, और तो और दो नंबर की कमाई खूब करता है। अरे तभी तो उसके पास इतना पैसा है।
1: अरे रे रे, ये तो बड़ा ही खराब आदमी है। मैं तो इसे इतना बुरा नहीं समझती थी, लेकिन आज तुमने ये सब बताकर।
0: अरे तुम तो औरतें घर में रहती हो, तुम्हें किसी बात की खबर भी रहती है।
1: हाँ हाँ ठीक है, चलो अभी ये ट्रंक खिंचवा दो, बहुत हो गई बातें।
0: ठीक है, आओ लो।
1: लाइए अम्मी, मैं आपकी मदद करवा देती हूँ। नहीं सारे, तुम अभी किसी भी काम को हाथ ना लगाओ, तुम्हारे मामू नाराज हो रहे थे।
0: अरे
1: अब तुम्हें जिंदगी भर यहाँ काम ही तो करना है, अगर थोड़ा वक्त मिला है तो उसे आराम से काट लो।
0: हाँ बेटी।
1: अभी तुम जाओ जाओ, मैं ये काम कर लूंगी।
0: हाँ बेटी।
1: कैसी बातें करती हैं अम्मी, मैं आपकी कोई बहू थोड़े ही हूँ, आपकी बेटी हूँ, और जो काम कल करना है वो आज से ही क्यों ना शुरू कर दूँ?
0: अरे नहीं सारे बेटी, ये सब ठीक नहीं है। देखो आखिर जिम्मेदारी तुम्हें ही निभानी है, अभी अब तुम्हारी अम्मी काम कर रही है तो तुम्हें काम करने की क्या जरूरत है।
1: हाँ सारे, अभी तुम जाओ, देखो तो शायद मुश्ताक तुम्हें बुला रहा है।
0: देखो बेटी देख लो।
1: ठीक है, जैसी आपकी मर्जी, अब मैं आप लोगों के लिए चाय बना कर लाती हूँ। मैं अभी आती हूँ, सबके लिए चाय बनाने जा रही हूँ। अरे भाई ये नहीं मानेगी, देखना अब तुम, ये मुझे किसी काम से हाथ नहीं लगाने देगी।
0: वाह वाह, खुदा ऐसी बहू सबको दे।

0: साराय?
1: हाँ?
0: ओ प्यारी साराय। अरे अपने हाथों से एक प्याली चाय तो पिला दो भाई, अब हमारे काम पर जाने का वक्त हो गया है।
1: अजी, हमारी आंखों के सामने बैठोगे तभी तो चाय पिलाएंगे ना।
0: अरे लो लो लो, ये पानी पियो। इतनी बार कहा है कि चूल्हे में ये गीली लकड़ियां मत डाला करो।
1: लो चाय पियो।
0: वाह सारे, तुम्हारे हाथ की चाय पीना भी नसीब वालों को नसीब होता है। क्या चाय बनाई है।
1: अजी, पहले एक घूंट पी तो लो। चाय अभी तुमने पी भी नहीं और तारीफ करनी पहले ही शुरू कर दी।
0: अरे साराय, तुमने जो कुछ बना दिया वो मेरे लिए अमृत है, चाहे वो जैसा भी बना हो।
1: बस बस, अब जल्दी से चाय पियो, आपके जाने का वक्त हो गया है। और वैसे देख रही हूँ आप आजकल यहीं पर देर कर देते हैं।
0: सोच रहा हूँ कि आज जाऊं ही नहीं।
1: क्या?
0: हाँ, कुछ मन नहीं कर रहा है। सारे चलो, आज हम दोनों बैठकर पूरे दिन बात करेंगे।
1: शादी को अब तो काफी दिन गुजर चुके हैं, ये सब बातें अब तो ना किया करो।
0: अरे भाई, हम तो ऐसे ही जिंदगी तुम्हारे आगे बैठकर गुजार दें। सोचता हूँ आज की छुट्टी कर ही लूँ।
1: बस बस, आप छुट्टी

0: का नाम ना लिया करें, पहले ही बहुत छुट्टी कर चुके हैं, ज्यादा छुट्टियां की तो नौकरी से हाथ धोना पड़ेगा।
1: अरे बाप रे,
0: क्या हुआ?
1: आज तो बहुत देर हो गई सर। अच्छा मैं चलता हूँ, हो सकता है मैं दोपहर में चक्कर लगाऊं, जब सब सोते हुए होंगे मैं तभी आऊंगा।
0: हाय अल्लाह, नहीं नहीं उस वक्त अम्मी जाग रही होती हैं।
1: अच्छा ये सब बातें दोपहर को करेंगे, खुदा।

0: क्या बात है फाता, आज बड़े गुस्से में घर साफ कर रही हो।
1: अरे घर तो साफ कर रही हूं ना, चाहे गुस्से में ही सही। और यहाँ है भी कौन मेरे साथ काम करने वाला? सारे की शादी ऐसी हुई कि उसने आने की खबर तक नहीं ली। 8 महीने हो गए हैं उसे अपनी ससुराल गए हुए, और एक दिन के लिए भी नहीं आई अपनी माँ से मिलने।
0: अरे अगर वो नहीं आई है तो तुम जाकर क्यों नहीं मिल लेती? आखिर वो भी तो तुम्हारे भाई का घर है।
1: हाय अल्लाह, तुमसे मैंने कोई मशवरा नहीं मांगा। जब देखो उल्टी सीधी पट्टी पढ़ाते रहते हो। अरे अब वो समधी है हमारे, समझे?
0: अरे बेगम, पता नहीं क्या क्या सोचती रहती है तू। अरे तुझे तो खुशी होनी चाहिए कि मैके की उसे याद नहीं आती। उसको ससुराल में इतना प्यार मिला है।
1: क्या क्या कहा? मैं क्या उसे यहाँ मारा पीटा करती थी जो मुझे याद नहीं करती?
0: अरे मुझे पता नहीं क्या, फालतू में अपना दिमाग खराब करती हो और मेरा भी। अरे अब तो उसकी खुशी में ही खुश रहा करो।
1: क्यों क्या हुआ? मुझे कौन सी जलन हो रही है उसके खुश रहने से?
0: वैसे कुछ भी कहो, सारे की किस्मत खुल गई है वहां जाकर। अब तो उसके पास 2-2 गायें हो गई हैं। मुश्ताक की सब जगह धूम है। बहुत अच्छे कपड़े सीता है और पैसा भी बहुत अच्छा कमा रहा है। अरे उसने फजी और सारे को बहुत सारी किरण ला कर दी है। तुम्हारी बेटी वहां खूब ऐश कर रही है।
1: ऐश कर रही है? अरे ये तो मेरी बेटी का नसीब था जो उसे मिल रहा है। कहीं और भी जाती तो ऐसी ही महारानी की तरह रहती। बल्कि किस्मत वाली तो फजी है जिसे सारे जैसी बहू मिली। अरे उसके भाग्य से ही तो ऐश कर रही है, इसलिए तो सारे को यहाँ नहीं आने देती। खुद तो वहाँ महारानी बनकर बैठ जाती होगी और मेरी बेटी पर हुकुम चलाती होगी।
0: अरे अरे बेगम कैसी बातें करती है। अरे अपनी भाभी के बारे में भी तुझे शर्म नहीं आती?
1: शर्म कैसी जी, जो बात सही है वो सही है, इसमें बुरा मानने वाली क्या बात है? देखा नहीं है गांव की और लड़कियां कैसे अपने शौहरों और सास ससुर को अपने कब्जे में किए रहती हैं? हमारी सारे तो इतनी सीधी है कि फंस गई होगी उनके चंगुल में।
0: अरे तू पगला गई है क्या? तेरे भेजे में इतनी सी बात क्यों नहीं आती कि वो वहां खुश है?
1: या खुदा, अजी अब वो अपने मुंह से थोड़े ही कहेगी कि मैं परेशान हूँ। वो जो उसकी सास है ना फजी, बहुत ही चुप भुन्नी और

0: औरत है, बड़े प्यार प्यार से सारे काम करवा लेती है, और वो जो है हमारी सीधी लड़की सारे, उसको तो बिल्कुल अक्ल ही नहीं है। अरे अपने आप को उस घर में जाकर झोंक दिया। अरे अगर ऐसे ही चलता रहा तो जिंदगी भर उन लोगों की गुलाम बनकर रहेगी, महारानी बनकर नहीं।
1: आफ़ो, वहां पर करीम और फजी अपने बच्चे की तरह उससे प्यार करते हैं, उसे किसी बात की कमी नहीं होने देते।
0: अरे मेरे भोलू राम, कितने भोलू हो तुम। अरे तुम लड़की के बाप हो, जब तुम वहां पर जाओगे तो तुम्हारे सामने तो काम नहीं कराएंगी ना, बल्कि झूठा प्यार ही करेंगे, समझे?
1: फाता फाता, वो तेरे भाई का घर है, उसके लिए ऐसी गंदी सोच रखती हो।
0: अजी चुप रहो जी, मैंने अच्छे अच्छे घर देखे हैं। करीम अगर मेरा भाई है तो मेरा खून है, पर फजी तो मेरा खून नहीं है। पता नहीं मेरी बच्ची सारे के ऊपर उस फजी ने क्या जादू कर दिया है कि वो हमें याद ही नहीं करती। एक दिन के लिए कभी मिलने भी नहीं आई। अब मुझे कुछ ना कुछ करना ही पड़ेगा।
1: ओहो, देखो बेगम, तुम कुछ भी ऐसा मत कर देना कि हंसते खेलते परिवार में आग लग जाए।
0: वक्त आने पर बताऊंगी।

0: अम्मा।
1: हाँ बहू।
0: अम्मा, मैं आपसे कह रही हूँ कि आप भी दरगाह शरीफ चलती तो अच्छा होता।
1: नहीं बहू, तुम लोग जाओ दरगाह पर और दीप जला कर आओ, जाओ।
0: लेकिन अम्मा, आप घर का सारा काम करेंगी, अब ये तो अच्छा नहीं लगेगा ना।
1: तुम इसकी फिक्र मत करो बहू, मैं घर का सारा काम कर लूँगी। जाओ, आज तुम मुश्ताक के साथ घूम कर आओ, जाओ।
2: अब चलो भी साराय, बहुत देर हो चुकी है, निकलो यहाँ से।
0: हाँ हाँ चलते हैं जी, इतनी जल्दी किस बात की है।
2: अगर मैंने तुम्हें आगे की बात बता दी तो तुम सिर के बल भागती हुई चलोगी।
0: अच्छा बताओ तो जरा क्या बात है।
2: अभी नहीं, वक्त आने पर बताऊंगा।
0: ओफो मुश्ताक, आप बहुत खराब हैं।
2: अच्छा बाबा, अब चलो यहाँ से, चलो।
0: चलिए। मुश्ताक, देखो कितना अच्छा लगता है ना, इस डल झील के किनारे बैठकर वादियों को देखना। कितनी खूबसूरत दरगाह है, कैसा अच्छा लग रहा है यहाँ।
2: साराय।
0: हाँ।
2: तुम तो शायद यहाँ पहली बार आई हो।
0: हाँ मुश्ताक, मैं पहली बार आई हूँ यहाँ पर। मुझे अगर इसकी खूबसूरती का ज़रा भी अंदाज़ा होता ना, तो मैं यहाँ तुम्हारे साथ रोज़ आती।
2: अच्छा चलो, अब दरगाह में अंदर आओ, रत्नदीप और रोट वहीं चढ़ाया जाएगा।
0: हाँ, चलिए।
2: लो साराय, मैंने तुम्हारा दीप जला दिया, इसे वहां ले जाओ। अरे जाहिल औरत, इसने तो दीप बुझा दिया।
0: मुश्ताक, ये तो अपशगुन है, ये ठीक नहीं हुआ।
2: अरे नहीं, तुम फिक्र मत करो, ऐसा कुछ नहीं हुआ। हवा से तो दीप बुझ ही जाते हैं, फिर जल जाएगा।
0: नहीं मुश्ताक, ये अच्छा नहीं होता। मेरी एक सहेली का दीप भी इसी तरह बुझ गया था। उस बेचारी का 1 महीने के अंदर ही तलाक हो गया था मुश्ताक।
2: अरे मेरी प्यारी गुड़िया, जब मियां बीवी राजी तो क्या करेगा काजी।

0: अरे जब तक हम नहीं चाहेंगे तो हमें कौन अलग कर सकता है। बस तुम नमाज पढ़कर खुदा से दुआ करती रहो। चलो तुम्हें एक चीज दिखाता हूँ, आओ इधर आओ। वो देखो तेज हवा में कैसे पानी में बहते हुए दिए बुझते जा रहे हैं और पीर साहब उन्हें बार बार जलाते जा रहे हैं।
1: हाँ सही कहा आपने, वो देखो पीर साहब फिर से जला रहे हैं दीप।
0: अरे जब पीर साहब दोबारा जला सकते हैं तो हम क्यों नहीं जला सकते। ये देखो, ये मैंने माचिस निकाली और ये लगाई।
1: लाओ मुझे दो, मैं इसे पानी में बहाऊंगी और अब की बार ये नहीं बुझेगा। मुश्ताक अब तो बता दो ना कि मुझे कहाँ लिए जा रहे हो, मैं चल तो रही हूँ आपके साथ।
0: चलो अब तुम पूछ ही रही हो तो मैं तुम्हें बता देता हूँ, हम लोग अब निशात बाग जा रहे हैं।
1: क्या निशात बाग जा रहे हैं? ये तो हमें पता ही नहीं था। ओ मुश्ताक आप कितने अच्छे हैं, कितने प्यारे हैं आप।
0: बस बस बस इतना मक्खन मत लगाओ। मुझे मालूम है कि तुम आज तक निशात बाग नहीं गई हो और तुम्हारा वहां जाने का बहुत मन था। और इसीलिए मैं तुम्हें वहां लेकर जा रहा हूँ।
1: मुझे पता है, हम कब तक पहुंच जाएंगे वहां पर?
0: बस समझो कि पहुंच ही गए।
1: हाँ?
0: वो देखो सामने बाग की रौनक नजर आई।
1: हाँ? क्या क्या यही निशात बाग है?
0: हाँ।
1: ये दूर से तो बहुत अच्छा लग रहा है, लेकिन यहाँ पर इतनी भीड़ क्यों है?
0: अरे सारे सवाल यहीं बैठे बैठे पूछ लोगे क्या, किनारा आ जाए तो खुद ही सब देख लेना। अब देखो सारा नजारा कैसा लगा।
1: नजारा तो बहुत अच्छा है, लेकिन मुश्ताक यहाँ लड़कियाँ देखो ना कैसे लड़कों के गले में हाथ डालकर घूम रही हैं, इन्हें शर्म नहीं आती, कैसी गंदी लग रही हैं।
0: अरे सारे ये तो आजकल का फैशन है।
1: और देखो तो कैसे बेहुदा कपड़े पहने हैं इन्होंने, सारा जिस्म नजर आ रहा है।
0: अरे मैं ऐसे ही तो कपड़े सिलता हूँ।
1: क्या?
0: हाँ मेरे पास ऐसे ही लोग आते हैं, देखो कितने अच्छे लगते हैं, और ये सब कपड़े मैं तुम्हें भी ला कर दूंगा।
1: मुझे नहीं पहनने। क्या तुम इतने बेहुदा कपड़े सिलते हो, तुम्हें शर्म नहीं आती?
0: अरे शर्म किस बात की, ये काम है मेरा, अगर ये कपड़े ऐसे नहीं सी कर दूंगा तो मुझे कौन पूछेगा। अब तुम जरा यहाँ पेड़ के नीचे बैठो, मैं तुम्हारे लिए कुछ लेकर आता हूँ।
1: ठीक है, मैं तुम्हारा यहीं इंतजार कर रही हूँ, पर जल्दी आना।
0: अरे बस यूं गया और यूं आया। देख गुरु देख क्या लड़की बैठी है, अरे इसका आशिक इसके लिए कुछ लेने गया होगा।
2: अरे गुलाब लेने गया होगा, वैसे यार लड़की है बहुत अच्छी।
3: चुप चुप, वो देख वो आ गया है उसका।
0: लो सर आए पकौड़िया खाओ।
1: अरे आप ये पकौड़िया लेकर क्यों आए, आपने मुझसे कहा होता तो मैं आपको ऐसी ही पकौड़ियाँ घर पर बनाकर खिला देती।
0: तुम मुझे ऐसी पकौड़ियाँ खिलाती, तुम्हें मालूम है कैसे बनती हैं ये?
1: हाँ हाँ मुझे मालूम है ये कैसे बनती हैं, खाना बनाना मुझे आपने तो नहीं सिखाया ना।
0: अरे भाई हमने कब कहा कि हम खाना बना सकते हैं, हमें तो खुद खाना नहीं बनाना आता। हाँ बस ऐसी पकौड़ियाँ कभी खाई नहीं घर में, बस इसलिए कहा।
1: अच्छा तो देखिए आपको मैं इतनी पकौड़ियाँ खिलाऊंगी, इतनी पकौड़ियाँ खिलाऊंगी कि आपका जी भर जाएगा।
0: अच्छा सारे अब ये बताओ कि अब चलने का इरादा है कि नहीं?
1: जब आप कहें तभी चल दें।
0: तो चलिए मेम साहब, बहुत वक्त गुजर गया है यहाँ।
1: चलिए आज बहुत मजा आया मुश्ताक।

0: अभी आप सुन रहे थे रेडियो धारावाहिक सिसकियां की पहली कड़ी। गीतकार अशोक वर्मा, संगीतकार मोहनलाल, गायिका सुप्रिया श्रीवास्तव, ध्वनि मुद्रण और संपादन जीतेंद्र, लेखक अकरम खान, निर्माता निर्देशक अंशु आनंद। भाग लेने वाले कलाकार थे नीलम, सतीश कक्कड़, लोकेश, सुप्रिया, हरीश, ललित और आनंद। अगली कड़ी में आपसे फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए इजाजत दीजिए, नमस्कार।
1: अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम पहली कड़ी। कुछ ही देर में हमारा अगला प्रसारण होगा।

मीडियम वेव न्यूज ऑन AIR मोबाइल एप्लीकेशन साथ ही DTH के ऑडियो चैनल पर ये आकाशवाणी मध्य प्रदेश है। इस समय हमारे स्टूडियोज की घड़ी में संध्या के 5 बजे हैं। अब सुनिए इस घंटे की खास खबरें।

0: मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने कहा है कि भारतीय योग परंपरा को सांस्कृतिक मूल्यों से जोड़कर स्वस्थ, जागरूक एवं आध्यात्मिक रूप से समृद्ध समाज के निर्माण की दिशा में लगातार प्रयास किए जा रहे हैं। मध्य क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी क्षेत्रांतर्गत आने वाले 16 जिलों में पीएम सूर्यघर योजना के तहत अब तक कुल 39,975 उपभोक्ता पंजीकृत हुए हैं, जिनके खातों में 311,64,00,000 से अधिक की राशि सब्सिडी के रूप में जमा कराई जा चुकी है। प्रदेश न्यूनतम समर्थन मूल्य पर अब तक 13,36,000 किसानों से गेहूं का उपार्जन कर देश में अव्वल है। अब तक 103,48,000 मीट्रिक टन गेहूं का उपार्जन किया जा चुका है। उच्च शिक्षा विभाग द्वारा संचालित ई प्रवेश प्रक्रिया 2026-27 के अंतर्गत प्रथम चरण में विद्यार्थियों द्वारा पंजीयन एवं प्रवेश प्रक्रिया में सहभागिता की जा रही है। अभी तक स्नातक, स्नातकोत्तर एवं एनसीटीई पाठ्यक्रमों में कुल 2,10,460 आवेदनों का सत्यापन पूर्ण किया जा चुका है। प्रदेश के शासकीय महाविद्यालयों में कार्यरत प्राध्यापकों के लिए राष्ट्रीय तकनीकी शिक्षक प्रशिक्षण एवं अनुसंधान संस्थान भोपाल द्वारा 3 से 5 जून 2026 तक भारतीय ज्ञान परंपरा विषय पर 3 दिवसीय आवासीय प्रशिक्षण कार्यक्रम का आयोजन किया जाएगा। और विद्युत वितरण कंपनियों ने विद्युत दुर्घटनाओं से बचाव के लिए आमजनों और उपभोक्ताओं से अपील की है कि वे विद्युत लाइनों, वितरण ट्रांसफार्मरों और अन्य विद्युतीय उपकरणों से किसी प्रकार की छेड़छाड़ न करें। आप सुन रहे थे इस घंटे की खास खबरें।
1: ये आकाशवाणी मध्य प्रदेश है, प्रस्तुत है कार्यक्रम युववाणी। आज का ये कार्यक्रम आकाशवाणी ग्वालियर की प्रस्तुति है।

कुछ लोग चले जाते हैं मगर विचार अमर हो जाते हैं। जो देश के लिए जिए हों वो दिलों में घर कर जाते हैं। सपनों से जिसने भारत को नई पहचान दिलाई, ऐसे महान नेता को आज हम श्रद्धा सुमन चढ़ाते हैं। युववाणी कार्यक्रम में आप सभी सुनने वालों को सौम्या शिंदे का प्यार भरा नमस्कार। हर शाम की तरह आज भी हम लेकर आए हैं आपके लिए ढेर सारी बातें, नई जानकारियाँ और ऐसे विषय जो हमें अपने देश, समाज और अपने कर्तव्यों के प्रति जागरूक बनाते हैं। आज का दिन बहुत विशेष है। 27 मई का दिन हमारे देश के इतिहास में एक भावुक स्मृति के रूप में याद किया जाता है, क्योंकि आज ही के दिन भारत के प्रथम प्रधानमंत्री, महान स्वतंत्रता सेनानी और आधुनिक भारत के निर्माता पंडित जवाहरलाल नेहरू जी की पुण्यतिथि मनाई जाती है। पंडित जवाहरलाल नेहरू केवल एक राजनेता नहीं थे, बल्कि वे एक दूरदर्शी विचारक, लेखक और ऐसे नेता थे जिन्होंने स्वतंत्र भारत के सपनों को दिशा देने का काम किया। उन्होंने उस भारत की कल्पना की थी जो शिक्षा, विज्ञान, लोकतंत्र और एकता के आधार पर दुनिया में अपनी अलग पहचान बनाए। नेहरू जी का जन्म 14 नवम्बर 1889 को इलाहाबाद में हुआ था। उनके पिता मोतीलाल नेहरू एक प्रसिद्ध वकील थे और उनकी माता स्वरूप रानी नेहरू एक सरल और संस्कारी महिला थीं। बचपन से ही नेहरू जी की पढ़ाई में बहुत ही रुचि थी।

और उन्हें प्रकृति, इतिहास और विज्ञान में भी विशेष रुचि थी। आगे की पढ़ाई के लिए वे इंग्लैंड गए, जहां उन्होंने यूनिवर्सिटी ऑफ कैम्ब्रिज से शिक्षा प्राप्त की। लेकिन विदेश में रहकर भी उनका दिल भारत के लिए धड़कता रहा। उन्होंने देखा कि किस तरह अंग्रेज भारत के लोगों पर अत्याचार कर रहे हैं। महात्मा गांधी जी के विचारों से प्रभावित होकर वे स्वतंत्रता आंदोलन में शामिल हो गए। आज़ादी की लड़ाई के दौरान उन्होंने कई बार जेल यात्राएं की, कठिनाइयां झेली, लेकिन कभी अपने कदम पीछे नहीं हटाए। कहा जाता है कि सच्चा नेता वही होता है जो अपने देश के लोगों के लिए सपने देखे और उन्हें पूरा करने का साहस भी रखे। नेहरू जी ऐसे ही नेता थे। जब भारत आज़ाद हुआ, तब देश गरीबी, बेरोजगारी, अशिक्षा और कई समस्याओं से जूझ रहा था। ऐसे समय में उन्होंने आधुनिक भारत के निर्माण की नींव रखी। उन्होंने बड़े बड़े बांधों, फैक्ट्रियों और वैज्ञानिक संस्थानों को आधुनिक भारत के मंदिर कहा। उनके प्रयासों से IIT, वैज्ञानिक अनुसंधान केंद्र और कई विश्वविद्यालय स्थापित हुए। उनका विश्वास था कि यदि देश को मजबूत बनाना है तो युवाओं को शिक्षित और आत्मनिर्भर बनाना होगा। नेहरू जी बच्चों से बेहद प्रेम करते थे। बच्चे भी उन्हें प्यार से चाचा नेहरू कहकर बुलाते थे। वे मानते थे कि बच्चे देश का भविष्य हैं और यदि बच्चों को सही शिक्षा और संस्कार दिए जाएं तो देश का भविष्य उज्जवल होगा। यही कारण है कि उनके जन्मदिन को चिल्ड्रंस डे के रूप में मनाया जाता है। नेहरू जी ने एक बार कहा था, नागरिकता देश की सेवा में निहित है। यह बात हमें सिखाती है कि केवल अधिकारों की बात करना पर्याप्त नहीं, बल्कि हमें अपने कर्तव्यों को भी समझना चाहिए। आज उनकी पुण्यतिथि पर हमें उनके विचारों को याद करना चाहिए और यह सोचना चाहिए कि हम अपने देश के लिए क्या कर सकते। पंडित जवाहरलाल नेहरू का जीवन हम सभी के लिए प्रेरणा का स्रोत है। उन्होंने अपने विचारों और कार्यों से देश को नई दिशा दी। देशभक्ति, एक और अपने वतन के प्रेम की भावना हमेशा उनके व्यक्तित्व में दिखाई देती थी। अब इसी खूबसूरत भावना को और करीब से महसूस करते हैं एक प्रेरणादायक देशभक्ति गीत के साथ। गीत के बाद आगे चर्चा करेंगे भारतीय लोकतंत्र और युवाओं की भूमिका के बारे में।

जब भी पंडित जवाहरलाल नेहरू की बात होती है तो लोकतंत्र और भारतीय राजनीति की चर्चा अपने आप ही शुरू हो जाती है। भारत दुनिया का सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश है और इसकी सबसे बड़ी ताकत यहाँ की जनता है। आज़ादी के बाद भारत के सामने सबसे बड़ी चुनौती थी देश को एकजुट रखना। अलग अलग भाषा, धर्म, संस्कृति और परंपराओं वाले इस विशाल देश को एक सूत्र में बांधना आसान नहीं था, लेकिन नेहरू जी ने लोकतंत्र और संविधान के में विश्वास रखते हुए देश को आगे बढ़ाया। लोकतंत्र केवल चुनाव तक सीमित नहीं है। लोकतंत्र का मतलब है हर नागरिक को अपनी बात कहने का अधिकार, समानता का अधिकार और सम्मान के साथ जीवन जीने का अधिकार। लेकिन इसके साथ साथ जिम्मेदारियां भी आती हैं। आज के समय में सोशल मीडिया और इंटरनेट के कारण जानकारी बहुत तेज़ी से फैलती है। हर दिन हमें हजारों खबरें देखने और सुनने को मिलती हैं, लेकिन हर जानकारी सही हो ऐसा ज़रूरी नहीं है। इसलिए हमें जागरूक नागरिक बनना होगा और किसी भी खबर पर विश्वास करने से पहले उसकी सच्चाई जांचनी होगी। युवा शक्ति किसी भी देश की सबसे बड़ी ताकत होती है। आज भारत दुनिया के सबसे युवा देशों में गिना जाता है। यदि हमारे युवा सकारात्मक सोच के साथ आगे बढ़ें तो देश को नई ऊँचाइयों तक पहुँचा सकते हैं। नेहरू जी भी युवाओं पर बहुत भरोसा करते थे। उनका मानना था कि युवा केवल देश का भविष्य नहीं बल्कि वर्तमान की सबसे ऊंची ऊर्जा है। इसलिए युवाओं को राजनीति, समाज सेवा और राष्ट्र निर्माण में भाग लेना चाहिए। राजनीति का मतलब केवल नेताओं की बहस नहीं होती। राजनीति का संबंध हमारे जीवन की हर सुविधा से जुड़ा होता है, शिक्षा, सड़क, बिजली, पानी, अस्पताल और रोजगार तक। इसलिए देश के हर नागरिक को जागरूक रहना चाहिए। आज कई युवा स्टार्टअप शुरू कर रहे हैं, नई तकनीकों पर काम कर रहे हैं और दुनिया भर में भारत का नाम रोशन कर रहे हैं। यह वही भारत है जिसका सपना नेहरू जी ने देखा था, आत्मनिर्भर, प्रगतिशील और मजबूत भारत। लेकिन यह भी याद रखना चाहिए कि विकास तभी संभव है जब समाज में एकता बनी रहे। धर्म, भाषा और जाति के नाम पर नफरत फैलाना देश को कमज़ोर करता है। नेहरू जी हमेशा एकता में शक्ति की बात करते थे। आज ज़रूरत है कि हम एक दूसरे का सम्मान करें और देश हित को सबसे ऊपर रखें। लोकतंत्र की ताकत केवल सरकार से नहीं बल्कि देश के जागरूक नागरिकों और युवाओं से मिलती है। हमारे स्वतंत्रता सेनानियों और नेताओं ने जिस भारत का सपना देखा था उसे आगे बढ़ाने की जिम्मेदारी आज हम सभी की है। तो आइए देश के प्रति सम्मान और समर्पण की भावना को महसूस करते हैं और इस भावुक गीत के साथ उन्हें याद करते हैं। गीत के बाद बात करेंगे शिक्षा, विज्ञान और युवाओं के सपनों की।

गए हैं। हमारे देश ने चंद्रयान और मार्स ऑर्बिटर मिशन जैसे मिशनों के जरिए पूरी दुनिया में अपनी क्षमता साबित की है। यह सब शिक्षा और विज्ञान की ताकत का ही परिणाम है। लेकिन शिक्षा का उद्देश्य केवल अच्छी नौकरी पाना नहीं होना चाहिए। शिक्षा हमें एक अच्छा इंसान भी बनाती है। हमें अपने जीवन में ईमानदारी, अनुशासन, दया और संवेदनशीलता जैसे गुणों को भी अपनाना चाहिए। आज डिजिटल युग में पढ़ाई के तरीके बदल गए हैं। मोबाइल और इंटरनेट के जरिए घर बैठे नई चीज़ें सीखी जा सकती हैं। ऑनलाइन क्लास, डिजिटल लाइब्रेरी और एजुकेशनल प्लेटफॉर्म ने शिक्षा को आसान बनाया है। लेकिन तकनीक का सही उपयोग करना बहुत ज़रूरी है। अगर हम पूरा समय केवल सोशल मीडिया और मनोरंजन में बिताएंगे तो यह हमारे समय और क्षमता दोनों का नुकसान करेगा। इसलिए हमें इंटरनेट का इस्तेमाल सीखने और खुद को बेहतर बनाने के लिए भी करना चाहिए। किताबें आज भी हमारी सबसे अच्छी मित्र हैं। एक अच्छी किताब इंसान की सोच बदल सकती है। नेहरू जी स्वयं भी पढ़ने और लिखने के बहुत शौकीन थे। उन्होंने कई पुस्तकें लिखीं जिनमें द डिस्कवरी ऑफ इंडिया विशेष रूप से प्रसिद्ध है। इस पुस्तक में उन्होंने भारत के इतिहास, संस्कृति और सभ्यता का सुंदर वर्णन किया है। आज ज़रूरत है कि हम शिक्षा को केवल परीक्षा पास करने का माध्यम ना समझें बल्कि खुद को बेहतर बनाने का साधन माने। शिक्षा और सकारात्मक सोच ही वह शक्ति है जो इंसान को जीवन में आगे बढ़ने का हौसला देती है। पंडित जवाहरलाल नेहरू भी हमेशा युवाओं को बड़े सपने देखने और मेहनत करने के लिए प्रेरित करते थे। आज जब हम विकास और आधुनिकता की बात करते हैं तो एक और महत्वपूर्ण विषय हमारे सामने आता है, पर्यावरण संरक्षण। प्रकृति केवल हमारी ज़रूरत नहीं बल्कि हमारे जीवन का आधार है। स्वच्छ हवा, शुद्ध पानी, पेड़ पौधे और प्राकृतिक संसाधन ही हमें स्वस्थ जीवन देते हैं। पंडित जवाहरलाल नेहरू भी प्रकृति से बेहद प्रेम करते थे। वे मानते थे कि इंसान और प्रकृति का रिश्ता संतुलन और संवेदनशीलता पर आधारित होना चाहिए। उन्होंने बड़े विकास कार्यों के साथ साथ प्राकृतिक संसाधनों के संरक्षण पर भी जोर दिया था। लेकिन आज तेजी से बढ़ते प्रदूषण, पेड़ों की कटाई और प्लास्टिक के अत्यधिक उपयोग ने पर्यावरण के सामने कई चुनौतियां खड़ी कर दी हैं। गर्मी लगातार बढ़ रही है, मौसम बदल रहे हैं और प्राकृतिक संतुलन प्रभावित हो रहा है। ऐसे में हम सभी की जिम्मेदारी और भी बढ़ जाती है। पर्यावरण की रक्षा के लिए हमें अपने जीवन में छोटी छोटी आदतें अपनानी होंगी, जैसे पानी की बचत करना, बिजली का सही उपयोग करना, प्लास्टिक का कम इस्तेमाल करना और अधिक से अधिक पेड़ लगाना। आज के युवा इस बदलाव में सबसे बड़ी भूमिका निभा सकते हैं। यदि हर व्यक्ति साल में केवल एक पौधा भी लगाए और उसकी देखभाल करे तो हमारा वातावरण काफ़ी बेहतर हो सकता है। हमें यह समझना होगा कि प्रकृति की रक्षा करना केवल सरकार की जिम्मेदारी नहीं बल्कि हर नागरिक का कर्तव्य है, क्योंकि सुरक्षित पर्यावरण ही आने वाली पीढ़ियों को बेहतर भविष्य दे सकता है। इसी सकारात्मक सोच और प्रकृति के प्रति सम्मान की भावना के साथ सुनते हैं एक खूबसूरत प्रेरणादायक गीत जो हमें जीवन और उम्मीद का संदेश देता है।

देश की प्रगति की बात हो और शिक्षा का जिक्र ना हो, ऐसा हो ही नहीं सकता। पंडित जवाहरलाल नेहरू का मानना था कि शिक्षा ही वह शक्ति है जो किसी भी समाज को अंधकार से प्रकाश की ओर ले जाती है। आज शिक्षा का महत्व पहले से कहीं अधिक बढ़ गया है। आज का समय प्रतियोगिता का समय है। हर क्षेत्र में आगे बढ़ने के लिए ज्ञान और कौशल दोनों ज़रूरी हैं, लेकिन केवल किताबों की पढ़ाई ही काफ़ी नहीं है, हमें व्यवहारिक ज्ञान भी सीखना चाहिए। नेहरू जी वैज्ञानिक सोच को बहुत महत्व देते थे। वे चाहते थे कि भारत अंधविश्वास से ऊपर उठकर विज्ञान और तर्क की राह पर चले। यही कारण है कि उन्होंने वैज्ञानिक संसाधनों और रिसर्च सेंटर की स्थापना पर विशेष ध्यान दिया। आज भारत के वैज्ञानिक अंतरिक्ष में नए कीर्तिमान बना रहे हैं।

आज के समय में एक और महत्वपूर्ण विषय है युवाओं का मानसिक और सामाजिक विकास। आज की भागदौड़ भरी जिंदगी में कई युवा तनाव, चिंता और अकेलेपन जैसी समस्याओं का सामना कर रहे हैं। कई बार प्रतियोगिता और असफलता का डर युवाओं को निराश कर देता है, लेकिन यह समझना होगा कि जीवन में सफलता और असफलता दोनों ही जरूरी हैं। कई बार प्रतियोगिता और असफलता का डर युवाओं को निराश कर देता है, लेकिन यह समझना होगा कि जीवन में सफलता और असफलता दोनों ही जरूरी हैं। असफलता हमें मजबूत बनाती हैं और आगे बढ़ने की सीख देती हैं। नेहरू जी हमेशा सकारात्मक सोच रखने की बात करते थे। उनका मानना था कि कठिन परिस्थितियों में भी उम्मीद नहीं छोड़नी चाहिए, हमें अपने परिवार और दोस्तों के साथ समय बिताना चाहिए, खेलकूद और योग को जीवन का हिस्सा बनाना चाहिए और अपने मन की बात अपनों से साझा करनी चाहिए। स्वस्थ शरीर और स्वस्थ मन ही सफलता की असली कुंजी है। इसके साथ साथ हमें समाज के प्रति भी संवेदनशील बनना चाहिए। ज़रूरतमंद लोगों की मदद करना, पर्यावरण की रक्षा करना और समाज में सकारात्मकता फैलाना हम सभी की जिम्मेदारी है। अगर हर युवा अपने जीवन में एक छोटा सा सकारात्मक बदलाव लाने का प्रयास करे तो पूरा समाज बदल सकता। आपसे बात करते करते समय का पता ही नहीं चलता, घड़ी अब इशारा कर रही है कि विदा लेने का समय हो गया है। आशा है कि आज का यह विशेष कार्यक्रम आपको पसंद आया होगा और पंडित जवाहरलाल नेहरू जी के जीवन, लोकतंत्र, शिक्षा, पर्यावरण और युवाओं से जुड़े विचारों ने आपको ज़रूर प्रेरित किया होगा। अपने देश से प्रेम करें, अपने कर्तव्यों को समझें और हमेशा सीखते रहने की आदत बनाए रखें। इसी शुभकामना के साथ मैं सौम्या शिंदे आपसे लेती हूं विदा। आप सभी स्वस्थ रहें, खुश रहें और अपने सपनों को पूरा करते रहें। नमस्कार।

0: अभी आप आकाशवाणी ग्वालियर के योगदान से सुन रहे थे कार्यक्रम युववाणी। आप सुन रहे हैं आकाशवाणी मध्य प्रदेश।
1: सुनिए एनसीई।

0: एनआरटी का प्रायोजित कार्यक्रम उमंग सोमवार से शुक्रवार शाम 6 बजे आकाशवाणी भोपाल पर। सुनिए आकाशवाणी भोपाल पर स्वराज संस्थान संचालनालय का प्रायोजित कार्यक्रम वतन का राग हर गुरुवार सुबह 8:30 पर।
1: आकाशवाणी मध्य प्रदेश के प्रसारण में थोड़ी ही देर में लेते हैं एक अंतराल।

0: वीडियो लाइक करने के पैसे मिलेंगे। सो इजी।
1: अनजान लिंक्स पर क्लिक मत कीजिए। RBI कहता है,
2: जानकार बनिए, सतर्क रहिए।
3: कभी हंसाकर, कभी रुलाकर, कभी कहानी बनकर, तो कभी कविता बनकर, कभी कोई तराना तो कभी जिंदगी नामा, कभी खबरें हमारी जिंदगी में रंग भरे, मन की बात, जन जन की बात, 1936 से आकाशवाणी आपके साथ।
4: मैं विनय उपाध्याय। आकाशवाणी की यात्रा के 9 दशक पूरे हो रहे हैं। ये सूचना निश्चित रूप से हम जैसे लोगों के लिए बहुत ही खुशी की सूचना है। हम भी आकाशवाणी की इस यात्रा में एक आवाज के रूप में हम सफर रहे हैं। कहते हैं कि नदियों का गोमुख बहुत छोटा होता है। एक छोटी सी झील के रूप में कोई नदी निकलती है अपने अमृत कुंड से और अपनी यात्रा में अनेक कूल किनारों को तय करते हुए एक समंदर में जाकर मिल जाती है। आकाशवाणी के साथ भी ऐसा ही है। दरअसल आवाजों का एक भरा पूरा घर ही आकाशवाणी है। और कितनी सारी आवाजें, वो आवाजें जो भरोसा बनकर आकाशवाणी के स्टूडियो से श्रोताओं तक पहुंचती रही है। श्रोता और आकाशवाणी के बीच में दरअसल एक विश्वास तैर कर इन 90 वर्षों में जाता रहा है। आकाशवाणी के इस अवधि को पूरा करने के अवसर पर मैं अपनी आंतरिक शुभकामनाएं व्यक्त करता हूं और उम्मीद करता हूं कि जिस निहित उद्देश्य को लेकर सूचना, शिक्षा और मनोरंजन, इन तीन पदों को साथ में लेकर आकाशवाणी ने जो अपनी यात्रा शुरू की थी वो नए उत्कर्ष पर पहुंचे। सभी आकाशवाणी से जुड़े साथियों और श्रोताओं को एक बार फिर हार्दिक बधाई, हार्दिक शुभकामनाएं।
5: एक जमाने से कहानी है सुना रही आकाशवाणी, फिर आया एंटरटेनमेंट का रेवोल्यूशन, जब कोने कोने पहुंचा दूरदर्शन। कहानी नहीं बदली, स्टाइल गया है बदल। जो कहानियां हम सुनते आए, देखते आए, अब वही वैसी ही कहानी सुनाएगा डिजिटल।
6: डाउनलोड वेव्स OTT ऐप नाउ एंड वॉच फॉर फ्री।

ये आकाशवाणी मध्य प्रदेश है और अब आनंद लीजिए फिल्म संगीत का। सुनते हैं अग्निपथ फिल्म से ये गीत अजय की आवाज़ में, जिसके बोल लिखे हैं अमिताभ भट्टाचार्य ने और संगीत से सजाया है अजय अतुल ने।

0: और अब सुनिए सुनिधि चौहान को फिल्म धूम 2 से समीर के लिखे हुए बोल हैं, जिसे संगीत में पिरोया है प्रीतम ने।
1: Crazy.

और अब सुनिए अजब प्रेम की गजब कहानी फिल्म से। ये गीत आतिफ असलम ने गाया है, अरशाद कामिल के बोल है और इसे संगीत से सजाया है प्रीतम ने।

और अब अंत में सुनिए जिस्म टू से ये गीत गाया है के और श्रेया घोषाल ने, जिसे लिखा है आर्गो प्रावो मुखर्जी और मुनीश

और इस गीत के साथ फिल्म संगीत यहीं संपन्न हुआ। आप सुन रहे हैं आकाशवाणी मध्य प्रदेश, और अब लेते हैं एक अंतराल।

0: ये आकाशवाणी मध्य प्रदेश है। इस समय हमारे स्टूडियोज की घड़ी में संध्या के 5:58 हुए हैं और अब सुनिए इस घंटे की खास खबरें।
1: राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज शाम गंगटोक में सिक्किम विश्वविद्यालय के 7वें दीक्षांत समारोह में शामिल हुई। समारोह में 33 विभागों के करीब 14,000 छात्रों को उपाधि प्रदान की गई। 285 मेधावी छात्रों को स्वर्ण और रजत पदक से नवाजा गया, जिसमें 199 छात्राएं शामिल रहीं। केंद्र सरकार ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में हुई आर्थिक मामलों की मंत्रिमंडलीय समिति की बैठक में सार्थक PDS योजना को अम्ब्रेला योजना के रूप में जारी रखने की मंजूरी दी है। 16वें वित्त आयोग चक्र के दौरान लागू इस योजना के लिए केंद्र सरकार ने 25,530 करोड़ रुपए का प्रावधान किया है। केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो CBI ने NEET UG 2026 पेपर लीक मामले में आज 3 और लोगों को गिरफ्तार कर लिया। इनमें महाराष्ट्र के लातूर का एक डॉक्टर और पुणे स्थित कोचिंग संस्थान का एक शिक्षक भी शामिल है। सर्वोच्च न्यायालय ने मतदाता सत्यापन पुष्टि पर्ची से संबंधित दिशा निर्देशों में बदलाव की मांग वाली याचिका पर कहा है कि इस बारे में निर्णय लेने का अधिकार निर्वाचन आयोग का है। न्यायालय ने कहा कि यह तकनीकी मामला है।

और निर्वाचन आयोग के अधिकार क्षेत्र में आता है। खजुराहो के पश्चिमी मंदिर परिसर में केंद्रीय आयुष राज्य मंत्री प्रताप राव जाधव ने अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस की 100 दिवसीय काउंटडाउन सीरीज के 25वें कार्यक्रम का शुभारंभ किया। कार्यक्रम में करीब 2000 लोगों ने भाग लिया। और आईपीएल में आज शाम 7:30 बजे मोहाली में सनराइजर्स हैदराबाद और राजस्थान रॉयल्स के बीच एलिमिनेटर मैच खेला जाएगा। आप सुन रहे थे इस घंटे की खास खबरें।

0: उमंग सीआईईटी प्रस्तुत करता है
1: उमंग उमंग उमंग उमंग।
2: सभी श्रोताओं का एक बार फिर से स्वागत है उमंग कार्यक्रम में। विमलेश का नमस्कार
3: और अजीत का भी नमस्कार। कांडला बंदरगाह कच्छ से जगदीश जौहरी जी ने सुविचार भेजा है, लिखते हैं,
2: जो बदला जा सके उसे बदलिए, जो बदला ना जा सके उसे स्वीकार कर लीजिए, और जो स्वीकार न किया जा सके उससे दूर हो जाइए, लेकिन हर हाल में खुद को खुश रखिए, क्योंकि खुश रहना आपकी जिम्मेदारी है।
3: बहुत ही सुंदर विचार, आपको धन्यवाद। आइए अब सुनते हैं संदेश भेजने वाले श्रोताओं के नाम। तो पहला संदेश हमें मिला है पोटिया कलां दुर्ग से संजय कुमार साहू जी का।
2: ग्राम नागर कोहरा जिला राजनांदगांव छत्तीसगढ़ से बबलू साहू, जामुन देवी साहू, प्रेम, पूजा, दुष्यंत, प्रांजल, समीक्षा और बेबी आराध्या साहू।
3: और पगबंधी जिला दुर्ग छत्तीसगढ़ से कन्हैया लहरे और सेवती लहरे।
2: भदोही उत्तर प्रदेश से राजेश कुमार विद्यार्थी।
3: ग्राम व पोस्ट बिरखेरा जिला हमीरपुर उत्तर प्रदेश से मनीराम पाल, मलखान सिंह पाल, सुधांशु पाल और हिमांशु पाल। बहुत बहुत धन्यवाद आपके संदेशों के लिए। और अब प्रस्तुत है श्रृंखला ये भी जानिए। श्रोताओं, आज एक बार फिर से हम रोचक जानकारी लेकर आए हैं दुनिया के एक और बेहद प्रसिद्ध फूल की। तो विमलेश जी, कल हमने बात की थी चेरी के फूलों की।
2: जी, तो अब ये बताइए हमारे श्रोताओं को, आज हम किस फूल की बात करेंगे?
3: विमलेश जी, आज हम बात करेंगे ट्यूलिप फूल की। ये भी दुनिया के प्रसिद्ध फूलों में से एक है।
2: वाह जी जी, भला ट्यूलिप फूलों की सुंदरता को कौन नहीं जानता।
3: बिल्कुल।
2: तो चलिए चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। पहला प्रश्न श्रोताओं की ओर से मेरा ये है, ट्यूलिप फूल मूल रूप से किस देश का है, यानी इसकी उत्पत्ति का स्थान कहाँ माना जाता है?
3: विमलेश जी, वैसे दुनिया भर में ये माना जाता है कि ट्यूलिप फूल मूल रूप से नेदरलैंड्स या हॉलैंड का है, लेकिन यह सच्चाई नहीं है।
2: जी,
3: तो जरा आप ही बताइए श्रोताओं को कि सच्चाई क्या है।
2: जी, श्रोताओं को बताना चाहती हूँ कि दरअसल ट्यूलिप फूल मूल रूप से मध्य एशिया के कजाकिस्तान देश का माना जाता है। यहाँ से ट्यूलिप तुर्की पहुँचा और फिर सारे यूरोप में फैल गया। तो अजीत जी, अब बात करते हैं ट्यूलिप नाम कैसे पड़ा, अब आपकी बारी।
3: जी, अब मेरी बारी। तो बता दूं कि ट्यूलिप शब्द आया है तुर्की और फारसी शब्द दुलबंद से, जिसका अर्थ होता है लंबी पगड़ी। यदि इस फूल की खुली पंखुड़ियों के मोड़ को देखें तो ये सच में मोड़दार लंबी पतली तुर्की पगड़ी जैसा ही दिखता है। 16वीं शताब्दी में जब ये फूल तुर्किस्तान के ओटोमन साम्राज्य में पहुंचा तो राजनयिक और सामाजिक रूप से प्रतिष्ठित लोगों ने इसके समान दिखने वाली टोपियां बनवाई, जिसे तुलिपा कहा जाता था। बाद में ये शब्द फ्रेंच, डच और अंग्रेजी भाषा में मिलकर ट्यूलिप बन गया।
2: जी, रंग, आकार और पंखुड़ियों के आधार पर इस फूल की 3000 से भी अधिक प्रजातियां दुनिया में पाई जाती हैं। श्रोताओं, आपको बता दें कि ट्यूलिप फूल कई रंगों के होते हैं, जैसे लाल, सफेद, गुलाबी, बैंगनी और नारंगी। लेकिन सबसे प्रसिद्ध और महंगा है काले रंग का ट्यूलिप।
3: जी,
2: ये रात में ही खिलता है, इसलिए इसे क्वीन ऑफ द नाइट कहा जाता है। हर रंग का अर्थ है।
3: जैसे
2: लाल रंग ट्यूलिप प्रेम का, पीला ट्यूलिप मित्रता का,
3: जी,
2: सफेद ट्यूलिप क्षमा और शांति का, और बैंगनी ट्यूलिप राजसी गरिमा का।
3: जी, इसलिए अक्सर अवसर और भावना के अनुसार ये ट्यूलिप फूल किसी को दिए या भेजे जाते हैं।
2: जी,
3: विमलेश जी, एक और प्रश्न है मेरे पास जिसका उत्तर हमारे श्रोता जरूर जानना चाहेंगे, विशेषकर वे जो बागवानी में रुचि रखते हैं। और मेरा प्रश्न ये है कि ट्यूलिप फूल कैसे उगाया जाता है?
2: अजीत जी, सबसे रोचक बात तो ये है कि ट्यूलिप फूल बीज से नहीं उगता था, लेकिन कंद या बल्ब से उगाया जाता है। एक स्वस्थ कंद कई वर्षों तक फूल

0: उगा सकता है। जहाँ तक इन फूलों के खिलने का प्रश्न है, ये फूल मार्च से मई तक खिलते हैं।
1: जी श्रोताओ, इन फूलों की दुनिया भर में भारी मांग है। ये व्यावसायिक या कमर्शियल फूल माने जाते हैं और इनका व्यापार करोड़ों डॉलर का है।
0: अजी जी, जब आपने कमर्शियल फूल की बात की तो मुझे एक बहुत ही रोचक घटना याद आ गई।
1: हाँ, वो क्या?
0: 17वीं सदी में नेदरलैंड्स में एक अनोखी आर्थिक घटना हुई जिसे ट्यूलिप मेनिया कहा जाता है।
1: ये घटना क्या थी?
0: उन दिनों यूरोप में ट्यूलिप फूलों की भारी मांग थी। मांग इतनी अधिक थी कि कहते हैं कि ट्यूलिप फूल के मात्र एक कंद की कीमत लगभग एक घर की कीमत के बराबर हो गई थी।
1: ये तो बड़ी रोचक जानकारी विमलेश जी। श्रोताओं, नेदरलैंड्स के रंग बिरंगे फूलों के खेत दुनिया भर में बहुत प्रसिद्ध हैं। मीलों तक लहराते हुए ट्यूलिप फूलों के खेतों को देखने के लिए दुनिया भर से पर्यटक आते हैं। जहां तक भारत की बात है, भारत का सबसे प्रसिद्ध ट्यूलिप गार्डन है इंदिरा गांधी मेमोरियल ट्यूलिप गार्डन।
0: तो अजीत जी, समाप्त करने से पहले एक और बड़ी रोचक बात श्रोताओं से साझा कर लेते हैं। ट्यूलिप के फूल आमतौर पर गंधहीन होते हैं। कुछ प्रजातियां ही हैं जिनमें बहुत हल्की सुगंध आती है। तापमान और रोशनी के अनुसार अपनी पंखुड़ियां खोल या बंद कर सकते हैं। ये अक्सर रात को लगभग बंद हो जाते हैं
1: और सुबह होते ही अपनी पंखुड़ियां खोलकर सूर्य का स्वागत करते हैं, मानो कह रहे हो गुड मॉर्निंग सन।
0: तो श्रोताओं, ये थी आज की जानकारी ट्यूलिप के सुंदर फूलों की। अब आज का प्रश्न आज की ही जानकारी से।
1: तो हमारा प्रश्न है श्रोताओं कि मूल रूप से ट्यूलिप फूल किस देश का है और इसका नाम ट्यूलिप क्यों पड़ा? प्रश्न एक बार फिर से सुन लीजिए।
0: मूल रूप से ट्यूलिप फूल किस देश का है और इसका नाम ट्यूलिप क्यों पड़ा?
1: भेज दीजिए अपना उत्तर 8800440559 पर, जो हमारा IVRS नंबर है। आप हमारे ईमेल यानी audio@ciet.nic.in पर भी अपने संदेश और प्रश्नों के उत्तर भेज सकते हैं।
0: इंस्टा, फेसबुक, लिंक्डइन और एक्स पर भी आप CIET NCERT को जरूर फॉलो कीजिए। इससे आपको हमारी गतिविधियों की जानकारी मिलती रहेगी।
1: और अब बारी है श्रोताओं आज के शैक्षिक कार्यक्रमों की। तो हमारा पहला कार्यक्रम है समझदारी।
0: उर्दू की कक्षा 2 की पाठ्य पुस्तक के एक पाठ पर आधारित इस कार्यक्रम में संदेश दिया गया है कि आपस में प्रेम और सहयोग की भावना के साथ रहने में ही समझदारी और सबकी भलाई है।
1: जी।
2: वकार पढ़ने में बहुत होशियार था। एक दिन उसने अपने वालिद से 50 रुपए मांगे। उसके वालिद ने पूछा,
3: बेटा तुम 50 रुपयों का क्या करोगे?
4: अब्बा, मुझे इन रुपयों की जरूरत है। मुझे एक पेंसिल, एक रबर और एक पेंसिल तराश खरीदना है।
3: अच्छा ठीक है, मैं कल तुम्हें ये सब चीजें खरीद कर दे दूंगा।
4: अब्बा, मुझे इन चीजों की अभी जरूरत है, मुझे स्कूल का काम करना है।
3: लेकिन बेटा, क्या तुम ये सब चीजें खुद खरीद लोगे? क्या तुम्हें रुपयों को जोड़ना और घटाना आता है?
4: जी हाँ, मुझे रुपयों को जोड़ना और घटाना अच्छी तरह से आता है।
3: अच्छा, जरा ये तो बताओ कि इन रुपयों से तुम ये चीजें किस किस तरह खरीदोगे?
4: इन 50 रुपयों से मैं 20 रुपए की एक कॉपी, 5 रुपए की पेंसिल, 5 रुपए की रबर और 5 रुपए की पेंसिल तराश खरीदूंगा।
3: बेटा, अब जोड़ कर बताओ कि कुल कितने रुपए हुए?
4: 20 रुपए की कॉपी, 5 रुपए की पेंसिल, ये हुए 25 रुपए। अब इन 25 रुपयों में 5 रुपए रबर के जोड़ दिए तो हो गए 30 रुपए। इन 30 रुपयों में 5 रुपए पेंसिल तराश के जोड़े तो कुल हुए 35 रुपए।
3: शाबाश बेटा, तुमने बिल्कुल ठीक हिसाब लगाया है। अच्छा तो ये बताओ कि 50 रुपए में से तुमने 35 रुपए का सामान खरीद लिया, अब तुम्हारे पास कितने रुपए बाकी बचे?
4: 50 रुपयों में से 35 रुपए घटाए तो बचे 15 रुपए।
3: तुम्हें तो जोड़ना और घटाना खूब आता है। ये लो 50 रुपए और ये सभी चीजें खरीद कर ले आओ।
1: प्रिय मित्र, अब कुछ हमारे सोचने और करने के लिए। जब हम छोटे बच्चों के हाथ में कुछ पैसे देते हैं तो क्या बाद में उस पैसे का हिसाब

0: अब उनसे पूछते हैं। यदि हमारा जवाब हाँ है तो भाई ये तो बड़ी अच्छी बात है, क्योंकि ऐसा करने से बच्चे में समझदारी, जिम्मेदारी और ईमानदारी का जज्बा बढ़ता है। और हाँ बच्चों, जब घर के बड़े आपको पैसे देते हैं तो क्या आप उन्हें खुद जाकर पैसे का हिसाब देते हैं? यदि हाँ तो फिर भाई इसके लिए तो आपको शाबाशी देनी चाहिए। बड़े पूछें या ना पूछें, आप हिसाब जरूर दीजिए। आई ना बात समझ में?
1: मश्क।
2: होशियार,
1: समझदार।
2: पेंसिल तराश,
1: पेंसिल को छीलने वाला शार्पनर। सोचिए और बताइए, वकार ने अपने वालिद से 50 रुपए क्यों मांगे?
2: वकार को क्या क्या चीजें खरीदनी थी?
1: सब चीजें खरीदने के बाद वकार के पास कितने रुपए बाकी बचे?
2: बेटे से सही हिसाब सुनकर वालिद ने क्या कहा?
0: अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम समझदारी। कार्यक्रम समन्वय प्रोफेसर राजेंद्र पाल, अकादमिक समन्वय डॉक्टर रिजवानुल हक, तकनीकी निर्देशन बटी लैंगलिंगडो, वाचन स्वर शिमाइला परवेज और परवेज गौहर, ध्वनि अंकन मयंक कुमार, निर्देशन विमलेश चौधरी, निर्माण जगबंधु जाना तथा प्रस्तुति CIET NCERT नई दिल्ली भारत। अभी आपने सुना कार्यक्रम समझदारी और आइए अब सुनते हैं अगला कार्यक्रम। हमारा अगला कार्यक्रम है कैप्टन विक्रम बत्रा।
3: इस कार्यक्रम में कारगिल युद्ध के दौरान अपार वीरता का प्रदर्शन करने वाले परमवीर चक्र विजेता कैप्टन विक्रम बत्रा के शौर्य का उल्लेख किया गया है कि किस प्रकार रणनीतिक और भौगोलिक रूप से कमजोर स्थिति में भी उन्होंने सियाचिन के टाइगर हिल पर तिरंगा फहराया और अपने प्राणों की आहुति दे दी।
4: साथियों, सन 1999 में हुआ कारगिल युद्ध एक ऐसा युद्ध था जिसमें सेना के युवा अधिकारी अग्रणी रहे। इन रणबांकुरों के साहस और शौर्य भरे कारनामों को जन जन ने पहचाना और इन रणबांकुरों की भारत की जनता से पहचान करवाई मीडिया ने। सन 1999 में मीडिया ने पूरे देश को सेना के साथ एक आत्मीय बंधन में बांध दिया। लोगों ने घर बैठे सैनिकों को मोर्चे पर लड़ते देखा।
5: साथियों, मैं हूं मेघना उपाध्याय और इस समय कारगिल की युद्ध भूमि से मैं आपसे मुखातिब हूं। जैसा कि आप इस समय देख रहे हैं, चारों ओर हमारी सेना का भारी जमावड़ा है। तो आइए बात करते हैं हमारे एक सैनिक से। तो आपने बताया कि आप छुट्टी पर जा रहे थे?
6: जी, पर हमारे लिए देश और पलटन पहले हैं, घर बाद में।
5: आप तो काफी समय से घर से दूर हैं, क्या घर की याद नहीं आती?
6: हाँ, याद तो आती है, परंतु देश की रक्षा हमारे लिए सब कुछ है। समाचारों से पता चल रहा है कि पूरा देश हमारे साथ है। जिस माँ के हम बेटे हैं उससे भी बड़ी माँ है हमारी भारत माँ। उसकी सुरक्षा को छोड़कर घर चले जाए हो नहीं सकता।
5: तो देखा साथियों, ऐसे हैं हमारे सैनिक, हमें इन पर नाज है।
7: वाह, अरे वाह, क्या बात कही है।
6: क्या बात है,
7: सुनकर ही जोश आ गया।
6: हाँ
7: भाई विक्रम, तुम तो अभी अभी छुट्टी पर आए हो और अब ये लड़ाई, शायद तुम्हें भी युद्ध में जाना पड़े। संभल कर रहना भाई।
8: युद्ध में तो जाने ही है दोस्त, तुम चिंता बिल्कुल मत करो। मैं या तो विजय तिरंगे को ऊंचा फहरा कराऊंगा या फिर तिरंगे में लिपट कराऊंगा।
4: ये शब्द थे कैप्टन विक्रम बत्रा के, जो कारगिल युद्ध के दौरान शेरशाह के नाम से भी मशहूर हुए। युद्ध के समय उनकी बहादुरी के किस्से सुन सुनकर लोग दंग रह गए। वे एक के बाद एक खतरनाक मिशन पर जाते रहे और देश

एकजुट होकर उनकी सलामती की दुआ करता रहा। ऐसे थे 13वीं जम्मू कश्मीर राइफल के कैप्टन विक्रम बत्रा। विक्रम बत्रा का जन्म 9 सितंबर 1974 को हिमाचल प्रदेश के छोटे से नगर पालमपुर में हुआ। हिमाचल एक ऐसा राज्य जो अपनी प्राकृतिक सुंदरता और खूबसूरती के लिए जाना जाता है।

0: इतना ही नहीं, ये मनोरम राज्य जांबाजी के लिए भी प्रसिद्ध है। यहां के रणबांकुरों ने संकट की घड़ी में कुर्बानियां देकर इतिहास रचा है, दुश्मनों के छक्के छुड़ाए हैं। कारगिल युद्ध में इस राज्य के लगभग 30 जांबाजों ने शहादत देकर कुर्बानियों की परंपरा को आगे बढ़ाया है। और इसी पावन भूमि पर जन्म लिया हमारे इस परमवीर विक्रम बत्रा ने। विक्रम बचपन से ही निडर और साहसी थे। सन 1994 में विक्रम ने एनसीसी के सदस्य के रूप में गणतंत्र दिवस की परेड में भाग लिया और जब वहां से लौट कर आए तो वे अपना लक्ष्य निर्धारित कर चुके थे और वो था भारतीय सेना में भर्ती। जुलाई 1996 में विक्रम ने भारतीय सेना अकादमी देहरादून में प्रवेश लिया। आईएमए में ट्रेनिंग के दौरान बहुत सी चीजों ने उन्हें प्रभावित किया, जैसे वहां का अनुशासन, सैनिक प्रशिक्षण और उन पंक्तियों ने जो अकादमी की बरसों से चली आ रही परंपरा है। अपने देश की सुरक्षा, सम्मान और कल्याण हमेशा और हर बार सर्वप्रथम है। फिर है आपके सैनिकों का सम्मान, कल्याण और सुविधा। आपकी अपनी सुविधा, आराम और सुरक्षा हमेशा और हर बार आखिर में आते हैं। ये पंक्तियां विक्रम की भावनाओं, विचारों और कार्यों में रच बस गई थीं। 6 दिसंबर 1997 को उन्हें 13वीं जम्मू कश्मीर राइफल्स टुकड़ी में लेफ्टिनेंट के पद पर नियुक्त किया गया। युद्ध आरंभ हो गया था। एक जून 1999 को उनकी टुकड़ी कारगिल चली गई। कारगिल युद्ध के दौरान कैप्टन विक्रम बत्रा ने कई सैनिक अभियानों में अपनी टुकड़ी का नेतृत्व किया और हर मिशन में सफलता ने उनके कदम चूमे। कारगिल युद्ध के समय उन्होंने कई मिशन में भाग लिया, कई पर्वत चोटियों यानी पॉइंट्स पर अपूर्व शौर्य दिखाते हुए उन पर कब्जा किया। मिशन 1, दिन 12 जून 1999। कारगिल में तोलोलिंग नामक स्थान पर भीषण युद्ध चल रहा था। 25,000 फीट की ऊंचाई पर स्थित ये चोटी सामरिक दृष्टि से काफी महत्वपूर्ण थी। इस चोटी से दुश्मन श्रीनगर लेह राष्ट्रीय राजमार्ग को लगातार निशाना बना रहा था। कैप्टन विक्रम बत्रा की यूनिट को वहां लड़ रहे सैन्य दल की सहायता के लिए भेजा गया। 2 रात भयानक युद्ध चला और हमारी सेना ने कैप्टन विक्रम बत्रा के नेतृत्व में हम्प पर कब्जा कर लिया। वहीं से विक्रम ने अपने भाई विशाल को, जिसे वे प्यार से कुशु कहते थे, एक पत्र लिखा।
1: प्यारे कुशु, तुम रोज सुन रहे होगे कि यहां घमासान युद्ध चल रहा है। मैं 15,500 फीट की ऊंचाई पर दुश्मनों से लड़ रहा हूं। जान को पूरा खतरा है, कुछ भी हो सकता है। आज हम जीत तो गए हैं, लेकिन आज का दिन हमारी बटालियन के लिए

0: दुख से भरा है, क्योंकि आज हमने एक अफसर को लड़ाई में खो दिया है। प्यारे कुशु, मां पिताजी को संभालना, क्योंकि यहां कुछ भी हो सकता है। तुम्हारा भाई विक्रम।
1: ऐसा था इस युवा सैनिक अधिकारी का हृदय। विजय के उल्लास में भी अपने साथियों को खोने की कसक उनके मन में थी। मिशन टू, दिन 19 जून 1999, स्थान 0.5140। 15,000 फीट ऊंची ये वो चोटी थी जहां से दुश्मन हमारे दो हेलीकॉप्टर गिरा चुका था। इसे जीतना बेहद जरूरी था, क्योंकि ऊंचाई पर होने के कारण इस पॉइंट से दुश्मन हमारी सेना को भारी नुकसान पहुंचा रहा था। हमारी सेना के लिए केवल एक रात का समय था। विक्रम ने अपने सैनिकों को उस पर्वत की खड़ी ढलान पर चढ़ने का आदेश दिया। सैनिक चुपचाप पहाड़ी पर चढ़ते रहे। सुबह के 3:15 का समय था। हमारे सैनिक शत्रुओं के बंकरों के समीप थे। तभी दुश्मन की ओर से रेडियो सिग्नल आया।
2: शेरशाह, तुम क्यों आ गए बीच में? अरे तुम में से एक भी जिंदा नहीं लौटेगा।
3: 1 घंटे में ही तुम्हें मालूम चल जाएगा कि ऊपर कौन रहेगा।
2: अरे देख लेंगे।
1: कैप्टन विक्रम बत्रा का दुश्मनों के बीच भी इतना नाम था कि वे इन्हें उनके कूट नाम से भी जानते थे। दुश्मन को ये तो खबर थी कि भारतीय सैनिक उनकी तरफ बढ़े चले आ रहे हैं, पर शायद इस बात से वो बेखबर था कि हमारे सैनिक उनके इतने करीब हैं। विक्रम ने अपनी घड़ी की ओर देखा। 3:24 हो गए थे। 4:30 सूर्योदय हो जाएगा। उनके पास केवल 1 घंटे का समय था। बस फिर क्या था, उन्होंने दुश्मनों के बंकर पर धावा बोल दिया। और कुछ ही देर में विक्रम और उनके साथियों ने दुश्मन को वहां से खदेड़ दिया। 0.5140 पर अब हमारा कब्जा था। इस विजय के बाद एक रिपोर्टर ने उनसे पूछा,
4: कैप्टन विक्रम, 0.5140 की विजय के बाद कैसा एहसास हो रहा है?
0: मैं और अधिक चोटियों पर कब्जा करना चाहता हूँ। ये दिल मांगे मोर।
5: क्या बात कही है?
4: ये दिल मांगे मोर। How nice. विक्रम जी, आप पर सारे देश को नाज है, और हमारी कामना है कि इसी तरह आपका विजय अभियान चलता रहे और चलता रहे।
0: धन्यवाद।
1: इस प्रसारण को पूरा देश देख रहा था। लाखों दर्शकों ने उनका उत्साह भरा उत्तर सुना। ऐसे समय में जब लोगों की आंखें आंसुओं से नम थी और दिल डर से सहमे हुए थे, विक्रम बत्रा के इस एक जवाब ने सबके चेहरों पर एक मुस्कान छोड़ दी। देश का बच्चा बच्चा अब उन्हें जानने लगा था।

और अब आई बारी उस मिशन की जिसने विक्रम बत्रा को अमर बना दिया। मिशन 3 टाइगर हिल्स पिंपल पोस्ट 6 जुलाई 1999 की शाम। 13वीं जम्मू कश्मीर राइफल्स की कमान एक बार फिर कैप्टन विक्रम बत्रा के हाथों में थी।

0: हमें जो सूचना मिली है उसके अनुसार एक बात पक्की है कि हमें दुश्मन पर पीछे से हमला करना होगा।
1: जी
2: चलो संभल कर
0: अब मंजिल पर पहुंच गए हैं। इशारा मिलते ही टूट पड़ना।
1: जी सर।
0: देखो तुम यही पोजीशन संभालो।
1: जी सर।
0: और तुम दाहिनी तरफ जाओ।
1: जी सर।
3: हमला करो दुर्गा माता की जय। माता की जय। चलो चलो भाई चलो।
4: दुश्मन उनके खूंखार हमले से घबराकर पीछे हटने लगा था। तभी विक्रम ने देखा कि उनका एक सहयोगी अफसर दुश्मनों से घिरा हुआ है। जब वो उन्हें बचाने के लिए बंकर से बाहर दौड़े, उनके एक सूबेदार ने उन्हें रोकना चाहा।
5: साहब जी आप मत जाइए, मैं जाता हूँ।
0: नारायण तू बीवी बचवा रहा है, पीछे हट।
5: नहीं लेकिन साहब जी,
0: मैंने कहा ना पीछे हट जा, मैं जा रहा हूँ।
5: साहब जी
4: अभी विक्रम लेफ्टिनेंट नवीन को घसीटते हुए बंकर की ओर ले ही जा रहे थे कि दुश्मन की एक गोली उनकी छाती में आ लगी।
0: क्या हुआ तुम्हें? नहीं।
4: और तभी उन्होंने वीर गति पाई। उस दिन भारत ने पिंपल पोस्ट पर तो विजय पा ली, परंतु भारत मां का एक शेर सपूत शहीद हो गया। उनका पार्थिव शरीर पूरे सैनिक सम्मान के साथ जब उनके जन्म स्थान पालमपुर में लाया गया तो इस अमर शहीद के दर्शनों के लिए हजारों की भीड़ उमड़ पड़ी।

0: आज उस शिखर का नाम कैप्टन विक्रम बत्रा शिखर है। उनके असाधारण शौर्य के लिए कृतज्ञ राष्ट्र ने उन्हें मरणोपरांत देश के सर्वोच्च वीरता पदक परमवीर चक्र से सम्मानित किया। याद आती है एक बार फिर वही बात जो कैप्टन विक्रम बत्रा ने युद्ध में जाने से पहले अपने मित्र को कही थी।
1: मैं या तो विजयी तिरंगे को ऊंचा फहरा कराऊंगा या फिर तिरंगे में लिपट कराऊंगा।
0: कैप्टन विक्रम बत्रा ने अपने दोनों वचन निभाए। उन्होंने दुश्मन को पराजित कर भारत के झंडे को 0.5140 पर फहराया और 0.4875 नंबर शिखर पर युद्ध में प्राण देकर बड़ी शान से तिरंगे में लिपट कर घर आए।

0: श्रोताओं, अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम कैप्टन विक्रम बत्रा, और अब इसी के साथ हमारा आज का उमंग कार्यक्रम यहीं पर समाप्त होता है। तो अपने मित्र अजीत
1: और विमलेश को उमंग कार्यक्रम की तकनीकी टीम के साथ कल तक के लिए आज्ञा दीजिए।
0: नमस्कार, नमस्कार।
2: उमंग, उमंग, उमंग, उमंग, उमंग।
3: अभी आप सुन रहे थे NCERT का प्रायोजित कार्यक्रम उमंग। आप सुन रहे हैं आगा

आकाशवाणी मध्य प्रदेश। और अब आनंद लीजिए फिल्म संगीत का। हेड स्टोरी 3 से ये गीत सुनिए। अरमान मलिक, नीति मोहन की आवाज़ है, रश्मि विराग ने लिखे हैं बोल और संगीत भी है अमाल मलिक का।

और अब अगली आवाज़ सुनिए अलका याग्निक और अरिजीत सिंह की फिल्म तमाशा से। ये गीत लिखा है इरशाद कामल ने और संगीत है ए आर रहमान का।

और अब अगली आवाज़ सुनिए अरिजीत सिंह की खामोशियां फिल्म से सईद कादरी का लिखा हुआ गीत है और इसे संगीत से सजाया है जीत गांगुली ने।

और अब अगली आवाज़ सुनिए अरिजीत सिंह और पलक मुछाल की फिल्म गब्बर इज़ बैक से। मनोज यादव के लिखे हुए बोल हैं और संगीत में पिरोया है चिरंतन भट्ट ने।

और अब कार्यक्रम का अंतिम गीत सुनिए कनिका कपूर की आवाज में। फिल्म का नाम है एक पहेली लीला। इसके बोल लिखे हैं कुमार ने और इसमें संगीत दिया है डॉक्टर ज्यूस ने।

अदम्य शक्ति एवं शौर्य की पहचान है भारतीय सेना। जल थल गगन की रक्षा का वरदान है भारतीय सेना। हर संकट का समाधान है भारतीय सेना। भारत का गौरव है, स्वाभिमान है भारतीय सेना।

0: आज पूरी दुनिया हमारी सेना की वीरता और मारक क्षमता की बुरी बुरी प्रशंसा कर रही है।
1: हो चुनौती कोई भी, कैसी भी मुश्किल, हर जगह है।

0: पहुंचाएं हम जन जन तक, सपनों को दें हम आकार।
1: ये आकाशवाणी मध्य प्रदेश है। कुछ ही पलों में आकाशवाणी दिल्ली से अनुप्रसारित किए जाएंगे हिंदी में समाचार, कृपया प्रतीक्षा करें।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं जागृति शर्मा। मंत्रिमंडल की आर्थिक मामलों की समिति ने आज सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अंतर्गत राशन परिवहन और प्रबंधन सहायता योजना सार्थक पीडीएस को जारी रखने की अनुमति दे दी है। इसके लिए केंद्र सरकार की ओर से 25,530 करोड़ रुपए का आवंटन किया गया है। नई दिल्ली में संवाददाताओं से बातचीत में सूचना और प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा कि ये योजना राज्य एजेंसियों को अंतर्राज्यीय खाद्यान्न परिवहन में सहायता प्रदान करेगी, उचित मूल्य की दुकानों को मदद करेगी और सार्वजनिक वितरण प्रणाली के आधुनिकीकरण में सहयोग करेगी।
1: इस प्रोग्राम में तीन बड़े सुधार आज अप्रूव हुए हैं। सबसे पहला, राज्य सरकारों के एजेंसीज राज्य में तो एफसीआई का बड़ा गोडाउन होता है, वहां से डिफरेंट डिस्ट्रिक्ट्स में डिविजन्स में फेयर प्राइस शॉप तक पहुंचाने का जो कॉस्ट होती है उस कॉस्ट को सपोर्ट करेंगे। दूसरा, फेयर प्राइस शॉप्स है उनमें डीलर्स का रिमुनरेशन रखा गया था, उसको बढ़ाने की जरूरत थी तो वो भी फैसला लिया गया। और तीसरा फैसला, टेक्नोलॉजी का यूज करके पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम को हम कैसे मॉडर्नाइज कर सकते हैं।
0: गृह मंत्री अमित शाह ने केंद्रीय मंत्रिमंडल द्वारा सार्थक पीडीएस योजना के दूसरे चरण की मंजूरी का स्वागत किया है। एक सोशल मीडिया पोस्ट में श्री अमित शाह ने कहा कि सरकार गरीबी उन्मूलन योजनाओं को अधिक पारदर्शी और सुविधाजनक बनाने के लिए उनमें प्रौद्योगिकी का समावेश कर रही है। सर्वोच्च न्यायालय ने निर्वाचन आयोग द्वारा कराई गई मतदाता सूचियों की विशेष गहन पुनरीक्षण एसआईआर प्रक्रिया की वैधता को बरकरार रखा है। न्यायालय ने कहा कि एसआईआर प्रक्रिया स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनावों की संवैधानिक अनिवार्यताओं को आगे बढ़ाती है। मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत और न्यायमूर्ति जॉय माल्या बागची की खंडपीठ ने उन याचिकाओं पर फैसला सुनाया जिनमें पिछले साल जून महीने में निर्वाचन आयोग द्वारा बिहार में एसआईआर आयोजित करने के लिए जारी अधिसूचना को चुनौती दी गई थी। नई दिल्ली में संवाददाताओं को संबोधित करते हुए भाजपा प्रवक्ता सुधांशु त्रिवेदी ने सर्वोच्च न्यायालय के इस फैसले को कांग्रेस समेत विपक्ष की संवैधानिक पराजय बताया है। संघ लोक सेवा आयोग ने पहली बार सिविल सेवा प्रारंभिक परीक्षा 2026 की अनंतिम उत्तर कुंजी जारी की है। आयोग ने कहा कि परीक्षा में शामिल हुए उम्मीदवार 31 मई शाम 6 बजे तक upsconline.nic.in पर उपलब्ध प्रश्न पत्र आपत्ति पोर्टल के माध्यम से अपनी आपत्तियां प्रस्तुत कर सकते हैं। सर्वोच्च न्यायालय कक्षा 9 के विद्यार्थियों के लिए कम से कम दो भारतीय भाषाओं सहित तीन भाषाओं का अध्ययन अनिवार्य करने संबंधी केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की नीति को चुनौती देने वाली याचिका पर विचार करेगा। शीर्ष न्यायालय ने केंद्र सरकार, बोर्ड और राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद को नोटिस जारी कर 2 सप्ताह के भीतर जवाब मांगा है। केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो ने नीट यूजी पेपर लीक मामले में आज 3 और लोगों को गिरफ्तार कर लिया है। इनमें महाराष्ट्र के लातूर का एक डॉक्टर और पुणे स्थित कोचिंग संस्थान का एक शिक्षक शामिल हैं। जांच एजेंसी ने पुणे के ही एक अन्य कोचिंग संस्थान के भौतिक विज्ञान शिक्षक को भी गिरफ्तार किया है। इस मामले में अब तक कुल 13 लोगों को गिरफ्तार किया जा चुका है। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने कनाडा की अपनी यात्रा के दूसरे दिन टोरंटो में कनाडा के वरिष्ठ नेताओं और संस्थागत निवेशकों के साथ कई उच्च स्तरीय बैठकें की। श्री गोयल ने कहा कि इस बैठक का उद्देश्य द्विपक्षीय सहयोग को प्रगाढ़ बनाना और कार्यनीतिक क्षेत्रों में निवेश और तकनीकी साझेदारी को बढ़ावा देना है। कई प्रमुख मानवाधिकार संगठनों और छात्र संस्थाओं ने पाकिस्तान में बलूच नागरिकों के जबरन गायब किए जाने की बढ़ती घटनाओं की कड़ी निंदा की है। आरोप है कि इन घटनाओं को पाकिस्तानी सुरक्षा बलों द्वारा अंजाम दिया जा रहा है। इन संगठनों ने कहा कि कई प्रभावित परिवारों के लिए ईद का त्यौहार शोक, अनिश्चितता और अपनों से बिछड़ने के दर्द में बदल गया है। जापानी संसद ने आज विदेशी संकट से निपटने के लिए सूचना जुटाने की प्रक्रिया को केंद्रीकृत करने हेतु राष्ट्रीय खुफिया परिषद की स्थापना के लिए कानून को मंजूरी दे दी। परिषद की स्थापना जापान की प्रधानमंत्री सनाए ताकायची के शासन के प्रमुख उद्देश्यों में एक है। आईपीएल क्रिकेट के एलिमिनेटर में सनराइजर्स हैदराबाद ने राजस्थान रॉयल्स के साथ मुकाबले में टॉस जीतकर गेंदबाजी का फैसला किया है। मैच की विजेता टीम शुक्रवार को दूसरे क्वालिफायर में गुजरात टाइटन से मुकाबला खेलेगी। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

मीडियम वेव न्यूज़ ऑन AIR मोबाइल एप्लीकेशन साथ ही DTH के ऑडियो चैनल पर ये आकाशवाणी मध्य प्रदेश है और अब समय है कार्यक्रम विवरण का। अब से कुछ ही देर में शाम 7:21 पर आकाशवाणी भोपाल की प्रस्तुति होगा कार्यक्रम ग्राम सभा। शाम 8:00 कार्यक्रम सुर्खियों में प्रस्तुत होगा। शाम 8:15 पर फिल्म संगीत का आनंद लीजिएगा। रात 9:30 पर आकाशवाणी दिल्ली के अनुप्रसारण में सुन सकते हैं कार्यक्रम चर्चा का विषय है। रात 10:00 नाटक उपेक्षित प्रस्तुत होगा, जिसके प्रस्तुतकर्ता जितेंद्र स्वरूप राजन और लेखक घनश्याम सिंह तोमर हैं। रात 10:30 पर शास्त्रीय संगीत का कार्यक्रम राग रजनी में आनंद लीजिएगा। पंडित विश्व मोहन भट्ट के गिटार वादन का राग होगा रागेश्री। अब कुछ मुख्य कार्यक्रम जो आप सुनेंगे कल यानी 28 मई दिन गुरुवार की सभा में। कल सुबह 6:05 पर वंदना और 6:30 पर श्री रामचरितमानस गान का आनंद लीजिएगा। सुबह 6:40 पर चिंतन और कल सुबह 6:45 पर कृषि चर्चा सुनिएगा। कल सुबह 7:20 पर नमस्कार भोपाल प्रस्तुत होगा। कल सुबह 9:02 पर फिल्म संगीत और 9:15 पर सुगम संगीत का आनंद लीजिएगा। कल सुबह 9:30 पर नाटक डाकू बनते बनते प्रस्तुत होगा, जिसकी लेखिका हैं आशा शुक्ला और प्रस्तुतकर्ता जगदीश अधिकारी हैं। कल सुबह 10:00 जिले की चिट्ठी और सुबह 10:05 पर गीत सागर कार्यक्रम प्रस्तुत होगा। ये थे कल सुबह 11:00 तक आकाशवाणी भोपाल के प्रसारण में प्रस्तुत होने वाले कार्यक्रम। अब कुछ प्रमुख कार्यक्रम जो आप सुनेंगे कल सुबह 11:00 से आकाशवाणी मध्य प्रदेश के प्रसारण में। कल सुबह 11:00 फोन इन कार्यक्रम बात आपकी गीत हमारे प्रस्तुत होगा। कल दोपहर 12:00 2:30 और रात 10:00 आपकी फरमाइश कार्यक्रम प्रस्तुत होगा, जिसमें हम पूरी करेंगे आपके पत्रों द्वारा भेजी गई गीतों की फरमाइश। दोपहर 12:30 पर कार्यक्रम संग्रहालय से के अंतर्गत सिसकियां की दूसरी कड़ी प्रस्तुत होगी। कल दोपहर 1:00 महिला सभा, 1:30 पर लोक संगीत, 1:45 पर सुगम संगीत और शाम 5:02 पर कार्यक्रम युववाणी प्रस्तुत होगा। ये सभी कार्यक्रम आकाशवाणी जबलपुर का योगदान रहेंगे। कल शाम 5:33 6:30 8:15 और रात 9:30 पर फिल्म संगीत प्रस्तुत होगा। शाम 6:00 NCERT का प्रायोजित कार्यक्रम प्रस्तुत किया जाएगा और कल रात 10:30 पर शास्त्रीय संगीत का कार्यक्रम राग रजनी में आनंद लीजिएगा। पंडित समरेश चौधरी के ख्याल गायन का राग होगा गोरख कल्याण। इसी के साथ कल और आज की सभा के कार्यक्रमों का विवरण यहीं संपन्न हुआ। आप सुन रहे हैं आकाशवाणी मध्य प्रदेश।

0: अरे रीमा, सोलर पैनल लगवा ले, सोलर पैनल लगवा ले।
1: कब से मुझे सारे दोस्त बोलते थे, पर मैंने माना जब प्रधानमंत्री जी ने कहा
2: भारत सरकार का लक्ष्य सोलर पावर से बिजली बिल जीरो करने का भी है।
1: मैंने प्रधानमंत्री जी के कहने पर सोलर पैनल लगवाया और मेरा बिजली बिल जीरो आया। आप भी लगवा लो।
3: पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना आज ही रजिस्टर करें pmsuryaghar.gov.in पर। सूर्य घर।
4: आकाशवाणी मध्य प्रदेश से प्रस्तुत है प्रादेशिक समाचार। नमस्कार, समाचारों के साथ मैं अभिषेक कटियार। सबसे पहले इस बुलेटिन के मुख्य समाचार। देश भर में बढ़ती गर्मी के बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लोगों से सावधानी बरतने और हाइड्रेटेड रहने की अपील की। केंद्र सरकार ने सार्थक पीडीएस योजना को जारी रखने की मंजूरी दी, जिसके लिए 25,530 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया। खजुराहो में केंद्रीय आयुष मंत्री प्रताप राव जाधव ने योग दिवस काउंटडाउन कार्यक्रम का शुभारंभ किया। और प्रदेश के उप मुख्यमंत्री राजेंद्र शुक्ल ने आज एयर एम्बुलेंस एमपी पोर्टल और मोबाइल एप्लीकेशन लॉन्च किया। अब समाचार विस्तार से। देश भर में बढ़ती गर्मी के बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लोगों से सावधानी बरतने की अपील की है। उन्होंने सोशल मीडिया पर खुद को हाइड्रेटेड रखने और दोपहर की तेज धूप में बाहर निकलने से बचने और घर से निकलते वक्त पानी साथ रखने की अपील की है। प्रधानमंत्री ने यह भी कहा कि जो प्यासा हो उसे पानी पिलाएं और जानवरों व पक्षियों के लिए भी बाहर पानी रखें। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज शाम गंगटोक में सिक्किम विश्वविद्यालय के 7वें दीक्षांत समारोह में शामिल हुई। समारोह में 33 विभागों के करीब 14,000 छात्रों को उपाधियां प्रदान की गईं। 285 मेधावी छात्रों को स्वर्ण और रजत पदक से नवाजा गया, जिसमें 199 छात्राएं शामिल रहीं। राज्यपाल ओम प्रकाश माथुर और मुख्यमंत्री प्रेम सिंह तमांग भी इस अवसर पर उपस्थित रहे। केंद्र सरकार ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में हुई आर्थिक मामलों की मंत्रिमंडलीय समिति की बैठक में सार्थक पीडीएस योजना को अम्ब्रेला योजना के रूप में जारी रखने की मंजूरी दी है। इसके लिए केंद्र सरकार ने 25,530 करोड़ रुपए का प्रावधान किया है। इस योजना के तहत एआई, मशीन लर्निंग और ब्लॉकचेन जैसी उन्नत तकनीकों का उपयोग कर पीडीएस संचालन को आधुनिक बनाया जाएगा। सार्थक पीडीएस योजना की जानकारी देते हुए केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने बताया कि
5: इस प्रोग्राम में तीन बड़े सुधार आज अप्रूव हुए हैं। सबसे पहला, जो सरकारों के एजेंसीज राज्य में एफसीआई का बड़ा गोडाउन होता है, वहां से डिफरेंट डिस्ट्रिक्ट्स में, डिविजन्स में फेयर प्राइस शॉप तक पहुंचाने का जो कॉस्ट होती है, उस कॉस्ट को सपोर्ट करेंगे। दूसरा, फेयर प्राइस शॉप्स है उनमें डीलर्स का रिमुनरेशन को बढ़ाने की जरूरत थी, तो वो भी फैसला लिया गया। और तीसरा फैसला, टेक्नोलॉजी का यूज करके पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम को हम कैसे मॉडर्नाइज कर सकते हैं।
4: सर्वोच्च न्यायालय ने निर्वाचन आयोग द्वारा कराई गई मतदाता सूचियों की विशेष गहन पुनरीक्षण यानी एसआईआर प्रक्रिया की वैधता को बरकरार रखा है। मुख्य न्यायाधीश जस्टिस सूर्यकांत और न्यायमूर्ति जॉय मौल्या बागची की पीठ ने कहा कि निर्वाचन आयोग लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1950 के तहत एसआईआर कराने की पूर्ण शक्ति रखता है। एक्ट्रेस तुषा शर्मा की संदिग्ध मौत के मामले में भोपाल कोर्ट ने आरोपी पति समर्थ सिंह को 29 मई तक सीबीआई रिमांड पर भेज दिया है। सीबीआई की टीम उसे लेकर घटनास्थल का निरीक्षण भी करने गई। वहीं मध्य प्रदेश हाईकोर्ट में रिटायर्ड जज और सास गिरबाला सिंह की अग्रिम जमानत रद्द करने की मांग वाली याचिका पर सभी पक्षों को सुनने के बाद कोर्ट ने फैसला सुरक्षित रख लिया है। वहीं दूसरी तरफ सुप्रीम कोर्ट ने सीबीएसई की नई भाषा नीति पर रोक को लेकर कोई भी दिशा निर्देश देने से इनकार कर दिया है। भारत के चीफ जस्टिस सूर्यकांत ने इस मामले में सीबीएसई को जवाब देने के लिए नोटिस दिया है। सीबीएसई की नई नीति के मुताबिक कक्षा 9-10 के लिए स्टूडेंट्स को 3 भाषाएं पढ़नी होंगी, जिसमें 2 भाषाओं का नेटिव इंडियन लैंग्वेज होना जरूरी है। इसी नीति के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में कई याचिकाएं दायर की गई थी। अदालत ने मामले की अगली सुनवाई के लिए 15-16 जुलाई की तारीख दी है। अब समाचारों में वक्त है एक ब्रेक का।
6: ये समाचार आप आकाशवाणी मध्य प्रदेश से सुन रहे हैं। ये समाचार बुलेटिन YouTube पर मध्य प्रदेश न्यूज ऑल इंडिया रेडियो चैनल पर और Facebook के साथ ही X प्लेटफॉर्म पर AIR न्यूज भोपाल पेज पर सुने जा सकते हैं। इसके अलावा आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर या newsonair ऐप पर भी समाचार सुन सकते हैं।
4: समाचारों में पुनः आपका स्वागत है। खजुराहो के पश्चिमी मंदिर परिसर में केंद्रीय

ये आकाशवाणी मध्य प्रदेश है। इस समय हमारे स्टूडियोज की घड़ी में संध्या के 7:10 हुए हैं और अब सुनिए प्रादेशिक समाचार।

0: आयुष राज्य मंत्री प्रताप राव जाधव ने अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस की 100 दिवसीय काउंटडाउन सीरीज के 25वें कार्यक्रम का शुभारंभ किया। कार्यक्रम में करीब 2000 लोगों ने भाग लिया। श्री जाधव ने घोषणा की कि इस वर्ष अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस का मुख्य समारोह 21 जून को कोलकाता में आयोजित किया जाएगा। इस बार की थीम स्वस्थ वृद्धावस्था के लिए योग रखी गई है। इस मौके पर श्री जाधव ने कहा कि
1: आज खजुराहो और छतरपुर केवल अतीत के प्रतीक नहीं बल्कि योग अध्यात्म और भारतीय परंपरा के और पुनर्जागरण के जीवित केंद्र के रूप में अपनी विशिष्ट पहचान स्थापित कर रहे हैं। आधुनिक युग में योग हमारे जीवन का एक अनिवार्य और अभिन्न अंग बनकर उभरा है। योग एक प्रगतिशील और स्वस्थ समाज के

0: और छतरपुर केवल अतीत के प्रतीक नहीं बल्कि योग अध्यात्म और भारतीय परंपरा के और पुनर्जागरण के जीवित केंद्र के रूप में अपनी विशिष्ट पहचान स्थापित कर रहे हैं। आधुनिक युग में योग हमारे जीवन का एक अनिवार्य और अभिन्न अंग बनकर उभरा है। योग एक प्रगतिशील और स्वस्थ समाज की आधारशिला है।
1: उप मुख्यमंत्री राजेंद्र शुक्ल ने आज मंत्रालय में एयर एम्बुलेंस एमपी पोर्टल और मोबाइल एप्लीकेशन का शुभारंभ किया। इसमें एयर एम्बुलेंस सेवा के लिए अनुरोध की प्रक्रिया अब और सरल व तेज हो जाएगी। पोर्टल में रियल टाइम ट्रैकिंग, डिजिटल सेवा अनुरोध और समयबद्ध अनुमोदन अलर्ट जैसी सुविधाएं उपलब्ध होंगी। सीबीआई ने नीट यूजी पेपर लीक मामले में आज 3 और लोगों को गिरफ्तार किया है, जिनमें महाराष्ट्र के लातूर का एक डॉक्टर और पुणे के 2 कोचिंग संस्थानों के शिक्षक शामिल हैं। इस मामले में अब तक कुल 13 लोगों की गिरफ्तारी हो चुकी है। भारत के प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू की पुण्यतिथि पर भोपाल में आज कांग्रेसजनों ने श्रद्धांजलि कार्यक्रम आयोजित किए। राज्यसभा सांसद एवं पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह ने रोशनपुरा चौराहे पर स्थापित पंडित नेहरू की प्रतिमा पर पुष्पार्चन कर उन्हें श्रद्धांजलि दी। वहीं प्रदेश कांग्रेस कार्यालय में भी उनके चित्र पर माल्यार्पण किया गया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 31 मई को मन की बात कार्यक्रम के माध्यम से देश और विदेश के लोगों से अपने विचार साझा करेंगे। ये इस मासिक रेडियो कार्यक्रम का 134वां एपिसोड होगा। श्रोता टोल फ्री नंबर 1800117800 पर कॉल करके नरेंद्र मोदी एप्लीकेशन या MyGOV ओपन फोरम के माध्यम से भी अपने विचार और सुझाव भेज सकते हैं। आगामी एपिसोड के लिए सुझाव 29 मई तक स्वीकार किए जाएंगे। प्रदेश ने न्यूनतम समर्थन मूल्य पर 13,36,000 किसानों से 103,48,000 मीट्रिक टन गेहूं का उपार्जन कर देश में पहला स्थान हासिल किया है। खाद्य मंत्री गोविंद सिंह राजपूत ने बताया कि कोविड काल को छोड़कर विगत 10 वर्षों में यह सर्वाधिक गेहूं उपार्जन है। वहीं मध्य क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी के 16 जिलों में पीएम सूर्य घर योजना के तहत अब तक 39,975 उपभोक्ता पंजीकृत हो चुके हैं और उनके खातों में 311,64,00,000 रुपये से अधिक की सब्सिडी जमा कराई जा चुकी है। अब बात करते हैं मौसम की। प्रदेश में नौतपा के दौरान भीषण गर्मी का दौर जारी है। मौसम विभाग ने आज निवाड़ी, टीकमगढ़, छतरपुर, पन्ना, सतना और रीवा जिलों में तीव्र लू का रेड अलर्ट जारी किया है। वहीं कल प्रदेश के 16 शहरों में अधिकतम तापमान 44 डिग्री या उससे अधिक दर्ज किया गया। इसमें खजुराहो सबसे गर्म रहा, जहां तापमान 46.4 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच गया। मौसम विभाग के अनुसार 28 मई तक गर्मी अपने चरम पर बनी रहेगी, लेकिन 29 मई से मौसम बदलना शुरू होगा और कई जिलों में आंधी व बारिश की गतिविधियां बढ़ सकती हैं। विभाग का कहना है कि 10 से 16 जून के बीच मानसून प्रदेश में दस्तक दे सकता है। अब कुछ समाचार संक्षेप में। राष्ट्रीय तकनीकी शिक्षक प्रशिक्षण एवं भोपाल स्थित अनुसंधान संस्थान 3 से 5 जून तक भारतीय ज्ञान परंपरा विषय पर 3 दिवसीय आवासीय प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित कर रहा है, जिसमें विभिन्न शासकीय महाविद्यालयों के 60 प्राध्यापक भाग लेंगे। खरगोन जिला सहकारी केंद्रीय बैंक की ठिपगांव शाखा में 41,00,000 रुपये के गबन का मामला सामने आने पर बैंक प्रबंधन ने 3 कर्मचारियों को निलंबित कर विभागीय जाँच शुरू कर दी है। शिवपुरी जिले में बाल श्रम रोकथाम को लेकर कलेक्टर ने दुकानों, ढाबों, कारखानों में बाल श्रमिक न होने की जांच करने और होने पर कार्रवाई करने के निर्देश अधिकारियों को दिए। पेयजल समस्याओं की सतत निगरानी और हैंडपंप संधारण संबंधी शिकायतों के निराकरण के लिए आगरमालवा में जिला स्तरीय नियंत्रण कंट्रोल रूम बनाया गया है। कटनी में IHSDP योजना के तहत प्रेमनगर बस्ती में बने आवासों पर 8 अनाधिकृत कब्जों को जिला प्रशासन ने अतिक्रमण मुक्त कराया। राजगढ़ में आज जिला पंचायत सभाकक्ष में जल संचयन जन भागीदारी अभियान के तहत तकनीकी मार्गदर्शन कार्यशाला का आयोजन किया गया। शहडोल जिले में खरीफ फसल की बोनी का लक्ष्य 3,000 हेक्टेयर बढ़ाकर धान की बोली का लक्ष्य 1,50,000 हेक्टेयर किया गया है। खंडवा जिला चिकित्सालय सह चिकित्सा महाविद्यालय में विश्व तम्बाकू निषेध सप्ताह के अंतर्गत जागरूकता कार्यक्रम का आयोजन किया गया। नर्मदापुरम कलेक्टर ने आज CM हेल्पलाइन में उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले जिलाधिकारियों को प्रमाण पत्र देकर सम्मानित किया। और IPL में अब से कुछ देर में सनराइजर्स हैदराबाद और राजस्थान रॉयल्स के बीच एलिमिनेटर मैच खेला जाएगा। जो टीम जीतेगी वह शुक्रवार को गुजरात टाइटन से भिड़ेगी। इस बुलेटिन में बस इतना ही। अगला बुलेटिन सुनिए सुबह 7:10 पर। नमस्कार।

ये आकाशवाणी मध्य प्रदेश है। कुछ ही पलों में हमारा अगला प्रसारण होगा। आकाशवाणी भोपाल की प्रस्तुति में अब सुनिए कार्यक्रम ग्राम सभा।

ग्राम सभा कार्यक्रम सुनने वाले हमारे सभी पंच भैया जीजी बहना जनों को आरती जीजी की राम राम पहुंचे। अब भैया हर देखो तपन तो खूब जम के पड़ी है और तपन पड़वे भी काहे नहीं, नौ तपा चल रहे हैं सो तपने तो है ही, पर अपन को क्या बात को भी ध्यान रखने हैं कि अपन को ज़्यादा गर्मी ना लग जावे। सो भैया हर ठंडे के लाजे पंखा कूलर एसी सबको सहारा ले रहे हैं, पर भैया हरो अपने आप को ठंडो करवे के लाने इनको सहारा तो लो पर एक सीमित मात्रा में, नहीं तो देखो इनसे का हो रहा है, प्रदूषण तो फैल ही रहा है। सो दिनों दिन सारे शहर गांव सब देखो ऐसे तप रहे हैं कि वो सब जो है अपने जो अपन इनको उपयोग कर रहे हैं ना अपने ठंडे करवे के लाने उनको ही परिणाम है। पर अगर अपन ऐसे स्रोतों को उपयोग करवे जिसे कि अपन को जो प्रदूषण भी ना होवे और अपन को उसे फायदा भी होवे, तो वैसे ही में एक है ऊर्जा के जो स्रोत हैं वो हैं अपने सौर ऊर्जा। सौर ऊर्जा अपन देख रहे हैं कि अपन के सभी क्षेत्रों में उपयोगी हो रहा है, चाहे घरों में अपने बिजली के साधन चलावे के लाने हो या अपनी खेती बाड़ी में हो। खेती बाड़ी की अगर अपन बात कर लें तो अपन के इके काजे अपने आधुनिक और किफ़ायती और पर्यावरण के अनुकूल बनो रहो है, जो इसे ना केवल अपने डीजल की बिजली की खर्च में कमी आ रही है बल्कि अपने जो है इन जो मशीनें हैं उनको उपयोग करके अपन सीमित मात्रा में या सीमित मूल्य में भी अपनों काम कर पा रहे हैं। सो वही रूप में अपने अगर अपन बात करवें तो अपन के प्रमुख जो हैं अपने जो यंत्र हैं वो सोलर वाटर पम्प है, सोलर ड्रायर है, ग्रीन हाउस सेंसर है और एग्री वोल्टेक्स है। ये सभी जो सोलर यंत्र हैं इनको उपयोग करके अपन ज़्यादा से ज़्यादा अपनी ऊर्जा को बचत कर सकते हैं और पर्यावरण को भी सुरक्षित रख सकते हैं। और अब सुन लेते हैं एक लोकगीत उमा सक्सेना के स्वर में।

0: भैया जी जी हरो, अब बिरिया हो गई है बुंदेली समाचारन की, तो सुनाते हैं बुंदेली समाचार।
1: बुंदेली समाचार।
0: आकाशवाणी भोपाल से प्रस्तुत हैं बुंदेली समाचार। बुंदेली

समाचारण के संगे हम हैं आरती शर्मा। पीएम मोदी ने गर्मी के बारे में कहो सावधानी बरतवे के लाने। देश भर में बढ़ती गर्मी के बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लोगों से सावधानी बरतवे की अपील करी है। उनने सोशल मीडिया पर कहो है कि खुद को हाइड्रेट रखवें, दोपहर की तेज धूप में बाहर ना निकलवें और अपने आप को बचा के रखें। घर से निकल पानी साथ रखें, अपील करी है। प्रधानमंत्री ने जो भी कहो है कि जो प्यासो हो उखो पानी पिलावें और जानवरों पक्षियों के लाजे भी बाहर पानी रखें। राष्ट्रपति मुर्मू सिक्किम में, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज शाम गंगटोक में सिक्किम विश्वविद्यालय के 7वें दीक्षांत समारोह में शामिल हुई हैं। समारोह में 33 विभागों के करीब 14,000 छात्रों को उपाधि प्रदान करी गई है। 285 मेधावी छात्रों को स्वर्ण और रजत पदक से नवाजो गए है, जिनमें 199 छात्राएं शामिल हुई हैं। राज्यपाल ओम प्रकाश माथुर और मुख्यमंत्री प्रेम सिंह तमांग भी इस अवसर पर उपस्थित रहे हैं। केंद्र सरकार को सार्थक पीडीएस योजना। केंद्र सरकार ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में भई आर्थिक मामलों की मंत्रिमंडलीय समिति की बैठक में सार्थक पीडीएस योजना को अम्ब्रेला योजना के रूप में जारी रखने की मंजूरी दी है। इके लाजे केंद्र सरकार ने 25,530 करोड़ रुपए को प्रदान करो है। ई योजना के तहत AI मशीन लर्निंग और ब्लॉकचेन जैसी उन्नत तकनीकों को उपयोग कर पीडीएस संचालन को आधुनिक बनाओ जे है। खजुराहो केंद्रीय आयुष मंत्री और योग खजुराहो के पश्चिमी मंदिर परिसर में केंद्रीय आयुष राज्य मंत्री प्रताप राव जाधव ने अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस की 100 दिवसीय काउंटडाउन सीरीज के 25वें कार्यक्रम को शुभारंभ करो। कार्यक्रम में करीब 2,000 लोगों ने भाग लो। श्री जाधव ने घोषणा करी कि इस वर्ष अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस को मुख्य समारोह 21 जून को कोलकाता में आयोजित हुई है। इस बार की थीम स्वस्थ वृद्धावस्था के लाने योग रखी गई है। उप मुख्यमंत्री एयर एम्बुलेंस MP पोर्टल। उप मुख्यमंत्री राजेंद्र शुक्ल ने आज मंत्रालय में एयर एम्बुलेंस MP पोर्टल और मोबाइल ऐप को शुभारंभ करो। ई में एयर एम्बुलेंस सेवा के लिए अनुरोध की प्रक्रिया अब और सरल व तेज हो गई है। पोर्टल में रियल टाइम ट्रैकिंग, डिजिटल सेवा अनुरोध और समयबद्ध अनुमोदन अलर्ट जैसी सुविधाएँ उपलब्ध हुई हैं। सर्वोच्च न्यायालय SIR प्रक्रिया। सर्वोच्च न्यायालय ने निर्वाचन आयोग द्वारा कराई गई मतदाता सूचियों की विशेष गहन पुनरीक्षण यानी SIR प्रक्रिया की वैधता को बरकरार रखो है। मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत और न्यायमूर्ति जॉय माल्या बागची की पीठ ने कहो है कि निर्वाचन आयोग लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1950 के तहत SIR करावे की पूर्ण शक्ति रखत है। न्यायालय ने मानो कि स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव केवल मतदाता प्रक्रिया पर नहीं बल्कि मतदाता सूचियों की सटीकता और विश्वसनीयता पर भी निर्भर करत है। CBSE 3 भाषा सुप्रीम कोर्ट को। वहीं दूसरी तरफ सुप्रीम कोर्ट ने CBSE की नई भाषा नीति पर रोक लगा कर कोई भी दिशा निर्देश देवे से इनकार कर दो है। भारत के चीफ जस्टिस सूर्यकांत ने इस मामले में CBSE को जवाब देवे के लाने नोटिस दो है। CBSE की नई नीति के मुताबिक कक्षा 9-10 के लाने स्टूडेंटों को 3 भाषा पढ़नी हुई हैं, जिनमें 2 भाषाओं को नेटिव इंडियन लैंग्वेज हो वो जरूरी है। इस नीति के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में कई याचिकाएँ दायर करी गई हती। अदालत ने मामले की अगली सुनवाई के लाजे 15-16 जुलाई की तारीख तय करी है। मन की बात 31 मई को। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 31 मई को मन की बात कार्यक्रम के माध्यम से देश और विदेश के लोगों से अपने विचार साझा कर हैं। जो मासिक रेडियो कार्यक्रम 134वां एपिसोड हुई है। श्रोता टोल फ्री नंबर 1800117800 पर कॉल करके नरेंद्र मोदी ऐप या MyGOV ओपन फोरम के माध्यम से अपने विचार सुझाव भेज सकते हैं। आगामी एपिसोड के लाजे सुझाव 29 मई तक स्वीकार करे जे हैं। गेहूं उपार्जन 103 लाख मेट्रिक टन। प्रदेश ने न्यूनतम समर्थन मूल्य पर 13,36,000 किसानों से 103,48,000 मेट्रिक टन गेहूं को उपार्जन कर देश में पहलो स्थान हासिल करो है। खाद्य मंत्री गोविंद सिंह राजपूत ने बताओ है कि कोविड काल को छोड़ के विगत 10 वर्षों से जो सर्वाधिक गेहूँ उपार्जन है। मौसम। अब बात मौसम की।
प्रदेश में नौतपा के दौरान भीषण गर्मी का दौर जारी है। मौसम विभाग ने निवाड़ी, टीकमगढ़, छतरपुर, पन्ना, सतना

0: और रीवा जिलों में तीव्र लू को रेड अलर्ट जारी करो है। उतनी कल प्रदेश के 16 शहरों में अधिकतम तापमान 44 डिग्री या उसे अधिक दर्ज करो जे है। इमें खजुराहो सबसे गर्म रहे जिते पारा 46.4 डिग्री सेल्सियस तक पहुँच जे है। मौसम विभाग के अनुसार 28 मई तक गर्मी अपने चरम पर बनी रहे लेकिन 29 मई से मौसम बदलव शुरू हो जे है और कई जिलों में आंधी व बारिश की गतिविधियाँ बढ़ जे हैं। विभाग को कहवो है कि 10 से 16 जून के बीच मानसून प्रदेश में दस्तक दे सकत है। बुंदेली समाचार इतनी संपन्न होते हैं।
1: बुंदेली समाचार
0: भैया जी जीहरो देखो गर्मी चल रही है सो ई मौसम में अपन कौन सी ऐसी फसलें लगा लेवे जिससे और उनकी कैसी देखभाल कर लेवे वो भी बहुत जरूरी है। तो आज अपन बात करते हैं ग्रीष्मकालीन मूंग में समन्वित कीट एवं रोग प्रबंधन और अपन को इस बारे में जानकारी दे रहे हैं डॉक्टर RP शर्मा और उनसे बातचीत करी है मनोज सक्सेना भैया ने। तो सुन लेते हैं ग्रीष्मकालीन मूंग में समन्वित कीट एवं रोग प्रबंधन।
2: किसान भाइयों नमस्कार। इस समय अगर हम जायद की फसलों की बात करें तो जायद की फसलों में सबसे ज़्यादा मूंग और उड़द की खेती इस समय किसान भाई कर रहे हैं और जिस तरह से गर्मी पड़ रही है यह तो सच है कि मूंग की खेती को बहुत ज़्यादा संरक्षण की ज़रूरत होती है क्योंकि जल प्रबंधन के साथ साथ आपको रोग और कीटों का भी नियंत्रण करना ज़रूरी होता है। जी हाँ, इसी विषय पर बातचीत करने के लिए आज हमने स्टूडियो में आमंत्रित किया है डॉक्टर RP शर्मा जी को जो कि वरिष्ठ कृषि वैज्ञानिक हैं, कृषि विज्ञान केंद्र देवास से हमारे साथ जुड़े हुए हैं और आज का हमारा विषय है ग्रीष्मकालीन मूंग और उड़द फसलों में रोग एवं कीट नियंत्रण। सर आपका बहुत बहुत स्वागत है।
3: धन्यवाद।
2: विषय तो हमारा यही है रोग और कीट। सर इस समय रोग की बात पहले की जाए या कीटों की?
3: कैसा भी कर सकते हैं, कीट और रोगों का दोनों का
2: साथ ही आते हैं।
3: साथ ही
2: तो सर मुझे ये बताइए इस समय जो कीट हैं वो किस तरह से प्रकोप करते हैं?
3: देखिए मूंग की फसल जो ग्रीष्मकालीन मूंग में विशेषकर 2-3 प्रकार के कीड़े लगते हैं। पहला है रोमिल सूढ़ियाँ हैं, दूसरा रस चूसक कीट है
2: जी,
3: और तीसरा जो है हमारे बोरर मतलब जो फली छेदक है वो है। 3 प्रकार के कीड़े हैं मुख्यतः है।
2: जी जी।
3: और जहाँ किसान भाइयों ने मार्च में बोनी कर दी थी वहाँ फलियाँ भी आ रही हैं देखिए इस समय। और हमारे मध्य प्रदेश की बात करूँ तो करीब करीब 15 लाख हेक्टेयर में हमारे मूंग होती है। मूंग में हम जो है राजस्थान के बाद दूसरा स्थान है भारतवर्ष में हमारा। पहला स्थान राजस्थान का है और दूसरा स्थान हमारे मध्य प्रदेश का है। उत्पादकता में बात करेंगे तो 1189 किलो प्रति हेक्टेयर, करीब करीब 12 क्विंटल प्रति हेक्टेयर उत्पादकता है हमारी ग्रीष्मकालीन मूंग में
2: जी जी।
3: तो निश्चित रूप से मानिए कि जब से हमारा जो क्षेत्र में मूंग का उत्पादन बढ़ा है या क्षेत्र बढ़ा है तो जो जो किसान हमारे जैसे नरसिंहपुर है, हरदा है, बैतूल है, आपका ये देवास है, इन जिलों में बहुत ज़्यादा अंतर आया है किसानों की आय में
2: जी जी जी।
3: अब मैं देवास की बात करता हूँ तो करीब करीब हमारे यहाँ 40-42 हज़ार हेक्टेयर में मूंग हो रही है। नर्मदा की पट्टी के जितने भी जो राशन वगैरह जो लेंगे ना आप
2: जी जी,
3: तो गर्मियों में पूरा का पूरा मूंग लगाते हैं किसान भाई।
2: निश्चित
3: रूप से सरकार की बहुत सारी योजनाएं आई थी, सिंचाई के प्रबंधन अच्छे हुए, अच्छा खाद मिला किसानों को, अच्छा बीज मिल रहा है, तो उससे उत्पादकता भी हमारे प्रदेश में बहुत अच्छी बढ़ रही है। जो किसान भाई लगा रहे हैं उनको बहुत अच्छा फायदा हो रहा है। लेकिन थोड़ा सा क्या हो रहा है इसमें, जैसे जैसे फसल की सघनता बढ़ेगी, फसल का क्षेत्र बढ़ेगा
2: जी,
3: तो निश्चित रूप से मानिए कुछ कीट और बीमारियां भी आती हैं,
2: आने लगती हैं।
3: तो इस समय रोमिल सूढ़ियां आ रही हैं
2: जी जी,
3: इसमें जो है मूंग में, तो इसमें किसान भाइयों वयस्क जो है समूह में अंडे देती हैं, इसमें एक ग्रुप में अंडे देती हैं
2: जी।
3: वो अंडों के बाद जो है उसमें छोटी छोटी इल्लियाँ हैं, वो इल्लियाँ खुरच के खाती हैं, हरा पदार्थ है ना उसको खुरच के खा जाती हैं। तो इसका मैं आपको बताऊंगा प्रबंधन के लिए तरीके बहुत सारे बताऊंगा। पहले तो यही है कीड़ा लगा है। दूसरा किसान भाइयों इस समय आप देख रहे होंगे रस चूसने वाले कीड़े हैं बहुत सारे, ऐसे चेपा है, हरे मच्छर हैं, है ना, माऊ है, सफ़ेद मक्खी
2: जी।
3: ये जो है ये कीड़े भी लगते हैं इस समय, अच्छा, लगते ही लगते हैं। और सफ़ेद मक्खी सबसे बड़ा मतलब दुख जो है इसका ये है, या सबसे बड़ा जो नुकसान पहुंचाती है वो ये है कि सफ़ेद मक्खी अभी मूंग में आई है, मूंग के बाद माइग्रेट होती है सोयाबीन में। तो जो किसान भाई मूंग के खेत में सोयाबीन लगा रहे हैं, हम लोगों ने काफ़ी खेतों का भ्रमण किया है, उन खेतों में सफ़ेद मक्खी का प्रकोप बहुत ज़्यादा होता है। इसीलिए किसान भाइयों सफ़ेद

0: की आपके मुंह में आई है तो इसको जरूर कंट्रोल करें। इसको यदि नियंत्रण नहीं करेंगे ना तो किसान भाइयों आपकी आगे आने वाली जो सोयाबीन की फसल है उसमें भी सफेद मक्खी नियंत्रण करना मुश्किल है। दूसरा सबसे बड़ा ये दिक्कत आ रही है कि सफेद मक्खी में हमारे किसान भाई कीटनाशक दवाइयां बहुत सारी डाल रहे हैं लेकिन उसमें प्रतिरोधक क्षमता पैदा हो गई है, कीटनाशक दवाइयों से मर ही नहीं रही है, तो उसके मैं समर्पित तरीके बताऊंगा आपको अभी। तीसरा जो है हमारे फ्रूट फ्लाई है, ऐसे पोड बोर रहे हैं, कुछ कीड़े ऐसे रहते हैं कि फली के अंदर घुस जाते हैं और दाने को डैमेज कर देते हैं। जो मुझ कहते हैं तीन प्रकार के कीड़े हैं,
1: बिल्कुल
0: और तीनों का मैं थोड़ा सा नियंत्रण बताता हूँ किसान भाइयों आपको लोग। देखिए सबसे पहला तो ये है रस चूसक कीटों की सफेद मक्खी जो सबसे ज़्यादा हार्म नुकसान पहुँचाती है, उसके लिए किसान भाइयों मूंग के खेत में पीले चिपचिपे बोर्ड लगा दें आप।
1: अच्छा
0: हाँ, पीले जे गत्ते किसान भाई आपके यहाँ रहते हैं,
1: येलो स्टिकी ट्रैप के नाम
0: से आते हैं, और मेरा तो कहना चाहिए किसान भाइयों कि आप बाजार से न लाते हुए घर में ही आज पीले बोर्ड काट लें आप, गत्ते काट लें, और गत्ते काटने के बाद एक तरफ उसको बिल्कुल पीले झटक पीला बोलते हैं इसे गांव में लोग, पीले रंग से पोत दें, एक तरफ बैंगनी रंग से पोत दें आप, और पोतने के बाद एक दिन सूख जाएगा, और सूखने के बाद उस पर जो सफ़ेद ग्रीस रहती है ग्रीस लगा दें आप, तो निश्चित से मानिए तो ये 7-8 दिन में देखोगे तो जो आपका पीलापन है वो पूरा खत्म हो जाएगा, काला देखेगा आपको, मतलब जितने रस चूसने वाले कीड़े हैं ना पीले रंग के प्रति और बैंगनी रंग के प्रति आकर्षित होते हैं, ये पूरे पूरे चिपक जाएंगे, उससे जो है आप उसको साफ कर दीजिए और दोबारा लगा दीजिए। तीसरा जो है जो कीड़े थे ऐसे रोमिल सूढ़ियाँ हैं, रोमिल सूढ़ियों के लिए भी हम लोग एकीकृत प्रबंधन करें किसान भाइयों।
1: अच्छा,
0: एकीकृत प्रबंधन ऐसा है कीटनाशक दवाइयाँ किसान भाई डालते हैं कोई दिक्कत नहीं, हम मना भी नहीं करते हैं, लेकिन कीटनाशक दवाइयों के अलावा हमारे पास दूसरे भी तरीके हैं। मान लो इल्लियाँ लगी हैं, कई बार इसमें जो है चने की इल्ली का भी प्रकोप हो जाता है जो इसमें इसमें मूंग में खाती है, तो चने की इल्ली के लिए किसान भाइयों हम लोग मारें नहीं प्रबंधन करें, मतलब एक विषाणु आता है, आपने कोरोना तो आया होगा उसमें सब लोग जानते हैं कोरोना क्या होता है, कोरोना में 3 फुट की दूरी हम लोगों ने मेंटेन कर रखी थी, मतलब पास में नहीं जाना चाहिए, वायरस था वो ऐसे, इसको यदि हमको यदि इसको नियंत्रण करना है तो इसमें वायरस का स्प्रे कर दें अपन खेत में।
1: अच्छा।
0: और इस वायरस का नाम है NPV, तो 250 ml लाना है, 250 ग्राम गाँव की भाषा में बोल सकते हैं किसान भाइयों, तो 400 लीटर पानी में घोल बना लें आप, वो घोल बनाने के बाद इस समय चूंकि तापक क्रम 42-43 डिग्री सेंटीग्रेड जा रहा है, इस समय आपको स्प्रे बिल्कुल नहीं करना है।
1: अच्छा।
0: इसका स्प्रे हम लोग जो बिल्कुल शाम के समय करेंगे, है ना, बिल्कुल 5 बजे के बाद स्प्रे करें आप, 400 लीटर पानी में 250 ml जो है NPV वायरस घोल लें और शाम को 5 बजे के बाद स्प्रे कर दें।
1: बिल्कुल,
0: तो निश्चित मानिए किसान भाइयों ये NPV जो वायरस है प्रोटीन के बने हुए रहते हैं और ये जो है एक स्टोमक पॉइजन है, उधर विष है कह
1: अच्छा।
0: सकते हैं आप इसको, तो इल्ली इसको खाएगी तो मरेगी, नहीं खाएगी तो नहीं मरेगी, ध्यान रखना।
1: अच्छा,
0: हाँ वो खाती जरूर है, कब तक भूखी रहेगी देखिए, है कि नहीं, तो इसमें तीसरे दिन से इल्ली इसको जो है जब एक दो दिन के खाती नहीं शुरू में इल्ली, ध्यान रखना आप, एक दो दिन इल्ली कोई भी कीटनाशक का है फफूंदनाशक का स्प्रे करते हैं तो इल्ली उसको खाती नहीं है, तो दो दिन बाद खाएगी तीसरे दिन, चौथे दिन उसको भयंकर बुखार जैसा आता है, पांचवें दिन इल्लियां जो है NPV से प्रभावित हैं वो काली पड़ के उल्टी लटक जाती हैं पेड़ पे, मतलब ये आपकी पहचान है कि NPV जो आपने डाला है स्प्रे किया है NPV से इल्लियां काले पड़ेंगी और उल्टी लड़के आएंगी,
1: मतलब
0: तो वायरस
1: असर हो रहा है,
0: असर हो रहा है। किसान भाइयों इसमें स्प्रे आपको ध्यान रखना, ये जो है प्राण को ही मारती है, ये वायरस जो है प्राण में ही लगता है, जैसे बोल रहे थे ना कि बुजुर्गों को कोरोना में अंदर रखिए बच्चों को अंदर रखिए, ऐसी इसमें जो है प्राण जो है प्राण इल्ली है उसी को मारती है जी, जो अंडे है ना अंडे में वायरस का प्रभाव नहीं पड़ता है, इसलिए 15 दिन बाद आप दूसरा स्प्रे कर दें तो जो अंडे हैं अंडे में से जो निकले हैं वो प्रोण हो रहे हैं
1: वो भी
0: इसमें प्रभावित होंगे और निश्चित रूप से किसान उसका कंट्रोल कर देंगे। तीसरा जो है BT आता है, बैसिलस थुरिंजियस बैक्टीरिया है, उसका भी आप जो है 2-2.5 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर घोल मना के स्प्रे कर देंगे तो इल्ली जो खाएगी तो निश्चित रूप से मरेगी अंडे, ये तरीके हैं। इसके बाद किसान भाई बहुत सारे आपके जो है वो भी हैं कीटनाशक दवाइयाँ भी, जैसे प्रोफोनोफास है 40 cc जो है 1.5 लीटर प्रति हेक्टेयर में स्प्रे कर दोगे
1: जी।
0: इसके बाद स्पाइनोटोरम है
1: जी,
0: है ना 450 ml लगता है 1 हेक्टेयर में, इससे ये दोनों ये सूढ़ियाँ जो है ना 100% खत्म हो जाती हैं। और तीसरा किसान भाई इस समय सबसे ज़्यादा किसान भाई कर रहे हैं इमामेक्टिन बेंजोएट, तो इमामेक्टिन बेंजोएट का डोज आपको बिल्कुल ज़्यादा नहीं लेना, डोज का ध्यान रखना किसान भाइयों।
1: बिल्कुल सच कह रहे हैं आप सर, हमने तो ये देखा है किसान भाई वो एक उसको ऐसा मान लिया है कि सारी दवाओं में बस उसको डाल दो सारे कीट खत्म हो जाएंगे, सबसे टॉप पर रख के चलते हैं।
0: ऐसे कोराजन

0: इमामेक्टिन बेंजोएट है किसान भाई, वो कोराजन और इमामेक्टिन बेंजोएट, इसको हम लोग बाद में डालें, हम लोग मना नहीं करते हैं। जब पता है आपको कि इल्ली कंट्रोल नहीं हो रही है तब आपको इमामेक्टिन बेंजोएट डालना है, और 425 ml प्रति हेक्टेयर किसी भी स्थिति में से जान देता है। दूसरा जो है रस चूसने वाले कीड़े, तो किसान भाइयों इसके लिए हम लोग बीज उपचार कर सकते हैं, है ना, इमिडाक्लोरपिड है, इसका स्प्रे कर सकते हैं 125 ml प्रति हेक्टेयर के नाम से जी। इसके हिसाब कर स्प्रे कर देंगे तो निश्चित जो जो है ठीक हो जाएगा। इसके बाद फेरोमोन ट्रैप, फेरोमोन ट्रैप में जो होता है कि इसमें मादा की खुशबू आती है तो मेल फुद्दी जितनी है तो मेल फुद्दी पूरी अट्रैक्ट हो जाती है। इसके बाद जो है हम फसल को कड़वापन पैदा कर दें, 10,000 ppm का नीम का तेल आता है किसान भाइयों आजकल, है ना, 10,000 ppm का 1 ml 1 liter पानी में घोल बना के डालोगे ना तो उसमें इल्ली मरेगी नहीं लेकिन पत्तियों का स्वाद कड़वा हो जाएगा। अब बात करते हैं किसान भाइयों रोग, रोग में सबसे जो खतरनाक रोग है वो है पीला मोजेक, और पीला मोजेक जो रोग है किसान भाइयों, मैंने आपसे निवेदन किया था सफ़ेद मक्खी सबसे ज़्यादा इसका बाहक है, तो इसके लिए मैंने आपको बोला था ट्राइजोफास 40 cc 40 cc जो आता है उसका स्प्रे कर सकते हैं। इसके बाद जो है बाजार में जो है थायमेथोक्जोन प्लस लैम्डा, इसके बहुत अच्छे रिजल्ट आ रहे हैं, 125 ml प्रति हेक्टेयर डालना है
1: जी जी।
0: इसके बहुत अच्छे परिणाम है किसान भाइयों। इसके बाद जो है इमिडाक्लोरपिड का भी आप स्प्रे कर सकते हैं, तो इससे जो है जो रस चूसने वाले कीड़े कंट्रोल हो जाएंगे, एक तो बीमारी ये है। दूसरा किसान भाइयों आजकल जो ड्राई रूट रोट सूखी जड़ सड़न रोग भी हो रहा है, जहाँ लगातार 7-8 साल से मूंग कर रहे हैं किसान भाइयों, वहाँ कहीं कहीं आपको देखता होगा कि सोयाबीन के खेत में पेड़ सूख रहे हैं, और पेड़ सूखते हैं तो उसमें जो कबक नाश है ना तो इसको एकदम हम लोग कंट्रोल नहीं कर पाते हैं। इसके लिए सीधा सीधा है किसान भाइयों बीज उपचार करें किसान भाई, और या जो है ट्राइकोडर्मा, ट्राइकोडर्मा 2 kg प्रति हेक्टेयर के हिसाब से करेंगे। इसमें हमारे बहुत सारे किसान इनिशियल स्टेज में शुरुआत में डोरा भी चला देते हैं
1: जी जी,
0: तो या तो जब सोयाबीन ये मूंग बो रहे हैं उसके पहले 2 kg ट्राइकोडर्मा ले लें, 2 kg मिट्टी ले लें खेत की मिट्टी, और 2 kg अच्छा गोबर का सड़ा हुआ खाद ले लें या केचुए का खाद हो उसको ले लें, उसको खेत में पूरे में फेंक दें, और फेंकने बाद उसमें बखर चला दें, मतलब जो पंजा चला दें खेत में मिल जाएगा निश्चित रूप से। तो उसमें ये क्या करता है ट्राइकोडर्मा, इसको फफूंद को खाता है, और इसमें आपका कीटनाशक दवा डालने की जरूरत नहीं होगी। दूसरा जो है बीजोपचार, मैंने आपसे निवेदन किया ही था है ना कि बीजोपचार जरूर करना है। ये जो है बीज जनित रोग है, धीरे धीरे भूमि जनित रोग हो जाता है, मतलब आपको बीज का भी उपचार करना है और भूमि का भी उपचार करना है। दूसरा यदि किसान भाई ये बीमारी आएगी यदि खेत में
1: जी
0: तो किसान करें, तो मेटालेक्जिल प्लस मैंकोजेविक दवा आती है उसको 2.5 gram प्रति लीटर के मान से स्प्रे कर देंगे तो वो ठीक नहीं होगा, ध्यान रखना जो पौधा सूख गया है आपका वो ठीक नहीं होगा, लेकिन जो है दूसरे जो स्वस्थ पौधे हैं वो आपके पौधे स्वस्थ रहेंगे। ध्यान रखना किसान भाइयों यदि बीमारी आ गई खेत में तो आप इसको रोकथाम कर सकते हो, ठीक नहीं कर सकते, ठीक नहीं होगी। कोई पेड़ यदि पौधा सूख गया है खेत में तो सूखे पौधे में हरी पत्तियाँ नहीं होंगी
1: जी जी,
0: लेकिन नई जो पौधे हैं उनमें जी बीमारियां नहीं आएगी।
1: सर वाकई रोग और कीटों की बात बड़े विस्तार से आपने बड़े रोचक तरीके से आपने बताई है। एक सवाल बड़ा ज्वलंत है कि अब बारिश आने वाली है, लोगों को जल्दीबाजी होती है सोयाबीन लगाने की, और हमारे किसान भाई जहां भी ये जायद की मूंग लगाई जाती है वहां एक अपराध कर देते हैं कि खरपतवार नाशक डाल के ज़मीन में और उसको फिर सुखाने की कोशिश करते हैं। इस पूरे प्रकरण पर सरकार या साइंटिस्ट क्या, सभी पर्यावरणविद क्या, सभी उनको समझाते हैं, आपसे भी उम्मीद करेंगे कि हमारे किसानों को ज़रूर सलाह दें।
0: बहुत अच्छा सलाह है आपकी ये
1: जी।
0: किसान भाइयों हम लोग जो है बहुत दिनों से इसके ऊपर काम कर रहे हैं
1: जी,
0: और ये वैज्ञानिकों के परिणाम जो थे उससे प्रूफ भी हो गया है कि इसमें जो आप डाल रहे हैं उससे कैंसर होता है। सरकार की तरफ से भी पिछले साल काफ़ी प्रयास किए गए थे, और जितने भी समाज सेवक हैं हर ग्रुप लगा हुआ है किसानों को समझाइश देने में। तो किसान भाइयों उससे बचाव का दो ही तरीके हैं, मैं आपको बचाव के तरीके बता रहा हूँ। एक तो किसान भाइयों जो मूंग की बोनी करते हैं वो समय से बोनी करें।
1: सही बात,
0: देखिए समय से बोनी करेंगे तो बहुत से बहुत 80 दिन में आपकी मूंग पक के खड़ी आ जाती है, तो आपको जो स्प्रे करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। दूसरा इतना जल्दी में क्यों रहते हैं किसान भाइयों, देखिए फली जब सूख गई है तो फली में दाना,
1: सही बात,
0: दाना पड़ गया आपका, है ना, पत्तियां यदि हरी हैं है ना तो पत्तियां हरी रहने दें आप, किसान भाई पत्तियां को सुखाने के लिए उसको उपयोग कर रहे हैं।

0: किसान भाइयों देखिए, मानव जीवन मुश्किल से एक बार मिला है, और इसमें आप अपने परिवार के साथ में तो कर ही रहे हैं, समाज के लिए बड़ा धोखा है ये,
1: देश के लिए
0: धोखा है, पूरे समाज के लिए, मानव प्रजाति के लिए धोखा है कि भाई ये कैंसर जैसी बीमारी इससे पैदा हो रही है, उसको हम बिल्कुल ऐसे रसायनों का हम उपयोग कभी नहीं करें। किसानों ये पुनः आपसे निवेदन है कि कभी भी सोयाबीन को, इस बार भी सोयाबीन, हालांकि इस साल जो है ये समस्या नहीं आना चाहिए, क्यों नहीं आना चाहिए, इस साल जो है किसान भाइयों, अधिकतर किसान भाइयों ने समय से बोनी कर दी है, वो समय से बोनी कर दी है, और वो तो वो जो है 75-80 दिन में पूरा पक जाएगी
1: जी।
0: और इस समय भी आप लोग देख रहे हैं 15 जून के बाद बोल रहे हैं, 15 जून 20 जून के बाद बारिश आएगी, तब तक किसान भाइयों आराम से आपकी फसल कट जाएगी। किसी भी कीटनाशक का मतलब ऐसा स्प्रे करने की जरूरत नहीं जिससे फसल सूखे, फसल अपने आप सूख जाएगी। और आप कृपया आप ऐसे रसायनों का उपयोग कतई नहीं करें कि जिससे हमारी मानव प्रजाति के लिए हानिकारक हो।
1: किसान भाइयों आप हमारी बात पर ध्यान दीजिए, डॉक्टर साहब जो कह रहे हैं उसको समझने का प्रयास कीजिए। किसान इस देश की ताकत है, आप जब अनाज उगाते हैं अगर आपकी मेहनत इस तरह से बीमारियां बांट देगी तो देश कहीं ना कहीं कमज़ोर होगा, और हमारे देश को कमज़ोर कौन करना चाहेगा, नहीं ना। इसलिए आप सबसे निवेदन है कि भरपूर उत्पादन लीजिए पर स्वस्थ और बढ़िया उत्पादन दीजिए, जिससे कि हमारे देश को, हमारे राष्ट्र को शक्ति प्रदान हो। आज की इस बातचीत को मैं यहीं विराम दे रहा हूं। हमारे साथ बातचीत करने के लिए मौजूद थे डॉक्टर आरपी शर्मा जी, जो कि वरिष्ठ कृषि वैज्ञानिक हैं कृषि विज्ञान केंद्र देवास से। सर आपका बहुत बहुत धन्यवाद।
0: धन्यवाद।
2: अबे हमारे श्रोता भैया बहन सुन रहे थे ग्रीष्मकालीन मूव में समन्वित कीट एवं रोग प्रबंधन, और जानकारी दे रहे थे डॉक्टर आरपी शर्मा, और उनसे बातचीत करी थी मनोज सक्सेना भैया ने। तो हमारे श्रोता भैया बहन ये जानकारी हासिल करके ज़रूर लाभान्वित हुई हैं, और अपनी जो मूंग की उनने उड़द की खेती लगा रखी है उसके लाने वो कीट और रोग प्रबंधन जरूर करें। और अब सुन लेते हैं डॉक्टर अरविंद सोनी को गाँव भाव जो लोकगीत।

भैया जी जी हरो, देखो अपन सब खेती किसानी वाले हैं और अपनी खेती किसानी अच्छी से चलत रहे ई के लाने जरूरी है कि अपनी माटी जो है बस सुरक्षित रहे। पर अपन सभी जनों के कहले वे अपने कार्यों के द्वारा या अपनी सभी की भूलों के कारण अपनी माटी जो है कहीं ना कहीं प्रदूषित हो रही है। उनको परिणाम जो हो रहा है कि अपन जो है चाह रहे हैं कि अपनी फसल गुणवत्ता पूर्ण हो बे वह अपन को नहीं मिल पा रही है। तो अपन को ऐसी माटी को रखने हैं जी में ज़्यादा से ज़्यादा जो है रासायनिक तत्वों को उपयोग ना हो बे, बल्कि अपन उते वर्मी कंपोस्ट या खेचुआ खाद जो है उसको उपयोग करें, गोबर खाद को उपयोग करें और जिसे अपनी माटी सुरक्षित बने रहे और अपन को जो है फसल जो मिले वो गुणवत्तापूर्ण हो। और ये खिलाने सबसे ज़्यादा जरूरी है भैया हरो कि अपन फसल चक्र को अपनावें, कहे कि फसल चक्र अपनावे से जो है अपनी मिट्टी में जो है गुणवत्ता बनी रहती है, वो कि मिट्टी के पोषक तत्व एक ही प्रकार की जो है फसलों के लगावे से नष्ट नहीं होते हैं। और अपन ये बात को भी ध्यान रखें कि अपन उमें माटी में जो अपने आजकल की सबसे सुविधाजनक चीज़ है वह है प्लास्टिक की सामान। अपन ने कौन भी सामान लाओ पन्नी में लेके आए और फेंक दो, वो कहाँ जाते हैं अपनी माटी में। तो अपन को ये भी ध्यान रखने कि प्लास्टिक से संबंधित जितनी भी चीज़ें हैं उनको अपन को या तो उनको चक्रण करके उनको रिसाइकलिंग करके उनको ख़त्म कर देने हैं या उनको अब जो अपने अवशिष्ट पदार्थ हैं उनको भी सही प्रकार से उपचारित करके मिट्टी में मिलाने हैं और जिससे कि अपनी मिट्टी सुरक्षित बनी रहे। और मिट्टी को सुरक्षित रखने हैं तो सबसे बड़ी बात जो है कि देखो भैया आबे आबे वाली है एक महीना बाद बारिश, सो अपन ज़्यादा से ज़्यादा वृक्षारोपण करें जैसे कि अपनी जो है माटी सुरक्षित बनी रहे हुए कटाव ना हो बे और अपन आसपास जब पेड़ लगाएं तो अपनों प्रदूषण भी कम हुई है। तो अपन को अपने अगर माटी को सुरक्षित रखने हैं प्रदूषण होने से बचाने हैं तो जन जन लोग अपन को जो जागरूकता भी फैलाने हैं और लोगों को सचेत करने हैं कि हमें अपनी माटी को सुरक्षित रखबो बहुत जरूरी है। और अब सुन लेते हैं राजेंद्र सिंह यादव और साथियों को गाओ गाओ जो लोकगीत।

भैया जी जी हरो चलवे से पहरे आप औरों को कल के कार्यक्रम सोई बताओ चले कल भुंसरा 6:45 बजे सुनियो कृषि चर्चा विषय हुई है धान की उन्नत किस्में और वाचक सुर हुई है डॉक्टर देवीदास पटेल को और संजय सुन में भोट वार्ता लोक कला मानना जानकारी दे हैं अनीता सक्सेना और उनसे बातचीत करिए पुष्पा सिंह गौर बहन ने और आवारती बहन को देव आज्ञा राम राम।

0: अभी आप आकाशवाणी भोपाल की प्रस्तुति में सुन रहे थे कार्यक्रम ग्राम सभा। कुछ ही पलों में हमारा अगला प्रसारण होगा। ये आकाशवाणी मध्य प्रदेश है। अब प्रस्तुत है कार्यक्रम सुर्खियों में।
1: सुर्खियों में
2: नमस्कार। सुर्खियों में कार्यक्रम के आज के अंक में आपका स्वागत है। मैं हूं निखिल कुमार और आज हम

0: चर्चा करेंगे केंद्रीय मंत्रिमंडल के प्रमुख निर्णयों पर। हमारे साथ जुड़ी हैं लक्ष्मी देवी जो कि वरिष्ठ पत्रकार हैं। लक्ष्मी जी, कार्यक्रम में आपका बहुत बहुत स्वागत है।
1: धन्यवाद।
0: लक्ष्मी, सार्थक पीडीएस योजना को दो अलग अलग योजनाओं को मिलाकर के एक तरह से अम्ब्रेला स्कीम के रूप में तैयार किया गया है, जिससे कह सकते हैं कि इसे केवल प्रशासनिक पुनर्गठन नहीं बल्कि सार्वजनिक वितरण प्रणाली जो है उसमें एक बड़े सुधार की तरह लाए जाने की कोशिश की गई है। तो इससे जो राज्य और केंद्र सरकार के बीच का समन्वय है और जो भी जवाबदेही होती है, जो भी व्यवस्था होती है, उस पर कैसा असर पड़ेगा?
1: इस स्कीम में जो मेन जो कंपोनेंट है, जो स्टेट एजेंसीज जो फूड ग्रेन्स वितरण करने में लगे हैं, उसमें जो उनको दिक्कत आती थी वो जो कॉस्ट लगती थी, जो एक स्टेट से, जैसे सेंटर से स्टेट तक जाता है फूड ग्रेन्स, वहां से फर्दर डिस्ट्रिक्ट लेवल डिस्ट्रीब्यूशन और पीडीएस या राशन शॉप तक पहुंचाने का काम हर एक स्टेट का जवाबदारी है। वहां पे उनको कुछ कॉस्ट बेयर करना पड़ता था, अभी उससे वो उठा नहीं पा रहे थे। इस स्कीम के तहत वो वाला जो कॉस्ट, जो भी सपोर्ट है, अब सेंट्रल गवर्नमेंट देगी, इससे उनका थोड़ा सा पीडीएस में जो इश्यूज थे वो रिजॉल्व हो जाएगा। और दूसरी इशू है जो डीलर्स का है, डीलर्स का जो रेम्यूनरेशन बहुत सालों से स्टैटिक था एंड वो अभी थोड़ा सा बढ़ेगा। इससे क्या है कि डीलर्स को भी वो शॉप्स चलाने में थोड़ा सा हेल्पफुल होगा एंड वो इंटरेस्ट के साथ ये काम करेंगे। और तीसरा है वो जो टेक्नोलॉजी है, ये तीन जो है जो अडॉप्शन है उससे जो स्टेट और सेंटर का जो समन्वय से जो काम होना है उसमें और भी ट्रांसपेरेंट वे और एफिशिएंसी बढ़ेगा।
0: आइए सुनते हैं केंद्रीय मंत्री ने इस बारे में और क्या कहा है।
2: आज की कैबिनेट में एक ऐसा फैसला लिया गया है जो कि देश के 80 करोड़ नागरिकों को प्रभावित करता है। आप सब जानते हैं कि आज हिंदुस्तान में दुनिया की सबसे बड़ी फूड सिक्योरिटी प्रोग्राम चल रहा है। फूड सिक्योरिटी से जुड़े जो विषय हैं उन सबके प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना का बहुत बड़ा इम्पैक्ट है। आज उस प्रोग्राम को इम्प्लीमेंट करने वाली जो व्यवस्था है, पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम, उसमें बहुत बड़ा एक फैसला लिया गया है, वो है सार्थक पीडीएस स्कीम। सार्थक पीडीएस स्कीम करीब 25,000 करोड़ का प्रोग्राम है। इस प्रोग्राम में तीन बड़े सुधार आज अप्रूव हुए हैं। सबसे पहला, राज्य में एक जो एफसीआई का बड़ा गोडाउन होता है वहां से डिफरेंट डिस्ट्रिक्ट्स में, डिविजन्स में फेयर प्राइस शॉप तक पहुंचाने का जो कॉस्ट होती है वो कॉस्ट बियर करने में दिक्कत आ रही थी राज्य सरकारों की। उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए भारत सरकार ने फैसला लिया है कि उस कॉस्ट को सपोर्ट करेंगे इस प्रोग्राम के तहत। दूसरा, जो फेयर प्राइस शॉप्स हैं, उन फेयर प्राइस शॉप्स में डीलर्स का रिमुनरेशन रखा गया था, एक लंबे टाइम से वो स्टैटिक था, उसको बढ़ाने की जरूरत थी, तो वो भी इसमें आज फैसला लिया गया। और तीसरा फैसला लिया गया टेक्नोलॉजी का यूज करके पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम को हम कैसे मॉडर्नाइज कर सकते हैं।
0: अभी केंद्र सरकार ने इस सार्थक पीडीएस के लिए अगले 5 वर्षों में लगभग 25,530 करोड़ रुपए के बड़े परिव्यय की मंजूरी दे दी है, तो इस राशि को प्रभावी और पारदर्शी तरीके से सुनिश्चित करने के लिए किस तरह से काम करना होगा?
1: तो इसके लिए जो रियल टाइम बेनिफिशियरी डेटाबेस है जो निर्मल प्लेटफॉर्म के तहत ऑलरेडी है, इससे क्या है कि जो राइटफुल बेनिफिशरीज है वो जो राइटफुल बेनिफिशियरीज ने वो वीड आउट हो जाएगा, उनको निकाल देंगे। उस पैसे को कैसे अच्छे से यूज कर सकते हैं, इसमें एआई का और टेक्नोलॉजी का यूज किया गया ताकि वो पैसे सही तरीके से इस्तेमाल हो एंड जो इरेगुलरिटीज जो होते थे पैटर्न को वो डिटेक्ट करना और होस्ट डुप्लीकेट बेनिफिशरीज जो होते थे वो एआई और मशीन लर्निंग एल्गोरिदम से ये सब वो डिटेक्ट होगा। तो इससे क्या है कि हमारा जो सब्सिडी है उसमें भी बचत होगी और ये जो 25,000 है वो ज्यादातर हमें कमीशन जो डीलर्स के लिए जाएगा, जो स्टेट जो कॉस्ट उठा नहीं पा रहे तो उसमें ज्यादातर ये खर्चा वो जो रेगुलर है, बट बड़ा जो सेविंग्स होगा जो ये डुप्लीकेट बेनिफिशरीज के लिए और इरेगुलरिटीज जो होता था उससे थोड़ा सा हमारा सब्सिडी जो खर्चा होता है जो इम्प्लीमेंटेशन में उसमें बचत होगी।
0: बिल्कुल, अभी आपने रियल टाइम मॉनिटरिंग की बात की, एआई आधारित शिकायत निवारण प्रणाली की भी बात की है सार्थक पीडीएस के तहत, तो नई तरह की प्रक्रिया एक अपनाई जा रही है जिसमें शिकायतों के समाधान में तेजी आएगी और इसे पारदर्शी बनाया जाएगा। आइए सुनते हैं इस बारे में केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने क्या कहा।
2: तीन बड़े एलिमेंट्स रहेंगे टेक्नोलॉजी के। सबसे पहला निर्मल, वो है पीडीएस बेनिफिशियरीज की रजिस्ट्री। करेक्ट व्यक्ति को सुविधा मिले और गलत व्यक्ति को सुविधा न मिले, इसके लिए एआई की टेक्नोलॉजी का यूज करके पीडीएस के बेनिफिशियरीज की एक रजिस्ट्री बनाई जाएगी। दूसरा है, किसी की भी पब्लिक की कोई ग्रीवेंस हो उसको सॉल्व करने के लिए

0: एआई इनेबल्ड सिस्टम है आशा, इसमें प्रोएक्टिव फीडबैक भी है। तीसरा है सक्षम, इसमें सप्लाई चेन के पूरे प्लेटफॉर्म को टेक्नोलॉजी इनेबल करेंगे। हर एक फूड ग्रेन के बैग को QR कोडिंग करना, जितनी गाड़ियां जाती है उसका GPS टैगिंग रखना, डैशबोर्ड्स प्रॉपर बना के उनका ट्रैकिंग करना, PDS को नेक्स्ट लेवल पे ले जाने के लिए ये टेक्नोलॉजी का इनेबलमेंट इससे किया जाए।
1: लक्ष्मी जी, इस योजना में हम देख रहे हैं कि AI, मशीन लर्निंग, NLP और ब्लॉकचेन जैसी अत्याधुनिक तकनीकों का इस्तेमाल करने की बात कही जा रही है। अगर एक आम नागरिक के दृष्टिकोण से हम समझने की कोशिश करें तो किस तरह से ये वास्तव में बदलाव लाने का प्रयास करेंगी, जिसमें फर्जी लाभार्थियों की बात होती है, डुप्लीकेट राशन कार्ड की बात होती है, या फिर खाद्यान्न लीकेज पर भी काफी चर्चा होती है।
2: देखिए, ये जो ग्रीवियंसेस है, जो भी कंप्लेंट्स है कंज्यूमर्स का और स्पेशली बेनिफिशरीज का, जो आशा AI असिस्टेंट है, ये जो मल्टीलिंगुअल AI ग्रीवेंस प्लेटफॉर्म है जहाँ पे वो बेनिफिशरीज कॉल भी कर सकते हैं, व्हाट्सएप भी कर सकते हैं, चैट बॉट्स भी है, इसके तहत वो जो भी कंप्लेन है उससे वो फास्टर रेजोल्यूशन होगा और वो मल्टीलिंगुअल है, कोई भी लैंग्वेज में वो बेनिफिशरी वहां पे कंप्लेन दर्ज कर सकते हैं। और दूसरी बात है कि इससे क्या होगा कि सिटीजन का जो बेनिफिशरीज का जो कंप्लेंट्स है, जो NLP टेक्नोलॉजी जो यूज कर रहे हैं वो मल्टीपल लैंग्वेजेस को प्रोसेस करके कैसे वो रिजॉल्व करें, इससे क्या है कि कंज्यूमर सेटिस्फेक्शन भी होगा इससे बेनिफिशरीज को। हाँ, उनका जो कंप्लेंट्स है वो कोई समझ रहे, कोई भी लैंग्वेज है, उस लेवल के जो राशन जो लेते हैं वो बेनिफिशरीज है, ज्यादातर अलग ही सेगमेंट के कुछ लोग पढ़े लिखे हैं, कुछ नहीं है, तो उनके लिए कई बार खाली लिखित में देना मुश्किल हो जाता है, वो कॉल कर सकते हैं और व्हाट्सएप में वो वॉइस चैट भी कर सकते हैं, तो इस तरह का कंप्लेंट्स बहुत ही अच्छे से फास्टर वे में वो एड्रेस हो सकता है।
1: तरह की जब खाद्यान्न योजना की हम बात करते हैं तो हमेशा से सरकार सोच रही है कि लास्ट माइल डिलीवरी को विशेष तौर पर प्राथमिकता दी जाए, यानी कि जो देश के दूर दराज के निवासी हैं, दूर दराज के इलाकों में रहने वाले आदिवासी या फिर भौगोलिक रूप से जो कठिन क्षेत्रों में रहते हैं उनके सामने अक्सर राशन की चुनौतियां आती हैं। तो इस मिशन में अगर हम लक्ष्य की बात करते हैं तो अब जो सरकार ने एक अम्ब्रेला स्कीम तैयार की है, आपको क्या लगता है कि इसमें सफल होने के क्या क्या एलिमेंट्स हैं?
2: देखिए, चैलेंजेस ज्यादातर जो है, रोड्स अच्छे नहीं है, स्टोरेज फैसिलिटीज रिमोट एरियाज में इस तरह का पुअर इंफ्रास्ट्रक्चर होने के वजह से लास्ट माइल डिलीवरी में प्रॉब्लम होता है। सो अभी क्या है कि ये जो डेटा इनएक्यूरेसीज और रियल टाइम मॉनिटरिंग नहीं हो पाता है और इसके वजह से दिक्कत बहुत होता था कि वहां तक पहुंचाना। अभी GPS टैग्ड व्हीकल्स जो इस स्कीम के तहत होगा, रियल टाइम ट्रैकिंग होगा
1: जी,
2: यहाँ से अगर गाड़ी निकलेगी तो कहाँ पे वो स्टक है, वो रोड वहां पे लैंडस्लाइड हुआ है या वहां पे रुका हुआ है, या पता, यू कैन मॉनिटर GPS टैग व्हीकल्स कहाँ पे दिक्कत हो रही है, कहाँ पे चोरी हो रही है, उस तरह का। और रूट ऑप्टिमाइजेशन में यहाँ पे होगा AI algorithms, जो AI यूज करके कौन सा रूट्स जो है बहुत एफिशिएंट है, जहां से ट्रैवल टाइम कम ले सकता है, तो वो वाला भी एल्गोरिथम के थ्रू वो आइडेंटिफाई कर सकते हैं और वो डिमांड पे फोकस कर सकते हैं कि कौन से सीजन में हम ज्यादातर लोगों का जो है ज्यादा ऑफ टेक है राशन में। कई बार लोग जल्दी ले लेते हैं पहले हफ्ते में क्योंकि वो उनका टाइम स्पैन होता है, एक महीने में राशन कभी भी आप महीने के स्टार्टिंग में उठा सकते हैं या आखिरी में भी उठा सकते, कई बार त्योहार के टाइम पे वो फर्स्ट वीक में उठा सकते, कई बार डीलर के पास उतना स्टॉक नहीं होता, उसके वजह से भी बेनिफिशरीज को टाइम से मिलना मुश्किल होता, तो टेक्नोलॉजी के वजह से वो डिमांड भी फोकस कर सकते हैं कि कौन से वीक या कौन से महीने में स्टॉक सबसे ज्यादा रिक्वायरमेंट है, उसी के वजह से प्री स्टॉकिंग वहां पे कर सकते हैं। दूसरा है कि वो जो बैग के ऊपर QR कोडेड के वजह से वो टैम्पर कोई कर ही नहीं सकते, जो जिस फेयर प्राइस शॉप को जो राशन शॉप के लिए जाना है वो वहां पे पता चल जाता है कि ये वाला QR कोडेड कौन से राशन के दुकान में पहुंचा है और वो ट्रैक भी कर सकते हैं। और रियल टाइम मॉनिटरिंग जो है ना, वेयरहाउस से लेके राशन शॉप की दुकान तक एवरी स्टेप जो डिजिटली कहाँ पे गया, कहाँ पे रुका, कहीं पे दिक्कत हुई, सब कुछ वो ट्रैक कर सकते।
1: लक्ष्मी जी, सरकार का ये भी कहना है कि ये योजना NFSA के तहत लगभग 81.35 करोड़ लोगों की खाद्य सुरक्षा को और मजबूत करेगी। इतनी बड़ी आबादी के लिए खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित करना प्रशासनिक और वित्तीय

0: दोनों ही दृष्टि से चुनौतीपूर्ण होता है, लेकिन इस बारे में केंद्रीय मंत्री क्या कह रहे हैं आइए सुनते हैं।
1: पूरी स्कीम से जो बेनिफिट होंगे, सबसे बड़ा तो एलिजिबल बेनिफिशियरीज आइडेंटिफाई होंगे, दूसरा सिटीजंस का सेटिस्फेक्शन बढ़ेगा, तीसरा किसी की भी ग्रीवेंस हो उसको प्रॉपर्ली रिड्रेस कर पाए। एक जो फाइनेंशियल गेन होगा इस लॉजिस्टिक्स के पूरे रीऑर्गेनाइजेशन से और टेक्नोलॉजी यूज करने से, कॉस्ट ऑफ मूविंग रादर मूवमेंट ऑफ ग्रेन्स विल रिड्यूस ऑलमोस्ट 15-50%। लॉजिस्टिक्स की कॉस्ट में 280 करोड़ रुपए की एनुअल सेविंग हो, और कार्बन एमिशंस बिकॉज ऑफ लेसर मूवमेंट ऑफ द फूड ग्रेन्स कार्बन एमिशंस विल रिड्यूस 35%। ये सारे इसमें बेनिफिट।
0: लक्ष्मी जी, पिछले कुछ वर्षों में अगर हम देखें तो राशन कार्ड डिजिटलीकरण, आधार सीडिंग और ईपीओएस मशीनों के माध्यम से काफी सुधार हमें देखने को मिले हैं, लेकिन कुछ तकनीकी बाधाएं भी सामने आई हैं और उन्हीं को दूर करने के लिए सार्थक पीडीएस की बात की गई, और इसमें हम अगर थोड़ा सा आगे बढ़ते तो इंटर ऑपरेबल और सिटीजन सेंट्रिक पीडीएस ढांचे की बात की जा रही है, वन नेशन वन राशन कार्ड के बाद इस तरह की पहल को आप क्या कहना चाहेंगे इसके बारे में?
2: क्योंकि वन नेशन वन राशन कार्ड ये बहुत ये इम्प्लीमेंट हो ही रहा है, तो ये अच्छा है कि कहीं पे भी अगर आप जाए वहां पे आप राशन उतारना चाहिए, और उतारने का वो एक प्रोसेस भी होना चाहिए। सो अगर आप दिल्ली में हैं, दिल्ली से अगर आप कोई बॉम्बे जाते हैं वहां पे अगर राशन अगर लेना चाहते हैं तो वहां पे आप ले सकते हो। इस तरह का प्रोविजन अभी है विच इज गुड। बहुत सारे माइग्रेंट वर्कर्स है जो एक ही राशन होगा और कहीं पे भी वो ले सकते हैं।
0: जी लक्ष्मी जी, अगर थोड़ा सा पीछे जाकर के हम देखें तो सार्वजनिक वितरण प्रणाली में कई समस्याएं रही जिनमें भ्रष्टाचार और बिचौलियों की भूमिका एक लंबे समय तक देखी गई, जिसकी वजह से इतने सारे बदलाव किए गए। आज जो बदलाव हम देखते हैं तो ये पारदर्शिता को काफ़ी हद तक बढ़ा चुके हैं, सरकार को इसमें काफ़ी सफलता भी मिली है। आगे की जो राह है उसमें और भी समस्याएं बिल्कुल ना हो, वो और भी अच्छे से काम करें ताकि और कहीं कहीं पर जो शिकायतें आती हैं उनको दूर किया जा सके, तो इस बारे में आपको क्या लगता है कि सरकार अपने प्रयासों में पूरी तरह सफल हुई है?
2: हाँ, इस सरकार ने इम्प्लीमेंटेशन इतना क्लोजली मॉनिटर करते हैं, अगर कोई भी अगर पॉलिसी डिजाइन करते हैं सोच समझ के करते हैं, और जहां तक मैंने पीडीएस इतने सालों से मैंने ट्रैक किया है
0: जी,
2: और जितना जो इनएलिजिबल बेनिफिशरीज को जो अचीव किया है वो वहां से लेके, और इवन वेयरहाउस मॉनिटरिंग और टेक्नोलॉजी अडॉप्शन है, एक के बाद एक बहुत ही अच्छे से इम्प्लीमेंट किया जा रहा है। एंड मुझे लगता है कि अभी ये जो एक ही स्कीम के अंदर जो ये दो कंपोनेंट्स को लाने के बाद टेक्नोलॉजी अडॉप्शन, इससे और भी ट्रांसपेरेंसी बढ़ेगा और सब्सिडी भी कम होगा सरकार के लिए, और बेनिफिशरीज को टाइम से उनका राशन मिलेगा, और कुछ भी दिक्कत हो तो टाइम से उसका रेजोल्यूशन भी होगा। कि ये पूरा सिस्टम को पेपरलेस और डिजिटली मॉनिटर्ड और ट्रांसपेरेंट सप्लाई चेन को बढ़ावा देगा।
0: जी लक्ष्मी जी, एक आखिरी प्रश्न आपसे पूछूंगा मैं। लक्ष्मी जी, सार्थक पीडीएस को वर्ष 2031 तक लागू रखने की योजना है, तो यदि इस योजना की सफलता को हम पीछे के वर्षों से मापना चाहें तो आपको क्या लगता है कि इस योजना ने किस तरह के बदलाव हमारे देश में लाए हैं?
2: देखिए, इसमें तो डीलर्स का तो रोल है ही इम्प्लीमेंटेशन में, तो पहले कुछ सपोर्ट नहीं था, अभी सपोर्ट थोड़ा बहुत मार्जिन्स देते थे, अब बेहतर देने से वो एक अच्छा बदलाव देगा, वो उनको भी प्रेरित करेगा कि उनका काम जो राशन डिस्ट्रीब्यूशन के काम में वो अब मन लगा के वो इम्प्लीमेंट करें। एंड दूसरा जो स्टेट कॉस्ट इनकर्ड था वो अगर सेंट्रल गवर्नमेंट थोड़ा बहुत मदद कर रहे हैं तो दैट विल ऑल्सो हेल्प इन implementing the scheme in a much better way.
0: जी लक्ष्मी देवी जी, इस कार्यक्रम में भाग लेने और मेरे तमाम प्रश्नों का उत्तर देने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।
2: धन्यवाद।
0: तो श्रोताओं, इस कार्यक्रम को आप हमारे मोबाइल ऐप न्यूज ऑन EIR और YouTube चैनल न्यूज ऑन EIR ऑफिशियल पर भी सुन सकते हैं।
3: सुर्खियों में
4: अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम सुर्खियों में, आप सुन रहे हैं आकाशवाणी मध्य प्रदेश। आकाशवाणी मध्य प्रदेश के प्रसारण में अब आनंद लीजिए फिल्म संगीत का। संगम फिल्म से ये गीत सुनिए, लता मंगेशकर की आवाज में हसरत जयपुरी के लिखे हुए बोल हैं जिन्हें संगीत में पिरोया है शंकर जयकिशन ने।

और अब अगली आवाज़ सुनिए किशोर कुमार की याराना फिल्म से, जिसे इस गीत को लिखा है अनजान ने और संगीत दिया है राजेश रोशन ने।

अगला गीत सुनिए सदमा फिल्म से सुरेश वाडकर की आवाज़ है, गुलजार के लिखे हुए बोल, जिन्हें संगीत में पिरोया है इलैया राजा ने।

आशा भोसले की ये खूबसूरत आवाज़ में अगला गीत सुनिए, जॉनी मेरा नाम फिल्म से, जिसे लिखा है राजेंद्र कृष्णा ने और संगीत में सजाया है कल्याण जी आनंद जी ने।

आकाशवाणी मध्य प्रदेश के प्रसारण में आप आनंद ले रहे हैं फिल्म संगीत का, और अगला गीत सुनिए कुर्बानी फिल्म से कंचन मनहार और आनंद की आवाज़ है। इंदिवर के लिखे हुए बोल हैं जिन्हें संगीत में पिरोया है कल्याण जी आनंद जी ने।

और अब कार्यक्रम का अंतिम गीत सुनिए किशोर कुमार की आवाज़ में पड़ोसन फिल्म से, जिसे लिखा है राजेंद्र कृष्ण ने और आर डी बर्मन का संगीत है।

0: और इसी के साथ फिल्म संगीत यहीं संपन्न हुआ। आप सुन रहे हैं आकाशवाणी मध्य प्रदेश और अब लेते हैं एक अंतराल।
1: भारत की संस्कृति का दर्पण प्रसार भारती है कराता, भारत के हर रूप का दर्शन कभी भारत की बदलती तस्वीर है, कभी भारत की बदलती आवाज, कभी भारत की बदलती सोच है, कभी भारत का बदलता अंदाज। प्रसार भारती भारत का आने वाला कल है, है प्रसार भारती भारत का बदलता आज।
2: एक जमाने से कहानी है सुना रही आकाशवाणी,

हारत दिखा, एशियाड दिखा, पोखरण दिखा, मिस वर्ल्ड दिखी, वर्ल्ड कप दिखा, चंद्रयान दिखा, इनसैट दिखा, नई कहानियों ने नया भारत लिखा। कहानी नहीं बदली, स्टाइल गया है बदल। जो कहानियां हम सुनते आए, देखते आए, अब वही वैसी ही कहानी सुनाएगा डिजिटल।

0: कहानी नहीं है, फील नहीं है, बिली और फैमिली के साथ रील नहीं है, जुबली हिट्स भी है, न्यू हिट टॉप भी है, कंटेंट क्रिएशन भी है, हिप हॉप भी है, न्यू रिलीजेस, बॉलीवुड की न्यू थिंग भी है, एवरग्रीन भी है, कहानीज नेवर बीन टोल्ड।
1: ये आकाशवाणी मध्य प्रदेश है, कुछ ही पलों में आकाशवाणी दिल्ली से अनुप्रसारित की जाएगी समाचार संध्या, कृपया प्रतीक्षा करें।
2: आकाशवाणी से समाचार संध्या के साथ मैं जया भारती। केंद्र ने सार्वजनिक वितरण प्रणाली के आधुनिकीकरण के लिए सार्थक पीडीएस योजना के विस्तार को मंजूरी दी। योजना पर 25,500 करोड़ रुपए से अधिक खर्च होंगे। मध्य और उत्तर पश्चिम भारत में अगले 2-3 दिन तक भीषण लू की चेतावनी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बढ़ते तापमान के मद्देनजर जरूरतमंद और संवेदनशील वर्ग के लोगों का ध्यान रखने का आह्वान किया। सर्वोच्च न्यायालय ने मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण प्रक्रिया के निर्वाचन आयोग के निर्णय को बरकरार रखा। कहा, यह प्रक्रिया स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव को बढ़ावा देती है। असम विधानसभा में समान नागरिक संहिता विधेयक पारित, यूसीसी लागू करने वाला तीसरा राज्य बना। भारतीय निशानेबाज ईशा सिंह ने ISSF विश्व कप में 25 मीटर पिस्टल स्पर्धा में विश्व रिकॉर्ड तोड़ते हुए स्वर्ण पदक जीता। और भारत 2027 एशियाई रिले और 2028 एशियाई

0: इंडोर चैंपियनशिप की मेजबानी करेगा। अब समाचार विस्तार से। मंत्रिमंडल की आर्थिक मामलों की समिति ने आज सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अंतर्गत राशन परिवहन और प्रबंधन सहायता योजना सार्थक पीडीएस को जारी रखने की अनुमति दे दी है। इसके लिए केंद्र सरकार की ओर से 25,530 करोड़ रुपए का आवंटन किया गया है। नई दिल्ली में संवाददाताओं से बातचीत में सूचना और प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा कि यह योजना सार्वजनिक वितरण प्रणाली के आधुनिकीकरण में सहयोग करेगी।
1: इस प्रोग्राम में तीन बड़े सुधार आज अप्रूव हुए हैं। सबसे पहला, जो सरकारों के एजेंसीज राज्य में एफसीआई का बड़ा गोडाउन होता है, वहां से डिफरेंट डिस्ट्रिक्ट्स में डिविजन्स में फेयर प्राइस शॉप तक पहुंचाने का जो कॉस्ट होती है, उस कॉस्ट को सपोर्ट करेंगे। दूसरा, फेयर प्राइस शॉप्स है उनमें डीलर्स का रिमुनरेशन रखा गया था, उसको बढ़ाने की जरूरत थी, तो वो भी फैसला लिया गया। और तीसरा फैसला, टेक्नोलॉजी का यूज करके पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम को हम कैसे मॉडर्नाइज कर सकते हैं।
0: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि सरकार सार्वजनिक वितरण प्रणाली के माध्यम से देश के प्रत्येक जरूरतमंद लोगों को समय पर अनाज पहुंचाने के लिए प्रतिबद्ध है। उन्होंने कहा कि इस दिशा में इस प्रणाली को और अधिक आधुनिक तथा प्रभावी बनाने का निर्णय लिया गया है। गृह मंत्री अमित शाह ने केंद्रीय मंत्रिमंडल द्वारा सार्थक पीडीएस योजना के विस्तार की मंजूरी का स्वागत किया है। एक सोशल मीडिया पोस्ट में श्री शाह ने कहा कि सरकार गरीबी उन्मूलन योजनाओं को अधिक पारदर्शी और सुविधाजनक बनाने के लिए उनमें प्रौद्योगिकी का समावेश कर रही है। सर्वोच्च न्यायालय ने निर्वाचन आयोग द्वारा कराई गई मतदाता सूचियों की विशेष गहन पुनरीक्षण एसआईआर प्रक्रिया की वैधता को बरकरार रखा है। सर्वोच्च न्यायालय ने कहा कि एसआईआर प्रक्रिया स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनावों की संवैधानिक अनिवार्यताओं को आगे बढ़ाती है। न्यायालय ने फैसला सुनाया कि निर्वाचन आयोग लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1950 के अनुच्छेद 324 और उसके अधीन निर्मित नियम के अंतर्गत एसआईआर करवाने की शक्ति रखता है। एक रिपोर्ट।
2: मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत और न्यायमूर्ति जॉय माल्या बागची की एक पीठ ने उन याचिकाओं पर फैसला सुनाया जिनमें पिछले साल जून महीने में चुनाव आयोग द्वारा बिहार में एसआईआर आयोजित करने के लिए जारी अधिसूचना को चुनौती दी गई थी। फैसले में कहा गया कि विवादित प्रक्रिया को केवल अमान्य नहीं कहा जा सकता है क्योंकि ये नियमित पुनरीक्षण के लिए निर्धारित सामान्य तौर तरीकों के अनुरूप नहीं है। इसलिए नहीं कहा जा सकता है कि निर्वाचन आयोग ने अपनी वैधानिक शक्तियों से अधिक कार्रवाई की है। समाचार कक्ष से वैष्णवी।
0: भारतीय जनता पार्टी ने एसआईआर को पूर्णतः संवैधानिक करार देने के सर्वोच्च न्यायालय के फैसले का स्वागत किया है। नई दिल्ली में संवाददाताओं को संबोधित करते हुए पार्टी प्रवक्ता सुधांशु त्रिवेदी ने इस फैसले को कांग्रेस समेत विपक्ष की संवैधानिक पराजय बताया। दिल्ली में एसआईआर की प्रक्रिया 20 जून से शुरू होगी। दिल्ली के मुख्य चुनाव अधिकारी अशोक कुमार ने बताया कि मतदाता सूची का मसौदा 5 अगस्त को और अंतिम मतदाता सूची इस वर्ष 7 अक्टूबर को प्रकाशित की जाएगी। श्री कुमार ने बताया कि बूथ स्तर के अधिकारी 30 जून से दिल्ली की मतदाता सूचियों के सत्यापन के लिए घर घर जाकर सर्वेक्षण करेंगे। असम विधानसभा ने आज समान नागरिक संहिता विधेयक पारित कर दिया है। इसके साथ ही असम ऐसा कानून पारित करने वाला पूर्वोत्तर का पहला और देश का तीसरा राज्य बन गया है। हमारे संवाददाता ने बताया है कि इस विधेयक को विधानसभा के पहले सत्र में सोमवार को पेश किया गया था।
3: असम में समान नागरिक संहिता विधेयक का उद्देश्य सभी नागरिकों के लिए एक समान नागरिक कानूनी व्यवस्था स्थापित करना है। संवैधानिक संरक्षण और पारंपरिक रीति रिवाजों को सुरक्षित रखने के लिए अनुसूचित जनजातियों को इस विधेयक के दायरे से बाहर रखा गया है। वहीं विभिन्न धर्मों पर आधारित व्यक्तिगत कानूनों के स्थान पर समानता और लैंगिक न्याय सुनिश्चित करने के उद्देश्य से एक समान कानूनी ढांचा लागू करने का प्रावधान किया गया है। विवाह संबंधी प्रावधानों के तहत विधेयक में एक विवाह की व्यवस्था अनिवार्य की गई है तथा वर की न्यूनतम आयु 21 वर्ष और वधु की न्यूनतम आयु 18 वर्ष निर्धारित की गई है। राकेश तोले, आकाशवाणी समाचार, गुवाहाटी।
0: गृह मंत्री अमित शाह ने राज्य विधानसभा में समान नागरिक संहिता पारित होने पर असम की जनता को बधाई दी है। एक सोशल मीडिया पोस्ट में श्री शाह ने कहा कि समान नागरिक संहिता भाजपा का स्थापना दिवस से ही संकल्प रहा है। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं।

0: जनगणना के पहले चरण में हाउस लिस्टिंग और हाउसिंग सेंसस यानी आपके मकान की गणना होगी। आइए आपकी साझेदारी से इसे सफल बनाएं और विकसित भारत 2047 की ओर एक और कदम बढ़ाएं।
1: हर उड़ान से पहले एक फैसला होता है, हर फैसले से पहले एक सवाल, क्या मैं तैयार हूँ? अगर जवाब है हाँ, तो भारतीय वायुसेना आपका इंतजार कर रही है। AFCAT 1 of 2026 के आवेदन 10 नवंबर से 9 दिसंबर तक खुले हैं। अधिक जानकारी के लिए विजिट करें careerairforce.gov.in या afcat.edcil.go.in पर।
2: मौसम विभाग ने कहा है कि अगले 2 से 3 दिनों तक मध्य और उत्तर पश्चिमी भारत में लू की स्थिति बनी रहेगी। विभाग ने पूर्वी मध्य प्रदेश और विदर्भ में लू का रेड अलर्ट जारी किया। दिल्ली, चंडीगढ़, राजस्थान, छत्तीसगढ़, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, कोंकण, गोवा, ओडिशा, पंजाब, तेलंगाना और उत्तर प्रदेश में भी कल लू का प्रकोप बना रहेगा। इस बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश के कई भागों में भीषण गर्मी के और लू के मद्देनजर जरूरतमंद और संवेदनशील वर्ग के लोगों का विशेष ध्यान रखने की अपील की है। एक रिपोर्ट।
3: आज केंद्रीय मंत्रिमंडल की बैठक के दौरान प्रधानमंत्री ने सभी मंत्रियों के साथ मौजूदा लू की स्थिति पर चर्चा की। सूचना एवं प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने बताया कि उन विशेष कदमों पर चर्चा हुई जिन्हें प्रत्येक मंत्रालय और विभाग अपने अपने कार्य क्षेत्र में उठा सकते हैं।
4: प्रधानमंत्री जी ने कैबिनेट में मौसम की जो हीट वेव की परिस्थिति है उसका भी सभी मंत्रियों के साथ चर्चा की और माननीय प्रधानमंत्री जी का जो राष्ट्र के प्रति आह्वान है उसी आह्वान के तहत सभी से अपने अपने मंत्रालय में सुविधा पहुंचाने की किस तरह की सुविधाएं की जा सकती है उसके ऊपर भी चर्चा हुई।
3: आकाशवाणी समाचार से विशेष बातचीत में नई दिल्ली स्थित अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान एम्स के मेडिसिन विभाग के प्रोफेसर डॉक्टर नवल किशोर विक्रम ने लोगों को लू से बचने के लिए खुद को हाइड्रेटेड रखना और ORS जैसे इलेक्ट्रोलाइट युक्त तरल पदार्थों का सेवन करना और दिन के समय तपती धूप में बाहर निकलने से बचने की सलाह दी। अनुपम मिश्र के साथ आनंद कुमार, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
2: उधर राजस्थान में भी राज्य के 5 जिलों में लू की चेतावनी जारी की गई है। ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
5: दिन और रात के बढ़ते तापमान से प्रदेश के ज्यादातर हिस्सों में जनजीवन पर असर पड़ा है। दिन के समय गांवों और शहरों में सड़कों और बाजारों में लोगों की आवाजाही सीमित हो गई है। विभिन्न जिलों में प्रशासन की ओर से गर्मी से निपटने के लिए कई स्तरों पर इंतजाम किए जा रहे हैं। साथ ही विभिन्न संस्थाएं भी ठंडे पेय का वितरण कर लोगों को राहत पहुँचाने के जतन में जुटी है। मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा ने प्रदेशवासियों से प्रशासन और स्वास्थ्य विभाग द्वारा जारी दिशा निर्देशों की पालना करने की भी अपील की है। जितेंद्र द्विवेदी, आकाशवाणी समाचार, जयपुर।
2: सर्वोच्च न्यायालय ने भी आज सभी न्यायाधीशों से अपील की कि वे भीषण गर्मी को देखते हुए मामलों की सुनवाई ऑनलाइन करें। न्यायालय ने कहा कि वह इस संबंध में न्यायिक निर्देश जारी नहीं कर सकता। न्यायालय दिल्ली में बढ़ती हुई गर्मी को देखते हुए सभी अदालतों में ऑनलाइन कार्यवाही करने के निर्देश देने वाली याचिका पर सुनवाई कर रहा था। सर्वोच्च न्यायालय ने ऑनलाइन गेमिंग कंपनियों पर सरकार द्वारा पूर्व प्रभावी 28% GST को बरकरार रखते हुए इसे वैध बताया है। शीर्ष न्यायालय ने कहा कि ऑनलाइन गेमिंग प्लेटफॉर्म केवल मध्यस्थ नहीं है बल्कि उन्हें आपूर्तिकर्ता माना जाना चाहिए और उन पर वस्तु तथा सेवा कर GST लागू होता है। सर्वोच्च न्यायालय ने कक्षा 9 के विद्यार्थियों के लिए कम से कम 2 भारतीय भाषाओं सहित 3 भाषाओं का अध्ययन अनिवार्य करने संबंधी केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की नीति को चुनौती देने वाली याचिका पर विचार करेगा। शीर्ष न्यायालय ने केंद्र सरकार, बोर्ड और राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद को नोटिस जारी कर 2 सप्ताह के भीतर जवाब मांगा है। केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो CBI ने नीट UG पेपर लीक मामले में आज 3 और लोगों को गिरफ्तार कर लिया है। इनमें महाराष्ट्र के लातूर का एक डॉक्टर और पुणे स्थित कोचिंग संस्थान का एक शिक्षक शामिल है। जांच एजेंसी ने पुणे के ही एक अन्य कोचिंग संस्थान के भौतिक विज्ञान शिक्षक को भी गिरफ्तार किया है। इस मामले में अब तक कुल 13 लोगों की गिरफ्तारी हो चुकी है। संघ लोक सेवा आयोग ने पहली बार सिविल सेवा प्रारंभिक

परीक्षा 2026 की अनंतिम उत्तर कुंजी जारी की है। आयोग ने कहा कि परीक्षा में शामिल हुए उम्मीदवार 31 मई शाम 6 बजे तक upssconline.nic.in पर उपलब्ध प्रश्न पत्र आपत्ति पोर्टल के माध्यम से अपनी आपत्तियां प्रस्तुत कर सकते हैं। राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार 2026 के लिए उच्च शिक्षा विभाग ने नामांकन आमंत्रित किए हैं। नामांकन राष्ट्रीय पुरस्कार पोर्टल www.awards.gov.in के माध्यम से 5 जुलाई तक भेजे जा सकते हैं। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज़ ऑन AIR ऐप पर भी उपलब्ध हैं।

0: जनगणना के पहले चरण में हाउस लिस्टिंग और हाउसिंग सेंसस यानी आपके मकान की गणना होगी। आइए आपकी साझेदारी से इसे सफल बनाएं और विकसित भारत 2047 की ओर एक और कदम बढ़ाएं।
1: ये आकाशवाणी है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कहा है कि देश की उन्नति के लिए पूर्वोत्तर क्षेत्र का विकास बेहद आवश्यक है। आज गांगटोक में सिक्किम विश्वविद्यालय के दीक्षांत समारोह को संबोधित करते हुए उन्होंने शिक्षा को सशक्तिकरण का मार्ग बताया और विद्यार्थियों से कहा कि वे अपने विचारों, नवाचारों और आपसी विश्वास के जरिए राष्ट्र निर्माण में सक्रिय भूमिका निभाएं। और खेलों में म्यूनिक में ISSF निशानेबाजी विश्व कप में ईशा सिंह ने महिलाओं की 25 मीटर पिस्टल स्पर्धा में 43 हिट लगाकर नया विश्व रिकॉर्ड बनाया। उन्होंने जूनियर और सीनियर दोनों वर्ग में विश्व रिकॉर्ड कायम किया। फाइनल में ईशा ने पूर्व विश्व चैंपियन मिरोस्लावा मिंचेवा और कोरिया की शीर्ष खिलाड़ी जीन यांग को हराकर पहला स्थान हासिल किया। डेरिन वेनेकैंप दूसरे और मिरोस्लावा मिंचेवा तीसरे स्थान पर रहीं। उधर न्यू चंडीगढ़ में आईपीएल क्रिकेट के एलिमिनेटर में सनराइजर्स हैदराबाद और राजस्थान रॉयल्स के बीच मुकाबला जारी है। ताज़ा समाचार मिलने तक राजस्थान रॉयल्स ने 16वें ओवर में 4 विकेट पर 211 रन बना लिए हैं। वैभव सूर्यवंशी ने 97 रन की पारी खेली। भारत ने एशियन इंडोर चैंपियनशिप 2027 और एशियन रिले 2028 की मेजबानी के अधिकार हासिल कर लिए हैं। वर्ल्ड एथलेटिक्स के उपाध्यक्ष आदिल सुमरेवाला ने आज इस बात की पुष्टि करते हुए बताया कि एशियन इंडोर चैंपियनशिप 2027 का आयोजन भुवनेश्वर में जबकि चंडीगढ़ एशियन रिले 2028 की मेजबानी करेगा। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। केंद्र ने सार्वजनिक वितरण प्रणाली के आधुनिकीकरण के लिए सार्थक PDS योजना के विस्तार को मंजूरी दी। मध्य और उत्तर पश्चिम भारत में अगले 2-3 दिन तक भीषण लू की चेतावनी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बढ़ते तापमान के मद्देनजर जरूरतमंद और संवेदनशील वर्ग के लोगों का ध्यान रखने का आह्वान किया। सर्वोच्च न्यायालय ने मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण प्रक्रिया के निर्वाचन आयोग के निर्णय को बरकरार रखा। असम विधानसभा में समान नागरिक संहिता विधेयक पारित, UCC लागू करने वाला तीसरा राज्य बना। और भारतीय निशानेबाज ईशा सिंह ने ISSF विश्व कप में 25 मीटर पिस्टल स्पर्धा में विश्व रिकॉर्ड तोड़ते हुए स्वर्ण पदक जीता। इसके साथ ही समाचार संध्या का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
2: गुड इवनिंग, दिस इज आकाशवाणी एंड आई एम वल्सा विलियम्स विद न्यूज एट 9। The headlines. Centre approves extension of Sarthak PDS scheme to modernise public distribution system with outlay of over 25,500 crore rupees. Severe heat wave conditions to continue over central and northwest India during next 2 to 3 days. Prime Minister Narendra Modi urges citizens to take care of vulnerable people amid soaring mercury. Supreme Court upholds legality of Election Commission's SIR drive, says exercise advances free and fair elections. Assam Assembly passes Uniform Civil Code Bill, becoming third state in the country to adopt the legislation. Indian shooter Isha Singh breaks world record in women's 25-meter pistol event, clinching gold at ISSF World Cup in Munich.

25 मीटर पिस्टल मुकाबले में आलमी रिकॉर्ड तोड़ दिया है। उन्होंने म्यूनिख के ISSF आलमी कप में तलाई तमगा हासिल किया है। अब खबरें तफसील से। मरकजी वजीर दाखला अमित शाह ने मरकजी काबीना की जानिब से सार्थक PDS के दूसरे मरहले के लिए 25,500 करोड़ रुपए से ज्यादा की मंजूरी दिए जाने को सराहा है। एक सोशल मीडिया पोस्ट में जनाब शाह ने कहा कि सरकार गरीबी दूर करने की स्कीमों को टेक्नोलॉजी से लैस कर रही है ताकि उन्हें और ज्यादा शफाफ और आसान बनाया जा सके। वजीर दाखला ने मजीद कहा कि AI की

0: के जरिए ट्रैकिंग और क्यूआर कोड जैसे आला टेक्नोलॉजी निजाम के जरिए गरीबों को स्कीमों के 100% फायदे मुहैया किए जा सकेंगे। उन्होंने ये भी कहा कि रियासतों की बढ़ती हुई लॉजिस्टिक लागत के लिए इक्तिसादी मदद की भी गुंजाइश रखी गई है। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने आज कहा है कि हुकूमत इस बात को यकीनी बनाने के लिए अहदबंद है कि मुल्क में अवामी निज़ाम तकसीम PDS के जरिए हर ज़रूरतमंद फर्द को वक्त पर अनाज फराहम हो। जनाब मोदी ने मजीद कहा कि इस समत में PDS को ज़्यादा जदीद और मुअस्सर बनाने के लिए फैसला किया जा रहा है। सोशल मीडिया की एक पोस्ट में वज़ीर आज़म ने कहा कि ये इकदाम PDS के तहत फराहमी लॉजिस्टिक और नकलो हमल के इंतजाम को मजीद शफाफ और मुअस्सर बनाएगा, जिसके साथ साथ ये शिकायतों को हल करने में तेज़ी भी लाएगा। इक्तिसादी उमूर से मुतालिक काबीना कमेटी CCEA ने आज PDS में खुदकारी के साथ राशन ट्रांसपोर्ट और हैंडलिंग इनकम में इमदाद के लिए स्कीम सार्थक PDS को एक जामे स्कीम के तौर पर जारी रखने की मंजूरी दे दी है। इस स्कीम को 16वें मालियाती कमीशन अवार्ड मुद्दत में मंजूरी दी गई है, जिसमें मरकज के हिस्से के तौर पर 25,530 करोड़ रुपए मुख्तस किए गए हैं। नई दिल्ली में मीडिया को तफसीलात बताते हुए इतलात नशरियात के वजीर अश्विनी वैष्णव ने कहा कि ये स्कीम अनाज के एक रियासत से दूसरी रियासत में नकलो हमल के लिए रियासती एजेंसियों, राशन की दुकानों और अवामी निज़ाम में तकसीम की जदीदकारी में मदद फराहम करेगी।
1: इस प्रोग्राम में तीन बड़े सुधार आज अप्रूव हुए हैं। सबसे पहला, जो सरकारों के एजेंसीज राज्य में FCI का बड़ा गोडाउन होता है, वहां से डिफरेंट डिस्ट्रिक्ट्स में, डिविजन्स में फेयर प्राइस शॉप तक पहुंचाने का जो कॉस्ट होती है, उस कॉस्ट को सपोर्ट करेंगे। दूसरा, फेयर प्राइस शॉप्स है उनमें डीलर्स का रिमुनरेशन रखा गया था, उसको बढ़ाने की जरूरत थी तो वो भी फैसला लिया गया। और तीसरा फैसला, टेक्नोलॉजी का यूज करके पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम को हम कैसे मॉडर्नाइज कर सकते हैं।
0: जनाब वैष्णव ने कहा कि इस स्कीम में तीन बड़े AI पर मबनी मॉड्यूल होंगे, जिनके नाम हैं निर्मल, आशा और सक्षम। उन्होंने कहा कि निर्मल एक AI की क्यादत वाली रियल टाइम PDS मुस्तफिदीन का निज़ाम है। आशा एक कसीर लेसानी मस्नूई ज़हानत का शिकायतों के इजाले और शहरियों को मुंसलिक करने का प्लेटफॉर्म है, जबकि सक्षम AI पर मबनी सप्लाई चेन प्लेटफॉर्म है, जिसमें गाड़ियों की ट्रैकिंग भी होगी। वजीर मौसूफ ने कहा कि यह स्कीम खुराक के तहफ्फुज़ के कौमी कानून के तहत अहाता किए गए 81,35,00,000 अफराद के लिए हुकूमत के अहद को पूरा करने की जानिब काम करेगी। उन्होंने कहा कि यह स्कीम मौजूदा PDS स्कीम की जगह नहीं लेगी।
1: ये सुधार है PDS के सिस्टम में, पूरे डिलीवरी सिस्टम में, लॉजिस्टिक्स में, ट्रांसपोर्टेशन में, मटेरियल हैंडलिंग में और PDS के बेनिफिशरीज की ग्रीवेंस के रिड्रेसल के लिए बहुत बड़ा ये स्ट्रक्चरल रिफॉर्म है। और PDS एक ऐसी व्यवस्था है जिसमें केंद्र और राज्य मिलकर ही सारा काम करते हैं। दूर दराज के क्षेत्र हो, महिलाएं हो, वंचित हो, सबको कवर किया जाता है।
0: मुल्क के मुख्तलिफ हिस्सों में बढ़ते हुए दर्जे हरारत के दौरान वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने शहरियों पर जोर दिया है कि वो जितना मुमकिन हो ज़्यादा से ज़्यादा एहतियात बरतें। सोशल मीडिया की एक पोस्ट में जनाब मोदी ने सबको मशवरा दिया कि वो अपने जिस्म में पानी की कमी ना होने दें और जब कभी घर से बाहर जाएँ तो पानी के बोतल के साथ जाएँ। गर्मी के बाद रोज़मर्रा की ज़िंदगी में बढ़ती हुई परेशानियों के बारे में जोर देते हुए जनाब मोदी ने कहा कि इस तरह के मौसम में हसासियत मदद का एक बड़ा जरिया बन जाती है। उन्होंने सलाह दी कि अगर कोई प्यासा हो तो उसे पानी का एक गिलास पेश करें। उन्होंने हर किसी पर यह जोर भी दिया कि वो अपने कुनबा के अफराद और अजीज़ो अकरबा के रबते में रहें और उनकी सेहत के बारे में मालूम करते रहें। उन्होंने ज़्यादा मकदार में पानी पीने की याद दहानी कराएं, उन्हें तीसरे पहर सख्त धूप में बाहर निकलने से गुरेज करने और ज़्यादा से ज़्यादा आराम करने के लिए कहें। उन्होंने मजीद कहा कि जानवरों और परिंदों को जहन में रखते हुए घरों के बाहर बालकनियों में, छतों पर, दुकानों पर या दफातर में छोटे बर्तन में पानी भर कर रखें। वज़ीर आज़म ने हर किसी पर जोर दिया कि वो इन मुश्किल अय्याम में मुकम्मल हसासियत और जज्बे के साथ एक दूसरे का ख्याल रखें। पेश है एक रिपोर्ट।
2: आज केंद्रीय मंत्रिमंडल की बैठक के दौरान प्रधानमंत्री ने सभी मंत्रियों के साथ मौजूदा लू की स्थिति पर चर्चा की। सूचना एवं प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने बताया कि उन विशेष कदमों पर चर्चा हुई।

0: जिन्हें प्रत्येक मंत्रालय और विभाग अपने अपने कार्य क्षेत्र में उठा सकते हैं।
1: प्रधानमंत्री जी ने कैबिनेट में मौसम की जो हीट वेव की परिस्थिति है उसका भी सभी मंत्रियों के साथ चर्चा की और माननीय प्रधानमंत्री जी का जो राष्ट्र के प्रति आह्वान है उसी आह्वान के तहत सभी से अपने अपने मंत्रालय में सुविधा पहुंचाने की किस तरह की सुविधाएं की जा सकती है उसके ऊपर भी चर्चा हुई।
0: आकाशवाणी समाचार से विशेष बातचीत में नई दिल्ली स्थित अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान एम्स के मेडिसिन विभाग के प्रोफेसर डॉक्टर नवल किशोर विक्रम ने लोगों को लू से बचने के लिए खुद को हाइड्रेटेड रखना और ORS जैसे इलेक्ट्रोलाइट युक्त तरल पदार्थों का सेवन करना और दिन के समय तपती धूप में बाहर निकलने से बचने की सलाह दी। अनुपम मिश्र के साथ आनंद कुमार, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
2: सदर जमहूरिया द्रौपदी मुर्मू ने सिक्किम के शहर गैंगटॉक में पिंक सिटी रनर अमा दीदी बाहिनी नामी ख्वातीन मरकूज सरकारी ट्रांसपोर्ट सर्विस को आज झंडी दिखाकर रवाना किया। सिर्फ ख्वातीन के लिए यह बस सर्विस पूरे तौर पर ख्वातीन अमले के जरिए ऑपरेट की जाएगी, जिसका मकसद ख्वातीन मुसाफिरों को महफूज, आरामदेह और सस्ता ट्रांसपोर्ट फराहम करना है। बाद में दिन में सदर जमहूरिया द्रौपदी मुर्मू ने गैंगटॉक में सिक्किम यूनिवर्सिटी की 7वीं तकसीम असनाद की तकरीब से खताब किया। उन्होंने कहा कि मुल्क की मजमुई तरक्की के लिए शुमाल मशरक की तरक्की इंतहाई अहम है।
3: नॉर्थ ईस्ट का विकास देश की समग्र विकास के लिए अनिवार्य है। पूर्वोत्तर क्षेत्रों का विकास और राष्ट्रीय विकास के लक्ष्य आपस में जुड़े हुए हैं। यहाँ के युवाओं में असीम प्रतिभा है। सिक्किम सहित अन्य राज्यों से आए हुए विद्यार्थियों से मैं आग्रह करना चाहूंगी कि आप सब एक दूसरे के संपर्क में रहे और मिलजुल कर राष्ट्रीय विकास में योगदान देने का भावना में आगे बढ़े।
2: सुप्रीम कोर्ट ने चुनाव फहरिस्तों पर खुसूसी जामे नजर सानी की इंतखाबी कमीशन की कार्रवाई को कानूनी एतबार से जायज करार दिया है और ये भी कहा है कि आजादाना और मुनसिफाना इंतखाबात कराने के लिए आईन में इस तरह की नजरसानी के लिए कहा गया है। अदालत आलिया ने कहा कि चुनाव कमीशन को आवामी नुमाइंदगी से मुतालिक कानून मजरिया 1950 की दफा 324 और इसके तहत बनाए गए जाब्तों के मुताबिक चुनाव फहरिस्तों पर खुसूसी नजरसानी करने का अख्तियार हासिल है। चीफ जस्टिस सूर्यकांत और जस्टिस जोयमाला बागची पर मुश्तमिल बेंच ने रिट दरखास्तों पर फैसला सुनाते हुए ये बात कही। इन दरखास्तों में गुज़श्ता साल जून में बिहार में वोटर फहरिस्तों पर खुसूसी जामे नजरसानी करने के इंतखाबी कमीशन के नोटिफिकेशन को चैलेंज किया गया था। अदालत ने कहा कि SIR का अमल आज़ाद और शफाफ इंतखाब करने के मकसद को हासिल करना रहा है। चीफ जस्टिस सूर्यकांत की तरफ से सुनाए गए इस फैसले में ये भी कहा गया है कि जब खुद कानून में इंतखाबी कमीशन को किसी भी वक्त खुसूसी नजरसानी कराने को कहा गया है तो इस सूरत में कमीशन के नजरसानी के अमल को महज इस बुनियाद पर नाजायज करार नहीं दिया जा सकता कि मौजूद तरीक़ाकार माजी में कराई गई नजरसानी से मुताबिकत नहीं रखता। लिहाजा ये नहीं कहा जा सकता कि इंतखाबी कमीशन ने अपने कानूनी इख्तियारात से तजावुज किया है। अदालत ने मजीद कहा कि चुनाव कमीशन ने जो वजूहात रिकॉर्ड की हैं उनका वाज़े मकसद इसकी बुनियादी सियासत को बरकरार रखना है। इनमें 4 दहाइयों से ज्यादा मुद्दत पहले खुसूसी नजरसानी कराना, पिछले बरसों में बड़े पैमाने पर राय दहिंदगान का इजाफा होना और हजफ करना, नीज तेजी के साथ बढ़ते हुए शहरी इलाके और नकल मकानी के मामलात शामिल हैं जिनकी वजह से चुनाव फहरिस्तों में मुसन्ना साजी और अदम दुरुस्तगी का इम्कान हो सकता है। ये खबरें आकाशवाणी से नशर की जा रही हैं। असम कानून साज असेंबली ने आज यकसा सिविल कोड बिल को मंजूरी दे दी है, जिसके बाद असम इस तरह के बिल को मंजूरी देने वाली शुमाल मशरक में पहली और मुल्क में तीसरी रियासत बन गई है। यकसा सिविल कोड असम बिल 2026 को पीर के रोज 16वीं असम लेजिस्लेटिव असेंबली के पहले इजलास के दौरान पेश किया गया था, जिसे ऐवान ने आज इजलास के आखिरी दिन मंजूरी दे दी है। मरकजी वजीर दाखला अमित शाह ने रियासती असेंबली में यकसा सिविल कोड मंजूर किए जाने पर असम के लोगों को मुबारकबाद दी है। एक सोशल मीडिया पोस्ट में जनाब शाह ने कहा कि यकसा सिविल कोड उस वक्त से बीजेपी का अज़्म रहा है जब से इसका कयाम अमल में आया है। अकलियती उमूर के मरकजी वजीर किरण रिजिजू ने आज तमाम हाजियों को मुबारकबाद दी है और नेक ख्वाहिशात का इजहार किया। सोशल मीडिया की एक पोस्ट में जनाब रिजिजू ने कहा कि हुकूमत ने इस साल हज के दौरान

भारतीय आदमी ने हज को सहूलत फराहम करने की हर मुमकिन कोशिश की है। यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन यूपीएससी ने पहली बार सिविल सर्विस प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन 2026 के लिए आरजी आंसर की जारी की है। एक बयान में कमीशन ने कहा है कि जो उम्मीदवार इम्तिहान में शामिल हुए हैं वो 31 मई शाम 6 बजे तक upsconline.nic.in पर दस्तयाब ऑनलाइन क्वेश्चन पेपर रिप्रेजेंटेशन पोर्टल पर अपना रिप्रेजेंटेशन भेज सकते हैं। एक बड़ी छापेमारी में गुजरात के इंसदादे दहशतगर्दी के स्क्वाड और भारतीय साहिली मुहाफिजों ने आज गुजरात में कुछ जिले के साहिल के पास 11,000 करोड़ रुपए से ज्यादा मालियत की मुश्तबा मनशियात के 115 पैकेट जब्त किए। ये मनशियात एक कश्ती से बरामद की गई जो कच्छ मुंद्रा बंदरगाह की जानिब जा रही थी। म्यूनिख में मुनक्किदा ISSF वर्ल्ड कप के फाइनल में भारत की निशानेबाज ईशा ने 25 मीटर पिस्टल शूटिंग मुकाबले में शानदार कारकिर्दगी का मुजाहिरा किया है। उन्होंने मुमकिना 50 पॉइंट में 43 पॉइंट्स हासिल करके एक नया आलमी रिकॉर्ड कायम किया है। इससे कबल ये रिकॉर्ड 42 पॉइंट्स के साथ जनूबी कोरिया की किम येजी के नाम था। भारत के शहर चंडीगढ़ और भुवनेश्वर को आइंदा बरस मुनक्किदा होने वाले एशियाई रिले और साल 2028 की एशियाई इंडोर एथलेटिक्स चैंपियनशिप की मेजबानी के हुकूक दिए गए हैं। इस बात का ऐलान हांगकांग में मुनक्किद होने वाली एग्जीक्यूटिव मीटिंग के दौरान बर आजम एथलेटिक्स की गवर्निंग बॉडी ने किया। एशियन एथलेटिक्स काउंसिल की मीटिंग एशियाई U20 चैंपियनशिप से कबल मुनक्किद हुई जो 28 से 31 मई तक जारी रहेगी। आखिर में खास खास खबरें एक बार फिर। मरकज ने अवामी निजामे तकसीम को जदीद बनाने के मकसद से सार्थक PDS स्कीम की तौसी को मंजूरी दे दी है। इसके लिए 25,500 करोड़ रुपए से ज्यादा मुख्तस किए गए हैं। वस्ती और शुमाल मगरबी भारत में आइंदा 2 से 3 दिन के दौरान शदीद गर्मी की लहर जारी रहेगी। वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने बढ़ते हुए दर्जे हरारत के दौरान कमजोर अफराद का ध्यान रखने के लिए शहरियों पर जोर दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने चुनाव कमीशन की SIR मुहिम की कानूनी हैसियत को बरकरार रखा है। उसने कहा है कि ये मशक आजाद शफाफ इंतखाबात की राह हमवार करेगी। भारतीय निशानेबाज ईशा सिंह ने ख्वातीन के 25 मीटर पिस्टल मुकाबले में आलमी रिकॉर्ड तोड़ दिया है। उन्होंने म्यूनिख के ISSF आलमी कप में इंतलाई तमगा हासिल किया है। इसके साथ ही खबरों का यह बुलेटिन खत्म हुआ।

0: चर्चा का विषय है।
1: सीमाएं सिर्फ नक्शों पर खींची गई रेखाएं नहीं होती, ये किसी देश की पहचान होती हैं, उसकी सुरक्षा, उसकी संस्कृति और उसके भविष्य की सबसे मजबूत दीवार होती हैं। लेकिन जब इन्हीं सीमाओं को पार कर अवैध घुसपैठ देश के भीतर प्रवेश करती है तो सवाल सिर्फ सुरक्षा का नहीं रह जाता, सवाल उठता है जनसंख्या संतुलन का, सामाजिक ढांचे का, रोजगार, संसाधनों और राष्ट्रीय पहचान का। क्या बदलती जनसंख्या तस्वीर भारत के सामाजिक और आर्थिक ताने बाने को प्रभावित कर रही है? क्या सीमाओं से शुरू होने वाली ये चुनौती अब शहरों और गांवों तक पहुंच चुकी है? और सबसे बड़ा सवाल, क्या आने वाले वर्षों में ये भारत की आंतरिक सुरक्षा और सामाजिक स्थिरता के लिए गंभीर संकट भी बन सकती है? इन्हीं महत्वपूर्ण सवालों पर आज हम चर्चा करेंगे हमारे विशेष कार्यक्रम चर्चा का विषय है में। मैं हूं आनंद श्रीवास्तव। हमारा आज का विषय है जनसंख्या परिवर्तन का सामाजिक आर्थिक ढांचे पर प्रभाव। आज हमारे साथ मौजूद हैं वरिष्ठ पत्रकार और राजनीतिक विश्लेषक प्रफुल्ल केतकर और सीमा सुरक्षा की चुनौतियों को बेहद करीब से देखने वाले पूर्व बीएसएफ प्रमुख और असम के पूर्व डीजीपी प्रकाश सिंह। आप दोनों का कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत है।
2: जी नमस्कार।
3: नमस्कार
1: प्रकाश जी। आपसे ये समझने की कोशिश करेंगे कि जो सबसे बड़ी चुनौती इस समय भारत के सामने है वो दूसरे देशों से आए लोग हैं। दो तरह के लोग हैं, एक शरणार्थी हैं और दूसरे घुसपैठिए हैं। इसको लेकर जो हमारे बॉर्डर स्टेट हैं वहां पर कई तरह की समस्याएं देखने को मिल रही है, क्या लगता है? चूंकि आप खुद बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स के प्रमुख रह चुके हैं, असम एक ऐसे राज्य के आप डीजीपी थे जहां पर इस तरह की बहुत बड़ी समस्या है, कैसे देखते हैं आप इसे भारत के नजरिए से?
3: देखिए, भारत के

0: से तो बहुत साफ है और अलग अलग समय पे बड़े बड़े हस्तियों ने इस विषय पे रोशनी डाली है कि ये देश की सामाजिक ढांचे के लिए, देश की अर्थव्यवस्था के लिए और देश की सुरक्षा के लिए, तीनों ही दृष्टिकोण से यह बहुत बड़ी चुनौती है और बहुत बड़ा खतरा है। घुसपैठिए जो है आज से नहीं, ये स्वतंत्रता के बाद से, इंडिपेंडेंस के बाद से ही शुरू हो गया था, पर यह है कि इसकी प्रक्रिया अगर हम 1971 के बाद देखें, 1971 में बांग्लादेश बन गया, तो उसके पहले जो कुछ उत्पीड़न हुआ था पाकिस्तान आर्मी द्वारा, उस समय आप जानते हैं लाखों की तादाद में बांग्लादेशी आए थे और यहाँ पे उन्होंने शरण ली थी। बाद में बहुतों को वापस भेजा गया, कुछ गए शायद, कुछ नहीं भी गए होंगे, परंतु 1971 के बाद भी ये समस्या ऐसा नहीं है कि इसका समाधान हो गया। हम लोग ये समझते थे कि अब बांग्लादेश इंडिपेंडेंट हो गया और भारत के सहयोग से हुआ है, तो वो अब हिंदू वहां पे सुरक्षित अपने आप को महसूस करेंगे, मुस्लिम तो वहां पे रहेंगे ही, परंतु बहुत सारे कारण ऐसे हुए जिसकी वजह से ये घुसपैठ की समस्या बराबर बनी रही। सबसे बड़ा कारण जो था आर्थिक था, वो बांग्लादेश तो बन गया पर उनकी आर्थिक स्थिति ऐसी नहीं थी कि वो इतनी बड़ी जनसंख्या को सबको एम्प्लॉयमेंट दे सके, सबको रोजी रोटी की व्यवस्था हो सके। नतीजा ये हुआ कि आर्थिक कारण से बहुत भारी संख्या में 1971 में बांग्लादेश के बनने के बाद भी यहाँ पलायन होता रहा, लोग आते रहे सीमा पार से और जितने बॉर्डरिंग स्टेट से वहां पे बढ़ते गए। इस समस्या से सारी सरकारें अवगत थी। आपको याद होगा कारगिल युद्ध के बाद चार टास्क फोर्सेस बनी थी बॉर्डर की समस्या देखने के लिए, इंटरनल सिक्योरिटी की, डिफेंस की, इंटेलिजेंस की, और चारों टास्क फोर्स बड़े हाई पावर्ड बॉडीज थी। इसमें एक बॉर्डर मैनेजमेंट वाली जो बॉडी थी वो माधव गोडबोले उसका नेतृत्व कर रहे थे, जो भारत सरकार के गृह सचिव थे और बड़े योग्य IAS अधिकारी थे। उन्होंने अपनी रिपोर्ट जो अगस्त 2000 में प्रस्तुत की, और उस रिपोर्ट में ये लिखा कि हर वर्ष करीब 3 लाख बांग्लादेशी भारत में घुसपैठ कर रहे हैं और इस समय वर्तमान में 2000 में उनकी संख्या 1 करोड़ 50 लाख है। ये 2000 की बात है, उसके बाद भी बढ़ता ही रहा होगा, आज की तारीख में 3 करोड़ हो गया हो, 3.5 करोड़ हो गया, कुछ कहा नहीं जा सकता। अलग अलग समय पर भारत सरकार ने इसका अलग अलग एस्टिमेट दिया है। 2001 में एक ग्रुप ऑफ मिनिस्टर्स बना था, ये ग्रुप ऑफ मिनिस्टर्स ने चारों टास्क फोर्सेज के रिपोर्ट को इवेल्युएट किया था, उसका आकलन किया था, और इन्होंने भी बहुत स्पष्ट शब्दों में लिखा था कि इतनी बड़ी संख्या में घुसपैठियों का होना देश की सुरक्षा, सामाजिक सौहार्द और अर्थव्यवस्था के लिए बहुत बड़ा खतरा है। फिर बाद में आ जाइए 2005 में सुप्रीम कोर्ट के सामने ये मामला गया, सोनोवाल बनाम यूनियन ऑफ इंडिया केस था एक 2005 में, उसमें उन्होंने कहा था कि दिस इज ए डेमोग्राफिक एग्रेशन और एक्सटर्नल एग्रेशन में इसको उन्होंने क्लासिफाई किया था, ये एक्सटर्नल एग्रेशन है ऑन इंडिया, और कहा था इसके लिए भारत की संप्रभुता, अखंडता और आंतरिक सुरक्षा के लिए बहुत बड़ा खतरा है, ये सुप्रीम कोर्ट ने कहा था। तो ये समस्या आज से नहीं, बहुत पहले से चली आ रही है। और अगर आप और पहले जाना चाहें तो 1998 में जब जनरल सिन्हा आसाम के राज्यपाल थे, तो उन्होंने प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को 8 नवंबर 1998 में एक रिपोर्ट भेजी थी जिसमें लिखा था कि असम में जो घुसपैठ हो रही है उससे जनसंख्या में जो परिवर्तन हो रहे हैं, हो सकता है कि कालांतर में, मतलब बहुत कुछ वर्षों बाद, बांग्लादेश ये मांग करे कि असम के जो सीमावर्ती मुस्लिम बाहुल्य प्रदेश हैं इन्हें बांग्लादेश में मिला दिया जाए क्योंकि ये मुस्लिम मेजोरिटी डिस्ट्रिक्ट हो गए हैं। तो ये तो स्थिति है, ये आज से नहीं, कम से कम 1998 से बराबर चेतावनी हमको मिल रही है। अब 26-27 साल हो गए हैं, वर्तमान सरकार को इस बात का श्रेय तो हम देंगे कि इन्होंने इस समस्या की नोटिस ली है और मोदी जी ने अपने इंडिपेंडेंस डे के स्पीच में कहा है कि एक डेमोग्राफिक कमीशन बनाएंगे, तो इस समस्या को गंभीरता से उसको स्टडी करके अपने रिकमेंडेशन देगी।
1: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी कई अवसरों पर कहा है कि घुसपैठिए राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए बहुत बड़ा खतरा है।
2: जब डेमोग्राफी परिवर्तन होता है, सीमावर्ती क्षेत्रों में डेमोग्राफी में परिवर्तन होता है, तब राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए संकट पैदा होता है। देश की एकता, अखंडता और प्रगति के लिए ये संकट पैदा, सामाजिक तनाव के बीज बो देता है, और कोई देश अपना देश घुसपैठियों के हवाले नहीं कर सकता है, दुनिया का कोई देश नहीं कर सकता है। तो हम भारत को कैसे कर सकते हैं? हमारे पूर्वजों ने त्याग और बलिदान से आजादी पाई है, हमें स्वतंत्र भारत दिया है, उन महापुरुषों के प्रति हमारा कर्तव्य है कि हम हमारे देश में ऐसी हरकतों को स्वीकार न करें, उनकी सच्ची श्रद्धांजलि होगी। और इसलिए मैं आज लाल किले की प्राचीर से कहना चाहता हूं, हमने एक हाई पावर डेमोग्राफी मिशन शुरू करने का निर्णय किया है। इस मिशन के द्वारा ये जो भीषण संकट नजर आ रहा है, भारत पे मंडरा रहा है जो संकट है, उसको निपटाने के लिए तय समय में सुविचारित सुनिश्चित रूप से अपने कार्य को करेगा, उस दिशा में हम आगे बढ़ रहे हैं।
1: जी हाँ, प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने 15 अगस्त 2025 को उच्च स्तरीय जनसांख्यिकी मिशन की घोषणा की थी। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने 11 सितंबर 2025 को इस प्रस्ताव को मंजूरी दी और अब न्यायमूर्ति प्रकाश प्रभाकर नवेलकर सेवानिवृत्त समिति के अध्यक्ष होंगे। जनगणना आयुक्त के अतिरिक्त 3 विशिष्ट विशेषज्ञ श्री दुर्गा शंकर मिश्रा सेवानिवृत्त IAS,

0: श्री बालाजी श्रीवास्तव सेवानिवृत्त आईपीएस और डॉक्टर शमिका रवि समिति के सदस्य होंगे और गृह मंत्रालय के संयुक्त सचिव भी समिति के सदस्य सचिव होंगे। ये समिति एक वर्ष के भीतर अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करेगी। आवश्यकता पड़ने पर गृह मंत्रालय समिति का कार्यकाल 6 महीने तक बढ़ा सकता है। केंद्रीय गृह मंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जो 15 अगस्त 2025 को घोषणा की थी उच्च स्तरीय कमेटी की, अब उसका गठन हो गया है और घुसपैठियों के बुरे दिन की शुरुआत भी इसी के साथ हो गई है। आइए सुनते हैं उन्होंने क्या कहा।
1: भारत सरकार ने ये तय किया है कि हम न केवल घुसपैठ को रोकेंगे, एक एक घुसपैठिए को चुन चुन कर देश के बाहर निकालेंगे और हमारी जनसांख्यिकी में अकृत्रिम बदलाव नहीं होने देंगे। ये जो जनसांख्यिकी का बदलाव करने का षड्यंत्र है, इसको सीमा सुरक्षा बल ने रोकना है। और आज मैं बड़ी शांति से, निश्चिंत मन से आपको कह रहा हूं कि अब त्रिपुरा, आसाम और पश्चिम बंगाल तीनों जगह ऐसी सरकारें हैं जो नीतिगत रूप से मानती है कि देश में घुसपैठ नहीं होनी चाहिए।
0: प्रफुल्ल जी, आपसे ये समझने की कोशिश करेंगे कि सीमावर्ती जिलों और देश के कुछ चुनिंदा महानगरों में अचानक आई इस जनसांख्यिकी बदलाव के संकेत जो मिल रहे हैं, क्या आपको लगता है कि सामाजिक और सांस्कृतिक ताने बाने को ये प्रभावित कर रहा है?
2: जी निश्चित, वैसे तो ये अचानक नहीं आया है, लेकिन समस्या के रूप में अचानक उसको अभी देखा जा रहा है। जैसे हमने हाल ही में देखा, नोएडा में अचानक से एक इरप्शन हुआ मूवमेंट के रूप में, और बहुत सारे सोसाइटीज में, क्रिमिनल एक्टिविटीज में जब भी नाम आता था तो शुरू में इसके बारे में चर्चा जरूर होती थी, लेकिन कोई एक्शन नहीं होता था। हमको ये ध्यान में रखना चाहिए, अभी IMDT एक्ट 1983 में बना, उस एक्ट का नाम ही था इलीगल माइग्रेंट्स डिटर्मिनेशन बाय ट्रिब्यूनल। इसका मतलब पहली बार तो समस्या उस समय से शुरू कम से कम मानी गई कि इलीगल माइग्रेंट्स है। अब इसमें दो तरीके के अलग अलग थे, एक जो 1971 से पहले या 1971 के बाद, फिर 1990 के दशक में भी, 92 के बाद खास करके अयोध्या के आंदोलन के रिएक्शन में वहां पे जो मंदिर गिरा गए, और केवल हिंदू ही नहीं, हिंदू बुद्धिस्ट वहां की सो कॉल्ड जिनको हम माइनॉरिटीज बांग्लादेश के संदर्भ में कह सकते हैं, ऐसे लोग भारत में उनको शरण लेनी पड़ी, जिनके लिए CAA जैसा प्रावधान करना पड़ा। लेकिन दूसरा एक बहुत बड़ा वर्ग था जिसने इलीगल इमिग्रेंट्स की या इलीगल माइग्रेशन की एक बहुत बड़ी इकोनॉमी इसके आधार पर खड़ी कर दी। प्रकाश सिंह जी ने जैसे बताया, कुछ कारण तो पर्यावरणीय, कुछ कारण आर्थिक भी रहे होंगे, लेकिन मैं दावे के साथ कहता हूं, आप यदि इंटरनेशनल इंडेक्स निकाल लो तो बहुत सारे पैरामीटर्स में असम के सीमावर्ती जिले या बंगाल के सीमावर्ती जिले उनकी तुलना में बांग्लादेश की इकोनॉमी उस समय बहुत अच्छा कर रही थी। तो ऐसे में उनको क्या माइग्रेट होने की जरूरत पड़ी? मुझे लगता है कि इसके पीछे आर्थिक और पर्यावरणीय एनवायरमेंटल कारणों की वजह से, क्योंकि कुछ हिस्से ऐसे हैं बांग्लादेश के जहां पे बाढ़ की स्थिति आती है और वहां से माइग्रेशन होता है, लेकिन मुझे लगता है कि इसके पीछे एक सोची समझी राजनीति थी, एक सोची समझी रणनीति भी थी। काउंटरफिट करेंसी का एक बहुत बड़ा नेटवर्क, जब कालियाचक की पुलिस चौकी को जलाया गया था बंगाल में, तो उस समय उजागर हुआ था। ये साफ साफ दिखाता है, या इलीगल जो आर्म्स का ट्रेडिंग है उसका एक इम्पोर्टेंट रूट रहा है, ड्रग ट्रैफिकिंग का ये एक इम्पोर्टेंट रूट रहा है। यही रास्ता है जहां म्यांमार से बांग्लादेश में गए हुए रोहिंग्या रेफ्यूजीज भी सीधे आकर उसी रूट से कोई जम्मू कश्मीर तक, कोई हैदराबाद तक पहुंच गया। वो यदि रेफ्यूजी थे तो वो वहीं पे शरण ले सकते थे, उनको जम्मू कश्मीर तक जाने की क्या जरूरत थी? किसने पहुंचने के लिए उनको मदद की? उनके कार्ड्स भी बन जाते थे, वहां बॉर्डर क्रॉस करने से पहले उनको सारे आधार कार्ड और डॉक्यूमेंट्स बनाने की प्रक्रिया एक चलाने का प्रयास शुरू हुआ, और उसके बहुत सारे नेटवर्क भी भारत के अन्य शहरों से एक्सपोज हुए। क्या हुआ दुर्भाग्य से, 1980 के बाद, मुझे याद है उस समय ममता बनर्जी का एक बहुत बड़ा स्टेटमेंट पार्लियामेंट में था 2005 में शायद, और उस समय वो लेफ्ट गवर्नमेंट को और बुद्धदेव भट्टाचार्य को घेर रही थी, और उस समय वो पूछ रही थी कि कब तक इन इलीगल माइग्रेंट्स को वोट बैंक बनाकर अपने लिए पोसोगे। दुर्भाग्य से वही ममता बनर्जी बाद में वही नीति आगे बढ़ाने लगी, तो सामाजिक ताना बाना बिगड़ता है, वहां की सांस्कृतिक स्थिति खराब होती है, वहां के रिसोर्सेस पर अतिरिक्त भार पैदा होता है, और ये इलीगल एक्टिविटीज को बढ़ावा भी मिलता है। तो एक समग्र दृष्टि से आंकड़े अलग अलग होंगे, क्वेश्चन ये है कि पहली बात किस कारण से इसको बढ़ावा मिला, दूसरा उसको रोकने की।

0: तीसरा जो भारत में आ गए हैं उनको आइडेंटिफाई करने की। तो डिटेक्शन इज द फर्स्ट स्टेज, एक्सेप्टेंस एंड डिटेंशन जब तक डिटेक्ट नहीं होंगे उसके बाद तो बाकी सारी प्रोसेस आएंगी कि उनको वोटर्स लिस्ट से डिलीट करना है या डिपोर्ट करना है, ये तो बाद की स्टेज है। उनको वर्क परमिट्स भी दिए जा सकते हैं, लेकिन कम से कम आइडेंटिफाइड हो कि
1: जी बिल्कुल
0: विदेशी मूल का नागरिक है, बिना पासपोर्ट के आया है और हमारे पास उसका एक ठोस डेटा है। और पूरे विश्व भर में ये होता है, उसमें भारत को अलग से कुछ सोचने की जरूरत नहीं है। हमने यदि बांग्लादेश और पाकिस्तान ये दो अलग अलग बॉर्डर्स पार्टीशन के बाद एक्सेप्ट किए हैं तो वैश्विक नियमों के अनुसार उनको भारत में आना है तो वीजा लेकर ही आना चाहिए, लीगल तरीके से ही आना चाहिए, इलीगल इन्फिल्ट्रेशन उसका रास्ता नहीं हो सकता। तो इसके नेटवर्क को डिसमेंटल करना ये राष्ट्रीय सुरक्षा और सामाजिक सांस्कृतिक आधार पर भी एक महत्वपूर्ण विषय है। और मुझे लगता है आने वाले समय में ये जो समिति बनी है वो उस दिशा में 1 साल के अंदर समग्र रिपोर्ट भी देगी और इसके आधार पर नीति भी बनेगी।
1: जी हाँ, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने भी कहा है कि शरणार्थी और घुसपैठियों को अलग अलग तरह से देखना चाहिए, क्योंकि दोनों के साथ अलग तरह की चुनौतियां हैं। आइए सुनते हैं उन्होंने क्या कहा।
2: शरणार्थी और घुसपैठिया दोनों को एक पेज पर रखकर नहीं सोचना चाहिए। जो हमारे संविधान को जानते हैं, जो हमारे इतिहास को जानते हैं, हमारे देश की राजनीतिक इतिहास को जानते हैं, उन्होंने कम से कम ये गलती नहीं करनी चाहिए। हमारा संविधान बहुत स्पष्ट है, घुसपैठ कर आते हो, अलग अलग उद्देश्यों से आते हो तो आपको जरूर घुसपैठ का लेबल लगेगा और वो लगाना चाहिए शासन में। फिर कुछ लोग दलील करते हैं कि अगर वो भारत में ही रहना चाहते हैं तो हम क्यों सीमित करते हैं। कुछ सीमित नहीं करते हैं, इसके लिए भी कानून है। किसी भी धर्म का व्यक्ति एप्लीकेशन करे और एप्लीकेशन करके वैध तरीके से पासपोर्ट लेकर वीजा लेकर आए, हम उनके क्रेडेंशियल देखकर उनको नागरिकता देंगे, ये रास्ता खुला ही है। मगर आप अवैध तरीके से घुसपैठ करोगे तो सीमाएं पोरस नहीं हो सकती, सीमाओं से घुसपैठ नहीं होनी चाहिए और उनको संभालना भी चाहिए।
1: प्रकाश जी, चूंकि इन चुनौतियों को आपने काफी करीब से देखा है और अक्सर देखा जाता है कि सीमा पार करने के बाद जो घुसपैठिए हैं वो स्थानीय आबादी में घुल मिल जाते हैं, सुरक्षा बलों और स्थानीय राज्य पुलिस या खुफिया एजेंसियों के बीच जो तालमेल है उसको आप कैसे देखते हैं इस समस्या के निराकरण में?
3: देखिए, ये तालमेल तो बहुत जरूरी है, पर मेरा अपना अनुभव यह है कि जो सिक्योरिटी एजेंसीज है अगर वो डिटरमिंड है तो इसका बहुत तरह से उपाय है। मैंने एज आईजी बीएसएफ पंजाब कुछ ऐसा काम किया है जिसको 25 साल तक तो उसको गोपनीय रखा मैंने, उसके बाद उसकी किताब में मैंने खोल के रख दिया। बहुत सारे भारी बांग्लादेशी जो थे, भारी मुसलमान बांग्लादेश से चलते थे और वो पंजाब में आ जाते थे और पंजाब में गुरुद्वारों में लंगर खाते थे, फिर जब उनको मौका मिला तो बॉर्डर पार करते थे। अब मेरे जाने के पहले बीएसएफ क्या करती थी, उसको बॉर्डर पे रोकती थी, उनको पंजाब पुलिस को हैंडओवर करती थी, पंजाब पुलिस 2-4 दिन रखते थे, उसके बाद कहते थे हम आतंकवाद से लड़ें कि इनको कलकत्ते पहुंचाएं, ये छोड़ दो इनको, फिर थोड़े दिन बाद फिर वो वापस जा रहे हैं। तो मैंने अपने जिम्मेदारी पे बिना किसी होम मिनिस्ट्री के सैंक्शन के चिदम्बरम साहब से जब मैंने पूछा तो उनका यू विल बी डूइंग दिस एट योर ओन रिस्क, आई कैन नॉट परमिट दैट ऑफिशियली। मैंने अपने कहा जितने लोग हैं इनको अपने बीएसएफ के कैंप्स में रात भर रखो और जब अंधेरी रात हो तो इनको सीमा से पार से इनको पाकिस्तान भेज दो। मैंने कम से कम 25-30 हज़ार आदमी तो भेज दिए। इसका उपाय हर आदमी अपने लेवल पे काम कर सकता है। मैंने पर इसका ढिंडोरा नहीं पीटा, कोई इनाम नहीं मांगा, इसका ढोल नहीं बजाया, चुपचाप ये काम हो गया। फिर 25 साल बाद मैंने कहा कि मैंने इस तरह का काम मैंने किया था। पर यह है कि अभी भी इस समस्या का देखिए कुछ निदान हमें ढूंढना पड़ेगा। कुछ सुझाव तो गोडबोले साहब ने अपने कमेटी की रिपोर्ट में दे रखा है, मैं कहूंगा कि उस रिपोर्ट को फिर से अध्ययन किया जाए सरकार द्वारा, और जिन समस्याओं के लिए ये डेमोग्राफी कमीशन बन रहा है उन समस्याओं पे गोडबोले साहब ने बहुत गहन चिंतन किया है। इसके अलावा देखिए, अभी जैसे प्रफुल्ल जी ने कहा उनको हमें डिटेक्ट करना है, आइडेंटिफाई करके उसके बाद उनको डिपोर्ट करना है। अब डिपोर्टेशन में दिक्कत आ सकती है, बांग्लादेश उसको नहीं मानेगा तो उसका क्या करना होगा ये हमें बाद में देखेंगे। पर अगर मान लीजिए एक संख्या कोई आपने रखी है जो होल्डिंग सेंटर्स बनाए हैं, उनको कहिए कि भाई अगर तुम हिंदुस्तान में रहना है तो हम तुम्हें रहने देंगे पर तुम्हें अपना सिटीजनशिप कार्ड या आधार कार्ड तो सरेंडर करना पड़ेगा और तुम्हें एक बांग्लादेश का एक कार्ड दिया जाएगा कि तुम बांग्लादेश के नागरिक हो, इस देश में तुम्हें 2 साल रहने की और काम करने की इजाजत दी जाती है, 2 साल बाद फिर हम इसको रिव्यू करेंगे कि तुम्हारा क्या किया जाए। और पर इन आदमियों को जिनको ये बांग्लादेश का कार्ड दिया जाता है ये हमारे आई कार्ड से रंग में फर्क होना चाहिए, केवल कार्ड को देखकर ही मालूम हो जाए कि ये बांग्लादेश का ये आदमी, और इस आदमी को 2 कंडीशन होनी चाहिए कि तुम हिंदुस्तान में रह सकते हो और अपनी जीविका उपार्जन कर सकते हो परंतु तुम वोट नहीं दे सकते और कोई अचल संपत्ति नहीं खरीद सकते। ये 2 कंडीशन उस पर इम्पोज की जाए और उसको सख्ती से लागू किया जाए कि मूवेबल प्रॉपर्टी नहीं खरीदोगे और तुम्हारा

0: नाम इलेक्टोरल लिस्ट में नहीं होगा। तो इसमें हमें थोड़ा ह्यूमैनिटेरियन कंसिडरेशन भी रखना पड़ेगा, और कालांतर में मैं कहता हूं कि इस पे हमें बांग्लादेश से सख्ती से कहना पड़ेगा, देखिए आपके अभी भी हमारे पास 2.5 करोड़ 2 करोड़ जितना भारत सरकार का आकलन हो इतने आदमी है, या तो आप इन्हें वापस लीजिए या इसके बदले में हमें जमीन दीजिए। और वो जमीन हम मांगे ठीक चिकन नेक के अगल बगल रंगपुर डिवीजन में मांगे, हमारा चिकन नेक की समस्या भी हल हो जाएगी और इन आदमियों को हम वहां बसाएं या जहां भी बसाएं, पर हम कहीं इतने आदमियों को रहने के लिए इतने वर्ग फुट हमें जमीन चाहिए, इतनी जमीन आपको देना पड़ेगा, तो सख्ती तो करनी पड़ेगी, या तो इनको वापस लो। तो एक स्ट्रिक्ट लाइन ऑफ एक्शन लेना पड़ेगा हमें, और उसकी भी शायद नौबत कालांतर में आएगी। पर यह है कि इस समस्या का हमें निदान ढूंढना है, वरना ये तो हमारे ऊपर बोझ है आज की तारीख में।
1: जी प्रफुल्ल सर, आपसे ये समझना चाहेंगे कि जो अवैध रूप से जो लोग यहाँ पे रह रहे हैं, जब स्थानीय श्रम बाजार यानी लेबर मार्केट में शामिल होते हैं, तो रोजगार, सब्सिडी, राशन और स्वास्थ्य सेवाओं जैसे सीमित सरकारी संसाधनों पर इसका जो असर पड़ रहा है, वो एक राज्य सरकार और केंद्र सरकार के लिए चुनौती है, और वो कितनी गंभीर समस्या बनते जा रही है भारत जैसे देश में जहाँ की आबादी 140 करोड़ से ज्यादा है।
2: देखिए, आज की भाषा में जैसे कहा जाता है कि डेमोग्राफी इज डेस्टिनी, और डेमोग्राफी इज डेस्टिनी ये मोर रिलेवेंट हो जाता है जब आपकी डेमोक्रेसी हो, क्योंकि उस डेमोक्रेसी में आपको सरकार चुनने का भी अधिकार मिल जाता है और उस सरकार से दिए हुए योजनाओं का लाभ लेने का भी। मैं उस पर आऊंगा, लेकिन उससे पहले और एक बिंदु मैं श्रोताओं के लिए स्पष्ट कर देना चाहता हूं।
1: जी,
2: 1983 में जो IMDT एक्ट बना, जनरल सिन्हा की रिपोर्ट ने उस पर बहुत डिटेल में ये दिया था, और वेंकैया नायडू उस समय मंत्री थे, मुझे स्मरण है, शायद ठीक बता रहा हूं, तो उन्होंने पार्लियामेंट में उसको लेकर स्टेटमेंट भी दिया था, गोडबोली कमेटी ने भी उसका रेफरेंस लिया था। IMDT एक्ट ने एक बहुत बड़ा लूपहोल था। IMDT एक्ट में जो इलीगल व्यक्ति जो आया है वहां से, उसको अपनी नागरिकता प्रूव करने का कोई भी बंधन नहीं था। जो कंप्लेन उसके विरोध में करेगा कि ये बाहर से आया हुआ है और ये भारत का नागरिक नहीं है, उस पर ओनस था कि वो ये प्रूव करे कि ये भारत का नहीं है। और ऐसे में भारत में स्वाभाविक रूप से मानसिकता होती है, और इसने भारत में कॉम्पिटिटिव वोट बैंक पॉलिटिक्स को जन्म दिया। शायद मुझे पता नहीं है जानबूझकर रखा गया था उस समय का उसका क्या लॉजिक था, क्या कारण थे, लेकिन इसने इस समस्या को बढ़ाया। अब आपने जो पूछा कि सरकार की योजनाएं हो, चाहे वो खाद्यान्न से जुड़ी हुई हो या अन्य योजनाओं का लाभ हो, इन सबके लिए अल्टीमेटली बेनिफिशियरी कौन होता है, जिसका हक ये मारते हैं? भारत का जो गरीब तबका है, उसके अधिकारों का, उनके रिसोर्सेस का एक तरीके से ये इलीगल माइग्रेंट्स जो है, जो रोजगार के नाम पर या अन्य किसी नाम पर आते हैं, मैं नहीं मानता रोजगार पर, भारत के लोग नहीं जाते क्या रोजगार के लिए बाहर? लेकिन क्या वो इलीगल बाउंड्री क्रॉस करके जाते हैं? बाउंड्री क्रॉस करके जाते तो भी भारत उनको स्वीकार करता है। ऐसी कुछ घटनाएं बाहर के देशों में हुई तो हमने कहा कि भाई हम उनको कोई भारत बढ़ावा नहीं देता है। तो हमको वही नीति हमारे पड़ोसी देशों के बारे में या भारत और नेपाल के बीच में बहुत सारे लोग आते जाते हैं, लेकिन उसके लिए भी एक प्रावधान बना हुआ है, एक आई कार्ड दिखाकर वो आते हैं, वर्क परमिट के नाते यहाँ पे रहते भी है। तो मुझे लगता है इसका जो परिणाम होता है वो स्थानिक संसाधनों पर होता है, सरकारी योजनाओं के लाभ लेने के कारण होता है, राष्ट्रीय सुरक्षा पर होता है, और खास करके असम में जो समस्या आई, स्थानिक संस्कृति, लेकिन उसके साथ साथ बहुत सारे जंगलों के, और अभी पूर्वोत्तर के बहुत राज्यों में ये आ रहा है, जहां पे भारत के सामान्य व्यक्ति को भी जाने के लिए एक परमिट लेना पड़ता है, इनर लाइन परमिट जिसको कहते हैं, बांग्लादेशी घुसपैठिए वहां पर आकर बैठ गए हैं, वहां के जंगल संसाधनों का नुकसान कर रहे हैं। तो ये हमारा मल्टीपल रिसोर्सेस का एक तरीके से एक्सप्लॉयटेशन भी है, उन पर स्ट्रेन भी है। तो मुझे लगता है कि ये भी डायमेंशन हमको, जब हम रिलीजियस इम्बैलेंस तो है ही, वो इम्बैलेंस क्रिएट होता है जिसके कारण समाज में एक तनाव पैदा होता है, लेकिन सांस्कृतिक और आर्थिक साधनों के आधार पर भी ये घुसपैठ बहुत बड़ी समस्या सीमावर्ती क्षेत्र में बनी हुई है, जिसके कारण इस समिति का गठन करना पड़ा है।
1: असम के मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा शर्मा ने भी कहा है कि बाहर से आए हुए लोग देश की समस्या के साथ साथ असम के लिए भी एक बड़ी चुनौती बनते जा रहे हैं। आइए सुनते हैं उन्होंने क्या कहा।
3: आई थिंक चैलेंज हैज बिकम मोर ग्रेव, द डेमोग्राफिक पैटर्न इज चेंजिंग फास्ट। टुडे ऑलमोस्ट 40% ऑफ आवर टोटल पॉपुलेशन विल बी फ्रॉम दोज हु हैज कम फ्रॉम बांग्लादेश एट सम पॉइंट ऑफ टाइम। Legalities apart, today Assamese is marginalized in our own land. Our culture is marginalized.

0: lies in our own land. Economy is fast shifting to those people who were never associated with our culture and with our history. So the silence continue, but one good thing is that there is a collective spirit today to face the challenge, and I am sure that our new generation will fight, will keep on fighting, and God will bless us, will survive.
1: प्रफुल जी, आप बहुत समय से भारत के अलग अलग विषयों पर पैनी नजर रखते हैं। ये जो समिति बनी है और प्रधानमंत्री ने 15 अगस्त 2025 को लाल किले के प्राचीर से इसकी घोषणा की थी, क्या लगता है कि इस समिति के बनने से क्या कुछ बदलने वाला है निकट भविष्य में?
2: देखिए, मुझे इसमें सबसे बड़ा जो बदलाव लग रहा है बंगाल के चुनाव के बाद, मुझे लगता है एजेंसीज के बीच में कोऑर्डिनेशन से भी ज्यादा इसमें अलग अलग स्टेट्स की कोऑर्डिनेशन की बड़ी समस्या रहती थी। बांग्लादेश से एंटर कर रहा है असम में जा रहे हैं, असम से एंटर कर रहे हैं बिहार तक पहुंच रहे हैं या झारखंड तक पहुंच रहे हैं, और ऐसे में फिर एक राज्य दूसरे राज्य पर ये चीज झकेल देता था कि ये तो हमारी समस्या नहीं है, ये तो आपको रोकना है, और फिर ये वहां का राज्य एक केंद्र पर कि ये तो आपको बीएसएफ के लेवल पर हैंडल करना चाहिए, लेकिन बॉर्डर की जो लैंड है वो पोरस रखेंगे, उसको ट्रांसफर नहीं करेंगे बीएसएफ को। तो ये सारा कॉम्प्लेक्स सिनारियो था। आज अभी राजनीतिक स्तर पर मुझे लगता है प्रधानमंत्री ये निर्णय ले पाए, उसमें एक महत्वपूर्ण कारण आज ये है कि इस सीमावर्ती क्षेत्र में झारखंड छोड़कर लगभग सारे हिस्सों में सत्ताधारी दल एक ही है, और या वो एनडीए का हिस्सा है या भाजपा से जुड़ा हुआ है, तो ऐसे में ये समन्वय ऐसे ही हुआ था नक्सलवादी समस्या के बारे में, तुरंत बॉर्डर क्रॉस करके चले जाते थे, और फिर छत्तीसगढ़ का ये कहता था नहीं मध्य प्रदेश की समस्या है, मध्य प्रदेश वाला कहता था तो उसने क्राइम तो हमारे यहाँ पे नहीं किया है, वो तो महाराष्ट्र भाग गया है। तो ऐसे में पहली मीटिंग जब की थी गृहमंत्री, मुझे याद है चारों राज्यों के गृहमंत्री और डीजीपी को लेकर मीटिंग की थी। अब ये समन्वय संभव हो पाएगा केंद्र सरकार ने जब ये समिति बनाई है, तो मुझे लगता है समिति एक तो इसका समग्रता से अध्ययन करेगी, पिछले रिपोर्ट्स के आधार पर इसका एक जिसको हम कह सकते हैं क्लियर पिक्चर इसके कारण सामने आएगा। दूसरा, मुझे लगता है कि इसके समस्या के निराकरण के लिए भी नीतिगत सीधा सीधा एक मुझे लगता है कि क्लियर कट पिक्चर सरकार के सामने भी आएगा कि नीतिगत विषय में इसको आगे कैसे बढ़ाना है, और समन्वय के नाते कौन कौन से एजेंसी की क्या क्या भूमिका रहेगी, ये भी स्पष्टता इस समिति के गठन के कारण आने की संभावना है। तो आने वाले जैसे शब्द तीन चले, डिटेक्ट डिलीट एंड डिपोर्ट, लेकिन मुझे लगता है कि कम से कम डिटेक्शन और आने वाले कालखंड में इसको फिर से और आगे ना बढ़े, ये इलीगल माइग्रेशन ना बढ़े, जो है उनको डिटेक्ट करके क्या करना है वो तो है ही, लेकिन वो ना बढ़े इसके लिए क्या हो, इसके लिए निश्चित रूप से हमको एक नीतिगत दिशा मिलने की संभावना इस समिति से बनेगी, यह मेरा विश्वास है।
1: जी हाँ, बिल्कुल। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि केंद्र और राज्यों के बीच बेहतर तालमेल अगर होगा तो इस चुनौती से पार पाया जा सकता है। आइए सुनते हैं उन्होंने क्या कहा।
3: सिर्फ सीमाओं की सुरक्षा कर हम देश की सुरक्षा सुनिश्चित नहीं कर सकते, हमने क्षेत्रीय सुरक्षा का राज्य सरकारों के साथ रहकर चिंता भी करना पड़ेगा और वो जिम्मेदारी का निर्वहन भी करना पड़ेगा। हमारी जिम्मेदारी है कि सीमा से नजदीक 50 किलोमीटर के किसी भी गांव में कोई अवैध निर्माण होता है तो हम सिविल प्रशासन को सूचित करें, कलेक्टर को सूचित करें, एसपी को सूचित करें। हमारी जिम्मेदारी है कि 50 किलोमीटर की बॉर्डर तक के सभी गांवों में जनसांख्यिकी का परिवर्तन हो रहा है, कृत्रिम परिवर्तन हो रहा है, तो उसके प्रति सजग रहकर राज्य सरकार को आगाह करें।
1: प्रकाश जी, एक और सवाल आपसे समझना चाहेंगे कि 2014 के बाद इस समस्या को लेकर वर्तमान केंद्र सरकार ने बहुत सारी कोशिशें की हैं और उसी दिशा में इस समिति का गठन भी है, कैसे देखते हैं पिछले 12 वर्षों के मौजूदा सरकार के प्रयासों को घुसपैठियों और ये जो डेमोग्राफिकल चेंज है इससे पार पाने की दिशा में?
4: देखिये, समस्या की गंभीरता को समझा गया है, उसको स्वीकारा गया है और उसके निदान के लिए कुछ कदम उठाए गए हैं, ये तो यहाँ तक तो सार्थक है। अब हमें अपनी लॉ एनफोर्समेंट मशीनरी से ये काम लेना पड़ेगा, और ये काम मतलब वर्तमान सरकार लेने में सक्षम है। उन्होंने नक्सलियों को कहा कि हम मार्च 2026 तक खत्म कर दें, उन्होंने खत्म कर दिया, ठीक है, बहुत बड़ी बात है, बहुत बड़ा अचीवमेंट है। इस समस्या के लिए भी उनको कुछ टारगेट रखना पड़ेगा, और इसकी मंथली ईयरली या क्वार्टरली कुछ चीज की मॉनिटरिंग करनी पड़ेगी। हम पहले ये एस्टिमेट बनाए कि हर स्टेट में कितने कितने बांग्लादेशी घुसपैठिए हैं, उसके बाद हर स्टेट पे कहें कि इस महीने में आपने इनके खिलाफ क्या कार्रवाई की, इनको कितने को डिटेक्ट किया, कितने होल्डिंग सेंटर में है, किनको डिपोर्ट करने के लिए क्या कार्रवाई की, इनका रेगुलर मॉनिटरिंग होनी पड़ेगी। इसमें सख्ती बहुत जरूरी है। मैं समझता हूँ कि वर्तमान सरकार करने में सक्षम है।

0: नक्सल समस्या पे विजय पा ली है, तो इस समस्या का भी ये समाधान प्रभावी ढंग से ढूंढ सकते हैं। इसके लिए सख्ती करनी पड़ेगी और मैं समझता हूँ कि सरकार ये सख्ती कर सकती है।
1: प्रफुल्ल जी, कार्यक्रम के अंत में एक और सवाल बहुत संक्षेप में आपसे समझना चाहेंगे कि आज के दौर में जब सोशल मीडिया का जमाना है, तो सोशल मीडिया और फेक डॉक्यूमेंट नेटवर्क, आपको क्या लगता है ये घुसपैठ को बढ़ाने में कितनी भूमिका निभा रहे हैं?
2: देखिए, मैंने जैसे पहले कहा कि इसके जुड़ी हुई एक इकोनॉमी है। ये केवल फेक डॉक्यूमेंट नेटवर्क नहीं है, ये फेक करेंसी नेटवर्क है, ये ड्रग ट्रैफिकिंग का नेटवर्क है, ह्यूमन ट्रैफिकिंग का नेटवर्क है, इसमें आर्म्स के ट्रैफिकिंग का नेटवर्क है और एक क्रिमिनल सिंडिकेट के रूप में ये काम करता है। तो मुझे लगता है कि ये निश्चित रूप से जिम्मेदार है और आज के जमाने में सोशल मीडिया इसको एम्पलीफाई करता है ह्यूमैनिटेरियन के नाम पर। जैसे ही ऐसी कुछ केसेस होती है, डिपोर्टेशन के लिए कुछ बात बढ़ती है, तो सोशल मीडिया में एक्टिविज्म चलता है, राजनीतिक कारणों से भी चलता है, कुछ धार्मिक कारणों से भी चलता है, कुछ इंटरनेशनल कॉन्स्पिरसीज के द्वारा भी चलता है। तो ऐसे में एक बड़ा मुश्किल हो जाता है किसी भी देश के लिए किसी भी इलीगल माइग्रेंट्स के विरोध में सख्त कदम लेना। और आज जब टेक्नोलॉजी का दुरुपयोग एक अच्छा उपयोग हो सकता है गवर्नेंस में आइडेंटिफाई करने के लिए, चाहे सीसीटीवी कैमरेज के रूप में, चाहे सेंसर्स के रूप में, हम बहुत सारी चीजों का उपयोग कर सकते हैं, लेकिन ये सिंडिकेट्स डॉक्यूमेंट्स बनाने के लिए टेक्नोलॉजी का दुरुपयोग करना, ये एक बहुत बड़ी समस्या है। तो मुझे लगता है कि जब अननेचुरल डेमोग्राफिक चेंज के बारे में सोचा जाएगा, तो इसके टेक्नोलॉजिकल एस्पेक्ट्स, मीडिया एक्टिविज्म के एस्पेक्ट्स और अन्य जो इससे जुड़े हुए सिंडिकेट और क्रिमिनल एस्पेक्ट्स है, इस पर भी मुझे लगता है ये समिति सोचेगी भी और उस पर कुछ उपाय योजना भी सरकार को बताएगी।
1: सीमाओं की सुरक्षा सिर्फ जवानों की जिम्मेदारी नहीं होती, ये पूरे राष्ट्र की सामूहिक चेतना का विषय है। जनसंख्या परिवर्तन और अवैध घुसपैठ जैसे मुद्दे केवल आंकड़ों की बहस नहीं है, इनका सीधा संबंध देश की सामाजिक स्थिरता, आर्थिक संसाधनों और आने वाली पीढ़ियों के भविष्य से है। आज की चर्चा ने यह साफ कर दिया है कि चुनौती केवल सीमा पार से आने वालों की नहीं, बल्कि उस सोच की भी है जो राष्ट्रीय हित से ऊपर व्यक्तिगत और राजनीतिक लाभ को रख देती है। जरूरत है सजग नीति की, मजबूत सीमा प्रबंधन की और सबसे बढ़कर जागरूक समाज की। प्रफुल्ल केतकर जी आपका, प्रकाश सिंह जी आपका, आकाशवाणी के इस कार्यक्रम से जुड़ने के लिए और विशेषज्ञ राय साझा करने के लिए बहुत बहुत आभार।
2: बहुत बहुत धन्यवाद।
0: धन्यवाद, नमस्कार।
1: इस कार्यक्रम को आप हमारे मोबाइल ऐप न्यूज ऑन AIR और यूट्यूब चैनल न्यूज ऑन AIR ऑफिशियल पर भी सुन सकते हैं।
3: चर्चा का विषय है।

0: ये आकाशवाणी मध्य प्रदेश है। अब प्रस्तुत है नाटक उपेक्षित, जिसके लेखक हैं घनश्याम सिंह तोमर और प्रस्तुतकर्ता हैं जितेंद्र स्वरूप राजन।
1: प्रस्तुत है वृद्ध जनों की रहन सहन की समस्या पर केंद्रित नाटक उपेक्षित। लेखक घनश्याम सिंह तोमर, प्रस्तुतकर्ता चित्रेंद्र स्वरूप राजन।

0: महेश, जरा देखो तो कौन साहब है।
1: जी मालिक।
2: क्या प्रसाद साहब हैं?
1: जी हाँ, अंदर हैं।
2: उनसे बोलो जोशी जी आए हैं।
1: मालिक, कौनो जोशी जी आए हैं?
0: अरे भाई, उन्हें ड्राइंग रूम में बैठा दो, मैं अभी आता हूँ।
1: जी आप बैठिए, मालिक अभी आते हैं।
0: नमस्कार जोशी जी।
2: नमस्कार, नमस्कार। अरे प्रसाद जी, आप तो बहुत कमजोर दिख रहे हैं, ये क्या हालत बना ली है आपने?
0: शारदा के जाने के बाद अब किसी भी काम में मन नहीं लगता,
2: ओहो,
0: ना तो कोई बात अच्छी लगती।

0: है ना ही कुछ करने का मन होता है।
1: सही,
0: सच पूछिए तो अब जीवन में इतनी रिक्तता आ गई है कि जीने का मन ही नहीं करता। शारदा के देहांत के बाद बच्चे और बहुएं आई थी।
1: अच्छा,
0: कुछ दिन उनके रहने से मन बहला रहा।
1: हाँ हाँ,
0: अब सब चले गए तो घर काटने को दौड़ता है। ऐसा लगता है कि अब जीने का कोई उद्देश्य ही नहीं रह गया है।
1: क्या बात करते हैं प्रसाद जी, आप जैसा बुद्धिमान व्यक्ति इस प्रकार की बात करे तो आश्चर्य होता है। मेरे विचार में पहले तो आप कुछ दिन अपने बच्चों के यहाँ हो आइए। 3 बच्चे हैं आपके, बहू और बेटों में आपका मन बहल जाएगा, पोते पोतियों की देखभाल करने में समय गुजरेगा। प्रसाद जी, बच्चे कहाँ कहाँ हैं आपके?
0: बड़ा शैलेंद्र जो है वो खंडवा में है।
1: अच्छा,
0: दूसरा पटना में और तीसरा धर्मेंद्र जबलपुर में।
1: बिल्कुल,
0: प्रोफेसर है।
1: तो अब आप अपना कार्यक्रम बना लीजिए और उस पर अमल कर डालिए।
0: ऐसा ही करूंगा, करना ही पड़ेगा, घर छोड़ने का मन बनाना ही पड़ेगा। इस घर से बहुत सी यादें जुड़ी हैं, उन्हें भुलाना ही पड़ेगा।
1: देखिए प्रसाद जी, भावुकता एक सीमा तक तो ठीक होती है, किंतु उस सीमा के बाद तो वो एक अभिशाप बन जाती है, जिसके नतीजे में आदमी को कष्ट उठाना पड़ता है, वही कष्ट जो आप अब उठा रहे हैं।
0: आपका कहना कुछ हद ठीक है, लेकिन स्वभाव और प्रवृत्ति को बदलना आसान नहीं होता। अच्छा बताइए, ठंडा लेंगे या गरम? बातों में ये सब भूल ही गया था।
1: प्रसाद जी,
0: क्षमा करना,
1: अतिथि से पूछा नहीं जाता, जो अच्छा हो मंगवा लीजिए। मैं भी कॉलेज से चला आ रहा हूँ, सोचा रास्ते में आपसे मिलता चलूँ, बहुत दिनों से आपसे भेंट नहीं हुई थी।
0: अच्छा हुआ आप आ गए, आप जैसे मित्रों के मिलने से बड़ा बल मिलता है।
2: मालिक, ये लीजिए
0: हाँ
2: चाय।
0: हाँ रखो रखो,
2: यहाँ रख दें?
0: हाँ लीजिए, जलपान कीजिए।
1: ये नाश्ता शायद महेश ने बनाया है।
0: अब तो महेश ही ये सब घर संभाल रहा है।
1: ये आपके यहाँ कब से काम कर रहा है?
0: यही कोई 2-3 महीने से।
1: क्या इसके बारे में आपको पूरी जानकारी है?
0: क्या मतलब?
1: यही कि आप जानते हैं ये कौन है, कहाँ का रहने वाला है, इसका और कौन कौन है, पहले क्या करता था। अगर पहले ही कहीं और काम करता था तो काम छोड़ने की वजह क्या है?
0: क्या ये सब जानने की जरूरत है क्या?
1: है, जरूरत है। इस घर में आप अकेले रहते हैं, ऐसे में कोई भी कुछ कर सकता है, आपको सावधान रहना चाहिए।
0: सावधान रहने के लिए अब रही क्या गया?
1: आहा, फिर वही बात निराशा की। प्रसाद जी, मैं मानता हूँ आपको भाभी के देहांत से बहुत बड़ा आघात पहुँचा है, परंतु
0: किंतु परंतु कुछ नहीं जोशी जी, अब तो ऐसा लगता है जैसे सब कुछ समाप्त।
1: नहीं नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। अभी आपको बहुत कुछ करना है, अपने पोते पोतियों के लिए, परिवार के लिए, समाज के लिए। आप जैसे बुद्धिजीवी यदि जीवन के अंधेरे पहलू को लेकर मौन साध लें, निष्क्रिय हो जाएं, तो भविष्य अंधकार में हो जाएगा। आने वाली पीढ़ी किसके अनुभवों और मार्गदर्शन का सहारा लेगी, बताइए? ईश्वर ने हमें मनुष्य योनि इसलिए तो नहीं दी कि हम उसे व्यर्थ गंवा दें? निराशा छोड़िए, विवेक को जगाइए, कुछ कीजिए जिससे मानवता और देश का भला हो। आपसे बहुत सी आशाएं हैं।
0: क्या ये जरूरी है कि मैं इसके बारे में मालूम।

0: की जाए।
1: जी हाँ, यह आवश्यक है। सरकार ने भी इस बारे में सजग रहने की आवश्यकता पर जोर दिया है। किसी को भी नौकर रखने पर उसके बारे में पूरी जानकारी होना जरूरी है। मुझे उसका पता दीजिए। मेरे एक मित्र मिस्टर पेंगे पुलिस अधिकारी हैं, वो इसके बारे में पूरी मालूमात करवा लेंगे।
0: अगर ये इतना जरूरी है तो पता मैं दिए देता हूँ। ये लीजिए।
1: लाइए। धन्यवाद। अच्छा, अब जाने की इजाजत दीजिए।
0: अच्छी बात है। फिर कब आ रहे हैं?
1: जल्दी आऊंगा। इस बीच आप अपने बच्चों के पास जाने का प्रोग्राम बना लें और मुझे बताएं।
0: बना लूंगा और आपको सूचना भी दे दूंगा।
1: आप मुझे फोन पर बता दें, मैं उसी दिन आ जाऊंगा। अच्छा, नमस्कार।
0: नमस्कार।

0: हेलो प्रसाद जी। हाँ, मैं जोशी बोल रहा हूँ जी। नमस्कार। कुछ प्रोग्राम बनाया आपने जी? हाँ। अरे बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। तो शाम को तो आप घर ही पर भी रहेंगे ना? जी हाँ, मैं आ जाऊँगा। मैंने भी अपने जाने का प्रोग्राम बना लिया है। कुछ दिन मैं भी अपने बच्चों के साथ जाकर रहूँगा। अच्छा, बाय।
1: जोशी जी आ जाइए, दरवाजा खुला है।
0: नमस्कार।
1: नमस्कार नमस्कार, आइए बैठिए।
0: तो आपने बच्चों के पास जाने का मन बना लिया?
1: जी हाँ, अब आपकी सलाह पर कुछ न कुछ तो करना ही था, लेकिन एक बात की चिंता है।
0: क्या?
1: इतना बड़ा घर सूना छोड़कर कैसे चला
0: अरे
1: जाऊंगा?
0: महेश के भरोसे मैंने उसके बारे में पूरा पता लगा लिया है। वो मंदसौर का रहने वाला है, ईमानदार और सीधा सच्चा आदमी है। उस पर भरोसा किया जा सकता है। वो और उसका परिवार वहाँ सिलेट कारखाने में काम करते थे। उसके बच्चे की मृत्यु हो जाने के बाद वो मंदसौर से यहाँ चला आया। पहले एक होटल में काम करता था, लेकिन होटल का वातावरण उसे रास नहीं आया, इसलिए उसने होटल का काम छोड़ दिया। आपने उसको नौकर रख लिया, अब यही काम कर रहा है।
1: ठीक है, अब ये जिम्मेदारी सौंप कर एक और परीक्षा से गुजरना पड़ेगा।
0: वैसे जोखिम की चीजें आप बैंक के लाकर में रख दें, घर में कमरे में लॉक लगा दें, एक कमरा उसके लिए छोड़ दें। मैं समझता हूँ महेश आपको धोखा नहीं देगा।
1: ठीक है, मैं 2-1 दिन में ही जाने का सोच रहा हूँ।
0: इस यात्रा से आपको कुछ ताजगी मिलेगी और फिर आबहवा भी बदल जाएगी। स्थान बदलने से आपका मानसिक तनाव भी कम हो जाएगा।
1: जोशी जी, जहाँ तक वातावरण का सवाल है, वातावरण तो सब जगह एक सा है। वही तनाव, वही घुटन, वही जिंदगी, पैसे के लिए दौड़ धूप, कुछ और अच्छा पाने की लालसा। हाँ, आबोहवा जरूर बदल जाएगी, जिसका असर स्वभाव और स्वास्थ्य पर पड़
0: जी
1: सकता है।
0: हाँ, मेरा मतलब वातावरण से जलवायु बदलने का ही था। आपने शब्द पकड़ लिया और अपने
1: जी
0: बौद्धिक होने का सबूत दे ही दिया। इन दिनों कुछ लिखा हो तो सुनाइए।
1: लिखा तो है, अब खाली समय में यही काम रह गया है। शारदा थी तो उनसे बातचीत में समय कट जाता था, अब तो केवल पढ़ना और लिखना ही रह गया है। जो कुछ लिखा है उसे फिर आप निराशावादी लेखन कहने लगेंगे।
0: फिर भी सुनाइए तो।

0: लिखा तो बहुत कुछ है पर सुनाने का मन नहीं होता, इसलिए कि मैं तो दुखी हूं ही। दूसरों को उसे सुनाकर दुखी क्यों करूं?
1: फिर वही बात प्रसाद जी, आप सुनाइए। यदि मनुष्य को दुख का अनुभव नहीं हो तो सुख के स्वरूप की न तो कल्पना कर सकता है और न उसे भोग सकता है। कठिन परिस्थितियों से गुजरने के बाद ही हमें सहज और सरल स्थिति में जो खुशी आनंद मिलता है उसका उपयोग हम ज़्यादा मज़ा लेकर करते हैं। आपने जो भी लिखा है सुनाइए, वो ज़रूर सार्थक होगा।
0: अब आपका आग्रह है तो कुछ सुनाई देता हूँ।
1: हाँ जरूर
0: सुनिए
1: जी।
0: याद दुख की तो दुख देती है।
1: याद दुख की तो दुख देती है, वाह।
0: याद दुख की तो दुख देती है।
1: हाँ हाँ
0: याद सुख की भी दुख देती
1: है। हाँ, क्या बात है, क्या बात है, वाह।
0: कितनी अच्छी ये बात हो जाती।
1: हाँ
0: काश के याददाश्त खो जाती।
1: वाह वाह, क्या बात है, बहुत खूब। आपने अपनी बात बड़े ढंग से कही है, हालांकि आपकी निजी अनुभूति है, किंतु इसमें एक दर्शन भी है, एक वास्तविकता है, हकीकत जिसे नकारा नहीं जा सकता। हाँ कुछ और सुनाइए
0: जोशी जी।
1: जी
0: कुछ पंक्तियां और हैं। जिंदगी एक हसीं परिंदा है।
1: हाँ जिंदगी एक हसी परिंदा है, वाह।
0: जिंदगी
1: एक हसी परिंदा है,
0: एक हसी परिंदा है। समय की शाख पर नजाकत से
1: हाँ
0: रुक के कुछ देर चहचहाता है।
1: क्या बात है,
0: झूलती शाख छोड़ जाता।
1: क्या, वाह वाह वाह वाह वाह वाह। जिंदगी और उसके बाद उसके वजूद के आभास की इससे और अच्छी तस्वीर शब्दों में नहीं पेश की जा सकती। भाई प्रसाद जी, मान गए, आपके कलम में बहुत जोर है, बड़ी ताकत है।
0: जोशी जी, मैं अगर गलत नहीं सोचता तो हमारे बाद हमारे निशान ही हमारी पहचान बताते हैं।
1: बेशक बेशक प्रसाद जी, तो आप कल जा रहे हैं?
0: हाँ, मैंने अपने पहुंचने का तार भी दे दिया है।
1: जाइए, आपकी यात्रा शुभ हो। अच्छा, मुझे आज्ञा दीजिए। नमस्कार।
0: आपकी यात्रा भी शुभ हो। नमस्कार।
1: नमस्कार।

0: हाँ बच्चों, अब जरा फिर से करके दिखाओ। अरे आप, इतनी जल्दी? क्या ऑफिस से छुट्टी हो गई?
1: अरे नहीं मालती, मुझे जल्दी आना पड़ा।
0: सब कुशल तो है? आपकी तबीयत तो ठीक है?
1: हाँ तबीयत भी ठीक है।
0: ओहो, तो फिर क्या बात है?
1: अरे पहले अपना डांस क्लास बंद करो, फिर बतलाता हूँ।
0: अच्छा अच्छा अच्छा बच्चों, आप लोग आज जाइए। हाँ, कल जल्दी आ जाना। हाँ, आप बताइए क्या बात है?
1: वो बाबूजी का तार आया है।
0: सब ठीक तो है? अरे अभी तो मम्मी का आघात ही नहीं भूले हैं हम लोग।
1: शुभ शुभ बोलो मालती, बाबूजी अभी आ रहे हैं। मैंने सोचा तुमको पहले बता दूं और उसके बाद उनको लेने स्टेशन चला जाऊं।
0: ओहो, फिर मेरी डांस क्लास का क्या होगा? और फिर उनके ठहराने के लिए
1: अरे
0: भी तो।
1: उन्हें बच्चों वाले कमरे में ठहरा देंगे।
0: और फिर बच्चे?
1: वो कुछ दिन जब तक बाबूजी रहेंगे अपने कमरे में रह लेंगे।
0: ओहो, उनकी पढ़ाई का क्या होगा?
1: ओफो, वो भी अपने कमरे में उन्हें करना पड़ेगी। ऐसा करो, डांस क्लास की कुछ दिन छुट्टी कर दो और बच्चों का सामान अपने कमरे में शिफ्ट कर दो।
0: आप भी कमाल करते हैं। अरे डांस क्लास बंद कर देने से उतने दिन के पैसे नहीं काट लेंगे वो लोग?
1: अब क्या किया जा सकता है, यही करना पड़ेगा।
0: ओहो, अब देखो बच्चों को भी कितनी तकलीफ हो जाएगी ना।
1: भाई वो तकलीफ तो उठानी ही पड़ेगी।
0: लेकिन अब ये कब तक?

0: वो 2-4 दिन रहकर चले जाएंगे, तब तक तो हम ये सब कर सकते हैं ना। जल्दी करो,
1: नहीं
0: वक्त इन सब बातों का नहीं है, गाड़ी का समय हो रहा है, मुझे स्टेशन जाना है।
1: ये बाबा आ रहे हैं,
2: बाबा आ रहे हैं। ये
1: वह हमें कितना प्यार करते हैं ना,
2: वह हमें अच्छी अच्छी चीजें खाने के लिए भी ला कर देते हैं। याद है जब हम भोपाल गए थे?
1: हाँ याद है, जब बेचारी दादी नहीं रही।
3: अरे चुप रहो तुम लोग, तुम्हें कुछ मालूम भी है उनके आने से हम लोगों को कितनी तकलीफ हो जाएगी?
1: क्यों मम्मी?
3: क्योंकि बाबूजी जो है ना, वो तुम्हारे कमरे में रहेंगे और तुम दोनों को हम लोगों के कमरे में आना पड़ेगा, वहीं पढ़ना और वहीं सोना, समझे?
0: अरे अब ये सब बातें बंद करो और कमरा ठीक कर दो,

0: जब बेचारी दादी नहीं रही।
1: अरे चुप रहो तुम लोग, तुम्हें कुछ मालूम भी है उनके आने से हम लोगों को कितनी तकलीफ हो जाएगी?
0: क्यों मम्मी?
1: क्योंकि बाबूजी जो है ना वो तुम्हारे कमरे में रहेंगे और तुम दोनों को हम लोगों के कमरे में आना पड़ेगा, वहीं पढ़ना और वहीं सोना, समझे?
2: अरे अब ये सब बातें बंद करो और कमरा ठीक कर दो, मैं स्टेशन जाता हूँ।
1: ठीक है।
3: अरे भाई हनी, आशु कहाँ हो?
1: ओहो लगता है बाबूजी आ ही गए।
2: बाबूजी मैं स्टेशन आ ही रहा था, तार अभी अभी मिला है।
3: हाँ बेटे, तार चलने के पहले ही दे दिया था।
0: बाबा आप आ गए,
4: हम आप ही का रास्ता देख रहे थे।
3: अच्छा और क्या सोच रहे थे?
4: और बाबा, और हम सोच रहे थे कि आप हमारे लिए जरूर कुछ लाएंगे।
0: और बाबा मेरे लिए भी।
1: अरे अब बाबा को बैठने तो दो, जरा चैन तो लेने दो। हटो तुम दोनों, जरा बाबूजी के चरण स्पर्श तो कर लूं।
3: सौभाग्यवती रहो, खूब फलो फूलो।
1: बाबूजी अब आप हाथ मुंह धो लीजिए।
3: हाँ बेटी, बाथरूम में पानी तो होगा?
1: हाँ बाबूजी, हाथ मुंह धोने लायक तो मिल ही जाएगा। आज जरा नल जल्दी चले गए थे ना, इसलिए पानी की कुछ कमी है। और वैसे भी यहाँ तो अक्सर नल थोड़े से समय के लिए आते हैं, इसलिए पानी की कमी तो बनी ही रहती है बाबूजी। इस शहर में तो बस कभी पानी की कमी तो कभी बिजली नदारद तो कभी गैस की शॉर्टेज, एक ना एक मुसीबत तो झेलनी ही पड़ती है। और कभी कभी तो बाबूजी गैस नहीं होने से खाना बाहर से लाकर खाना पड़ता है, बड़ी मुसीबत है यहाँ तो।
3: बेटी हमें संतोष तब मिलता है जब हम अपने से नीचे के वर्ग को देखें, फिर मन करता है कि ईश्वर को धन्यवाद दें कि उसने हमें ऐसी बहुत सी चीजें दी हैं जो औरों को नहीं दी।
1: हाँ बाबूजी वो तो ठीक है, मगर अब ये सब कुछ कहने में तो आ ही जाता है ना।
2: अरे क्या घर का दुखड़ा लेकर बैठ गई, चाय नाश्ता लाओ। लीजिए बाबूजी ये तौलिया, हाथ में पहुंच लीजिए।
3: आओ बच्चों आओ, हमारे साथ नाश्ता कर लो।
4: नहीं बाबा, हमने अभी खाना खाया है।
0: आप नाश्ता करिए।
3: भाई बच्चों की पढ़ाई कैसी चल रही है?
2: हाँ पढ़ाई तो ठीक है बाबूजी, लेकिन फीस और बस्ते का बोझ बढ़ता ही जा रहा है।
3: न जाने कौन सा तरीका अपनाया जा रहा है पढ़ाने का, हमारे जमाने में तो कम सब्जेक्ट होते थे और आधा काम जो है वो जबानी होता था। गिनती पहाड़े पौने सवैया अधे सब जबानी और हिसाब फटाफट।
2: बाबूजी अब तो किताबें कॉपियां यूनिफॉर्म और आए दिन के चंदे और फीस से इतना बोझ हो गया है कि उठाना मुश्किल पड़ रहा है। इसकी वजह से घर का खर्च चलाना बहुत कठिन हो गया है बाबूजी।
3: बहू तुमको भी कुछ करना चाहिए, आजकल एक की कमाई में घर खर्च बड़ी मुश्किल से चलता है।
1: अब और क्या करूं बाबूजी, मैं बस थोड़ा बहुत डांस क्लासेस चला लेती हूँ, 100-200 रुपये वो मिल ही जाते हैं। अब घर के कामों में ही इतनी उलझी रहती हूँ कि कुछ दूसरा करने की फुर्सत ही नहीं मिलती।
3: तुम बेटी कोई क्राफ्ट क्लास ज्वाइन कर लो और फिर सीख करके उससे थोड़ा सा लाभ उठा लो।
1: अब उसके लिए भी तो फीस देनी पड़ेगी ना बाबूजी, वो कहाँ से आएगी?
3: अरे भाई जब तक तुम प्रशिक्षण लोगी तुम्हें फीस के लिए पैसे हम भेजते रहेंगे।
1: अच्छा?
2: छोड़िए बाबूजी, आप यहाँ आए हैं आराम करने के लिए और गले लगा रहे हैं झंझटें।
1: अच्छा तो आपको ये झंझट लग रही है? अरे बाबूजी अपनी मर्जी से कुछ देने की बात कर रहे हैं तो आप बीच में अड़ंगा क्यों डाल रहे हैं जी?
3: ठीक है भाई, तुम लोग विवाद क्यों करते हो, मैं अपनी पेंशन से तुम्हें कुछ भेज दिया करूँगा।
2: अरे चलिए बाबूजी आराम कर लीजिए, सफर में थक गए होंगे।
3: मैं यहीं पलंग पर लेट जाता हूँ।
2: मैं ऑफिस जा रहा हूँ मालती, तुम बाजार से सब्जी ले आना।
1: अरे आप रुकिए जरा, मैं भी आपके साथ चलती हूँ, मुझे मार्केट में छोड़ देना, आप सब्जी ले लूंगी वहीं से।
3: हनी बेटे
4: जी,
3: एक गिलास पानी पिलाओगे?
0: बाबा मैं आपके लिए क्या लाऊं?

0: अरे भाई, तुम खुद आ जाओ, हम दोनों बातें करेंगे।
1: जी लीजिए बाबा पानी। बाबा आप हमारे लिए जो लाए हैं वो तो आपने अभी तक दिया ही नहीं।
0: अरे भाई, तुम्हारे लिए हम जीन्स का कपड़ा लाए हैं और आशु के लिए फ्रॉक लाए हैं।
1: कपड़ा ओह
0: क्यों, क्या हुआ, इतना बुरा मुंह क्यों बना रहे हो?
1: बाबा 3 महीने तक जीन्स सिलने के लिए भी नहीं डाली जाएगी।
0: क्यों
1: मम्मी पापा के पास उसके लिए पैसे कहाँ निकलेंगे?
0: क्यों नहीं निकलेंगे?
1: मम्मी पापा कहते हैं कि उनके सब पैसे खर्च हो जाते हैं।
0: किस बात में?
1: अब देखिए ना, हम दोनों की फीस, घर के सामान का खरीदना, क्लब की फीस, ब्यूटी पार्लर का खर्चा, और भी खर्चे हैं बाबा। अब मैं आपको क्या क्या बताऊं?
0: अच्छा भाई, हम दर्जी के यहाँ चलकर तुम्हारी जींस सिलवा लेंगे।
1: जी
0: और हमारी आशु बेटी को क्या चाहिए?
2: बाबा, मुझे कुछ नहीं चाहिए। मैं आपके पैसे खर्च करवाना नहीं चाहती।
0: अच्छा, तो तुम इतनी समझदार कब से हो गई?
2: बाबा, मम्मी कहती हैं पैसे जोड़ जोड़ कर रखने चाहिए, वक्त जरूरत पर काम आते हैं।
0: वो ठीक कहती हैं।
1: बाबा, अब हमें मम्मी पापा के कमरे में रहना पड़ेगा, वहीं पढ़ना पड़ेगा, वहीं सोना पड़ेगा।
0: क्यों?
1: आप आए हैं ना, आपको हमारे कमरे में ठहराएंगे। मम्मी कह रही थी जब 2-4 दिन बाद आप चले जाएंगे तो फिर हम अपने कमरे में रहने लगेंगे।
0: 2-4 दिनों में नहीं बेटे, हम कल ही चले जाएंगे। मैं तुम लोगों को तकलीफ देने नहीं आया हूं बेटे। अच्छा, अब थोड़ी देर आराम करो।
3: बाबूजी सो गए क्या?
0: अरे बेटी, इतनी जल्दी आ गई तुम? और हाँ, कल मुझे जबलपुर जाना है। ये पैसे लो, मेरे लिए रिजर्वेशन करा दो।
4: क्या बात है बाबूजी, अभी आए हैं और अभी जाने की बात करने लगे।
0: अरे भाई, तुम लोगों को देखने का मन था, देख लिया। बच्चों और बहू से मिल लिया, अब थोड़ा सा धर्मेंद्र के पास भी हुआ हूं, उसे भी देख लूं।

0: बेटा धर्मेंद्र।
1: अरे अरे बाबूजी आप, बाबूजी आप, अरे आने की सूचना तो दे दी होती, मैं स्टेशन पर आ जाता। मकान ढूंढने की परेशानी तो नहीं उठानी पड़ती आपको?
0: अरे नहीं भाई, कोई परेशानी नहीं। बहू कहाँ है?
1: जी बहू जी, वो डॉक्टर के यहाँ गई है।
0: डॉक्टर के यहाँ?
1: जी
0: क्यों?
1: बाबूजी वो प्रेग्नेंट है ना।
0: धर्मेंद्र
1: जी,
0: तुम लोग पढ़े लिखे हो, तुम्हारे दो दो बच्चियां हैं
1: जी,
0: फिर भी ये सब क्या है? क्या तुम्हें भविष्य की चिंता नहीं है?
1: है ना बाबूजी, लेकिन वो क्या है बाबूजी, आपकी बहू को एक लड़के की चाह है।
0: क्या पागलपन है, लड़का और लड़की दोनों बराबर होते हैं। तुम अपनी सास को बुलाओ।
1: जी
0: उसको बुला लो।
1: हाँ।
0: वो यहाँ आकर के तुम लोगों की और बहू की देखभाल करेगी।
1: जी जी
0: हाँ एक बात और।
1: जी बोलिए बाबू जी।
0: कल मेरा वापस जाने का रिजर्वेशन भी करा दो।
1: जी इतनी जल्दी बाबू जी?
0: तुम लोगों की तकलीफों में एक और तकलीफ बढ़ाना मैं नहीं चाहता।

0: प्रणाम, आप बहुत जल्दी आ गए।
1: हाँ महेश, ऑटो से सामान तो उतार ला।
0: जी मालिक।
2: अरे भाई प्रसाद जी, इतनी जल्दी आ गए।
1: हाँ भाई, मगर आप भी तो यहीं दिख रहे हैं, क्या बच्चों के पास नहीं गए?
2: गया था, परंतु मैं उनके यहाँ फिट नहीं हो पा रहा था, इसलिए तीसरे ही दिन चल दिया। और आप
1: मैं दूसरे ही दिन
2: क्या हम बूढ़े यूं ही उपेक्षित रहेंगे?
1: लगता है अब यही नियति हो गई है।
2: जब तक सांसें हैं तन्हाई झेलनी है।
1: सच में जोशी जी, मन बना लो,
2: हाँ,
1: क्योंकि बहुत दिनों तक रहना होगा उपेक्षा।

0: अभी आप सुन रहे थे नाटक उपेक्षित। लेखक थे घनश्याम सिंह तोमर। भाग लेने वाले कलाकार थे के बी सोनी, मकबूल हसन, प्रेम प्रकाश अष्ठाना, राकेश जैमिनी, बद्रुन्निसा, पूनम भार्गव, प्रेरणा थॉमस और अशोक बुलानी। प्रस्तुति सहयोग आनंद सिंह उद्दे का था और इस नाटक के प्रस्तुतकर्ता थे चित्रेंद्र स्वरूप राजन।
1: अभी आप घनश्याम सिंह तोमर द्वारा लिखित नाटक उपेक्षित सुन रहे थे। आप सुन रहे हैं आकाशवाणी मध्य प्रदेश। आकाशवाणी मध्य प्रदेश के प्रसारण में अब प्रस्तुत है शास्त्रीय संगीत का कार्यक्रम राग रजनी। कार्यक्रम में आनंद लीजिए पंडित विश्व मोहन भट्ट द्वारा गिटार वादन का। राग है रागेश्री।

0: अभी आप सुन रहे थे शास्त्रीय संगीत का कार्यक्रम राग रजनी। आप सुन रहे हैं आकाशवाणी मध्य प्रदेश। कुछ ही पलों में आकाशवाणी दिल्ली से अनुप्रसारित किए जाएंगे हिंदी में समाचार, कृपया प्रतीक्षा करें।
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं चंद्रशेखर शर्मा। मंत्रिमंडल की आर्थिक मामलों की समिति ने आज सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अंतर्गत राशन परिवहन और प्रबंधन सहायता योजना सार्थक पीडीएस को जारी रखने की अनुमति दे दी है। इसके लिए केंद्र सरकार की ओर से 25,530 करोड़ रुपए का आवंटन किया गया है। नई दिल्ली में संवाददाताओं से बातचीत में सूचना और प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा कि यह योजना सार्वजनिक वितरण प्रणाली के आधुनिकीकरण में सहयोग करेगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने स्वच्छ भारत मिशन के दूसरे चरण के प्रभावी क्रियान्वयन पर जोर देते हुए कहा कि यह अभियान केवल बुनियादी ढांचे के निर्माण तक सीमित न रहे बल्कि नियमित निगरानी, जनभागीदारी और विभिन्न पक्षों के समन्वय से ठोस परिणाम सुनिश्चित किए जाएं। नई दिल्ली में आज 51वीं प्रगति बैठक की अध्यक्षता करते हुए प्रधानमंत्री ने राज्यों से ठोस अपशिष्ट प्रबंधन से जुड़ी परियोजनाओं जैसे कचरा प्रसंस्करण और गोवर्धन संयंत्रों को तेजी से पूरा करने को कहा। बैठक में रेलवे, बिजली और सड़क क्षेत्रों की लगभग 30,000 करोड़ रुपए लागत वाली 7 महत्वपूर्ण परियोजनाओं की समीक्षा की गई। सर्वोच्च न्यायालय ने निर्वाचन आयोग द्वारा कराई गई मतदाता सूचियों की विशेष गहन पुनरीक्षण SIR प्रक्रिया की वैधता को बरकरार रखा है। सर्वोच्च न्यायालय ने कहा कि SIR प्रक्रिया स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनावों की संवैधानिक अनिवार्यताओं को आगे बढ़ाती है। न्यायालय ने फैसला सुनाया कि निर्वाचन आयोग लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1950 के अनुच्छेद 324 और उसके अधीन निर्मित नियम के अंतर्गत SIR कराने का अधिकार रखता है। एक रिपोर्ट।
2: मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत और न्यायमूर्ति जॉय माल्या बागची की एक पीठ ने उन याचिकाओं पर फैसला सुनाया जिनमें पिछले साल जून महीने में चुनाव आयोग द्वारा बिहार में SIR आयोजित करने के लिए जारी अधिसूचना को चुनौती दी गई थी। फैसले में कहा गया कि विवादित प्रक्रिया को केवल अमान्य नहीं कहा जा सकता है क्योंकि ये नियमित पुनरीक्षण के लिए निर्धारित सामान्य तौर तरीकों के अनुरूप नहीं है। इसलिए नहीं कहा जा सकता है कि निर्वाचन आयोग ने अपनी वैधानिक शक्तियों से अधिक कार्रवाई की है। समाचार कक्ष से वैष्णवी।

0: भारतीय जनता पार्टी ने सर्वोच्च न्यायालय के इस फैसले का स्वागत किया है। पार्टी प्रवक्ता सुधांशु त्रिवेदी ने नई दिल्ली में संवाददाताओं से बातचीत में इस निर्णय को कांग्रेस समेत विपक्ष की संवैधानिक पराजय बताया।
1: सर्वोच्च न्यायालय ने SIR यानी विशेष गहन पुनरीक्षण की प्रक्रिया को पूर्णतः संविधान सम्मत स्वीकार कर दिया है। राजनीतिक पराजय के बाद अब यह विपक्ष और विशेषकर कांग्रेस पार्टी की संवैधानिक धरा पर भी यह पराजय हुई है।
0: असम विधानसभा ने आज समान नागरिक संहिता विधेयक पारित कर दिया। इसके साथ ही असम ऐसा कानून पारित करने वाला पूर्वोत्तर का पहला और देश का तीसरा राज्य बन गया है। इस विधेयक को विधानसभा के पहले सत्र में सोमवार को पेश किया गया था। केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो ने नीट UG पेपर लीक मामले में आज 3 और लोगों को गिरफ्तार किया। इनमें महाराष्ट्र के लातूर का एक डॉक्टर और पुणे स्थित कोचिंग संस्थान का एक शिक्षक शामिल है। जांच एजेंसी ने पुणे के ही एक अन्य कोचिंग संस्थान के भौतिक विज्ञान शिक्षक को भी गिरफ्तार किया है। इस मामले में अब तक कुल 13 लोगों की गिरफ्तारी हो चुकी है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू कल गंगटोक के पालजोर स्टेडियम में सिक्किम पुलिस को प्रतिष्ठित राष्ट्रपति पुलिस ध्वज से सम्मानित करेंगी। इस सम्मान को प्राप्त करने वाला सिक्किम देश का 15वां और पूर्वोत्तर क्षेत्र का तीसरा राज्य होगा। राष्ट्रपति पुलिस ध्वज देश में किसी पुलिस बल को दिया जाने वाला सर्वोच्च औपचारिक सम्मान है। राष्ट्रपति ने ईद उज जुहा के अवसर पर देशवासियों को शुभकामनाएं दी हैं। अपने संदेश में राष्ट्रपति ने कहा कि यह पर्व समर्पण, त्याग और निस्वार्थ भावना का प्रतीक है। मौसम विभाग ने कहा कि अगले 2 से 3 दिनों तक मध्य और उत्तर पश्चिमी भारत में लू की स्थिति बनी रहेगी। विभाग ने पूर्वी मध्य प्रदेश और विदर्भ में कल लू का रेड अलर्ट जारी किया। दिल्ली, चंडीगढ़, राजस्थान, छत्तीसगढ़, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, कोंकण, गोवा, ओडिशा, पंजाब, तेलंगाना और उत्तर प्रदेश में भी कल लू का प्रकोप बना रहेगा। इस बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश के कई भागों में भीषण गर्मी और लू के मद्देनजर जरूरतमंद वरिष्ठजन और बच्चों का विशेष ध्यान रखने की अपील की है। राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार 2026 के लिए उच्च शिक्षा विभाग ने नामांकन आमंत्रित किए हैं। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

मीडियम वेव न्यूज़ ऑन AIR मोबाइल एप्लीकेशन, साथ ही DTH के ऑडियो चैनल पर ये आकाशवाणी मध्य प्रदेश है। इस समय हमारे स्टूडियोज़ की घड़ी में रात्रि के 11:10 हुए हैं। अब हमारी आज की सभा यहीं संपन्न होती है। कल सुबह 5:55 पर आकाशवाणी प्रसारण सेवा लेकर पुनः उपस्थित होंगे। तब तक के लिए आज्ञा दीजिए। नमस्कार, शुभ रात्रि, जय हिंद।